0: ईमानता और हमेशा सुधरने के लिए तत्पर रहता है। दूसरे, वह आपके सद्गुणों की तो कद्र करता ही है, उनकी प्रशंसा करता है, आपको प्रोत्साहन देता है, लेकिन आपके अवगुणों की ओर भी आपका ध्यान आकर्षण कर आपको सुधरने के लिए प्रेरित करता है। सच्चा मित्र आपका हमदर्द होता है, वो आपके दुख दर्द को समझता है, वो आपको परेशानियों से बचाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहता है, वो आपके सुख में सुखी और आपके दुख में दुखी होता है। सच्चा मित्र आपकी समस्याओं का हल ढूंढने में आपकी सहायता कर सकता है, आपको चिंता मुक्त कर सकता है, आपको परेशानियों से बचा सकता है, उलझनों से निजात दिला सकता है और आपके जीवन में आनंद भर सकता है।
1: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन। अब कार्यक्रम कृषि चर्चा के अंतर्गत सुनिए श्रीनिवास सहाय से वार्ता। विषय है गर्मा सब्जियों की देखभाल।
2: किसान भाइयों नमस्कार। सब्जियों का हमारे दैनिक जीवन में काफी महत्वपूर्ण स्थान है। उनमें आवश्यक खाद तथा उर्वरक डालना आवश्यक होता है, क्योंकि पोषक तत्वों के अभाव में पौधे कीट एवं व्याधियों से ज्यादा ग्रसित होते हैं, उत्पादन भी प्रभावित होता है, फलस्वरूप किसान भाइयों को आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। कई बार एक ही भूमि से लगातार सब्जी फसल लेने से भी जमीन में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिसकी पूर्ति आवश्यकता अनुसार जैविक एवं रासायनिक खाद डालकर कर सकते हैं। खाद के व्यवहार के पहले मिट्टी की जाँच अवश्य आप करा लें। कुछ प्रमुख गर्मा सब्जियों में खाद एवं उर्वरकों की अनुशंसित मात्रा इस प्रकार है। कद्दू में 60 किलोग्राम नेत्रजन, 40 किलोग्राम स्फूर और 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर तत्वों के रूप में डालें। करेला में 60 किलोग्राम नेत्रजन, 40 किलोग्राम स्फूर, 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर तत्वों के रूप में डालें। नेनुआ और झिंगनी में 60 किलोग्राम नेत्रजन, 40 किलोग्राम स्फूर और 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर तत्वों के रूप में डालें। खीरा में 80 किलोग्राम स्फूर, 60 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर तत्वों के रूप में डालें। बोरा में 40 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम स्फूर और 60 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर तत्वों के रूप में डालें। भिंडी में 60 किलोग्राम स्फूर, 120 किलोग्राम नेत्रजन और 60 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर तत्वों के रूप में आप डालें। बैंगन की फसल में 120 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम स्फूर और 80 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर तत्वों के रूप में डालें। मिर्च की फसल में नेत्रजन 100 किलोग्राम, स्फूर 60 किलोग्राम और पोटास 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। प्याज की फसल में 100 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम स्फूर और 80 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर तत्वों के रूप में डालें। किसान भाई, लत्तर वाली सब्जियों को थाला में ही आप लगाए होंगे, क्योंकि थाले में लगाने से उर्वरक प्रयोग एवं सिंचाई करने में सहूलियत होती है। क्योंकि गर्मा सब्जी फसल अभी खड़ी अवस्था में है और आरंभिक अवस्था में गोबर की खाद या कंपोस्ट की पूरी मात्रा, नेत्रजनीय खाद की आधी मात्रा, स्फुर और पोटास की पूरी मात्रा क्षेत्र में निश्चित रूप से डाल दिए होंगे। बची हुई नेत्रजनीय खाद की आधी मात्रा को यूरिया के रूप में फसल की बुआई रोपाई के 20 से 25 दिनों के अंतराल पर सब्जी फसल के अनुसार 2 या 3 किस्तों में व्यवहार करें। थाला में पेड़ के चारों ओर 20 से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर सिर्फ 20 से 25 ग्राम यूरिया प्रति थाला की दर से डालकर सिंचाई निश्चित रूप से आप कर दें। गर्मी के मौसम में 4 से 6 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। कतार में लगी गर्मा सब्जियों की खड़ी फसल जैसे भिंडी, बैंगन, मिर्च इत्यादि में बुआई रोपाई के 20 दिन और 40 से 45 दिनों बाद नेत्रजन की बाकी मात्रा को कतार में डालें और मिट्टी में मिला करके सिंचाई कर दें या सिंचाई करने के बाद उर्वरक का प्रयोग करें। साग में प्रत्येक कटनी के बाद सिंचाई कर यूरिया का बुरकाव करें। दियारा क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था नहीं हो सकती है, वैसी स्थिति में सब्जी फसल पर पर्णीय छिड़काव यूरिया का आप करें, यानी कि यूरिया का 2% का घोल बनावें और उसका ही आप छिड़काव करें। किसी भी परिस्थिति में 2% से ज्यादा मात्रा में यूरिया खाद का छिड़काव नहीं करें, अन्यथा पूरी की पूरी सब्जी फसल बर्बाद हो जाएगी। 2% का मतलब है कि 98 भाग पानी में 2 भाग यूरिया आप मिलावें। उर्वरक के प्रयोग करते समय किसान भाई कुछ आवश्यक सावधानी रखें। उर्वरक की मात्रा का निर्धारण सब्जी फसल की आवश्यकता, फसल की उम्र, मिट्टी के प्रकार पर ध्यान देकर करें। उर्वरक देने की विधि पर काफी ध्यान दें। उर्वरक का प्रयोग सही समय पर करें। सब्जी फसल की बुआई के समय दी गई उर्वरक पर भी काफी

ध्यान आप दें, खरपतवार निकालने के बाद ही उर्वरक का प्रयोग करें। उर्वरक प्रयोग करने के बाद सिंचाई अवश्य करें। इस प्रकार किसान भाई गर्मा खड़ी फसल में बताई गई विधि से उर्वरक प्रयोग करेंगे तो अच्छी आमदनी होगी।

गर्मा सब्जी फसलों की देखभाल, इस विषय पर श्रीनिवास सहाय से वार्ता भी आप सुन रहे थे। इसके साथ ही कार्यक्रम कृषि चर्चा अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। इस समय स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 6 बजने ही वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। असम, पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना आज सुबह 8 बजे से होगी। सबसे पहले डाक मतपत्र की गिनती की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से गणना सुबह 8:30 बजे शुरू होगी। शुरुआती रुझान दोपहर तक मिलने का अनुमान है। निर्वाचन आयोग ने सुव्यवस्थित मतगणना के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। ये मतगणना असम की 126, केरलम की 140, तमिलनाडु की 234 और पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए होगी। पश्चिम बंगाल में आज 293 सीटों की मतगणना होगी। फलता विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए राज्य में इस महीने की 21 तारीख को दोबारा वोटिंग होगी और मतगणना 24 मई को की जाएगी।
1: जनादेश 2026।
0: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ
1: आज सुबह 8:30 बजे से
0: मतगणना की पल पल की खबर,
1: हर सीट की सटीक जानकारी,
0: संवाददाताओं से ताजा हाल
1: और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का विश्लेषण
0: आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए।
1: जनादेश 2026।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रक्षा त्रिवेणी संगम विषय पर उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ये संगोष्ठी परिचालन संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए अत्याधुनिक स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन और एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगी। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय सेना की उत्तरी कमान और केंद्रीय कमान तथा भारतीय रक्षा निर्माता सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि लिपुलेख दर्रा 1954 से कैलाश मानसरोवर यात्रा का एक प्रमुख मार्ग रहा है और इस मार्ग से यात्रा दशकों से जारी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नेपाल के क्षेत्रीय दावों के संबंध में कहा कि भारत लगातार ये कहता रहा है कि ऐसे दावे ना तो उचित हैं और ना ही ऐतिहासिक तथ्यों और सबूतों पर आधारित हैं। इससे पहले नेपाल ने भारत चीन द्वारा आगामी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे का उपयोग करने पर आपत्ति जताई है। नेपाल ने कहा है कि ये क्षेत्र उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने कहा कि तीर्थ यात्रा के मार्ग को अंतिम रूप देने से पहले उससे परामर्श नहीं किया गया था। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कल झारखंड के रांची में उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं से न्यायिक व्यवस्था में चुनौतियों, सुधारों और अधिवक्ताओं की भूमिका पर चर्चा की। इस दौरान श्री मेघवाल ने अधिवक्ताओं से न्याय प्रणाली को सुलभ और सशक्त बनाने में सक्रिय

0: भूमिका निभाने की अपील की। इसके बाद उन्होंने सांसद सांस्कृतिक महोत्सव सह स्वदेशी मेला के समापन समारोह में भाग लेकर स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। हॉर्मुज की खाड़ी में फंसे जहाजों के लिए अमेरिका प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस परियोजना से सैकड़ों जहाजों और लगभग 20,000 नाविकों को सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ईरान युद्ध से तटस्थ और असंबद्ध देश प्रभावित हुए हैं और अमेरिका इन देशों के जहाजों को प्रतिबंधित जल क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकलने में सहयोग करेगा। इस बीच पश्चिम एशिया में संघर्ष विराम को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। समझौते के लिए ईरान के प्रस्ताव पर अमेरिका सहमत होता नहीं दिखता है। ईरान सरकार के प्रवक्ता इस्माइल बागेई ने कहा है कि ईरान के प्रस्ताव पर अमेरिकी प्रत्युत्तर की समीक्षा की जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल की मीडिया से कहा कि ईरान का प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं है। आईपीएल क्रिकेट में कल रात गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। मुंबई में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज उत्तर भारत में कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश, आंधी और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। सबसे पहले सुनिए संवेद स्वर में देशगान।

शिव देवों के देव महादेव माने जाते हैं, जो सृजन, विनाश और पुनर्निर्माण की शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। शिव ध्यान, वैराग्य और कल्याण के प्रतीक हैं।

मीराबाई का प्रेम सर्वोच्च समर्पण था। उन्होंने खुद को बांके बिहारी को समर्पित कर दिया था।

इस भजन के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं समाप्त होता है। श्रोता, अब आइए सुनते हैं रामचरितमानस से पाठ, मुख्य स्वर रविंद्र साठे का है।

राजा जनक के धनुष यज्ञ में उपस्थित सहस्रों राजाओं से भी जब शिव का धनुष टस से मस ना हुआ तो ऐसा लगा कि जनक जी की मनोहरिणी कन्या का वरण करने वाले की ब्रह्मा ने सृष्टि ही नहीं की। प्राण छोड़ता हूं तो पुण्य जाता है, अतः क्या करूं, कन्या कुंवारी ही रहे। राजा जनक का नैराश्यपूर्ण ये कथन सुनकर लक्ष्मण को क्रोध हो आया। जहां एक भी रघुवंशी होता है वहां कोई भी ऐसे वचन नहीं बोलता जैसे अनुचित वचन जनक जी ने कहे हैं। श्री राम के चरणों में सिर नवाकर लक्ष्मण बोले, हे प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो आपके प्रताप के बल से मैं धनुष को कुकुर मुत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा ना कर पाया तो फिर कभी धनुष और तर्कस को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। लक्ष्मण के क्रोध भरे वचन सुनकर पृथ्वी डगमगा उठी, दिक्पाल कांप उठे, किंतु सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और राजा जनक सकुचा गए। श्री राम ने अनुज को शांत होने का संकेत करके अपने पास बिठा लिया। तब मुनि विश्वामित्र ने अत्यंत प्रेम सनी वाणी में कहा, हे राम, उठो, शिव जी का धनुष तोड़कर जनक जी का संताप मिटाओ।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रामचरित मानस पाठ, मुख्य स्वर रविंद्र साठे का था। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। इसके अंतर्गत सुनिए डॉक्टर पल्लव नारायण सिंह से भेंट वार्ता। विषय है हृदय रोग, खान पान और जीवन शैली। भेंट करता है चंद्रमणि भारती।
1: श्रोताओं, स्वास्थ्य चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में यहाँ पर उपस्थित हैं डॉक्टर पल्लव नारायण सिंह। आप पटना के जाने माने अस्पताल में मेडिसिन विभाग में वरिष्ठ चिकित्सक हैं।
2: जी नमस्कार।
1: आज का हमारा विषय है हृदय रोग, खान पान और जीवन शैली। तो डॉक्टर साहब, खान पान और जीवन शैली जो आजकल की चल रही है, उसके कारण से हृदय रोग पर क्या असर पड़ता है और क्या होने की संभावना रहती है, कृपया बताएं हमारे श्रोताओं को।
2: जी, आजकल का जो हृदय रोग है, जो आजकल बमूमन अभी युवाओं में और प्रौढ़ अवस्था और उसके बीच जो वयस्क हैं, इन सभी को जो सबसे ज़्यादा जो दिक्कत दे रही है, ये हमारा खान पान और रहन सहन ही है। हम लोग पहले इस बीमारी से इतनी नहीं ग्रसित थे, लेकिन जैसे जैसे हमने दूसरी बीमारियों को भी एक्वायर किया, जैसे कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, लेकिन सबका जड़ कहीं ना कहीं हमारा खान पान और रहन सहन ही है। जैसे कि पहले के ज़माने में क्या होता था कि लोग फिजिकल वर्क या फिर बोले हाथ से काम करना, दूर तक चलना, ये सब शारीरिक काम तो बहुत ज़्यादा करते थे, लेकिन जैसे जैसे जीवन शैली में बदलाव आया, हमारा काम अब टेबल पर बैठकर ज़्यादा हो रहा है, हम लोग उतने मूवमेंट नहीं कर रहे। इससे क्या हो रहा है कि हम लोग का वजन उतने अच्छे से मेंटेन नहीं कर रहे, जो हम लोग खा पा रहे हैं वो हम उतने वेस्ट नहीं कर रहे, और हमारा मोटापा और एक कहिए कि सेंट्रिपिटल ओपेसिटी, पेट के अराउंड जो फैट जमा होना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा कारण है हमारे हृदय रोग के बढ़ावे का। दूसरा जो है जीवन शैली में, मैं कहूँगा कि खान पान। खान पान में भी अब क्या हुआ है कि हम लोग प्रोसेस्ड चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि आमतौर पर पहले जो होता था सिर्फ तेल यूज होता था, बहुत हुआ तो डालडा घी, अभी क्या है कि हम लोगों ने चीज़, बटर और बहुत सारी चीज़ें हैं, पिज्ज़ा नाम लीजिए और हाजिर हैं बाजार में, ऐसे ऐसे चीज़ों का उत्पादन भी बढ़ा है और कंजम्पशन भी बढ़ा है, खास करके बच्चों में बढ़ गया है। तो अभी देखते हैं कि पहले से बहुत

0: ज्यादा बच्चे मोटापे का शिकार हो रहे हैं, और वही मोटापा कहीं ना कहीं आगे बड़े में भी कन्वर्ट हो रहा है, उनको भी हो रहा है। तो अब क्या हो रहा है कि हम लोग को जो शरीर में है चर्बी की मात्रा और वसा की मात्रा बढ़ती जा रही है, और ये हृदय रोग का एक बहुत ही प्रमुख कारण है। जो दूसरा और जो हम कहना चाहेंगे आज के युवाओं को, जो कि नशे की आदत, उसमें सबसे जो ऊपर आता है सिगरेट आता है। हालांकि शराब, गांजा ये सब भी कारण होते हैं, लेकिन जो हृदय रोग में जो सबसे ऊपर रखा गया है वो है सिगरेट। सिगरेट अगर आप अमूमन दिन में 2-3 भी पीते हैं या हफ्ते में 5-7 भी पीते हैं, तो वो इतना डैमेज कर देता है कि आपकी जो धमनियाँ धीरे धीरे खराब होने लगती है, उसमें खून के थक्के जमने चालू हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी ज़रूरत है आज की कि हम धूम्रपान से बचें, खास करके हर नशे से बचें, लेकिन धूम्रपान तो बिल्कुल ही ना करें। दूसरा है खान पान में जो होता है वो फैट की मात्रा को कम से कम, फैट मतलब जितना भी है चीज़ बटर तेल घी से बना या ज़्यादा छाना हुआ, उनको अपने खाने के प्रयोग कम से कम करें। तीसरा जो है ताजी फल सब्जियां, इनका प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करें। इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारे शरीर के खून के बहाव को बढ़ाने में मदद करता है और हमारे दिल को हेल्दी रखता है। कितना भी हेल्दी हार्ट ऑयल हो, कितना भी हो, प्रयोग कम से कम करें। ये मत चले जाए कि बाजार में ये बहुत हेल्दी ऑयल आया है, इसे हम जितना चाहे उतना यूज कर सकते हैं, ये भुलावे में कभी ना जाए। हमेशा कोशिश करें कि कम से कम तेल और घी का प्रयोग किया जाए।
1: एक बात और पूछना चाहेंगे कि आजकल की जो नगरी संस्कृति है
0: जी
1: उसमें ज्यादा मतलब ऑफिस में तो बैठकर काम करना ही पड़
0: जी
1: जाता
0: जी
1: है,
0: जी
1: तो किस तरीके से उनकी जीवन शैली को सुधारा जाए, या कितना व्यायाम किया जाए, योग किया जाए, मतलब क्या किया जाए ताकि वो स्वस्थ रह सकें और हृदय रोग कम से कम होने की संभावना उनमें हो?
0: जी ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। आजकल की जो जीवन शैली, जो ऑफिस वाली गोइंग है, जो कि बैठ के काम कर रहे हैं, पर उनको अपने लिए समय निकालने की जरूरत है। दिमाग में ये बनाने की जरूरत है कि हम दिन भर तो बैठे रहते हैं, तो कभी न कभी तो चलना होगा, कुछ न कुछ शरीर को थकाना होगा, कुछ न कुछ फिजिकल। तो जो लोग अगर जिन्हें सुबह मौका मिल जाता है, या जो जिम जा सकते हैं, अगर जिम नहीं भी जा सकते तो आसपास खुली मैदान, खुली जगह हो जहाँ पे आप टहल सकते हैं, तो आप सुबह टहलिए, सुबह बहुत अच्छा होता है। लेकिन आपको अगर मौका मिलता है कि शाम में टहल सकते हैं तो शाम में टहलिए, रात में भी अगर मौका मिले खाने के बाद तो भी आप टहल सकते हैं। दूसरा जो आप कर सकते हैं कि मान लिया कि आप ऑफिस जाते हैं, आपके ऑफिस में लिफ्ट लगा है, एस्केलेटर लगा है, और आपका 2 ही तल्ला पे है, आप उतनी दूर आराम से पैदल सीढ़ियों पर चढ़, तो सीढ़ियों का प्रयोग करें। मैं तो कहूँ कम से कम चढ़ने के लिए सीढ़ियों का प्रयोग करें, बहुत जल्दबाजी में ना हो तो हमेशा सीढ़ियों का प्रयोग करें, घर में भी सीढ़ियों का प्रयोग करें। हाँ, जिनको घुटनों का तकलीफ हो, बहुत वृद्ध हो, उनके लिए नहीं ये लागू होता है। तीसरा जो आप कर सकते हैं कि जब आप ऑफिस में बहुत लंबे समय तक के लिए बैठते हैं, तो बीच बीच में आपको चाहिए कि आप वाटर कूलर तक ही, अपने कॉफी मशीन तक ही, या फिर जो भी हो बाहर तक ही 10 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए बीच में ब्रेक लेके 5 मिनट टहल लीजिए, कहीं ना कहीं थोड़ी जगह रहती है। तो ये सब जीवन शैली में छोटे छोटे बदलाव करके आप अपने आप को थोड़ा मोबाइल कर सकते हैं। योग साधना हमेशा से बहुत अच्छा रहा है, हमारा देश ही योग के लिए जाना जाता है। तो जो लोग सुबह सुबह योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, वो जरूर करें, जितनी देर कर सकते हैं, 5 मिनट 10 मिनट, वो उनके दिल के लिए बहुत अच्छा रहेगा, और जरूर करें।
1: जी, तो हमें उम्मीद है आपकी इन बातों से और सलाहों से हमारे श्रोताओं को बहुत ही फायदा होगा और हृदय रोग से अपने आप को बचाव कर सकेंगे। डॉक्टर पल्लव नारायण सिंह, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी जानकारियों को बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी धन्यवाद।
2: हृदय रोग, खान पान और जीवन शैली, इस विषय पर डॉक्टर पल्लव नारायण सिंह से भेंट वार्ता अभी आप सुन रहे थे। भेंट करता थे चंद्रमणि भारती। इसके साथ ही कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोता, आइए आपको बता दें आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में।

प्रातः 7:05 पर कार्यक्रम हालचाल में हम आपको बताएंगे इतिहास में आज के दिन का महत्व और बदलते मौसम में कैसे रखें अपने खान पान का ख्याल, साथ ही कुछ पुराने फिल्म संगीत का भी आनंद लेंगे। और प्रातः 7:15 पर प्रांतीय भाषाओं पर आधारित प्रादेशिक लोक संगीत आप सुनेंगे। इसके अंतर्गत सुनेगा उत्तर प्रदेश के लोग।

गीत गाया कलाकार होंगे मोहम्मद खलील और साथी। प्रातः 7:25 पर कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आप सुनेंगे मालिनी राजुरकर का गायन और 10:45 पर कार्यक्रम सुगम संगीत का प्रसारण होगा। इसके अंतर्गत सुनेंगे सुमन कल्याणपुर की आवाज में कुछ भजन। बिहार का लोक संगीत, ये कार्यक्रम प्रतिदिन आप सुनते हैं 12:00। आज सुनिएगा कुछ भोजपुरी लोकगीत। गायक कलाकार होंगे शैलेंद्र कुमार सिंह और सुभाष कुमार। और 12:30 पर कार्यक्रम सुरों का सफर का प्रसारण होगा।

का प्रसारण होगा। इसके अंतर्गत सुनेंगे सुमन कल्याणपुर की आवाज में कुछ भजन। बिहार का लोक संगीत, ये कार्यक्रम प्रतिदिन आप सुनते हैं दोपहर 12 बजे। आज सुनिएगा कुछ भोजपुरी लोकगीत। गायक कलाकार होंगे शैलेंद्र कुमार सिंह और सुभाष कुमार। और दोपहर 12:30 पर कार्यक्रम सुरों का सफर का प्रसारण होगा। रात 9:30 पर पब्लिक स्पीक हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे। रात 10 बजे सोमवार स्तरीय संगीत सभा आप सुनेंगे आकाशवाणी के पटना केंद्र से। और रात 10:30 पर कार्यक्रम फिल्म संगीत का आनंद लेंगे। श्रोताओं, ये थे आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। अब आइए सुनते हैं संस्कृत और हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: अथ वार्ताः। असम पश्चिम बंगाल केरलम तमिलनाडु राज्येषु केन्द्र शासित प्रदेशे पुडुचेरी इत्यत्र विधानसभा निर्वाचनेभ्यः अद्य मतगणनायै सर्वाः सज्जताः जाताः। मतगणना प्रातः 8 वादने प्रारप्स्यते। प्रैष्य मतपत्राणां गणना सर्वप्रथमं भविष्यति तथा वैद्युतिकी मतदान यंत्राणां गणना प्रातः 8:30 वादने प्रारप्स्यते। असम राज्ये 26 आसनेभ्यः केरलम राज्ये 44 आसनेभ्यः तमिलनाडु राज्ये 34 आसनेभ्यः तथा पुडुचेरी इत्यत्र 33 विधानसभासनेभ्यः मतगणना भविष्यति। पश्चिम बंगाले 93 आसनेभ्यः अद्य मतगणना भविष्यति। फाल्टा विधानसभायै पुनर्मतदानं मईमासस्य 21 दिनांके भविष्यति। तत्रैव मतगणना च मईमासस्य 24 दिनांके भविष्यति।
1: जनादेश 2026।
2: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ
1: आज सुबह 8:30 बजे से
2: मतगणना की पल पल की खबर,
1: हर सीट की सटीक जानकारी,
2: संवाददाताओं से ताज़ा हाल
1: और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का विश्लेषण
2: आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
1: जनादेश 2026।
0: भारतीयान्तरिक्ष नवाचारेण गैलेक्स आई इत्यनेन संयुक्त राज्य अमेरिकायाः कैलिफोर्निया इत्येतस्मात् स्थलात् स्पेस एक्स इत्येतस्य फाल्कन 9 रॉकेट इत्यनेन विश्वस्य प्रथमः ऑप्टोसार इति उपग्रहः मिशन दृष्टेः प्रक्षेपणं कृतम्। 90 किलोग्राम मिता मिशन दृष्टि नैज भारतीय संस्था द्वारा निर्मित बृहत्तम पृथ्वी निरीक्षणोपग्रह अस्ति। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी च मिशन दृष्टि उपग्रह से सफल प्रक्षेपण से प्रशंसा कृत्वा एतम उपग्रह भारत से अंतरिक्ष से नवान्वेषण से यात्रायां प्रमुख सोपान रूपेण वर्णितवन्तौ। विदेश मंत्रालयः अवदत् यत् 45-19 शततमाद् वर्षात् कैलाश मानसरोवर यात्रायै लिपुलेख इति दीर्घ मार्गः अस्ति, एषः नूतन विकासः नास्ति इति। विदेश मंत्रालयस्य आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवालः कैलाश मानसरोवर यात्रायाः सन्दर्भे सीमा प्रकरणे नेपालस्य विदेश मंत्रालय द्वारा कृतानां टिप्पणीनां विषये प्रसार माध्यमानां प्रश्नानां उत्तरं दत्तवान्। असौ उक्तवान् यत् 45-19 शततमाद् वर्षात् कैलाश मानसरोवर यात्रायै लिपुलेख इति दीर्घ मार्गः अस्ति। अनेन मार्गेण यात्रा दशकेभ्यः प्रचलति, अतः

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। असम, पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना आज सुबह 8 बजे से शुरू होगी। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी। शुरुआती रुझान दोपहर तक मिलने का अनुमान है। तमिलनाडु से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में 85% से अधिक मतदान हुआ।
1: तमिलनाडु के सभी 38 जिलों में फैले 234 निर्वाचन क्षेत्रों में ऐतिहासिक और शांतिपूर्ण मतदान हुआ, क्योंकि बिना किसी गड़बड़ी के 85.10% मतदान दर्ज किया गया था। भूटान, मिस्र, मॉरिशस, मोल्डोवा, इंडोनेशिया, बेनिन, श्रीलंका, पेरू, घाना और नामीबिया के चुनाव प्रबंधन निकायों के 20 प्रतिनिधियों और राजनयिक अधिकारियों ने मतदान केंद्रों का दौरा किया। आज सुबह 8:30 बजे के बाद 4,87,98,833 मतदाताओं के फैसले और 4,023 उम्मीदवारों के भाग्य का पता चलना शुरू हो जाएगा। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
0: निर्वाचन आयोग ने सुचारू मतगणना के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। पश्चिम बंगाल में आज 293 सीटों की मतगणना होगी। फौलता विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए 21 मई को दोबारा वोटिंग हुई और मतगणना 24 मई को की जाएगी।
2: जनादेश 2026।
0: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ
2: आज सुबह 8:30 बजे से
0: मतगणना की पल पल की खबर,
2: हर सीट की सटीक जानकारी,
0: संवाददाताओं से ताजा हाल
2: और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का विश्लेषण,
0: आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
2: जनादेश 2026।
0: नागालैंड में मोकोकचुंग जिले के कोरिडांग विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए भी आज मतगणना होगी। मतगणना उपायुक्त कार्यालय में 3 चरणों में की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रक्षा त्रिवेणी संगम विषय पर 3 दिन तक चलने वाली उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि संगोष्ठी परिचालन संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए अत्याधुनिक स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन और एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि लिपुलेख दर्रा 1954 से कैलाश मानसरोवर यात्रा का प्रमुख मार्ग रहा है। इस मार्ग से यात्रा दशकों से जारी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नेपाल के दावों के संबंध में कहा कि भारत लगातार ये कहता रहा है कि ऐसे दावे न तो उचित हैं और न ही ऐतिहासिक तथ्यों तथा सबूतों पर आधारित हैं। इससे पहले नेपाल ने भारत चीन द्वारा आगामी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे का उपयोग करने पर आपत्ति जताई थी। होर्मुज में फंसे जहाजों के लिए अमरीका प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करेगा। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस परियोजना से सैकड़ों जहाजों और लगभग 20,000 नाविकों को सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ईरान युद्ध से तटस्थ देश प्रभावित हो रहे हैं और अमरीका इन देशों के जहाजों को प्रतिबंधित जल क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकालने में सहयोग करेगा।

0: इस बीच पश्चिम एशिया में संघर्ष विराम को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। समझौते के लिए ईरान के प्रस्ताव पर अमरीका सहमत होता नहीं दिखता है। ईरान सरकार के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा है कि ईरान के प्रस्ताव पर अमरीकी प्रत्युत्तर की समीक्षा की जा रही है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल की मीडिया से कहा कि ईरान का प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं है। भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्स आई ने कैलिफोर्निया से स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से विश्व के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का प्रक्षेपण किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। आईपीएल क्रिकेट में कल गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। मुंबई में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज उत्तर भारत के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा, आंधी और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और विदर्भ में आंधी और ओलावृष्टि का अनुमान है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी।
2: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के पटने केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोता, हम हाजिर हैं कार्यक्रम हालचाल के साथ। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे इतिहास में आज के दिन का महत्व और साथ ही बदलते मौसम में कैसे रखें अपने खान पान का ख्याल। सबसे पहले जानिए इतिहास में आज के दिन का महत्व। श्रोताओं, साल के बाकी दिनों की तरह 4 मई ने भी कई घटनाओं के कारण इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया है। ब्रिटेन ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप की पहली महिला प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर को दुनिया में आयरन लेडी के तौर पर जाना गया। उन्हें 4 मई के दिन 1979 में ब्रिटेन की प्रधानमंत्री चुना गया। 4 मई इससे जुड़ी कुछ और भी महत्वपूर्ण घटनाओं की बात करें तो लंदन डेली मेल का पहला संस्करण 4 मई 1896 को ही प्रकाशित हुआ था और ऑस्कर पुरस्कार देने वाली मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एकेडमी की स्थापना भी अमेरिका में 4 मई 1927 को ही हुई थी। यही नहीं, आज के दिन 1980 में कोयला खदान श्रमिक दिवस की स्थापना हुई। 1854 में भारत की पहली डाक टिकट को औपचारिक तौर पर जारी किया गया। 1924 में पेरिस में 8वें ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई। 1980 में इस दिन को कोल माइंस डे के तौर पर मनाने की घोषणा की गई। 1945 में जर्मनी की सेना ने नीदरलैंड, डेनमार्क और नॉर्वे में आत्मसमर्पण किया। 1959 में पहले ग्रेमी अवार्ड्स का आयोजन हुआ। 1975 में द किड और ग्रेट डिक्टेटर जैसे मूक फिल्मों के स्टार चार्ली चैपलिन को बर्गहम पैलेस में नाइट की उपाधि प्रदान की गई। 1905 में अन्ना चंडी भारत की पहली महिला न्यायाधीश बनी। अब जन्म की बात करें तो बंगाली साहित्यकार और कवि ज्योतिन्द्र नाथ टैगोर का जन्म आज ही के दिन हुआ। 1923 में प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक मृणाल सेन का जन्म हुआ। वहीं निधन की बात करें तो 1857 में फ्रांस के पेरिस बाजार में आग लगने से करीब 200 लोगों की मौत हो गई थी। 1957 में हेमचंद्र राय चौधरी जो भारतीय इतिहासकार थे उनका निधन आज ही के दिन हुआ। 2008 में पंडित किशन महाराज साहित्य तबला वादक थे उनका निधन भी आज ही के दिन हुआ। कार्यक्रम में आगे हम आपको बताएंगे बदलते मौसम में कैसे रखें अपने खान पान का ख्याल, लेकिन उससे पहले सुनते हैं यहूदी फिल्म का गाना मुकेश की आवाज़ में।

श्रोताओं, कार्यक्रम में खान पान की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से मौसम में काफ़ी उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। कभी भीषण गर्मी तो कभी सर्दी का एहसास होता है। जब आपको एक ही समय में गर्मी और ठंड दोनों ही महसूस हो, तो ऐसे में शरीर का तापमान में उतार चढ़ाव होता है और इससे वायरल इन्फेक्शन जैसे बुखार, फ्लू का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में खान पान का संतुलन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में शरीर में पानी की कमी से तापमान बढ़ सकता है, इसलिए भरपूर पानी पिए, हल्का भोजन करें जो पचने में आसान हो, सुपाच्य भोजन करें जैसे मूंग की दाल की खिचड़ी या दलिया, भारी तले भुने मसालेदार और जंक फूड से बचें, तासीर में ठंड पदार्थ लें, शरीर के अंदरूनी गर्मी को कम करने के लिए दही, छाछ, नारियल पानी और फलों का रस लें, फाइबर युक्त फल और सब्जियां जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज और पत्तेदार सब्जियां खाएं, क्योंकि इनमें पानी की मात्रा अधिक होती है। शहद और नींबू का भी सेवन कर सकते हैं, गुनगुने पानी में आप इसे सुबह सुबह ले सकते हैं। ज़्यादा पसीना आने पर, कमजोरी होने पर, कमजोरी का एहसास होता है, ऐसे में ORS या चीनी नमक का घोल भी जरूर लें। जंक फूड और मसालेदार खाने से जरूर बचें।

सहरा फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में, बोल थे हसरत जयपुरी के और संगीत रामलाल का। ये थी कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति। इसके साथ ही कार्यक्रम हाल चाल का समय अब यहीं समाप्त होता है। श्रोताओ, अब आइए सुनते हैं प्रांतीय भाषाओं पर आधारित प्रादेशिक लोक संगीत। इस कार्यक्रम के तहत सुनिए उत्तर प्रदेश के कुछ लोकगीत। गायक कलाकार हैं मोहम्मद खलील और साथी।

मोहम्मद खलील और साथियों की आवाज़ों में आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश के कुछ लोकगीत। इसके साथ ही प्रांतीय भाषाओं पर आधारित प्रादेशिक लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोता, अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिए मालिनी राजुरकर का गायन राग नट भैरव।

विलंबित रचना एक ताल बोल है जानू मैं सब जानू, द्रुत की बंदिश एक ताल में निबद्ध है, बोल है चतुर सुधर बलमा।

0: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे मालिनी राजुरकर का गायन राग नट भैरव। विलंबित रचना एक ताल, बोल थे जानू मैं सब जानू। द्रुत की बंदिश एक ताल में निबद्ध थे, बोल थे चतुर सुधर बल मामोरे। इनके साथ संगत कलाकार थे हारमोनियम पर अरविंद्र थाटे और तबला पर सुभाष कामत। तानपुरा पर थे दीपक नाइक। इसके साथ ही कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत अब यहीं समाप्त होता है।
1: इधर आइए, इधर।
2: इधर?
1: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
3: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
2: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
3: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
2: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना।
4: हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
3: शुभ वाणी,
4: लाभ वाणी,
1: आकाशवाणी।
5: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी। और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर। हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
6: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। इस समय स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 8 बजने ही वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली।

0: गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। असम, पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी विधानसभा चुनावों की मतगणना शुरू। 7 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव की भी मतगणना जारी। भारत ने लिपुलेख दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर नेपाल की आपत्ति खारिज करते हुए इसे अनुचित बताया। मौसम विभाग ने हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सहित उत्तर भारत में आज गरज चमक के साथ वर्षा और ओले पड़ने का अनुमान जताया। अमरीका होर्मुज जल डमरू मध्य में फंसे जहाजों की सुरक्षित निकासी के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करेगा। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हराया। असम, पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों की मतगणना शुरू हो गई है। सबसे पहले डाक मतपत्र की गिनती की जाएगी। शुरुआती रुझान दोपहर तक मिलने का अनुमान है। पश्चिम बंगाल से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में सभी मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं।
2: कुछ घंटों में पश्चिम बंगाल की राजनीतिक किस्मत तय होगी। 2026 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मतगणना सुबह 8 बजे राज्य भर में कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुई। 293 निर्वाचन क्षेत्रों के परिणाम दिन भर आने की उम्मीद है, जबकि फलता निर्वाचन क्षेत्र में इस महीने बाद में पुनः मतदान होगा। राज्य भर की 77 मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। स्ट्रांग रूम और मतगणना हॉल में सीसीटीवी निगरानी और बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। चुनाव अभियान और रिकॉर्ड मतदाता भागीदारी के बाद अब सबकी निगाहें आज के फैसले पर है। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: तमिलनाडु में मतगणना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए चलते हैं चेन्नई में हमारे संवाददाता सुशील तिवारी के पास। सुशील, मतगणना के बीच राज्य में सुरक्षा के क्या प्रबंध किए गए हैं?
3: देखिए मुकेश, सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम है। 3 स्तरीय जो सुरक्षा व्यवस्था होती है वो पूरी तरह से चाक चौबंद है। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है और रूट को डाइवर्ट किया गया है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि तमिलनाडु जो है वो राजनीतिक रूप से बड़ा सक्रिय जो है प्रदेश है, तो बड़ी संख्या में जो राजनीतिक कार्यकर्ता है वो भी जो बाहरी दायरा है उसके आसपास खड़े नजर आ रहे हैं। उनकी उत्कंठा है, उनकी इच्छा है कि वो जल्दी से जल्दी जान सकें कि उनके राजनीतिक नेता, उनके नेताओं का क्या भविष्य हो रहा है। तो बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचने लगे हैं। हम अभी थोड़ी देर पहले जो है चेन्नई में जो 3, वैसे तो पूरे राज्य में 62 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन चेन्नई में 3 मतगणना केंद्र है, लॉयला कॉलेज, अन्ना यूनिवर्सिटी और क्वीन मैरीज कॉलेज। तो हम क्वीन मैरीज कॉलेज के पास थे, वहां जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम थे। लेकिन ये मरीना बीच के पास है, बड़ी संख्या में राजनीतिक कार्यकर्ता भी वहां पर पहुंच चुके हैं और लोगों में जबरदस्त उत्कंठा है।
1: जी सुशील, ये भी बताइए कि आज जो मतगणना हो रही है उसमें किन किन प्रमुख उम्मीदवारों की साफ दांव पर है?
3: देखिए मुकेश, अगर हम बात करें तो डीएमके का जो सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस है एसपीए, उसके जो नेता है वो एमके स्टालिन, जो कि वर्तमान में मुख्यमंत्री भी, निवर्तमान मुख्यमंत्री जिन्हें कहा जाए, वो कोलाथुर सीट जो कि चेन्नई में ही है वहां से लड़ रहे हैं। तो उनके चुनाव परिणाम पर सबकी निगाहें होंगी। जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं ई पलानीसामी, वो इडापड्डी जो है सेलम डिस्ट्रिक्ट में है, सेलम जिले में है, वहां से लड़ रहे हैं। और केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन जो है वो अविनाशी सीट से लड़ रहे हैं जो कि त्रिपुर में है। इसके अलावा अगर अन्य प्रमुख उम्मीदवारों की बात करें जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, वो जोसेफ विजय जो है टीवीके पार्टी का उनका तमिल वेत्र कड़गम जो पार्टी है, उनके नेता 2 सीटों से लड़ रहे हैं, पेरम्बूर जो कि चेन्नई डिस्ट्रिक्ट में ही है और त्रिची जिले की त्रिची ईस्ट, त्रिची पूर्व की जो सीट है वहां से वो 2 जगह से लड़ रहे हैं। जो डिप्टी सीएम है, उप मुख्यमंत्री है उदय निधि स्टालिन, वो चेपक सीट से लड़ रहे हैं। और एक अन्य महत्वपूर्ण नाम डॉक्टर तमिल ईसाई सौंदर राजन का है, जो कि महिलापुर जो चेन्नई की ही सीट है, ये वर्तमान ये पूर्व में तेलंगाना और पुडुचेरी की राज्यपाल रह चुकी हैं। तो वो भाजपा नेता है, वो इस बार चुनाव लड़ रही है मैलापुर जो चेन्नई की सीट है वहां से। तो ये महत्वपूर्ण लोग हैं जो इस बार चुनाव मैदान में हैं, जिनके नतीजों पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। मुकेश
1: जी, सुशील, आपका जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए 6 केंद्रों पर मतगणना कड़ी सुरक्षा के बीच जारी है। केंद्र शासित प्रदेश में 294 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला

0: होना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पहले चरण में सभी 6 मतगणना केंद्रों पर 17 विधानसभा क्षेत्रों के मतों की गिनती की जाएगी। इनमें पुदुचेरी क्षेत्र के 12 निर्वाचन क्षेत्र, कराईकाल के 3 और माहे तथा यानम का एक एक निर्वाचन क्षेत्र शामिल है। शेष 13 निर्वाचन क्षेत्रों की गिनती दूसरे चरण में की जाएगी। शुरुआती रुझान सुबह लगभग 9:30 बजे तक आने की उम्मीद है। ईवीएम और वीवीपैट की गिनती के लिए कुल 166 टेबल और डाक मतपत्रों के लिए 35 टेबल स्थापित किए गए हैं। मतगणना केंद्रों में कड़ी सुरक्षा और प्रवेश नियंत्रण के उपाय लागू हैं। चुनाव अधिकारियों द्वारा जारी QR कोड आधारित पहचान पत्रों के सत्यापन के बाद ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। मतगणना केंद्रों पर मोबाइल फोन जमा करने की व्यवस्था भी की गई है। पुदुचेरी से विभिन्न एसनाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: और असम में मतगणना से जुड़ी जानकारी के लिए रुख करते हैं गुवाहाटी में मौजूद हमारे संवाददाता राकेश डोले से। राकेश जी, राज्य में मतगणना के बीच क्या माहौल देखा जा रहा है?
2: जी, असम में विधानसभा चुनाव के मतगणना कुछ समय पहले कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हो गई है। राज्य में इस बार 85.96% मतदान दर्ज किया है, जो पिछले विधानसभा चुनावों में सबसे अधिक है। राज्यभर में 40 मतगणना केंद्रों पर गिनती की जा रही है। अधिकांश जिलों में जिला मुख्यालय पर एक एक केंद्र है, जबकि कोकराझार, तिनसुकिया, जोरहाट में 2-2 तथा दोगांव में 3 मतगणना केंद्र है। पूरी प्रक्रिया पर 126 मतगणना प्रेक्षक कड़ी निगरानी रख रहे हैं, जिनकी सहायता के लिए लगभग 6000 मतगणना कर्मी और 2300 से अधिक माइक्रो ऑब्जर्वर्स तैनात किए गए हैं। 126 सदस्य असम विधानसभा के लिए कुल 722 उम्मीदवार मैदान में हैं। सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 64 है। जी
0: राकेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उधर केरल में भी कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना जारी है। पश्चिम बंगाल में आज 293 सीटों की मतगणना हो रही है।
3: जनादेश 2026।
0: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ
3: आज सुबह 8:30 बजे से
0: मतगणना की पल पल की खबर,
3: हर सीट की सटीक जानकारी,
0: संवाददाताओं से ताजा हाल
3: और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का विश्लेषण
0: आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए।
3: जनादेश 2026।
0: पांच राज्यों की 7 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनावों की मतगणना भी शुरू हो गई है। ये 7 सीट गुजरात में उमरेठ, कर्नाटक में बागलकोट और दावणगेरे, दक्षिण महाराष्ट्र में राहुरी और बारामती, नागालैंड में कुरीडांग और त्रिपुरा में धर्मनगर हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने लिपुलेख दर्रे पर नेपाल के दावे को खारिज कर दिया है। भारत ने कहा है कि यह दर्रा वर्ष 1954 से कैलाश मानसरोवर यात्रा का मार्ग है और दशकों से इस मार्ग से यात्रा जारी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस संदर्भ में नेपाल के विदेश मंत्रालय के सीमा संबंधी दावों के बारे में ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि संबंध में भारत का रुख स्पष्ट है। श्री जायसवाल ने कहा कि ऐसे दावे न तो न्यायसंगत हैं और न ही ऐतिहासिक तथ्यों तथा सबूतों पर आधारित हैं। प्रवक्ता ने कहा कि भारत द्विपक्षीय संबंधों के सभी मुद्दों पर नेपाल के साथ सार्थक बातचीत के लिए तैयार है। होर्मुज में फंसे जहाजों के लिए अमरीका प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करेगा। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस परियोजना से सैकड़ों जहाजों और लगभग 20,000 नाविकों को सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ईरान युद्ध से तटस्थ देश प्रभावित हुए हैं और अमरीका इन देशों के जहाजों को प्रतिबंधित जल क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकालने में सहयोग करेगा। अमरीकी सेंट्रल कमांड के अनुसार इसके लिए मिसाइल नाशकों, 100 से अधिक विमानों और 15,000 कर्मियों को तैनात किया जाएगा। श्री ट्रंप ने कहा कि इस प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने वालों के लिए सख्ती से निपटा जाएगा। फरवरी में युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान ने होर्मुज से जहाजों की आवाजाही लगभग बंद कर रखी है। उधर अमरीका ने भी ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकेबंदी कर दी है। इस बीच पश्चिम एशिया में संघर्ष विराम को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। समझौते के लिए ईरान के प्रस्ताव पर अमरीका सहमत नहीं है। ईरान के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा कि ईरान के प्रस्ताव पर अमरीकी जवाब की समीक्षा की जा रही है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान का प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं है। एक रिपोर्ट।
4: ईरान के विदेश मंत्रालय का कहना है कि वो अपने 14

0: सूत्री प्रस्ताव पर अमेरिका की प्रतिक्रिया की समीक्षा कर रहा है। ईरान के अधिकारियों का कहना है कि योजना का उद्देश्य शत्रुता को समाप्त करना है और इसमें परमाणु मुद्दों का कोई जिक्र नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान परमाणु प्रतिबंधों से संबंधित मांगों को पूरा नहीं करता। उधर दक्षिणी लेबनान में इसराइल और हिजबुल्ला के बीच युद्ध विराम के बावजूद लड़ाई तेज हो गई है और इसराइली सेना ने हाल के दिनों में हिजबुल्ला से जुड़े दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया है। इस बीच हिजबुल्ला भी इसराइली सैनिकों पर रॉकेट और ड्रोन से हमले जारी रखे हुए है। उधर मध्यस्थों के माध्यम से राजनयिक प्रयास भी जारी है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कुमार राधारमन।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रक्षा त्रिवेणी संगम विषय पर 3 दिन की उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि संगोष्ठी परिचालन संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए अत्याधुनिक स्वदेशी तकनीक के प्रदर्शन और एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण मंच है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज गरज चमक के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में भी ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। बिहार, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल में भी कुछ स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। आईपीएल क्रिकेट में कल गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। मुंबई में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद मुकेश। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की मतगणना की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, नतीजे आज, निगाहें बंगाल पर। पत्र के अनुसार मतदान केंद्रों पर त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा। राजस्थान पत्रिका का शीर्षक है, देश की राजनीतिक दिशा तय करेंगे तमिलनाडु बंगाल के चुनाव परिणाम। पत्र के अनुसार जनादेश आज, 5 प्रदेशों में दलों की धड़कनें तेज। हिंदुस्तान ने फलता में पुनर्मतदान शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, निर्वाचन आयोग के इस निर्णय की अनुगूंज पूरे देश में पहुंचनी चाहिए कि बाहुबल के सहारे मतदाताओं को डराने और मतदान को बाधित करने का क्या नतीजा हो सकता है। दिल्ली में एसी से लगी आग में 9 लोगों की मौत पर हिंदुस्तान का शीर्षक है, एसी बना काल, 9 को लील गया। नव भारत टाइम्स के अनुसार बुजुर्ग पेरेंट्स को बचाने अंदर दोबारा गई फिर लौट ना सकी। दैनिक जागरण ने आग का सिलसिला शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, गर्मियां बढ़ते ही घरों, कारखानों और अन्य स्थलों पर आग लगने की घटनाओं का सिलसिला तेज होना इसलिए चिंताजनक है क्योंकि अभी तो तापमान और ज्यादा बढ़ने के आसार हैं। इससे भी अधिक चिंता की बात यह है कि आग लगने की ज्यादातर घटनाएं एसी में ब्लास्ट या शॉर्ट सर्किट के कारण हो रही है। राजस्थान पत्रिका ने नया सवेरा शीर्षक से लिखा है, जब आक्रोश बन गया राष्ट्र संकल्प तो आतंक पर फिर हुआ निर्णायक प्रहार। पहली बार तैनात हुई ऑल वुमन कॉम्बैट टीम ने मोर्चे पर दिखाया जोश, दुनिया को बताया अब और नहीं, ऑपरेशन के बाद सामने आई शौर्य गाथाएं। पंजाब केसरी की सुर्खी है, लिपुलेख पर भारत की नेपाल को 2 टूक। पत्र के अनुसार विदेश मंत्रालय ने नेपाल के दावों को खारिज करते हुए एक तरफा और अनुचित बताया। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अब हर तरह के मौसम में धरती के कोने कोने पर भारत रख सकेगा दृष्टि। दुनिया का पहला ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि कैलिफोर्निया से हुआ लॉन्च। चीन, पाक सहित हर देश की छोटी बड़ी गतिविधि की होगी निगरानी। देशबंधु के अनुसार विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर बोले संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव अंतोनियो गुतरश, तमाम तरह की स्वतंत्रता प्रेस की आजादी पर टिकी, इसके बिना ना तो मानवाधिकार संभव है ना ही शांति, पत्रकारों के अधिकारों की रक्षा करने का आह्वान किया।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। असम, पश्चिम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी विधानसभा चुनावों की मतगणना शुरू। 7 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनावों की भी मतगणना जारी। भारत ने लिपुलेख दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर नेपाल की आपत्ति खारिज करते हुए इसे अनुचित बताया। मौसम विभाग ने हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सहित उत्तर भारत में आज गरज चमक के साथ वर्षा और ओले पड़ने का अनुमान जताया। अमरीका हॉर्मुज जल डमरू मध्य में फंसे जहाजों की सुरक्षित निकासी के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करेगा। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। आसाम, मगरबी बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और मरकज के जेर इंतजाम इलाके पुडुचेरी असेंबली इंतखाबात के लिए डाले गए वोटों की गिनती शुरू हो गई है। 7 असेंबली हलकों में जिमनी इंतखाबात के लिए डाले गए वोटों की गिनती भी जारी है। भारत ने लिपुलेख दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर नेपाल के एतराज को मुस्तरद कर दिया है और इसे गैर मुनसिफाना करार दिया है। भारत के महकमे मौसमियात ने हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड समेत शिमाली भारत में आज गरज चमक के साथ छींटे और ज्वालाबारी की पेशगोई की है। अमरीका आबनाए हुरमुज में फंसे हुए जहाजों को बहिफाजत निकालने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करेगा। और आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटन्स ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हराया। अब खबरें तफसील से। आसाम, मगरबी बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और मरकज के जेर इंतजाम इलाके पुडुचेरी में असेंबली इंतखाबात के लिए डाले गए वोटों की गिनती आज सुबह 8 बजे शुरू हो गई है, जिसके लिए सभी इंतजाम किए गए हैं। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जा रही है और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की गिनती सुबह 8:30 बजे शुरू हो गई है। दोपहर तक इब्तदाई रुझान आ जाने का इम्कान है। चुनाव कमीशन ने वोटों की गिनती के लिए चारों रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाके में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए हैं। आसाम में 126 असेंबली सीटों, केरलम में 140, तमिलनाडु में 234 और पुडुचेरी में 30 सीटों के लिए वोटों की गिनती की जा रही है। मगरबी बंगाल में आज 293 सीटों के लिए वोटों की गिनती की जा रही है, जबकि फालता असेंबली के लिए 21 मई को दोबारा पोलिंग होगी और वोटों की गिनती 24 मई को की जाएगी। केरलम में 140 असेंबली हलकों के लिए वोटों की गिनती शुरू हो गई है। तफसील हमारे नामानिकार से।
1: केरलम में 140 असेंबली हलकों में पोस्टल वोटों की गिनती 43 मकामात पर अभी अभी शुरू हुई है। शुरुआती रुझान सुबह 9:30 बजे तक मिलने का इम्कान है। हुक्मरान एलडीएफ इत्तेहाद अपना इख्तदार जारी रहने की उम्मीद कर रहा है, जबकि यूडीएफ इत्तेहाद के इस मरतबा वाजा अक्सरियत हासिल करने का इम्कान है। दूसरी जानिब एनडीए पूरी उम्मीद है कि वो केरलम में एक फैसला कुन ताकत के तौर पर उभरेगा। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लू रूते की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अब्दुल मालिक।
0: और अब तमिलनाडु में वोटों की गिनती के बारे में हमारे नामानिकार की एक रिपोर्ट।
2: आज 234 हलकों के लिए राय दहिंदगान को अपने पसंदीदा उम्मीदवार की जीत के बारे में जानकारी हासिल हो जाएगी। आज ये भी पता चल जाएगा कि मुख्तलिफ एजेंसियों, टीवी चैनलों और लोगों के जरिए पेश किए गए एग्जिट पोल कितनी हद तक दुरुस्त हैं। इस बात का इम्कान है कि लोग गिनती के मरकज में जमा होंगे और रियासत व नीम फौजी अमले को मरकजों के बाहर तैनात किया गया ताकि सिक्योरिटी को मुस्तहकम बनाया जा सके। वोटों की गिनती पोस्टल बैलेट की गिनती के साथ शुरू होगी और इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के वोटों की गिनती शुरू होगी। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: मरकज के जेर इंतजाम इलाके पुडुचेरी की कानून साज असेंबली के चुनाव के लिए वोटों की गिनती सख्त सिक्योरिटी के तहत मरकज के जेर इंतजाम इलाके के 6 मखसूस मरकजों में जारी है। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के कुल 294 उम्मीदवार गिनती के इस अमल में अपनी सियासी किस्मत का इंतजार कर रहे हैं। तफसील हमारे नामानिकार से।
1: पहले राउंड में वोटों की गिनती 17 असेंबली हलकों के सभी 6 मराकज में की जा रही है। इसमें पुदुचेरी खत्ते के 12 हलके भी शामिल हैं, जिनमें कराईकल में 3, माहे और यानम में 1-1 हलका शामिल है। बाकी 13 हलकों में दूसरे राउंड में वोटों की गिनती की जाएगी। उम्मीद है कि इब्तदाई रुझान सुबह तकरीबन 9:30 बजे तक आना शुरू हो जाएंगे। गिनती के मराकज के लिए काउंटिंग सुपरवाइजर, असिस्टेंट और माइक्रो मुशाहिदीन समेत कुल 859 एहलकारों को तैनात किया गया है। इसके साथ साथ पोस्टल बैलेट्स के लिए 35 टैबलेट्स के साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें और वीवीपैट गिनती के लिए 166 टैबलेट्स लगाए गए हैं। वोटों की गिनती सख्त सिक्योरिटी और रसाई के कंट्रोल इकदाम के तहत की जाएगी और चुनाव काम की जानिब से जारी किए गए QR कोड पर मबनी शनाख्ती कार्ड की तस्दीक के बाद ही दाखिले की इजाजत होगी। पुदुचेरी से बिबिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अब्दुल मालिक।
0: उधर मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती आज सुबह गिनती के 77 मरकजों में शुरू हो गई है।

0: पेश है एक रिपोर्ट।
1: आज वोटों की गिनती के लिए सभी इंतजाम कर लिए गए हैं और गिनती के लिए चुनाव अमला पहले ही मराकज में पहुंच गया है। 294 सीटों में से असेंबली के 293 हलकों के लिए वोटों की गिनती शुरू हो रही है। गिनती के हर मरकज में 3 सतही सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है, जहां जिला पुलिस, रियासती पुलिस और मरकजी फोर्सेज को तैनात किया गया है। मुख्तलिफ मुकामात पर मरकजी फोर्सेज की कुल 200 कंपनियां तैनात की गई हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की दफा 163 गिनती के मराकज के 100 मीटर के अंदर लागू कर दी गई है। जरूरत पड़ने पर इस हद को बढ़ाया भी जा सकता है। कमीशन ने इस अमल के दौरान फराइज में किसी किस्म की कोताही के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए खबरदार किया है। भारत के चुनाव कमीशन ने फालता असेंबली हलके के लिए चुनाव को कलअदम और बातिल करार दिया था। फालता में 21 मई को दोबारा वोट डाले जाएंगे और 24 मई को वोटों की गिनती की जाएगी। आज सिर्फ 293 हलकों में वोटों की गिनती हो रही है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: 5 रियासतों में 7 असेंबली सीटों के लिए हुए जिमनी चुनाव के वोटों की गिनती भी आज सुबह शुरू हो गई है। ये 7 सीटें हैं गुजरात में उमरेत, कर्नाटक में बागलकोट और दावणगेरे साउथ, महाराष्ट्र में राहौरी और बारामती, नागालैंड में कोरीदांग और त्रिपुरा में धर्मानगर। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने जमैका में भारतीय बिरादरी के अफराद से गुफ्तगू की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि जमैका के वजीर आजम ने उनसे मुलाकात के दौरान भारतीय बिरादरी के ग्रां कदर तआवुन का जिक्र किया। दोनों रहनुमाओं ने खासतौर पर बुनियादी ढांचे, इंसानी तरक्की और टेक्नोलॉजी पर मबनी हुक्मरानी और छोटे कारोबार के शोबों में जारी यकसर तब्दीली के बारे में तबादले ख्याल किया। उन्होंने भारत जमैका ताल्लुकात में हुई हालिया पेशरफ्त का भी जायजा लिया। डॉ जयशंकर इस माह की 10 तारीख तक जमैका, सूरीनाम और ट्रिनिडैड एंड टोबैगो के दौरे पर रहेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के शहर प्रयागराज में एक शिमाली टेक सिंपोजियम का इफ्तिताह करेंगे, जिसका उन्मान है रक्षा त्रिवेणी संगम, जहां टेक्नोलॉजी, सनत और सपाहगरी यकजा होते हैं। वजारत दिफा ने बताया कि इस सिंपोजियम से फौजी कार्रवाई को दरपेश चैलेंजों के लिए मुल्क ही में तैयार की गई जदीद तरीन टेक्नोलॉजी को नुमाया और मजबूत करने का एक फाल प्लेटफॉर्म फराहम होगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। अमरीका उन मुल्कों की रहनुमाई के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करेगा जिनके जहाज आबनाए हुर्मुज में फंसे हुए हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस कोशिश से सैकड़ों जहाजों और तकरीबन 20,000 जहाजरानों को मदद मिलेगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि गैर जानिबदार और बेकसूर मुल्क ईरान जंग से मुतासिर हुए हैं और ईरान और अमरीका ने इन मुल्कों से कह दिया है कि वो इन पाबंदी वाली आबी गुजरगाहों से उनके जहाजों को बहिफाजत निकालेगा, ताकि ये जहाज आजादी के साथ अपनी मंजिलों को रवाना हो सके। अमरीकी वस्ती कमान ने कहा कि इस कदम में गाइडेड मिसाइल शिकन हथियार, 100 से ज्यादा तैयारे और अमले के 15,000 से ज्यादा अरकान शामिल होंगे। अमरीका और ईरान के दरमियान कोई पेशरफ्त नहीं हुई है, क्योंकि अमरीका ने तनाजे को खत्म करने के ईरान के मुजवजा खाके के बुनियादी निकात से इनकार कर दिया है, यहां तक कि मगरबी एशिया में जंगबंदी मुआहदा खतरे में पड़ गया है। ईरान हुकूमत के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि अमरीका ने ईरान के 14 निकात के मंसूबे का जवाब दिया है, जिसका मकसद जंग खत्म करना है। उन्होंने यह भी बताया कि इस जवाब पर फिलहाल गौर खोज किया जा रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइली मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने तजवीज का जायजा लिया था, उन्होंने इसे नाकाबिले कबूल करार दिया। उन्होंने कहा कि ईरान ने अभी कोई बड़ी कीमत नहीं चुकाई है जिससे अमरीका के किसी सख्त मौकिफ का इजहार होता है, क्योंकि ये बातचीत बिलवास्ता तौर पर सालिस के जरिए की गई। तफसील हमारे नामानिगार से।
1: ईरान की वजारत खारजा ने कहा है कि उसे अपनी 14 निकासी तजवीज पर अमरीका का जवाब मौसूल हो गया है और फिलहाल इसका जायजा लिया जा रहा है। ईरान में अफसरान ने कहा है कि इस मंसूबे में मुखासमत को खत्म करने पर तवज्जो दी गई है, इसमें न्यूक्लियर मामले पर कोई बात नहीं की गई है, जो दोनों मुल्कों के दरमियान इख्तिलाफ का सबब है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस तजवीज पर शक का इजहार किया है कि जिससे इशारा मिलता है कि इससे अमरीका के खासतौर पर न्यूक्लियर बंदिशों से मुतालिक मुतालबात पूरे नहीं होते। इधर जनूबी लबनान में इसराइल और हिजबुल्ला के दरमियान जंगबंदी जंग में मुआहदे के बावजूद शिद्दत आ गई है और दोनों ही तरफ से बार बार खिलाफ वर्जी की इत्तलात मिली है। इसराइली फौजों ने फजाई हमले तेज कर दिए, जिनमें हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। जनूबी

0: इलाकों के शहरियों से कहा है कि वो ये जगह खाली कर दें, क्योंकि फौजी कार्रवाई दीगर इलाकों में भी की जाएगी। दुबई से प्रसार भारती के खसूसी नामा निगार विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
1: भारत ने लिपुलेख दर्रे पर नेपाल के दावे को मुस्तरद कर दिया है और इसे 1954 से कैलाश मानसरोवर यात्रा का एक देरीदार रास्ता करार दिया है और कहा है कि इस रास्ते से यात्रा कई दहाइयों से जारी है। वजारत खारजा के तर्जमान रणधीर जायसवाल ने यह बात मीडिया के कुछ सवालों के जवाब में कही। ये सवालात सालाना कैलाश मानसरोवर यात्रा के सिलसिले में नेपाल की वजारत खारजा की तरफ से किए गए सरहदी मामलों से मुतालिक दावों के बारे में थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस सिलसिले में भारत का जवाब मुस्तकिल और वाजह है और ये कोई नया वाकया नहीं है। जहां तक इलाकाई दावों का जिक्र है तो जनाब जायसवाल ने इशारा दिया कि भारत लगातार ये कहता रहा है कि न तो ये दावे मुनसफाना हैं और ना ही तारीखी हकायक और शवाहिद पर मबनी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के इलाकाई वसत के यकतरफा मसनूई दावे बेबुनियाद हैं। तर्जुमान ने यह भी कहा कि भारत दोतरफा ताल्लुकात में सभी मामलात पर नेपाल के साथ एक तामीरी बातचीत के लिए तैयार है, जिसमें मुजाकरात और सिफारती कोशिशों के जरिए तस्फिया तलब सरहदी मामलात पर इत्तेफाकी राय कायम करना भी शामिल है। हैदराबाद में आज़मीन हज का पहला काफिला सऊदी अरब की मुकद्दस सरजमीन के लिए रवाना हो गया है। अकलियतों के फलाह बहबूद के वजीर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने नामपल्ली में हज हाउस से बाकायदा तकरीब के दौरान आज़मीन हज को रवाना किया। अजहरुद्दीन ने आज़मीन हज को मशवरा दिया कि वो सऊदी अरब में खुद को इबादत में मसरूफ रखें और ज्यादा से ज्यादा इबादत करें। उन्होंने उनसे ये भी अपील की कि वो सऊदी अरब के तमाम कवानीन और जाब्तों पर पूरी तरह अमल दरामद करें और तेलंगाना की तरक्की के लिए भी दुआ करें। वजीर मौसूफ ने कहा कि तेलंगाना सरकार आज़मीन हज को बेहतरीन सहूलियात और तआवुन फराहम करने के तहत अहदबस्ता है। भारत के महकमा मौसमियात IMD ने दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और ज्वालाबारी की पेशगोई की है। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह के मौसमी हालात का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने बिहार, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, केरलम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, उत्तराखंड और मगरबी बंगाल में इक्का दुक्का मकामात पर मूसलाधार बारिश की भी पेशगोई की है, जबकि साहिली आंध्र प्रदेश में आज गर्मी और हवा में नमी का इम्कान है। IPL क्रिकेट में कल रात अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस के सामने जीत के लिए 164 रन का निशाना रखा था, जिसे उसने एक गेंद पहले ही 6 विकेट खोकर 167 रन बनाकर हासिल कर लिया। आज शाम 7:30 बजे मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं अब्दुल मालिक।
2: शुक्रिया असलम। मगरबी बंगाल समेत 5 रियासतों में वोटों की गिनती आज होने को आज के ज्यादातर उर्दू अखबारों ने अपनी पहली खबर के तौर पर पेश किया है। हिंदुस्तान एक्सप्रेस के मुताबिक मगरबी बंगाल पर सबकी निगाहें मरकूज, इलेक्शन कमीशन ने वोट शुमारी के लिए किए पुख्ता और गैर मामूली इकदाम। रोजनामा इनकलाब ने खलाई टेक्नोलॉजी के शोबे में एक अहम कामयाबी के तौर पर दृष्टि सैटेलाइट लॉन्च किए जाने और वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से मुबारकबाद दिए जाने को बड़ी खबर बनाया है। अखबार के मुताबिक भारत अब हर मौसम में जमीन के हर कोने पर नजर रख सकेगा। रोजनामा प्रताप ने पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू के इस बयान को बड़ी खबर बनाया कि अपोजिशन पार्टियां जमहूरी इदारों को कमजोर कर रही हैं और ये कि मुल्क के अवाम वक्त आने पर उनकी ऐसी कोशिशों का मुंह तोड़ जवाब देंगे।
1: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। आसाम, मगरबी बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और मरकज के जेर इंतजाम इलाके पुडुचेरी असेंबली इंतखाबात के लिए डाले गए वोटों की गिनती शुरू हो गई है। 7 असेंबली हलकों में जिमनी इंतखाबात के लिए डाले गए वोटों की गिनती भी जारी है। भारत ने लिपुलेख दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर नेपाल के एतराज को मुस्तरद कर दिया है और इसे गैर मुनसिफाना करार दिया है। भारत के महकमा मौसमियात ने हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड समेत शिमाली भारत में आज गरज चमक के साथ छींटे और ज्वालाबारी की पेशगोई की है। अमरीका आबनाए हुरमुज में फंसे हुए जहाजों को बहिफाजत निकालने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करेगा। और IPL क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हराया। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।

0: मीडियम वेव 483.1 मीटर 1861 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: छोट शहर मगर सपना ग्लोबल, आप इंजीनियरिंग के टॉप लेवल पढ़ाई बिहार में ही संभव छी।
2: हर जिला में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, 38 प्रतिष्ठित संस्थान, विश्व स्तरीय शिक्षा अपने राज्य में,
1: हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम, अनुभवी फैकल्टी आ मजबूत प्लेसमेंट सपोर्ट।
2: नामांकन जेईई मेन 2026 या BCECE मेरिट के आधार पर, अंतिम तिथि 5 मई 2026।
1: जखन मौका अपने राज्य में हो तो सफलता दूर नहीं हो छी। उत्कृष्ट प्लेसमेंट अहां के इंतजार में छी।
2: बेसी जानकारी खातिर विजिट करू BCECEboard.bihar.gov.in। विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: इधर आइए, इधर।
4: इधर?
3: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
5: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
4: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
5: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
4: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
5: शुभ वाणी,
4: लाभ वाणी,
3: आकाशवाणी।
6: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
7: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
8: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव को लेकर आज मतदाता सूची प्रारूप प्रकाशित करेगा। 18 मई तक स्वीकार किए जाएंगे दावा आपत्ति। पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में हुए विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी। दोपहर तक शुरुआती रुझान मिलने का अनुमान। भारत ने लिपुलेख दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर नेपाल की आपत्ति खारिज करते हुए इसे अनुचित बताया। और मौसम विभाग ने आज अररिया, मधुबनी और सुपौल जिले में कुछ स्थानों पर बारिश, वज्रपात और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की। किशनगंज में भारी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। राज्य निर्वाचन आयोग आज पंचायत चुनाव को लेकर प्रपत्र एक का प्रारूप प्रकाशित करेगा। आयोग के अनुसार आज से 18 मई तक दावा आपत्ति स्वीकार किए जाएंगे। आपत्तियों का निष्पादन 22 मई तक किया जाएगा, जबकि अपील वादों के निष्पादन के लिए 11 मई से 29 मई की तिथि निर्धारित की गई है। प्रपत्र एक का अंतिम प्रकाशन 5 जून को होगा, जबकि जिला गजट में इसके आंकड़े 9 जून को प्रकाशित किए जाएंगे। विधान परिषद के विधानसभा कोटे की एक सीट के लिए हो रहे उपचुनाव के लिए नाम वापसी का आज अंतिम दिन है। इस सीट पर एकमात्र प्रत्याशी भाजपा के सूर्य कुमार शर्मा उर्फ अरविंद शर्मा ने नामांकन किया है। इस आधार पर उनका निर्विरोध निर्वाचन तय माना जा रहा है। आज निर्वाचन की औपचारिक घोषणा की जाएगी। गौरतलब है कि पूर्व मंत्री मंगल

मंडे के सीवान से विधायक चुने जाने के बाद यह सीट रिक्त हुई थी। पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में हुए विधानसभा चुनावों की मतगणना सुबह 8 बजे से जारी है। डाक मतपत्र की गिनती के बाद ईवीएम से गणना की प्रक्रिया चल रही है। दोपहर तक शुरुआती रुझान मिलने का अनुमान है। निर्वाचन आयोग के अनुसार असम की 126, केरलम की 140 और पुडुचेरी की 30 सीट के लिए मतदान 9 अप्रैल को हुआ था। तमिलनाडु की 234 सीटों के लिए 23 अप्रैल को और पश्चिम बंगाल की 293 सीटों के लिए दो चरणों में 23 और 29 अप्रैल को वोट डाले गए थे। इधर 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव की मतगणना भी चल रही है। ये 7 सीटें हैं गुजरात की उमरेठ, कर्नाटक में बागलकोट और दावनगेरे दक्षिण, महाराष्ट्र में राहुरी और बारामती, नागालैंड में कोरिडांग और त्रिपुरा में धर्मनगर। प्रदेश में पिछले 2 वर्षों में मिट्टी के 8 लाख नमूनों की जांच हुई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 5 लाख और वित्तीय वर्ष 2025-26 में 3 लाख नमूनों की जांच की गई। कृषि विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मिट्टी जांच प्रयोगशालाओं में 12 पैरामीटर पर नमूनों की जांच की गई और मिट्टी की गुणवत्ता के संबंध में किसानों को जानकारी दी गई। साथ ही व्हाट्सएप के माध्यम से डिजिटल मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है। बिहार राजस्व सेवा के 47 अधिकारियों का निलंबन रद्द कर दिया गया है। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। विभाग ने बताया कि राजस्व सेवा के पदाधिकारियों ने 30 अप्रैल को मुख्य सचिव के साथ हुई वार्ता में हड़ताल वापस लेने की घोषणा की थी। इसके बाद सरकार ने हड़ताल के दौरान निलंबित अधिकारियों का निलंबन वापस लेने का आश्वासन दिया था। हड़ताल वापसी के बाद राजस्व अधिकारी और अंचलाधिकारी आज से काम पर लौट रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने उन खबरों और सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि आधार कार्ड का स्वरूप इस साल के अंत तक बदलकर केवल एक फोटो और एक QR कोड वाला हो जाएगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। भारत ने लिपुलेख दर्रे पर नेपाल के दावे को खारिज करते हुए कहा है कि यह दर्रा वर्ष 1954 से कैलाश मानसरोवर यात्रा का पुराना मार्ग है और इस मार्ग से दशकों से यात्रा जारी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस संदर्भ में कहा कि इसे लेकर भारत का रुख हमेशा से स्पष्ट रहा है और यह कोई नई बात नहीं है। श्री जायसवाल ने कहा कि ऐसे दावे ना तो न्यायसंगत हैं और ना ही ऐतिहासिक तथ्यों और सबूतों पर आधारित हैं। प्रवक्ता ने कहा कि भारत द्विपक्षीय संबंधों के सभी मुद्दों पर नेपाल के साथ सार्थक बातचीत के लिए तत्पर है। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम आज बोधगया पहुंच रहे हैं। जानकारी के अनुसार श्री लाम महाबोधि मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। इसके बाद वे वियतनाम मंदिर में भी पूजा अर्चना करेंगे। राष्ट्रपति लाम के आगमन को लेकर बोधगया और गयाजी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने बताया कि वियतनामी राष्ट्रपति के परिभ्रमण कार्यक्रम को देखते हुए यातायात व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। आज पूर्वाहन 10 बजे से अपराहन 3 बजे तक गया हवाई अड्डा से महाबोधि मंदिर मार्ग पर सामान्य वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। प्रदेश की सभी पंचायतों में इस महीने की 19 तारीख से प्रत्येक महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को सहयोग शिविर का आयोजन किया जाएगा। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों को भेजे निर्देश में कहा है कि शिविरों में प्रखंड, अंचल और थानों से जुड़ी शिकायतों को ऑन स्पॉट निपटारा किया जाएगा। इसका आयोजन पंचायत, सरकार भवन या इसके आसपास किसी सार्वजनिक स्थान पर होगा। विकसित भारत समृद्ध बिहार अभियान के तहत सहयोग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसका मकसद आम नागरिकों को बेहतर प्रशासनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। आकाशवाणी समाचार के व्हाट्सएप चैनल ने 1 लाख फॉलोअर्स का आंकड़ा हासिल कर महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है। इस व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से प्रतिदिन समाचार अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज और अलर्ट उपलब्ध कराए जाते हैं। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: छोट शहर मगर सपना ग्लोबल, आप इंजीनियरिंग के टॉप लेवल पढ़ाई बिहार में ही संभव छी।
1: हर जिला में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, 38 प्रतिष्ठित संस्थान, विश्व स्तरीय शिक्षा अपने राज्य में,
0: हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम, अनुभवी फैकल्टी आ मजबूत प्लेसमेंट सपोर्ट।
1: नामांकन जेईई मेन 2026 या बीसीईसीई मेरिट के आधार पर, अंतिम तिथि 5 मई 2026।
0: जखन मौका अपने राज्य में हो तो सफलता दूर नहीं हो छी, उत्कृष्ट प्लेसमेंट अहां के इंतजार में छी।
1: बेसी जानकारी खातिर विजिट करू bceceboard.bihar.gov.in। विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: अररिया, मधुबनी एवं सुपौल जिले में ओलावृष्टि होने की संभावना है और किशनगंज जिले में भारी वर्षा होने की संभावना है।
3: भागलपुर और नौगछिया को जोड़ने वाले विक्रमशिला सेतु के 4 और 5 नंबर पिलर के बीच का स्लैब गिर जाने के कारण आवागमन बाधित हो गया है। इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। भागलपुर के एसएसपी प्रमोद कुमार यादव ने बताया कि ट्रैफिक को मुंगेर और सुल्तानगंज के रास्ते डायवर्ट किया गया है। इधर पुल निर्माण निगम के पदाधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पटना स्थित जेपी गंगा पथ पर सड़क मरम्मत कार्य के कारण आज और कल यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। प्रशासन के अनुसार सड़क पर बिटुमिनस कंक्रीट कार्य को लेकर विशेष ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है। इसके चलते 2 चरणों में मुख्य कैरेज वे और कनेक्टिंग ब्रिज पर परिचालन प्रभावित रहेगा। यह व्यवस्था दोनों दिन दोपहर 1 से 3 बजे तक और रात्रि 10 से सुबह 4 बजे तक प्रभावी रहेगी। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने जून के लिए तेल उत्पादन लक्ष्य बढ़ाने पर सैद्धांतिक सहमति व्यक्त की है। संयुक्त अरब अमीरात के संगठन से बाहर निकलने के बाद हुई अपनी पहली वर्चुअल बैठक में ओपेक प्लस के 7 देशों ने अगले महीने तेल उत्पादन लक्ष्य को लगभग 188,000 बैरल प्रतिदिन बढ़ाने पर सहमति जताई है। ये वृद्धि मुख्य रूप से संयुक्त अरब अमीरात के ओपेक प्लस समूह से अलग होने के ऐलान के बाद आपूर्ति संतुलन बनाने के लिए की गई है। प्रदेश आज बिहार प्रांत के प्रथम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस की जयंती पर उन्हें श्रद्धापूर्वक याद कर रहा है। उनकी जयंती पर पटना के श्रीकृष्ण स्मारक भवन परिसर में राजकीय समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और अन्य गणमान्य लोग उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। नालंदा पुलिस ने कल स्नातक चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी शुरू होने से पहले जिले के पावापुरी से सॉल्वर गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से मिले एडमिट कार्ड के आधार पर 2 अभ्यर्थियों को भी हिरासत में लिया गया है। इस बीच एनटीए ने इस घटना की पुष्टि करते हुए जिला प्रशासन को मामले की विस्तृत जांच के निर्देश दिए हैं। रोहतास जिले के दिनारा थाना क्षेत्र अंतर्गत आरा मोहनिया पथ पर बिलवैया मठिया गांव के पास आज सुबह एक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 7 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि तिलक समारोह से लौटी बस से उतर रहे लोगों के को तेज रफ्तार डाक पार्सल वाहन की चपेट में आने से यह हादसा हुआ है। घायलों का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। इनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं बेगूसराय जिले के सदर प्रखंड के बंदुवार मोहनपुर 8वां ढाला के पास सड़क हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 1 युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मुजफ्फरपुर जिले के रतनपुर गांव के पास एक सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 1 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस दुर्घटना पर संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। अररिया जिले के मदनपुर पश्चिम गांव में पोखर में डूब जाने से 1 4 साल की बच्ची की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि खेलने के दौरान पैर फिसलने के कारण बच्ची पोखर में गिर गई। मुंगेर के पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद ने 2 पुलिसकर्मियों को भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता के आरोप में निलंबित कर दिया है। कासिम बाजार थाना में पदस्थापित ASI अनिकेत कुमार झा और मुफस्सिल थाना में तैनात कर्मी अभिषेक कुमार के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। सीतामढ़ी शहर के बीच से होकर बहने वाली लख

खंदेई नदी की सफाई के लिए विशेष श्रमदान अभियान चलाया गया। जिलाधिकारी रिचि पांडे समेत कई प्रशासनिक अधिकारियों, नगर निगम कर्मियों और स्थानीय लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सारण की टीम ने 12वीं जूनियर बिहार राज्य बास्केटबॉल प्रतियोगिता के बालक वर्ग का खिताब जीत लिया है। गया में आयोजित फाइनल मुकाबले में सारण ने पटना को पराजित कर दिया। वहीं बालिका वर्ग का खिताब गया ने वैशाली को पराजित कर अपने नाम कर लिया। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित पुरुष T20 क्रिकेट प्रतियोगिता में कटिहार, सहरसा और बेगूसराय की टीमों ने जीत दर्ज की है। आईपीएल क्रिकेट में आज मुंबई इंडियंस का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। यह मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं कल खेले गए एक मैच में गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के दिल्ली दौरे की खबर पर लिखा है, बिहार मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज। दैनिक जागरण की सुर्खी है, बंगाल समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आज। दैनिक भास्कर ने दिल्ली में आगलगी की घटना पर लिखा है, एसी में ब्लास्ट से बिल्डिंग में आग, 9 की मौत। प्रभात खबर लिखता है, 2,45,000 फर्जी तरीके से ले रहे पीएम किसान योजना का लाभ, भुगतान रुका। राष्ट्रीय सागर पटना मेट्रो निर्माण की प्रगति पर लिखता है, मेट्रो टनल के 20 मीटर दायरे में निर्माण और बोरिंग पर रोक। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव को लेकर आज मतदाता सूची प्रारूप प्रकाशित करेगा। 18 मई तक स्वीकार किए जाएंगे दावा आपत्ति। पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में हुए विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी। दोपहर तक शुरुआती रुझान मिलने का अनुमान। भारत ने लिपुलेक दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर नेपाल की आपत्ति खारिज करते हुए इसे अनुचित बताया। और मौसम विभाग ने आज अररिया, मधुबनी और सुपौल जिले में कुछ स्थानों पर बारिश, वज्रपात और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की। किशनगंज में भारी बारिश का अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: इधर आइए, इधर।
1: इधर?
0: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
2: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
1: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
2: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
1: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
2: शुभ वाणी,
1: लाभ वाणी,
0: आकाशवाणी।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
4: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: एक जमाने से कहा

0: आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में।
3: किसान भाइयों एवं बहनों, अब सहकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्राप्त करना हुआ और भी आसान।
4: IVRS सुगम कॉल सेंटर के माध्यम से सहकारिता विभाग की सभी योजनाओं यथा खाद्यान्न अधिप्राप्ति, बिहार राज्य फसल सहायता योजना, पैक्स सदस्यता एवं अन्य सभी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करें।
3: कोई समस्या, कोई शिकायत, कोई जानकारी प्राप्त करना हो तो तुरंत कॉल करें
4: टोल फ्री नंबर 1800-3454-110 पर सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक। सहकारिता विभाग एवं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार द्वारा जनहित में जारी।
5: कहाँ चलती है, इधर तो आओ।
6: इधर आइए, इधर।
7: इधर?
6: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
8: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
7: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
8: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
7: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
8: शुभ वाणी,
7: लाभवाणी,
6: आकाशवाणी।

0: इधर आइए, इधर।
1: इधर?
0: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
2: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
1: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
2: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
1: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612225042। हमारा ईमेल एड्रेस है patna@gmail.com।
2: शुभ वाणी,
1: लाभ वाणी,
0: आकाशवाणी।
3: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: आकाशवाणी पटना दरभंगा से पेश है उर्दू प्रोग्राम अंजुमन।

शेर नगमा के तहत अभी आप सुन रहे थे गोपाल दास की आवाज में ये कलाम। इन्हीं गम की घटाओं से खुशी का चांद निकलेगा, इन्हीं गम की घटाओं से खुशी का चांद निकलेगा, अंधेरी रात के पर्दे में दिन की रोशनी भी है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे अख्तर शेरानी की। दोस्तों आज 4 मई है और आज के दिन मुमताज़ रूमानी शायर अख्तर शेरानी, जिनका असल नाम मोहम्मद दाऊद ख़ान था, की यौमे पैदाइश है। इनकी पैदाइश हिंदुस्तान में, उस वक्त के हिंदुस्तान में 1905 में हुई थी। इनके वालिद का नाम हाफिज़ महमूद शेरानी था और ये अपने वालिद के बहुत चहेते थे। अख्तर शेरानी की शायरी में इश्क, हुस्न और नेचर यानी फितरत की अक्कासी नुमायाँ थी। इनकी मशहूर शायरी मजमुओं में अख्तरिस्नात, माजरत अख्तरिस्तान और सुबह बिहार शामिल है। इनकी शायरी उस वक्त की शायरी की, जब तरक्की पसंद तहरीक का जोर था, लेकिन इन्होंने अपनी शायरी में एक अलग पहचान बनाई। इनकी मशहूर नज़में ओ देश से आने वाले बता, ए इश्क कहीं ले चल और

0: एक लड़की का गीत इनकी मकबूल तरीन तख्लीकात है। इसके साथ साथ इन्होंने रोमांस समेत कई अदबी रिसाइल की इदारत की और बच्चों के लिए भी लिखा। गर्ज़ की अख्तर शिरानी की शायरी में मौसिकियत, तसव्वुरात और जज्बाती कैफियत बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जिसने उन्हें उर्दू रुमानी शायरी में एक मुनफरद मकाम दिया। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं महफिले सुकन। इसमें शिरकत होगी कलीम अख्तर और मोहम्मद हातिम जावेद की। निजामत करेंगे मोहम्मद कसीम अहमद।
1: फिर नजर में फूल महके, दिल में फिर शमे जली, फिर तसव्वुर ने लिया इस बज्म में आने का नाम। हजरात आदाब, बज्म सुखन में एक बार फिर से आप सबों का इस्तकबाल है। आज हमारे साथ शामिल हैं चंपारण की सरजमीन से डॉक्टर हातिम जावेद, फुलवारी शरीफ पटना से डॉक्टर कलीम अख्तर, और आपको मेरे तारुफ की जरूरत क्या है, मैं वही हूँ कि जिसे आपने चाहा है सदा, यानी रहबर गियावी। आइए मुशायरे का बाजाब्ता आगाज किया जाए और मैं इस शेर के साथ डॉक्टर कलीम अख्तर को दावत कलाम देता हूँ कि जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल सकते हैं। डॉक्टर कलीम अख्तर, आप सबकी समाज के हवाले।
2: गजल का मतलब समाज फरमाइए। उम्र भर कसम सा कर मुझे क्या मिला, उम्र भर कसम सा कर मुझे क्या मिला, आपसे दिल लगा कर मुझे क्या मिला, उम्र भर कसम सा कर मुझे क्या मिला, आपसे दिल लगा कर मुझे क्या मिला, और मतलसानी जेरे लब मुस्कुरा कर मुझे क्या मिला, जेरे लब मुस्कुरा कर मुझे क्या मिला, आपसे गम छुपा कर मुझे क्या मिला, आपसे गम छुपा कर मुझे क्या मिला, और तीसरा मतलब के ख्वाबे दुनिया सजा कर मुझे क्या मिला, ख्वाबे दुनिया सजा कर मुझे क्या मिला, दिल की बस्ती बसा कर मुझे क्या मिला, दिल की बस्ती बसा कर मुझे क्या मिला, उम्र भर कसम सा कर मुझे क्या मिला, आपसे दिल लगा कर मुझे क्या मिला।
3: बहुत बहुत
2: शुक्रिया। ये शेर देखिए कि राह खलवत में फुर्सत में ऐ संग दिल, राह खलवत में फुर्सत में ऐ संग दिल, आपको गम सुनाकर मुझे क्या मिला,
1: कहने भाई वाह वाह।
2: राह खलवत में फुर्सत में ऐ संग दिल, आपको गम सुनाकर मुझे क्या मिला, मैंने सोचा था बरसों के इस मर्तबा, मैंने सोचा था बरसों के इस मर्तबा, आपके पास आकर मुझे क्या मिला, आपके पास आकर मुझे क्या मिला, उम्र भर कसम सा कर मुझे क्या मिला, आपसे दिल लगा कर मुझे क्या मिला, और आखिरी शेर समाप्त फरमाइए कि जाम गम पी रहा था मैं मसरूर था, जाम गम पी रहा था मैं मसरूर था, फिर ये आंसू लुटा कर मुझे क्या मिला,
1: क्या कहने हैं,
2: फिर ये आंसू लुटा कर मुझे क्या मिला, उम्र भर कसम सा कर मुझे क्या मिला, आपसे दिल लगा कर मुझे क्या मिला, और मक्ता समाज फरमाइए, क्यों ना अपने वतन से मोहब्बत करूं, क्यों ना अपने वतन से मोहब्बत करूं, शहर मुल्तान जाकर मुझे क्या मिला, शहर मुल्तान जाकर मुझे क्या मिला, क्यों ना अपने वतन से मोहब्बत करूं, शहर मुल्तान जाकर मुझे क्या मिला, उम्र भर कसम सा कर मुझे क्या मिला, आपसे दिल लगा कर मुझे क्या मिला। दूसरी गजल का मतलब समाज फरमाइए।
1: इरशाद हो।
3: خوشحال
2: تیری دنیا میں آ کے دیکھ لیا.
1: دنیا میں آ کے
2: تیری دنیا میں آ کے دیکھ لیا زندگی کیا ہے پا کے دیکھ لیا.

0: वाह वाह वाह वाह,
1: वाह
0: बहुत
1: वाह
0: खूब
1: तेरी
0: बहुत
1: दुनिया
0: खूब।
1: में आके देख लिया,
0: जिंदगी क्या है,
1: जिंदगी क्या है
0: पाके देख
1: पाके देख
0: लिया।
1: लिया,
0: वाह
1: और दूसरा मतलब कि
0: इरशाद,
1: आपसे दिल लगा के देख लिया,
0: क्या कहने,
1: आपसे दिल लगा के देख लिया, उम्र
0: वाह
1: भर हंस के गा के देख लिया,
0: वाह वाह,
1: आपसे दिल लगा के देख लिया, उम्र भर हंस के गा के देख लिया, और एक मतलब और के शहरे अग़यार जाके देख लिया,
0: अरे अब यार जाके
1: शहरे
0: देख लिया,
1: अग़यार जाके देख लिया, उनको अपना बना के देख लिया,
0: वाह वाह वाह वाह, बहुत खूब।
1: शहरे अग़यार जाके देख लिया,
0: उनको
1: उनको
0: अपना बना
1: अपना
0: के देख
1: बना के
0: लिया।
1: देख लिया, तेरी दुनिया में आके देख लिया, जिंदगी क्या है पाके देख
0: बहुत
1: लिया।
0: खूब, वाह।
1: और ये शेर देखिए कि संग दिल क्या पिघल नहीं सकता,
0: संगे दिल क्या
1: संग
0: पिघल
1: दिल
0: नहीं
1: क्या
0: सकता।
1: पिघल नहीं सकता, हर तरह से मना के देख
0: आय
1: लिया,
0: हाय, वाह वाह वाह वाह, क्या
1: संग दिल
0: कहने,
1: क्या
0: वाह वाह
1: पिघल
0: क्या,
1: नहीं
0: बहुत खूब
1: सकता,
0: बहुत खूब।
1: संग दिल क्या पिघल नहीं सकता, हर तरह से मना के देख लिया,
0: बहुत खूब,
1: और कहते हैं ख्वाब टूट जाता है,
0: कहते हैं ख्वाब
1: कहते
0: टूट जाता
1: हैं
0: है, ख्वाब टूट
1: ख्वाब
0: जाता
1: टूट जाता है, रेत का घर बना के देख लिया,
0: है। आय
1: वाह
0: हाय,
1: वाह
0: वाह
1: वाह
0: वाह,
1: वाह,
0: क्या
1: कहते
0: कहने, अच्छा
1: हैं
0: शेर भाई, अच्छा
1: ख्वाब
0: शेर,
1: टूट जाता
0: वाह वाह वाह
1: है,
0: वाह,
1: कहते हैं
0: वाह
1: ख्वाब टूट जाता है,
0: वाह,
1: रेत का घर बना के
0: बना के
1: देख
0: देख लिया,
1: लिया।
0: बहुत खूब।
1: और समाज फरमाइए कि रोशनी की बका है क्या अख्तर,
0: वाह,
1: रोशनी की बका है क्या अख्तर, जुगनुओं को उड़ा के देख लिया,
0: क्या कहने
1: अख्तर
0: भाई,
1: रोशनी की बका
0: बका
1: है
0: है क्या
1: क्या
0: अख्तर,
1: अख्तर,
0: जुगनुओं
1: जुगनुओं
0: को
1: को
0: उड़ा
1: उड़ा
0: के
1: के
0: देख
1: देख
0: लिया।
1: लिया। और मक्ते सानी समाज फरमाइए
0: इरशाद,
1: कि सुनते थे गम गुसार है अख्तर,
0: सुनते
1: सुनते
0: थे
1: थे
0: गम
1: गम
0: गुसार
1: गुसार
0: है
1: है
0: अख्तर,
1: अख्तर, आपके पास आकर देख लिया,
0: वाह
1: आपके
0: वाह
1: पास आके देख लिया,
0: वाह,
1: सुनते हैं गम गुसार है अख्तर, आपके
0: आपके
1: पास
0: पास
1: आके
0: आके
1: देख
0: देख लिया।
1: लिया, आपके पास आके देख लिया, तेरी दुनिया में आके देख लिया, जिंदगी क्या है पाके देख लिया,
0: वाह बहुत खूब बहुत
1: तेरी
0: खूब।
1: दुनिया में आके देख लिया, जिंदगी क्या है पाके देख लिया। हजरत, अभी आप डॉक्टर कलीम अख्तर के कलाम से महजूज हो रहे थे, और अब मैं यानी रहबर गियावी आपकी समाअत के हवाले गजल का मतला हाजिर खिदमत कर रहा हूं। मुलाहजा फरमाएं कि मेरे बारे में सोचता भी है,
0: वाह,
1: मेरे बारे में सोचता भी है, गरचे मुझसे वो कुछ खफा भी है,
0: वाह,
1: मेरे बारे में सोचता
0: सोचता
1: भी
0: भी है,
1: है, गरचे मुझसे वो कुछ खफा भी है।
0: वाह
1: और शेर मुलाहजा फरमाएं कि
0: इनायत,
1: मुझको तन्हा नहीं समझना तुम,
0: अच्छा
1: मुझको तन्हा नहीं
0: नहीं समझ,
1: समझना तुम, साथ माँ की मेरी दुआ भी
0: आय
1: है,
0: है, क्या
1: वाह वाह
0: कहने,
1: मुझको
0: बहुत खूब
1: तन्हा, जी
0: बहुत
1: शुक्रिया, बहुत
0: खूब,
1: बहुत शुक्रिया, मुझको तन्हा नहीं समझना तुम,
0: वाह
1: साथ माँ की मेरी दुआ भी है, अब मुझ पे क्या तबसरा करेगा तू, मुझ पे क्या
0: वाह,
1: तबसरा करेगा तू, मेरे बारे में जानता भी है,
0: हाय
1: वाह
0: हाय
1: वाह
0: वाह,
1: मुझ पे
0: क्या
1: क्या
0: कहने,
1: तबसरा करेगा तू, मेरे बारे में जानता भी है।
0: वाह,
1: और शेर मुलाहजा फरमाए कि कैंसर का इलाज है लेकिन,
0: वाह
1: कैंसर का इलाज
0: वाह,
1: है
0: लेकिन
1: लेकिन, शक की कोई कहीं दवा भी है,
0: आय
1: वाह
0: हाय
1: वाह
0: वाह,
1: वाह,
0: क्या
1: कैंसर का
0: कहने भाई,
1: इलाज है,
0: अच्छा
1: शुक्रिया, बहुत बहुत
0: बेशक
1: शुक्रिया,
0: बेशक।
1: बहुत बहुत शुक्रिया, कैंसर का इलाज है लेकिन, शक की कोई कहीं दवा भी है।
0: अरे
1: और
0: वाह,
1: शेर देखें कि तुझको फिरौनियत डुबा देगी,
0: क्या वाह,
1: तुझको
0: हाँ,
1: फिरौनियत
0: फिरौनियत
1: डुबा
0: डुबा देगी,
1: देगी, तुझको मालूम है खुदा भी
0: वाह
1: है,
0: हाय हाय, क्या
1: तुझको, जी
0: कहने,
1: शुक्रिया, बहुत
0: बहुत
1: बहुत शुक्रिया,
0: ज्ञानदार है भाई,
1: जी
0: वाह वाह
1: शुक्रिया,
0: वाह
1: बहुत
0: वाह।
1: अच्छा, तुझको फिरौनियत डुबा देगी, तुझको मालूम है खुदा भी
0: अरे
1: है, और
0: वाह,
1: मख्ता हाजिर खिदमत कर रहा हूं। मुलाहजा फरमाए कि घर से निकलूं तो किस तरह रहबर,
0: अरे वाह,
1: घर से निकलूं
0: निकलूं
1: तो
0: तो
1: किस
0: किस,
1: तरह रहबर, सिर्फ बारिश नहीं हवा भी
0: आय
1: है,
0: हाय
1: वाह वाह
0: हाय
1: वाह,
0: हाय,
1: घर से
0: अच्छा वाह
1: निकलूं, जी
0: वाह वाह,
1: शुक्रिया,
0: बहुत
1: बहुत बहुत
0: खूब,
1: शुक्रिया,
0: हवा भी है,
1: घर
0: वाह
1: से
0: भी है,
1: निकलूं तो किस तरह रहबर, सिर्फ बारिश नहीं
0: हवा
1: हवा भी
0: भी,
1: है। और
0: वाह,
1: एक दूसरी गजल का मतला हाजिर खिदमत कर रहा हूं। मुलाहजा फरमाए कि नहीं है खौफ

0: कि वो कह दे जाके घर घर से,
1: वाह
0: नहीं है खौफ कि वो कह दे जाके घर घर से, मैं दिल की बात भी करता हूं अपने नौकर से।
1: वाह वाह
0: वाह,
1: वाह,
0: मैं
1: क्या
0: दिल
1: बात
0: की
1: है भाई,
0: बात, ये शुक्रिया, नहीं
1: वाह।
0: है खौफ कि वो कह दे जाके घर घर से, मैं दिल की बात भी करता हूं अपने नौकर
1: नौकर से।
0: से। अब मिले कभी तुम्हें फुर्सत तो इस तरफ आओ,
1: वाह
0: मिले कभी
1: वाह,
0: तुम्हें फुर्सत तो
1: तो
0: इस
1: इस तरफ
0: तरफ
1: आओ।
0: आओ, तुम्हारी दीद की खातिर तो हम सदा तरसे,
1: वाह वाह वाह, क्या
0: तुम्हारी
1: बात है,
0: दीद की खातिर, तुम्हारी दीद की खातिर तो हम सदा तरसे।
1: वाह
0: मिले कभी तुम्हें फुर्सत तो इस तरफ आओ, तुम्हारी दीद की खातिर तो हम सदा तरसे। अशेर मुलाहजा फरमाए कि मैं तुमको अब भी चाहता हूं टूट कर, लेकिन
1: वाह
0: मैं
1: वाह,
0: तुमको अब भी चाहता हूं टूट कर,
1: लेकिन
0: लेकिन किसी से कह नहीं पाता हूं मैं फकत डर से।
1: वाह
0: वाह
1: वाह वाह,
0: मैं
1: क्या अच्छा,
0: तुमको, ये शुक्रिया, मैं तुमको अब भी चाहता हूं टूट कर, लेकिन किसी से कह नहीं पाता हूं मैं फकत डर से। अब
1: वाह
0: आ गए हो तो बैठो करो नई बातें, अब
1: वाह,
0: आ गए हो तो बैठो करो नई बातें, के दिल की बात तो करते नहीं मियां हर से। अब आ गए
1: वाह
0: हो, ये
1: वाह वाह
0: शुक्रिया
1: वाह वाह
0: शुक्रिया
1: वाह वाह
0: शुक्रिया, अब आ
1: वाह,
0: गए हो तो बैठो करो नई बातें, के दिल की बात तो करते नहीं मियां हर से। और तुम्हारी राह तो तकता हूं आज भी, लेकिन तुम्हारी राह तो तकता हूं आज भी, लेकिन पता नहीं के निकलते हो किस घड़ी घर से।
1: वाह वाह
0: तुम्हारी
1: वाह,
0: राह तो
1: बहुत
0: तकता
1: अच्छा,
0: हूं
1: वाह
0: आज
1: वाह वाह,
0: भी, लेकिन पता नहीं के निकल किस घड़ी घर
1: बहुत अच्छा,
0: से। जी
1: वाह
0: शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी राह तो तकता हूं आज भी, लेकिन पता नहीं के निकलते हो किस घड़ी घर से। और शेर मुलाहजा फरमाए कि कहा ये तोता ने पर मेरा तुम कतर डालो,
1: वाह,
0: कहा ये तोता ने पर मेरा तुम कतर डालो, मैं हौसलों से उड़ा करता हूं, नहीं पर
1: पर
0: से।
1: से
0: वाह
1: क्या
0: वाह, मैं
1: कहने भाई,
0: हौसलों
1: बहुत अच्छा,
0: से उड़ा
1: बात
0: करता हूं,
1: क्या
0: मैं
1: बात है भाई,
0: हौसलों से उड़ा करता हूं,
1: नहीं
0: नहीं पर
1: नहीं पर से,
0: से। कहा ये
1: वाह
0: तोता ने पर मेरा तुम कतर
1: बहुत
0: डालो, मैं
1: अच्छा,
0: हौसलों से उड़ा करता हूं, नहीं पर से। और शेर
1: वाह
0: देखें कि हमारी सुनने को तैयार ही नहीं कोई, हमारी
1: वाह,
0: सुनने को तैयार ही नहीं कोई, उतारे झूठा ये इल्जाम किस तरह सर से।
1: वाह वाह
0: हमारी
1: वाह
0: सुनने को तैयार ही नहीं कोई,
1: वाह,
0: उतारे
1: बहुत
0: झूठा ये इल्जाम किस तरह सर से। और हमारा एक ही मकसद जमी की सैरादी,
1: वाह,
0: हमारा एक ही मकसद जमी
1: जमी की
0: की सैरादी,
1: सैराबी,
0: हमारी सम्त हो बारिश के उस तरफ बरसे।
1: हाय
0: वाह
1: हाय,
0: वाह वाह,
1: क्या कहने
0: हमारा
1: भाई,
0: एक
1: क्या
0: ही
1: बात,
0: मकसद, जो शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया,
1: वाह वाह, बहुत
0: हमारा
1: अच्छा,
0: एक ही मकसद जमी की सैराबी, हमारी सम्त हो बारिश के उस तरफ बरसे।
1: बहुत खूब,
0: और ये शुक्रिया, गजल का मक्ता हाजिर खिदमत कर रहा हूँ, मुलाहजा फरमाए कि न जाने कौन सा पल मौत की खबर दे दे,
1: आए
0: न
1: वाह,
0: जाने कौन सा पल
1: मौत
0: मौत की
1: की
0: खबर
1: खबर
0: दे
1: दे दे,
0: दे,
1: बेशक,
0: यही तो सोच के आ जाओ मिलने रहबर से।
1: आए है,
0: वाह
1: वाह
0: न
1: क्या
0: जाने
1: बात,
0: कौन सा पल मौत की खबर दे
1: बेशक,
0: दे, यही
1: वाह
0: तो सोच के आ जाओ मिलने रहबर से।
1: बहुत खूब,
0: और एक आखिरी गजल के चंद अशआर हाजिर खिदमत कर रहा हूँ, मुलाहजा फरमाए कि हार कर बाजी तो सच्चे हैं उदास,
1: वाह,
0: हार कर बाजी
1: बाजी,
0: तो सच्चे हैं उदास, क्या हुआ आखिर के झूठे हैं उदास।
1: आए
0: वाह वाह, हार कर बाजी तो सच्चे
1: बहुत
0: हैं
1: खूब,
0: उदास, क्या हुआ आखिर के झूठे हैं उदास। शादियाने बज रहे थे क्या हुआ, शादियाने बज रहे थे क्या
1: क्या हुआ,
0: हुआ, क्या हुआ के सारे चेहरे हैं उदास।
1: वाह वाह
0: शादियाने
1: वाह,
0: बज रहे थे क्या
1: वाह वाह, बहुत
0: हुआ,
1: खूब,
0: क्या हुआ के सारे चेहरे हैं उदास। और
1: वाह,
0: शेर मुलाहजा फरमाए कि आपने तो जीत ली दुनिया सभी,
1: वाह,
0: आपने तो जीत ली दुनिया सभी, आप क्यों कर और कैसे हैं उदास। वाह
1: आय
0: वाह,
1: हाय
0: आपने
1: आय
0: तो
1: हाय,
0: जीत ली दुनिया
1: वाह
0: सभी, आप क्यों कर और कैसे हैं उदास। आपके आने से रौनक रौनक थी बहुत, आपके आने से
1: रौनक थी
0: रौनक थी
1: बहुत,
0: बहुत, आपके जाने से चेहरे हैं उदास।
1: वाह
0: वाह
1: वाह
0: वाह,
1: वाह,
0: आपके आने से रौनक थी
1: थी बहुत,
0: बहुत, आपके जाने से चेहरे हैं उदास। और शेर मुलाहजा फरमाए कि बज्म से उठकर मैं जब से आ गया,
1: अच्छा,
0: बज्म से उठकर मैं जब से आ गया, सुनता हूं कुछ लोग तब से हैं उदास।
1: वाह
0: सुनता हूं, जी बहुत बहुत शुक्रिया, सुनता हूं कुछ लोग तब से हैं उदास। और मक्ता हाजिर खिदमत कर रहा हूं, मुलाहजा फरमाए कि चांद को

0: देखा नहीं जब क्या कहूँ,
1: चांद
0: को देखा नहीं जब क्या कहूँ, साथ में रहबर के तारे हैं उदास। चांद को देखा नहीं जब क्या कहूँ, साथ में रहबर के तारे हैं उदास।
1: वाह
0: हजरत, अब मैं आज के इस स्टूडियो मुशायरा महफिल सुखन के आखिरी शायर जो महात्मा गांधी के जाए अमल कर्म भूमि चंपारण से तशरीफ फरमा है, डॉक्टर हातिम जावेद, मैं उन्हें जॉन एलिया के इन चार मिसरों से दावत सुखन दे रहा हूँ कि चारा साजों की चारा साजी से, चारा साजों की चारा साजी से दर्द बदनाम तो नहीं होगा, चारा साजों की चारा साजी से दर्द बदनाम तो नहीं होगा। हाँ दवा दो मगर ये बतला दो, हाँ दवा दो मगर ये बतला दो, मुझको आराम तो नहीं होगा। डॉक्टर हातिम जावेद, आपकी समाहत के हवाले।
1: बहुत बहुत शुक्रिया। ये गजल के चंद अशार हाजिर कर रहा हूँ। अर्ज किया है कि आजकल मुझसे अदावत पे उतर आई है।
0: क्या कहने हैं? आजकल मुझसे
1: अदावत पे उतर आई है, आपकी याद शरारत पे उतर आई
0: है। क्या कहने आए हैं? वाह वाह वाह वाह, क्या मतलब है भाई? बहुत बहुत
1: आजकल मुझसे अदावत पे उतर आई है,
0: आपकी याद
1: शरारत पे उतर आई है।
0: कहने हैं भाई, वाह।
1: और शरारत क्या है?
0: इरशाद
1: कि क्या पता छोड़ दे कब साथ, बदल जाए कब।
0: क्या कहने हैं?
1: क्या पता छोड़ दे कब साथ, बदल जाए कब, दिल की धड़कन भी सियासत पे उतर आई है।
0: क्या कहने हैं? वाह वाह वाह वाह, बहुत
1: बहुत शुक्रिया। क्या पता छोड़ दे कब साथ, बदल जाए कब,
0: क्या कहने हैं,
1: दिल की धड़कन भी सियासत पे उतर आई है। और आगे का शेर देखें कि आप क्या आए तस्वुर का बदन पहने हुए,
0: आप क्या आए तसव्वुर का बदन पहने हुए
1: आज की रात कयामत पे उतर आई
2: है।
1: आप क्या आए तस्वुर का बदन पहने हुए, आज की रात
0: कयामत
1: पे उतर आई है।
0: बहुत खूब।
1: और चूमने रोज मेरे पांव चली आती है बेकली मेरी इबादत पे उतर आई है।
0: वाह वाह वाह
2: वाह वाह।
1: चूमने रोज मेरे पांव चली आती है, बेकली मेरी इबादत पे उतर आई है।
0: वाह वाह वाह।
1: और मक्ते का शेर हाजिर कर रहा हूँ।
0: इरशाद हो
1: कि आओ जी भर तुझे सीने से लगा लूं जावेद,
0: आओ जी भर तुझे सीने से लगा लूं जावेद,
1: जिस्म से जान बगावत पे उतर आई।
2: वाह
0: वाह वाह वाह।
1: जिस्म से जान बगावत पे उतर आई है।
0: बहुत खूब।
1: और आजकल मुझसे अदावत पे उतर आई है, आपकी याद शरारत पे उतर आई।
0: बहुत बहुत। क्या कहने हैं? वाह वाह वाह।
1: और दूसरी गजल के चंद अशार
0: इरशाद हो
1: हाजिर कर रहा हूँ कि एहसास के होठों पे क्यों दर्द के नगमे हैं।
2: वाह वाह, बहुत अच्छा।
1: एहसास के होठों पे
2: क्यों दर्द
1: के नगमे हैं, क्यों जज्बे हस्ती के उतरे हुए चेहरे हैं।
0: क्या कहने हैं? वाह वाह वाह
2: वाह वाह,
0: बहुत
1: शुक्रिया। एहसास के होठों पे
0: क्यों
1: दर्द के नगमे हैं, क्यों जज्बे हस्ती के उतरे हुए चेहरे हैं, और बांधे हुए जिस्मों से बारूद बगावत की, बांधे हुए जिस्मों से बारूद बगावत की, हालात के बाशिंदे हर शहर में फिरते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह
1: वाह, शुक्रिया।
0: बहुत खूब।
1: बांधे हुए जिस्मों से बारूद बगावत की, हालात के बाशिंदे हर शहर में फिरते हैं, तहजीब की आंखों से है शर्म हया गायब।
0: तहजीब की आंखों से है शर्म हया गायब।
1: क्यों पंद नसीहत के सब आईने टूटे हैं।
2: वाह
0: वाह वाह।
1: क्यों पंद नसीहत के, जी शुक्रिया, क्यों पंद नसीहत के सब आईने टूटे हैं।
0: वाह।
1: और शेर अर्ज किया है कि हर दिल की हवेली में नफरत का बसेरा है।
0: हर दिल की हवेली में नफरत का बसेरा है।
1: हर जहन की डाली पर फितनों के परिंदे हैं।
2: वाह वाह
0: वाह वाह वाह,
2: बहुत अच्छा।
0: बहुत खूब।
1: हर दिल की हवेली में नफरत का बसेरा है, हर जहन की डाली पे फितनों के परिंदे हैं।
0: बहुत

0: और ला इस पर खास तवज्जो चाहूंगा
1: इरशाद हो
0: कि लाचार ज़ईफी को
1: लाचार ज़ईफी को
0: अब
1: लाचार
0: कौन
1: ज़ईफी
0: सहारा दे।
1: क्या कहने
0: वाह
1: हैं
0: वाह,
1: लाचार
0: लाचार ज़ईफी
1: ज़ईफी
0: को
1: अब कौन
0: अब
1: सहारा दे।
0: कौन सहारा दे, जकड़े हुए मतलब की जंजीर में रिश्ते हैं।
1: वाह वाह
0: वाह
1: और
0: वाह
1: चे
0: वाह वाह,
1: और
0: क्या
1: चे
0: कहने हैं
1: शुक्रिया,
0: भाई,
1: वाह वाह
0: बहुत
1: हालात
0: शुक्रिया,
1: हाजरा की अच्छी
0: बहुत
1: अक्काती
0: बहुत।
1: बहुत।
0: लाचार ज़ईफी को अब
1: अब
0: कौन
1: कौन
0: सहारा
1: सहारा
0: दे,
1: दे,
0: जकड़े हुए मतलब की जंजीर में रिश्ते
1: रिश्ते हैं।
0: हैं।
1: वाह वाह वाह
0: और
1: वाह,
0: मक्ता हाजिर कर रहा हूं
1: इरशाद हो।
0: कि जावेद मसाइल के लश्कर न हो क्यों हावी।
1: जावेद
0: जावेद
1: मसाइल
0: मसाइल
1: के
0: के लश्कर न
1: लश्कर न
0: हो
1: हो
0: क्यों
1: क्यों
0: हावी,
1: हावी।
0: मिल्लत के सिपाही तो आपस में ही उलझे
1: वाह
0: हैं।
1: वाह वाह,
0: वाह
1: और
0: वाह
1: अच्छा
0: वाह
1: वाह,
0: वाह,
1: बहुत
0: बहुत।
1: खुश।
0: जावेद मसाइल के लश्कर न हो क्यों हावी, मिल्लत के सिपाही तो आपस में ही
1: उलझे हैं।
0: उलझे हैं।
1: वाह
0: एहसास के होठों पर क्यों दर्द के नगमे हैं, क्यों जज्बे हस्ती के उतरे हुए चेहरे हैं।
1: वाह
0: शुक्रिया
1: वाह,
0: शुक्रिया।
1: हजरात ये थे डॉक्टर हातिम जावेद, जो बहुत ही मुरस्सा और मुसज्जा कलाम से हम सबको महजूज फरमा रहे थे। डॉक्टर हातिम जावेद के कलाम के साथ ही आज का ये महफिले सुखन अपने अख्तिताम को पहुंचता है। एक बार फिर मैं ये बताता चलूं कि आज के इस महफिले सुखन स्टूडियो मुशायरे में हमारे साथ थे डॉक्टर कलीम अख्तर फुलवारी शरीफ पटना से, डॉक्टर हातिम जावेद महसी चंपारण से, और ये नाचीज रहबर गयावी। अब तो जाते हैं मैं कदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। बहुत बहुत शुक्रिया।
2: अभी आप सुन रहे थे महफिले सुकन। इसमें शिरकत करने वाली शायर थे कलीम अख्तर और मोहम्मद हातिम जावेद। निजामत कर रहे थे मोहम्मद कसीम अहमद। मौसीकी के तहत आइए सुनते हैं चंद गजलें। सबसे पहले सुनते हैं परवेज़ अख्तर का ये कलाम अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में।

जिंदगी नाम को हमारी है। अभी आप सुन रहे थे परवेज़ अख्तर का ये कलाम अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में। आइए सुनते हैं अगला कलाम मुन्नी बेगम की आवाज़ में।

मौज साहिल से मिलो, माही कामिल से मिलो। खूबसूरत कलाम आप सुन रहे थे, बेहद खूबसूरत आवाज़ में, मुन्नी बेगम की आवाज़ में। आइए अगला कलाम सुनते हैं, जगजीत सिंह और

मौज साहिल से मिलो, माहे कामिल से मिलो। खूबसूरत कलाम आप सुन रहे थे, बेहद खूबसूरत आवाज़ में, मुन्नी बेगम की आवाज़ में। आइए अगला कलाम सुनते हैं, जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज़ में।

मौसीकी के तहत अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज़ में ये खूबसूरत कलाम। सामईन हजरात, हमारी स्टूडियो की घड़ी ने इजाज़त दे दिया है आपसे इजाज़त लेने को। फिलहाल आप हमें दीजिए यहीं इजाज़त, हम फिर हाजिर होंगे आपके अपने पसंदीदा उर्दू प्रोग्राम अंजुमन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, खुदा हाफिज़।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे उर्दू प्रोग्राम अंजुमन। ये प्रोग्राम आकाशवाणी पटना दरभंगा से प्रसारित किया गया।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोता, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसमंजरी। कार्यक्रम का पहला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं तमाशा फिल्म से, मिका सिंह की आवाज में। बोल है इरशाद कामिल के और संगीत ए आर रहमान का।

एक विवाह ऐसा भी, इस फिल्म का गाना सुनिए शान और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में। गीत और संगीत रविंद्र जैन के हैं।

ये गाना हम आपको सुनवा रहे हैं मोनाली ठाकुर की आवाज़ में। फिल्म का नाम है दम लगा के हईसा। बोल हैं वरुण ग्रोवर करके और धुन बनाई है अनु मलिक ने।

द डर्टी पिक्चर, इस फिल्म का गाना सुनिए सुनिधि चौहान की आवाज में। बोल है रजत अरोड़ा के और धुन बनाई है विशाल शेखर ने।

ये गाना हम आपको सुनवा रहे हैं उदित नारायण और श्रेय घोषाल की आवाज़ों में। गीत और संगीत रविंद्र जी।

0: we will appreciate how science brings us together rather than tear us apart, because ultimately peace and development aren't just about economics or politics. They are about creating a society where everyone has the opportunity to learn, grow, and contribute. And science is the most powerful tool we have to build that society. Keep questioning, keep learning, and keep building a better Bihar, a better India, a better world. Jai Hind, Jai Vigyan.
1: Need to use science for peace and development. इस विषय पर अंग्रेजी वार्ता भी आप सुन रहे थे. वार्ताकार थी रश्मि प्रिया. हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं. श्रोता, अब पेश है कार्यक्रम सुगम संगीत. इस कार्यक्रम के तहत सुनिए सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में कुछ भजन. सबसे पहले सुनिए सूरदास की रचना, हे गोविंद हे गोपाल, राखो शरण अब तू जीवन हारी.

अब आइए सुनते हैं। संसार के करतार का आकार न होता तो उसका ये संसार भी साकार न होता।

0: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं शमिताव फिल्म से, अमिताभ बच्चन की आवाज़ में।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में कुछ भजन। इसके साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत अब यहीं समाप्त होता है।

0: आनंद बख्शी का लिखा गाना अभी आप सुन रहे थे रेशमा की आवाज़ में। धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, फिल्म का नाम था हीरो। कार्यक्रम का अगला गाना हम आपको सुनवाएंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर। हमारे वेबसाइट

0: kashwani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: आकाशवाणी पटना से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का अगला गाना रेशमा की आवाज में, फिल्म का नाम है हीर रांझा।

0: से सर को हुस्न वालों पास आ बैठो।
1: हमारा हुस्न

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव के 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम में प्रस्तुत है भोजपुरी लोकगीत। कलाकार हैं शैलेंद्र कुमार सिंह और सुभाष कुमार। पहले सुनिए शैलेंद्र कुमार सिंह से लोक भजन।

0: बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे भोजपुरी लोकगीत। कलाकार थे शैलेंद्र कुमार सिंह और सुभाष कुमार। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव के 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्स पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरों का सफर।
1: सुरों का सफर।

संगीतकार रविंद्र जैन के फिल्मी सफर के कुछ अनछुए पहलुओं को लेकर हम आज फिर उपस्थित हैं सुरों के सफर में।

रविंद्र जैन ने कई सामाजिक और धार्मिक फिल्मों में भी संगीत दिया, जिनमें श्याम तेरे कितने नाम, 16 शुक्रवार, गंगा सागर, राधा और सीता, गोपाल कृष्ण, नैया के गीत भी शामिल हैं।

0: साहित्य प्रेम के कारण गीत संगीत दोनों ही में अलंकरण से अधिक भावनात्मकता की ओर रविंद्र जैन का झुकाव रहा।
1: रविंद्र जैन उन संगीतकारों में रहे हैं जिन्होंने कविता, शायरी और गीत की समझ को समेटते हुए लीक से हटकर कुछ अलग और कर्णप्रिय काम

0: रविंद्र जैन के अधिकांश गीतों में हमें एक प्रेमासक्त पुकार का एहसास होता है, ग्रामीण परिवेश की खुली उन्मुक्त पुकार जो हमारे हृदय में
1: अंदर तक गूंजती है।

उनके संगीत की मधुरता और कोमलता का ही प्रभाव था कि 70 के दशक में उन्होंने सिर्फ राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि दूसरे बड़े बैनर में भी मधुर संगीत दिया। कुछ फिल्में भले ही खास सफलता न अर्जित कर पाई हो पर रविंद्र जैन की सफल फिल्में इतनी जबरदस्त रूप से अपने संगीत को लेकर चर्चित होती थीं कि असफल फिल्मों का प्रभाव दब सा जाता था। बासु चटर्जी निर्देशित चित्चोर के लिए रविंद्र जैन को वर्ष का सुर सिंगार संसद पुरस्कार मिला। पति पत्नी और वो, इंसाफ का तराजू, दासी और राम तेरी गंगा मैली जैसी फिल्मों ने उनकी लोकप्रियता एवं प्रतिष्ठा बनाए रखी।

कह दो कि आ रहे हैं साहब, नहा रहे हैं।

रविंद्र जैन ने बंगाल में अपना काफी समय व्यतीत किया और यही कारण है कि बंगाल के लोक संगीत और रविंद्र संगीत की छाया भी इनकी कई रचनाओं में मिलती है। कई गीतों में बंगाल के संगीत की मिठास का असर स्पष्ट रहा है।

लोकप्रियता के मापदंड से तो रविंद्र जैन की संगीतबद्ध फकीरा के गीत भी सर चढ़कर बोले थे। रविंद्र जैन की विशिष्ट पुकार को लेकर इस बार भैरवी में फकीरा चल चला चल के साथ जमाना ही चल निकला था। हर अंतरे को कुछ परिवर्तन के साथ दो बार गवाना रविंद्र जैन का उल्लेखनीय प्रयोग था।

0: गुणी संगीतकार के रूप में उनकी प्रतिष्ठा इतनी स्थापित हो चुकी थी कि 90 दशक के फिल्मी धूम धड़ाके के बीच भी उन्होंने अपनी एक जगह बनाए रखी।
1: हमारे

रविंद्र जैन की संगीत पर पकड़ का ही परिणाम था कि लक्ष्मी प्यारे से विमुख हुए राज कपूर ने अपनी फिल्म राम तेरी गंगा मैली के लिए बतौर संगीतकार रविंद्र जैन को चुना। यह एक बहुत बड़ा सम्मान था क्योंकि राज कपूर स्वयं ही संगीत के बड़े जानकार और पारखी थे और संगीत उनकी फिल्मों में एक प्रमुख तत्व के रूप में आता रहा था। राम तेरी गंगा मैली फिल्म के संगीत के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार भी उन्हें मिला।

वर्ष 2015 में इन्हें पद्मश्री प्राप्त हुआ था और सन 2015 में ही 71 साल की उम्र में रविंद्र जैन का निधन हो गया। आज बेशक रविंद्र जैन नहीं है मगर उनकी कृति शेष है और वह शाहकार धुन भी जिसे आज भी लोग याद करते हैं और गुनगुनाते हैं।

वर्ष 2015 में इन्हें पद्मश्री प्राप्त हुआ था और सन 2015 में ही 71 साल की उम्र में रविंद्र जैन का निधन हो गया। आज बेशक रविंद्र जैन नहीं है मगर उनकी कृति शेष है और वह शाहकार धुन भी जिसे आज भी लोग याद करते हैं और गुनगुनाते हैं।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुरों का सफर। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनक लता। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। सबसे पहले सबसे बड़े राज्य पश्चिम बंगाल में पिछले 15 साल से सत्तासीन सुश्री ममता बनर्जी की तृणमूल सरकार का जाना रुझानों में तय नजर आ रहा है। विधानसभा की

0: रहे हैं, लेकिन उनके पुत्र उदयनिधि स्टालिन चेपक तिरुवल्लिकेणी सीट पर आगे हो गए हैं। अभिनेता और टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय पेरम्बूर और तिरुचिरापल्ली पूर्व दोनों सीटों पर आगे चल रहे हैं। केरल में धर्मादम सीट से मुख्यमंत्री और सीपीएम उम्मीदवार पिनराई विजयन ने बढ़त बना ली है। निमोम सीट से भाजपा उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर आगे चल रहे हैं। पुदुचेरी में विधानसभा की 30 सीटों में से 3 के परिणाम मिल गए हैं। एक सीट AINRC, एक सीट भाजपा और एक सीट DMK ने जीती है। AINRC 8 सीट, भाजपा 1, कांग्रेस गठबंधन 1, ऑल इंडिया अन्ना DMK 1 और अन्य 3 सीटों पर आगे हैं। असम में विधानसभा की सभी 126 सीटों के रुझान मिल रहे हैं। भाजपा का राज्य में लगातार तीसरी बार सरकार बनाना तय है। सत्तारूढ़ भाजपा गठबंधन ने निर्णायक बढ़त बना ली है, जो 98 सीटों पर आगे है। कांग्रेस गठबंधन 26 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। अन्य उम्मीदवार 2 सीट पर आगे चल रहे हैं। असम से अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता राकेश डोले से। राकेश, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने NDA के लिए 100 से करीब सीटें जीतने का भरोसा व्यक्त किया था पहले ही, जो सही साबित हो रहा है, क्या कहना है आपका?
1: जी, आप सही बोल रहे हैं कि NDA जो है लगभग 100 की सीटें जो है ना वहाँ पर आगे चल रही है यहाँ पर। और मेजर सीट की बात करें जहाँ पे कॉन्टेस्ट होना, जो कांग्रेस की जो मेन कैंडिडेट थे जैसे गौरव गोगोई जोरहाट से, वो कुछ ट्रेलिंग है, वो कुछ पीछे चल रहे हैं 16,000 वोटों से,
0: जबकि उन्होंने कहा था कि वो 10 साल बाद सत्ता में वापसी करेगी कांग्रेस।
1: हाँ, लेकिन वो खुद यहाँ पे आफ्टर 10 राउंड के बाद, जो 14 राउंड होंगे, 10 राउंड के बाद वो खुद 16,000 वोट से पीछे है। जो हितेंद्र नाथ वहाँ के जो बीजेपी के सिटिंग MLA है, उनका घर माना जाता है, वहाँ पे गया गौरव गोगोई, वहाँ से लड़े, एंड ही वाज एक्सपेक्टिंग कि बातें भी चल रही थी गौरव गोगोई विल विन द सीट, बट द थिंग इज यहाँ पे थोड़े अलग ही जा रहे हैं।
0: राकेश जी, ये बताइए,
1: अखिल गोगोई की भी बात करें, अखिल गोगोई जो है, अखिल गोगोई जो एक लीडर जो है ऑपोजिशन के मेन वन ऑफ द लीडर, जो अखिल गोगोई वो मार्जिनली भी आगे हैं, जो बट इट इज इन द फिफ्थ राउंड में है। यहाँ पे 20 राउंड होंगे शिवसागर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वो मार्जिनली आगे हैं 900 वोट्स में, और वहाँ आगे जाना बाकी है। और जो बहुत डिस्कशन का जो था एक टॉपिक, दिसपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी जहाँ प्रद्युत बोर्दोलोई जो कांग्रेस के नेता थे, जस्ट इलेक्शन से पहले उन्होंने दिसपुर ज्वाइन, बीजेपी ज्वाइन किया, बीजेपी ज्वाइन करने में उनको टिकट दिए गए, बातें चल रही थी कि लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बात यहाँ पर देखा जाए तो ओवर 35,000 से भी ज्यादा वोटों से आगे हैं। मेरा बहुत
0: धन्यवाद राकेश
1: जी।
0: चुनावों के शुरुआती रुझानों पर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि भाजपा पश्चिम बंगाल में पहली बार सरकार बनाने जा रही है। इस बीच भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी महासचिव डॉक्टर गिरीश ने दावा किया है कि केरलम में उनकी पार्टी के पक्ष में परिणाम आएगा। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि ये केवल शुरुआती रुझान है और पूरी तस्वीर साफ होने पर ही कुछ कहना उचित होगा। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों में 2 के परिणाम मिल गए हैं। ये 7 सीटें गुजरात में उमरेठ, कर्नाटक में बागलकोट और दावणगेरे दक्षिण, महाराष्ट्र में राहुरी और बारामती, नागालैंड में कोरिडांग और त्रिपुरा में धर्मनगर हैं। इनमें से भाजपा ने 2 सीटें जीत ली हैं और 2 पर बढ़त बनाए हुए है। धर्मनगर सीट से भाजपा उम्मीदवार जहर चक्रवर्ती विजयी रहे। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज 0.5% की बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 394 अंक बढ़कर 77,308 पर, जबकि निफ्टी 121 अंक की वृद्धि के साथ 24,118 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। कानून की बातें कार्यक्रम में प्रस्तुत है वार्ता, पर्यावरण संरक्षण हेतु कानून। वार्ताकार हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार गुप्ता।
3: भारत में पर्यावरण संरक्षण का इतिहास काफी पुराना है। हड़प्पा संस्कृति पर्यावरण से उत्प्रोत थी, तो वैदिक संस्कृति भी पर्यावरण संरक्षण हेतु पर्याय बनी रही। प्राचीन भारत के विद्वत पुरुषों ने प्रकृति ही नहीं बल्कि प्राकृतिक शक्तियों को भी देवतुल्य माना है। मध्यकालीन एवं मुगलकालीन भारतीय इतिहास भी प्रकृति प्रेम का उदाहरण बनी रही। भारत में अपने आर्थिक लाभ के कारण अंग्रेजों ने पर्यावरण

को नष्ट करना प्रारंभ किया। अंग्रेजों की विनाशकारी दोहन नीति के कारण पर्यावरण असंतुलित होने लगी। स्वतंत्र भारत के लोगों में भी पश्चिमी प्रभाव, औद्योगिकरण तथा जनसंख्या वृद्धि के कारण विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों को जन्म दिया। 1950 में जब भारतीय संविधान लागू किया गया तो उसमें भी सीधे तौर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए कोई प्रावधान नहीं था। 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन ने भारत सरकार का पर्यावरण संरक्षण की ओर ध्यान खींचा। 1976 में भारत सरकार ने संविधान में संशोधन कर दो अनुच्छेद 48A तथा 51AG जोड़े। 48A राज्य सरकार को निर्देश देता है कि वह पर्यावरण की सुरक्षा एवं उसमें सुधार सुनिश्चित करे तथा देश के वन एवं वन्य प्राणियों की रक्षा करे। अनुच्छेद 51AG देश के नागरिकों को कर्तव्य प्रदान करता है कि वे प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें तथा उसका संवर्धन करें तथा सभी जीवधारियों के प्रति दयालु रहे। आज़ादी के बाद बढ़ते औद्योगिक संरक्षण अधिनियम 1986 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1972 इत्यादि पर्यावरण से संबंधित कानून उस समय बनाया जब देश में पर्यावरण प्रदूषण इतना व्यापक नहीं था, जिसके कारण अधिकांश कानून अपनी उपयोगिता खो बैठी। किंतु संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन जो 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में संपन्न हुआ था, उसी से प्रभावित होकर भारत सरकार ने पर्यावरण के संरक्षण के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया। यह एक विशाल अधिनियम है जो पर्यावरण के सभी विषयों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य वातावरण में रासायनिक पदार्थों की अधिकता को नियंत्रित करना तथा सभी जैविक प्राणियों को प्रदूषण मुक्त रखने का प्रयास किया गया है। इस अधिनियम में 26 धाराएं हैं जिसे 4 खंडों में विभाजित किया गया है। यह कानून संपूर्ण भारत में 19 नवंबर 1986 से लागू किया गया है तथा यह एक व्यापक कानून है जो केंद्र सरकार को महत्वपूर्ण शक्तियां सौंपती है। इसके द्वारा केंद्र सरकार के पास ऐसी शक्तियां आ गई है जिसके द्वारा वह पर्यावरण की गुणवत्ता के संरक्षण व सुधार हेतु उचित कदम उठा सकती है। इस कानून की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि पहली बार व्यक्तिगत रूप से भारतीय नागरिकों को अधिकार दिया गया है कि अगर कोई औद्योगिक इकाई इस कानून का पालन नहीं करती है तो आप उसके विरुद्ध सक्षम न्यायालय में मुकदमा दायर करा सकते हैं। भारत में जैव विविधता के स्तर पर भारत का स्थान 12वें नंबर पर आता है। अकेले भारत में लगभग 45,000 पेड़ पौधे तथा 81,000 जानवरों की प्रजाति पाई जाती है, जो विश्व की लगभग 7.1% वनस्पतियों तथा 6.5% जानवरों की प्रजातियों में से है। जैव विविधता के संरक्षण हेतु 2002 में जैव विविधता संरक्षण अधिनियम बनाया गया, जिसका उद्देश्य जैविक विविधता की रक्षा की व्यवस्था करना है। इस अधिनियम में राष्ट्रीय स्तर पर भी उन परियोजनाओं का पर्यावरण प्रभाव जांचना है जिससे जैव विविधता को हानि पहुंचने की आशंका हो। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने दिसंबर 2004 को राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2004 का ड्राफ्ट जारी किया। इसकी प्रस्तावना में कहा गया है कि पर्यावरण की समस्याओं को देखते हुए एक व्यापक पर्यावरण नीति की जरूरत है। साथ ही यह भी कहा गया कि वर्तमान पर्यावरणीय नियमों तथा कानूनों को वर्तमान पर्यावरण समस्याओं के संदर्भ में संशोधन की आवश्यकता है। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति का मुख्य उद्देश्य संसाधनों का न्यायोचित उपयोग सुनिश्चित करना है ताकि वे वर्तमान के साथ साथ भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की भी पूर्ति कर सके। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में न्यायपालिका द्वारा महत्वपूर्ण पहल किया गया है। जीवन का अधिकार, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद
किस में

की सकारात्मक व्याख्या करके न्यायपालिका ने इस अधिकार में ही स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को निहित घोषित किया है। पर्यावरण के संरक्षण के प्रति न्यायपालिका की वचनबद्धता के कारण ही जनहित मुकदमों का विकास हुआ। भारतीय न्यायपालिका ने 1980 से ही पर्यावरण हितैषी दृष्टिकोण अपनाया है। न्यायपालिका ने विभिन्न मुकदमों में अपना निर्णय सुनाते हुए यह स्पष्ट किया है कि गुणवत्तापूर्ण जीवन की यह मूल आवश्यकता है कि मानव स्वच्छ पर्यावरण में जीवन व्यतीत करे। पर्यावरण के अधिकार को न्यायिक मान्यता देहरादून चुने खान के मामले में 1987 में दी गई तथा 1987 में ही श्री राम गैस रिसाव के मामले में इस बात पर पुनः बल मिला। न्यायपालिका ने ऐसे मामलों की सुनवाई भी की जिससे पर्यावरण के लक्ष्यों तथा विकास की आवश्यकताओं में तालमेल बिठाया जा सके। अधिकांश मामलों में न्यायपालिका का यह विचार रहा है कि पर्यावरण की कीमत पर विकास को तवज्जो नहीं दिया जा सकता है, भले ही इस प्रक्रिया में कुछ नौकरियां या राजस्व की हानि हो जाए। देहरादून की चूना खान मामले का संबंध दून की घाटी में चूने के खानों द्वारा पर्यावरण को हो रहे गंभीर खतरे से था। सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि जो खतरनाक स्थिति में चूने की खाने हैं उसे बंद कर दिया जाए, चाहे इससे खान मालिकों या मजदूरों को आर्थिक हानि ही क्यों न हो। ऐसा करना नागरिकों के स्वस्थ पर्यावरण में रहने के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक था, चाहे इसके लिए कोई भी मूल्य क्यों ना चुकाना पड़े। श्रीराम गैस रिसाव मामला 1987 में न्यायालय ने आदेश दिया था कि उस जोखिम भरे कारखानों को तुरंत बंद कर दिया जाए जिसमें गैस रिसाव के कारण एक मजदूर की मौत हो गई तथा अन्य लोगों का जीवन संकट में है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य के पास अधिकार है कि जोखिम भरी औद्योगिक इकाइयों की गतिविधियों पर रोक लगा सके ताकि जनसाधारण को स्वच्छ पर्यावरण में रहने का अधिकार सुनिश्चित किया जा सके। इस मामले में न्यायालय ने पूर्ण दायित्व के सिद्धांत का विकास किया ताकि संविधान के अनुच्छेद 21 की व्याख्या के अनुसार मुआवजा दिया जा सके। इसके अलावा न्यायालय ने यह भी कहा कि जीवन के अधिकार में प्रदूषण के जोखिम से पीड़ित व्यक्तियों को मुआवजा मांगने का अधिकार निहित है। गंगा प्रदूषण मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक चमड़े के कारखानों को जो गंगा के तट पर प्रदूषण फैला रहे थे आदेश दिया कि वे या तो प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र स्थापित करें या अपने कारखाने बंद कर दें। पर्यावरण जागरूकता मामला 1992 में सर्वोच्च न्यायालय ने देश में पर्यावरण शिक्षा और जागरूकता का प्रसार करने के निर्देश दिए हैं। इन उपायों में विद्यालय में कक्षा प्रथम से 12वीं तक पर्यावरण को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है तथा सिनेमाघरों में पर्यावरण विषय संदर्भों का प्रचार प्रसार तथा दूरदर्शन एवं रेडियो पर पर्यावरण कार्यक्रमों के प्रसारण शामिल हैं। ताजमहल मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि ताजमहल के आसपास 10,400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में किसी कोयला आधारित उद्योग की अनुमति नहीं होगी। प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों से कहा गया है कि वे या तो स्वच्छ ईंधन का प्रयोग करें या फिर सुरक्षित क्षेत्र से बाहर अपने कारखाने हस्तांतरित करें। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है कि ताजमहल के आसपास हरित पट्टी की व्यवस्था करें और बिना रुकावट के बिजली की आपूर्ति की जाए ताकि डीजल से चलाए जाने वाले जनरेटरों की आवश्यकता न पड़े। 1980 तथा 1990 के दशकों में भारत में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जन याचिकाओं का अधिक प्रयोग हुआ। इस दिशा में पर्यावरण समर्थक अधिवक्ताओं तथा न्यायाधीशों का विशेष योगदान रहा। पर्यावरण सुरक्षित रखने के कार्य में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के संविधान के अनुच्छेद 32 तथा 326 को

0: आधार बनाकर महत्वपूर्ण उपाय किए। विश्व स्तर पर भारत उन थोड़े से देशों में एक है जिसके संविधान में पर्यावरण का विशेष उल्लेख है। भारत ने पर्यावरणीय कानून का व्यापक निर्माण किया है तथा हमारी नीतियां पर्यावरण संरक्षण में भारत की पहल को दर्शाती है। पर्यावरण संबंधी सभी विधेयक होने पर भी भारत में पर्यावरण की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। पर्यावरण संबंधी कानून जिस प्रकार से देश में लागू किया जा रहा है उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि इन कानूनों के महत्व को ठीक ढंग से समझा नहीं गया है। कानून बनाना सरकार का दायित्व है जिसे जनभागिता द्वारा ही अमल में लाया जा सकता है। हमें स्वयं इसके प्रति जागरूक होकर अन्य लोगों को भी जागरूक करना होगा ताकि पर्यावरण बचा रह सके।
1: कानून की बातें कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे वार्ता पर्यावरण संरक्षण हेतु कानून।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। लीजिए सुनिए देशकान।

कौन है अपना प्यार सभी का अपने दिल में हो। हर एक रंग के फूल है खिलते, हर मजहब के लोग हैं मिलते, इस बगिया में इस महफिल में हो। हे हम सारे हैं भारतवासी, सब है भाई।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव के 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए हेमलता और जसपाल सिंह को। फिल्म का नाम है आँखियों के झरोखों से।

लीजिए सुनिए अलका याग्निक को फिल्म जुबेदा में। गीतकार हैं जावेद अख्तर, संगीतकार ए आर रहमान।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुद्दुचेरी में हुई विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। ताजा रुझानों के अनुसार पश्चिम बंगाल और असम में भाजपा की सरकार बनती दिख रही है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 194 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि तृणमूल कांग्रेस 92 सीटों पर आगे है। असम में भाजपा 79 जबकि कांग्रेस 25 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। इधर तमिलनाडु में अभिनेता विजय के नेतृत्व वाली पार्टी टीवीके ने डीएमके और एआईएटीएम गठबंधनों को पीछे छोड़ दिया है। ताजा रुझानों में टीवीके को 110 सीटों पर बढ़त प्राप्त है। केरलम में कांग्रेस नेतृत्व वाला यूडीएफ आगे चल रहा है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश पुद्दुचेरी में एनडीए आगे है। इधर 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों की मतगणना जारी है। बिहार विधान परिषद के विधानसभा कोटे की एक रिक्त सीट के लिए हो रहे उपचुनाव के लिए नाम वापसी का आज अंतिम दिन है। इस सीट पर एकमात्र प्रत्याशी भाजपा के सूर्य कुमार शर्मा उर्फ अरविंद शर्मा ने नामांकन किया है। इस आधार पर उनका निर्विरोध निर्वाचन तय माना जा रहा है। आज निर्वाचन की औपचारिक घोषणा की जाएगी। गौरतलब है कि पूर्व मंत्री मंगल पांडे के सिवान से विधायक चुने जाने के बाद यह सीट रिक्त हुई थी। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहा है कि भागलपुर के विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्से को 3 महीने के भीतर ठीक कर लिया जाएगा। आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि घटना की जांच के लिए आईआईटी पटना की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। श्री सिंह ने बताया कि इस मामले में संबंधित कार्यपालक अभियंता को निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि आवागमन को सुचारू रखने के लिए वाहनों को मुंगेर के श्री कृष्ण सिंह सेतु पर

0: सजावट किया गया है। साथ ही छोटे वाहनों के लिए नाव और स्टीमर की व्यवस्था की गई है। निगम के अध्यक्ष ने बताया कि इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बात की गई है और आवश्यकता पड़ने पर सेना की मदद ली जाएगी। गौरतलब है कि कल रात भागलपुर और नवगछिया को जोड़ने वाले विक्रमशिला सेतु के 4 और 5 नंबर पिलर के बीच का स्लैब क्षतिग्रस्त होकर गिर गया था। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश में बारिश की परिस्थितियां बनी हुई हैं। आज गोपालगंज, सिवान, औरंगाबाद, कैमूर, रोहतास, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जिले में कई स्थानों पर तेज हवा के साथ हल्की से मध्यम बारिश हुई है। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि आज राज्य के अधिकतर स्थानों पर बारिश हो सकती है। वहीं पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, सुपौल और पश्चिम चंपारण जिलों में कुछ स्थानों पर धूल भरी आंधी के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। साथ ही राज्य के दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्वी और उत्तर मध्य भागों में भी कई स्थानों पर भारी बारिश का पूर्वानुमान है। रोहतास जिले के दिनारा थाना क्षेत्र के बेलवैया मठिया गांव के पास आज सुबह सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 7 अन्य घायल हो गए। हमारे संवाददाता ने बताया कि तिलक समारोह से लौटी बस से उतर रहे लोगों के तेज रफ्तार डाक पार्सल वाहन की चपेट में आने से ये हादसा हुआ। घायलों का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। इनमें से एक की हालत गंभीर बताई जाती है। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाव कल बोधगया आएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि वे महाबोधि मंदिर और वियतनाम मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। राष्ट्रपति लाव के आगमन को लेकर बोधगया और गयाजी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के तत्वावधान में आज से ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप की शुरुआत हुई। यह ई स्पोर्ट्स का तीसरा संस्करण है जिसमें chess.com, ई फुटबॉल, EAFC 26, BGMI और स्ट्रीट फाइटर 6 जैसे गेम शामिल हैं। सभी खिलाड़ी ऑनलाइन गेम में भाग ले रहे हैं। वहीं 16 मई को पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में ग्रैंड फिनाले आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
2: ये आकाशवाणी पटना है। अब आप शर्फुल हुदा से इलाकाई खबरें सुनिए। मगरबी बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, आसाम और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम रियासत पदुचेरी में हुए असम्बली इंतखाबात की गिनती जारी है। ताज़ा रुझानात के मुताबिक मगरबी बंगाल और आसाम में बीजेपी की हुकूमत बनती नज़र आ रही है। मगरबी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 194 सीटों पर आगे चल रही है जबकि तृणमूल कांग्रेस 92 सीटों पर आगे चल रही है। आसाम में भाजपा 79 जबकि कांग्रेस 25 सीटों पर सबकत बनाए हुए है। इधर तमिलनाडु में अदाकार विजय की क्यादत वाली पार्टी TVK ने DMK और AIADM इत्तेहाद को पीछे छोड़ दिया है। ताज़ा रुझानों में TVK को 110 सीटों पर सबकत हासिल है। केरलम में कांग्रेस की क्यादत वाला UDF आगे चल रहा है जबकि पदुचेरी में NDA आगे है। इधर 5 रियासतों की 7 असेंबली सीटों पर हुए ज़िमनी इंतखाबात की गिनती भी जारी है। बिहार कानूनसाज काउंसिल के असेंबली कोटे की एक सीट के लिए हो रहे ज़िमनी इंतखाबात के लिए नाम वापस लेने का आज आखिरी दिन है। इस सीट पर महज एक उम्मीदवार बीजेपी के सूर्य कुमार शर्मा उर्फ

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने कांस्टेबल टेक्निकल ट्रेड्समैन के कुल 9,175 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु पद के अनुसार 23 से 27 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 मई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.crpf.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।

कर्मचारी चयन आयोग विभिन्न विभागों में जूनियर ट्रांसलेटर तथा सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से अनिवार्य विषय के रूप में अंग्रेजी या हिंदी के साथ हिंदी या अंग्रेजी में मास्टर डिग्री या अंग्रेजी माध्यम के साथ किसी भी विषय में मास्टर डिग्री और डिग्री में अनिवार्य विषय के रूप में हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी या अंग्रेजी से हिंदी ट्रांसलेशन में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा कोर्स या 2 एवं 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 मई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.ssc.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। कर्मचारी चयन आयोग ग्रेड सी और डी के लिए स्टोनोग्राफर के कुल 731 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। अभी आप सुन रहे थे रोजगार सूचना। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार अंक।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनक लता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भारी जीत की ओर अग्रसर। 293 सीटों में से 193 सीटों पर आगे। तृणमूल कांग्रेस की 93 सीटों पर बढ़त। असम में भाजपा तीसरी बार सत्ता में आने को तैयार। तमिलनाडु में अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी टीवीके की अपने पहले ही चुनाव में जबरदस्त सफलता। सत्तारूढ़ डीएमके तीसरे स्थान पर। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन पीछे चल रहे हैं। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ स्पष्ट बहुमत की ओर। पुदुचेरी में एनडीए की सत्ता में फिर वापसी। विधानसभा उपचुनावों में भाजपा ने त्रिपुरा, नागालैंड और गुजरात में एक एक सीट जीती। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना के रुझानों से भविष्य की राजनीति की दिशा तय होने के संकेत मिल रहे हैं। पश्चिम बंगाल और केरलम में सत्ता परिवर्तन तय नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल में भाजपा को ऐतिहासिक जीत मिलने जा रही है और वो पहली बार इस पूर्वी राज्य में सरकार बनाएगी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की 293 सीटों में से 292 के रुझान मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने काफी बढ़त बना ली है और वो 193 सीटों पर आगे है। तृणमूल कांग्रेस गठबंधन 93, AJUP 2, AISF 2, कांग्रेस 1 और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 1 सीट पर आगे है। राज्य की फलता सीट पर दोबारा चुनाव कराने का फैसला किया गया है। यहां 21 मई को मतदान होगा। पश्चिम बंगाल से अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता कल्याण लाहा से। कल्याण, भाजपा पश्चिम बंगाल में जीत की ओर अग्रसर है। पश्चिम बंगाल की टीएमसी से मुक्ति का नारा अब वास्तविकता में बदलता दिख रहा है। टीएमसी के पिछड़ने के क्या प्रमुख कारण हो सकते हैं?
1: देखिए, हम अभी जो दिख रहे हैं ग्राउंड में, बीजेपी बहुत सारे सीट में अभी आगे है। और जो आप बोल रहे हैं क्या क्या कारण हो सकता है, देखिए लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बहुत बड़ा सिचुएशन है इधर, और आर्टिकल जो इंसिडेंट है हुआ है

0: के बाद उसके सेम टाइप का बहुत सारे इंसिडेंट है, लैक ऑफ जॉब है, और आपका जो डिससेटिस्फेक्शन है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उस उनके अंदर जो डिससेटिस्फेक्शन है, और आपको जैसे मैं पहले बोल रहा था जॉब गवर्नमेंट सेक्टर में कोई भी जॉब ऐसा नहीं है, रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है, और आपका जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है जो उसका जिक्र मैं पहले किया था, वो जो आम जनता है उनका गवर्नमेंट के ऊपर जो विश्वास था, जो फेथ है, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। इसका जो रिजल्ट आपको अभी ग्राउंड में दिख रहा है, बीजेपी बहुत सारे सीट में अभी लीडिंग है और एक थम्पिंग मेजोरिटी के साथ सामने आएगा।
1: जानकारी के लिए धन्यवाद कल्याण। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ गठबंधन सत्तारूढ़ एलडीएफ से बहुत आगे निकल गया है। वहां विधानसभा की सभी 140 सीटों में से 9 के परिणाम मिल गए हैं। 6 सीटें कांग्रेस, 2 मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और 1 सीट आईयूएमएल ने जीती हैं। पुतुपल्ली सीट कांग्रेस के चांडी ओमन, हरिपल सीट रमेश चन्नीतला, नीलांबुर सीट आर्यदन शौकर, त्रिशूर सीट राजन जेपल्लन और कोल्लम सीट बिंदु कृष्णा ने जीती। अलतूर से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के टीएम शशि विजयी रहे। रुझान इस प्रकार है, कांग्रेस 54, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 26, आईयूएमएल 22 और सीपीआई 9 पर आगे। पुदुचेरी में परिणाम और रुझानों में एआईएनआरसी की सत्ता बरकरार रहने के साफ संकेत हैं। भाजपा प्रवक्ता तुहिन सिन्हा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि विधानसभा चुनावों के शुरुआती रुझान भाजपा के पक्ष में हैं और पार्टी असम तथा पश्चिम बंगाल में भारी बहुमत से जीत हासिल करने जा रही है। श्री सिन्हा ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता ने तृणमूल कांग्रेस की राजनीति को नकार दिया है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के रुझान भाजपा के पक्ष में उभर रहे हैं।
2: पश्चिम बंगाल में जो रुझान दिख रहे हैं वो दर्शा रहे हैं कि बंग भूमि में राष्ट्रवाद की तरंग उठी है और रुझान दिखा रहे हैं कि वो निरंतर एक ज्वार में परिवर्तित हो रही है, और जब वो परिणाम में परिवर्तित होंगे तो वो सुनामी के रूप में दिखाई पड़ेगी। 12 वर्षों के सतत प्रयत्न और हमारे केंद्रीय नेतृत्व की दूरदृष्टि के साथ, कार्यकर्ताओं के संघर्ष बलिदान के साथ हम इस मुकाम तक पहुंचते हैं। असम में 2011 के चुनाव में हमारी 3-4 सीटें, आज लगातार तीसरी बार सरकार है, ये अपने आप में दिखाता है कि पूर्वोत्तर में कितना बड़ा बदलाव आया है।
1: भाजपा नेता जीवीएल नरसिम्हा राव ने विधानसभा चुनावों के रुझानों में ऐतिहासिक जनादेश देने के लिए असम और पश्चिम बंगाल की जनता द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और उनके विकास मॉडल को वोट देना बताया है। भाजपा नेता रवि त्रिपाठी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल की जनता ने भाजपा को स्पष्ट जनादेश दिया है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि भाजपा पश्चिम बंगाल में पहली बार सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि ये केवल शुरुआती रुझान है और पूरी तस्वीर साफ होने पर ही कुछ कहना उचित होगा। असम में भाजपा तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। असम में विधानसभा की 126 सीटों में से 2 के परिणाम मिले हैं। बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के चरण बोरो ने मजबूत सीट जीती है। धेमाजी सीट से सत्तारूढ़ भाजपा के डॉ रनुर पेगू विजयी रहे हैं। भाजपा 78, कांग्रेस 24, बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट 9, असम गण परिषद 8, एआईयूडीएफ 2 और अन्य 3 सीट पर आगे हैं। असम से अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता राकेश डोले से। राकेश, असम में एनडीए अपने उम्मीदों के अनुरूप लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। असम सोनमलेता मोर्चा पिछड़ गया है, खुद गौरव गोगोई हार गए हैं। श्री गोगोई की हार के पीछे क्या उनके परिवार पर लगे आरोप भी एक कारण है?
3: जो परिवार आप जो बोल रहे हैं, परिवार पर लगे आरोप कारण है, ये एग्जैक्टली बता पाना मुश्किल है। बट द थिंग इज दैट जो वेलफेयर स्कीम्स और जिस तरह की चीजें एनडीए गवर्नमेंट ला रही थी यहाँ पर, दिस कैन बी अ बिग रीजन, ये बहुत बड़ा एक रीजन बन सकता है,
1: खासकर महिलाओं के लिए जो वहाँ चलाए गए थे कार्यक्रम जी, और उनका भी योगदान रहा जीत में
3: जी। आप अरुणोदय की बात कर रहे हैं, वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर एक स्कीम है। अभी बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा है कि वो जो 1250 रुपीस मिल रहे थे मंथली, वो बढ़ा के 3000 कर देंगे। फिर आप हम लोग अब जब देखेंगे लास्ट इलेक्शन के साथ कंपेयर करेंगे, अपर असम गढ़ था बीजेपी के लिए, वहाँ पे 36 सीट में से उन लोगों ने एनडीए ने जीता था अराउंड 31, वो वहाँ पे वो गढ़ था। पर अभी आप इस तरह के रुझान देख रहे हैं पूरे असम में, बीजेपी जो है लीड लेकर बैठे हुए हैं, दो तो जीत चुके हैं, फिर एक बीपीएफ जो उन्हीं के घटक पार्टी है, जो अलायंस पार्टी है बीटीआर रीजन से, वो भी

0: जीत चुकी है, तो इन टोटल 80 बीजेपी जो है 80 सीट 78 सीट पे लीडिंग है अभी, और कांग्रेस मात्र 23 सीट में।
1: जानकारी के लिए धन्यवाद राकेश। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों में से 3 के परिणाम मिल गए हैं और तीनों ही भाजपा के खाते में गए हैं। गुजरात की उमरेठ सीट भाजपा उम्मीदवार हर्ष दभाई गोविंद भाई परमार ने जीती। कर्नाटक की बागलकोट से कांग्रेस उम्मीदवार उमेश हुलाप्पा मेती और दावंगेरे दक्षिण से कांग्रेस उम्मीदवार समर्थ शमनूर मल्लिकार्जुन आगे हैं। महाराष्ट्र की राहुरी सीट से भाजपा उम्मीदवार अक्षय शिवाजीराव करदिले और बारामती सीट से पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार सुनेत्रा अजित पवार बढ़त बनाए हुए हैं। नागालैंड की कोरिडांग सीट भाजपा उम्मीदवार दाउचीर आई एम चेन ने जीती। त्रिपुरा की धर्मनगर सीट से भाजपा उम्मीदवार जाहर चक्रवर्ती विजयी रहे। नागालैंड में भाजपा उम्मीदवार दाउचीर आई हिमचेन ने 28 कोरिडांग विधानसभा सीट पर हुए चुनाव में 3,123 वोटों से जीत हासिल की। उन्हें 7,317 वोट मिले। उन्होंने निर्दलीय प्रतिद्वंदी तोशिकाबा को हराया, जिन्हें 4,194 वोट मिले। इस सीट के लिए कुल 6 उम्मीदवार मैदान में थे। निर्दलीय उम्मीदवार इमती वापांग को 3,633 वोट मिले, जबकि राष्ट्रीय जन पार्टी के आई अबेन जांग को 3,219 वोट मिले। निर्दलीय उम्मीदवार इमचाटोबा इंचेन को 147 वोट मिले। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार टी चालुकुम्बा आओ को सबसे कम 144 वोट मिले। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। तमिलनाडु में विधानसभा की सभी 234 सीटों के रुझान मिल गए हैं। अभिनेता विजय जोसेफ की पार्टी टीवीके ने सभी को चौंकाते हुए 112 सीटों पर बढ़त बना ली है। एआईएडीएमके 58, डीएमके 47, पीएमके 5, कांग्रेस 4, सीपीआई 2, भाजपा 1 और अन्य 4 सीट पर आगे हैं। चेन्नई से अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी से। सुशील, वर्ष 2024 में बनी अभिनेता विजय की टीवीके पार्टी की अप्रत्याशित जीत ने तमिलनाडु में वर्षों से चले आ रहे डीएमके या एआईडीएमके की सरकार बनाने की परंपरा को तोड़ दिया है। इस जीत के पीछे क्या प्रमुख वजह है?
2: देखिए कनक, जो आप अगर इसकी वजह के उसमें जाएंगे तो पहली चीज तो ये है कि मतदाता ने एक नए सिरे से, खासतौर पर नए मतदाता जो यंग वोटर्स हैं और युवा मतदाता हैं, यंग वोटर्स यानी फर्स्ट टाइम वोटर्स जो पहली बार वोट डाल रहे थे वो लगभग 14 लाख के आसपास थे और 1 करोड़ से ज्यादा युवा मतदाता 30 से कम की उम्र के थे। इनके बीच विजय का एक करिश्मा था, एक जादू था। उसके साथ ही जो सरकार के खिलाफ माहौल था, विजय ने उस माहौल को पूरी तरह से भुनाया और जयललिता के जाने के बाद इस तरीके का एक फिल्म स्टार या उस तरीके के करिश्मे वाले विपक्ष के नेता की कमी महसूस की जा रही थी, उस कमी को भरने में विजय जो है वो कामयाब होते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने लोगों से ये वादा भी किया था, उन्होंने कोई द्रविड़ियन पॉलिटिक्स के जो सिंबल्स थे उनको भी अपने साथ अपने प्रचार में जरूर कैरी किया, लेकिन उसका कहीं पर खुले तौर पर सामने जिक्र नहीं आया। वो किसी विचारधारा से प्रेरित होकर के नहीं आए, वो किसी आंदोलन की उपज नहीं थे, लेकिन सरकार के खिलाफ गुस्सा और नई जनरेशन, यंग जनरेशन, जेंजी जो है और युवा जो है उनकी नई सोच ने तमिलनाडु में ये राजनीतिक परिवर्तन दिखाया है जो द्रविड़ियन राजनीति से अलग दिखता जाता हुआ नजर आ रहा है।
1: धन्यवाद सुशील। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @hindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जमैका में भारतीय समुदाय के साथ चर्चा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि जमैका के प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की। दोनों पक्षों के बीच खासकर बुनियादी ढांचे, मानव विकास और तकनीक आधारित शासन तथा उद्यमिता पर विमर्श हुआ। दोनों नेताओं ने भारत जमैका संबंधों में हाल के घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। डॉ जयशंकर जमैका, सूरीनाम तथा त्रिनिदाद और टोबैगो की यात्रा पर हैं। 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनावों के परिणाम घोषित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। अब बात करते हैं भाजपा मुख्यालय में मौजूद हमारे संवाददाता दीपेंद्र से। दीपेंद्र, इन चुनावों में भाजपा के प्रदर्शन से पार्टी मुख्यालय में खुशी का माहौल होगा, क्या देख रहे हैं आप वहाँ?
3: बिल्कुल कनक, असम और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन को देखते हुए अब पार्टी मुख्यालय में इस वक्त जश्न का माहौल शुरू हो चुका है। पार्टी कार्यकर्ता हाथों में झंडा लिए हुए जीत की खुशी में नारे लगा रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। इसके

0: आतिशबाजी भी हो रही है और ढोल नगाड़े की धुन पर जो है जश्न नाचते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताऊं कि जो बीजेपी के पार्टी के नेता हैं और क्या करता है, इस जीत को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और भाजपा के सुशासन मॉडल पर जनता के भरोसे को बता रहे हैं। और रुझानों के अनुसार बीजेपी पहली बार जो है पश्चिम बंगाल में सरकार बनाती हुई दिख रही है, वहीं लगातार तीसरी बार असम में सरकार बनाएगी। और आपको बता दूं कि शाम में प्रधानमंत्री मोदी पार्टी मुख्यालय पहुंचेंगे और पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। उनके स्वागत के लिए पार्टी मुख्यालय में तैयारियां चल रही हैं। जी,
1: जानकारी के लिए धन्यवाद दीपेंद्र। भारत ने लिपुलेख दर्रे पर नेपाल के दावे को खारिज करते हुए कहा है कि दर्रा वर्ष 1954 से कैलाश मानसरोवर यात्रा का पुराना मार्ग है। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत लगातार कहता रहा है कि ऐसे दावे अनुचित और ऐतिहासिक तथ्यों से परे हैं। नेपाल ने भारत चीन द्वारा आगामी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे का उपयोग करने पर आपत्ति जताई है। नेपाल ने कहा है कि ये क्षेत्र उसके अधिकार में आता है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.2% की बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 159 अंक की बढ़ोतरी के साथ 77,073 पर, जबकि निफ्टी 58 अंक की वृद्धि के साथ 24,056 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। मुंबई में यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और विभिन्न एजेंसियों के सहयोग से देश भर में आज से अखिल भारतीय अग्नि सुरक्षा सप्ताह मना रहा है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य केंद्रों में अग्नि खतरों की रोकथाम और निवारण के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भारी जीत की ओर अग्रसर। 293 सीटों में से 192 सीटों पर आगे, तृणमूल कांग्रेस की 95 सीटों पर बढ़त। असम में भाजपा तीसरी बार सत्ता में आने को तैयार। तमिलनाडु में अभिनेता से नेता बनने विजय की पार्टी टीवीके की अपने पहले ही चुनाव में जबरदस्त सफलता। सत्तारूढ़ डीएमके पार्टी तीसरे स्थान पर, मुख्यमंत्री एमके स्टालिन पीछे चल रहे हैं। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ स्पष्ट बहुमत की ओर। पुदुचेरी में एनडीए की सत्ता में फिर वापसी। विधानसभा उपचुनावों में भाजपा ने त्रिपुरा, नागालैंड और गुजरात में एक एक सीट जीती। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: हो जाए सब दंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सबका हमारे आपके सबके चहेते कार्यक्रम उमंग में। मैं हूँ विमलेश, नमस्कार।
1: और मैं हूँ अजीत, नमस्कार। जी हाँ श्रोताओ, आप सबको हम धन्यवाद देना चाहते हैं उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए, क्योंकि इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर शैक्षिक कार्यक्रम।
2: जी हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं, हमेशा हम आपके लिए लेकर आते हैं ढेर सारी शिक्षाप्रद और मनोरंजक जानकारियाँ।
1: तो आइए सुनते हैं सबसे पहले हमेशा की तरह एक खूबसूरत विचार, जिसे हमें भेजा है कच्छ भुज गुजरात से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने। लिखते हैं,
2: समय पर न समझ आने वाली बातें आगे चलकर जिंदगी का एक सबसे बड़ा सबक बन जाती हैं, क्योंकि इनसे हम या तो सीखते हैं या फिर जीवन भर पछताते हैं।
1: जी हाँ श्रोताओ, सच है बिल्कुल। किसी बात को समय रहते यदि हम समझ लें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत देर हो जाती है और तब अक्सर कुछ भी नहीं किया जा सकता।
2: जी
1: तो आइए समय को हल्के में ना लें, इससे सबक लें। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का।
2: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर।
1: और नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फजील का पंजाब से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदन लाल वर्मा।
2: भट्टीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता और परिवारजन लिखते हैं,
1: नमस्कार। उमंग कार्यक्रम के 30 मार्च से लेकर 3 अप्रैल वाले सप्ताह में आपने भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद और इससे

0: जुड़े सर्वाधिक मशहूर चिकित्सकों और उनके द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथों पर व्यापक जानकारी दी और उनके जीवन से जुड़े दिलचस्प वाकयात को नाट्य प्रस्तुतिकरण के मार्फत हमें सुनाया। सुनकर हम धन्य हो गए। हमें इस बात का बहुत गर्व है कि हम उमंग कार्यक्रम के श्रोता हैं।
1: छत्तीसगढ़ सरगुजा से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिबा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा, कुमारी डब्ल्यू थापा।
0: और केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदीप दास, पद्म लोचन मोहंती, शुभम नायक, अभिराम साहू, अविनाश दास और गीतांजलि दास।
1: ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंदसौलिया और श्रीमती कल्पना चंदसौलिया लिखते हैं।
0: आदरणीय अजीत जी और विमलेश जी, आपने अंतरिक्ष से संबंधित आज बहुत ही उपयोगी जानकारी दी। उमंग कार्यक्रम सुनकर हम देश विदेश की जानकारियां प्राप्त करते हैं, पेड़ पौधे पशु पक्षियों के बारे में भी बहुत बढ़िया जानकारी हासिल करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उमंग टीम को।
1: आप सभी श्रोताओं को भी हमारा धन्यवाद अच्छी और प्रोत्साहन देने वाली प्रतिक्रियाओं के लिए। और अब बारी है प्रश्नों के उत्तरों की। जिन्होंने भाग लिया उनका धन्यवाद और जिन्होंने नहीं लिया उन्हें हम प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि अवश्य भाग लें। तो हमारा पहला प्रश्न था,
0: भारतीय सेना में सबसे ऊंचा पद क्या है और ये पद सबसे पहले किसे दिया गया?
1: जी, इसका उत्तर है, पहले भारतीय सेना में सबसे ऊंचा मानद पद था फील्ड मार्शल। ये सबसे पहले जनरल सैम मानेकशॉ को दिया गया था। उनका पूरा नाम था सैम हॉर्मुजी प्रेमजी जमशेदजी मानेकशॉ। इन दिनों भारत की सशस्त्र सेनाओं के प्रधान को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कहा जाता है। ये पद सबसे पहले जनरल बिपिन रावत को दिया गया था।
0: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा प्रश्न था, भारत के प्रसिद्ध गुरुकुलों में वशिष्ठ गुरुकुल, द्रोणाचार्य गुरुकुल, वाल्मीकि गुरुकुल और कर्ण गुरुकुल माने जाते हैं। इनमें से किन्हीं दो की विशेषता बताइए।
1: जी, हम आज वशिष्ठ और द्रोणाचार्य गुरुकुल की विशेषता आपको बता देते हैं। वशिष्ठ गुरुकुल की सबसे बड़ी विशेषता थी समान भाव। यहाँ राजा और सामान्य परिवार के बच्चे भी एक साथ शिक्षा प्राप्त करते थे, कोई भेदभाव नहीं था। कुछ मायनों में यहाँ समावेशी शिक्षा थी। द्रोणाचार्य गुरुकुल की मुख्य विशेषता थी युद्ध कला की विशेष शिक्षा। धनुर्विद्या में पारंगत अर्जुन ने यहीं से शिक्षा प्राप्त की थी।
0: और अब सुनिए हमारा तीसरा प्रश्न। हमारा तीसरा प्रश्न था, श्रोताओं, जनसंख्या के आधार पर भारत की प्रमुख चार जनजातियों के नाम बताइए।
1: इसका उत्तर है, जनसंख्या के आधार पर भारत की चार प्रमुख जनजातियाँ हैं, गोंड, भील, संथाल और उरांव। इन्हें ओराव भी कहते हैं।
0: और हमारा अगला प्रश्न था, किस चीनी यात्री ने नालंदा विश्वविद्यालय की महानता का विस्तृत वर्णन किया है?
1: इसका उत्तर है, नालंदा विश्वविद्यालय की महानता का वर्णन चीनी यात्री हुइन संग ने अपने संस्मरणों में किया। इनका संस्मरण चीनी भाषा में लिखा गया था। इसका अनुवाद है, द ग्रेट टेंग रिकॉर्ड्स ऑन वेस्टर्न रीजन्स।
0: और हमारा अंतिम प्रश्न था आपसे कि तक्षशिला विश्वविद्यालय के तीन प्रसिद्ध गुरुओं और एक प्रसिद्ध विद्यार्थी का नाम बताइए।
1: प्रसिद्ध गुरुओं या आचार्यों के नाम है कौटिल्य यानी चाणक्य, पाणिनी और वैद्यराज चरक। और सबसे प्रसिद्ध विद्यार्थी का नाम है सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य।
0: तो श्रोताओं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए। और अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, दक्षिण भारत में भी बहुत से प्राचीन गुरुकुल हैं, उनमें से किसी एक प्रसिद्ध गुरुकुल का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: दक्षिण भारत में भी बहुत से प्राचीन गुरुकुल हैं, उनमें से किसी एक प्रसिद्ध गुरुकुल का नाम बताइए।
0: 8800440559 यानी हमारे IVRS नंबर पर और हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर आप अपने संदेश भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो जरूर करें। और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम।
0: तो श्रोताओ, हमारा पहला कार्यक्रम है
1: सींग विदाउट सींग।
0: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में एक सुंदर नाटक के द्वारा समावेशी शिक्षा के बारे में बताया गया है और संदेश दिया गया है कि हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का खास ख्याल रखें।
2: लिटिल लॉन्ग शांगला रिटर्न फ्रॉम द स्कूल। She opened the door quietly. She kept her bag on the table quietly. Her mother looked at her.
3: Unshangla, you're very quiet today. Did anything happen in the school?
4: Yes, Ava. A new boy came to our school. He sits in our class.
3: Yes.
4: The teacher helped him sit in the front desk. He wears black glasses. He cannot see. He will come every day. How will he do things?
3: Finish your biscuits

0: जादुई पिटारा, है ना मजेदार साथियों? जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
2: और अब सुनते हैं कार्यक्रम बंदर और बया।
0: ये एक रोचक लोक कथा पर आधारित कार्यक्रम है जिसमें बंदर और एक सुंदर बया पक्षी की मित्रता के बारे में बताया गया है। कार्यक्रम का संदेश है मित्रता और आपसी सहयोग की भावना।

दोस्तों नमस्ते। दोस्तों, किसी जंगल में एक बंदर रहता था। वो बंदर बड़ा शैतान था। हाँ, न काम न धाम, सारे दिन कूदता फिरता इस पेड़ से उस पेड़ पर, उस पेड़ से इस पेड़ पर।

0: उसी जंगल में एक बया भी रहती थी। जानते हो दोस्तों, बया बड़ी समझदार होती है। समझदार ही नहीं, बहुत मेहनती भी होती है। उसने सोचा कि बरसात आने वाली है, चौमासे में पानी खूब बरसता है, इसलिए उसने बरसात से बचने के लिए उपाय सोचा। जानते हो दोस्तों क्या? बताएगा तुम में से कोई? बताओ बताओ। पक्षी अपने रहने के लिए पेड़ पर क्या बनाते हैं? हाँ, सोचो सोचो।
1: घोंसला।
0: हाँ, बारिश से बचने के लिए पक्षी घोंसला बना लेते हैं। तो दोस्तों, बया ने भी यही किया। दिन रात मेहनत की, तिनका तिनका जोड़कर उसने

0: घोंसला बनाकर पेड़ पर लटका लिया। एक बात तो हम भूल ही गए, बया का घोंसला बड़ा अजीब होता है। बया अपने घोंसले में एक खाना तो बनाती है बड़ा, और बाकी खाने वो बनाती है छोटे छोटे अपने बच्चों के लिए। दोस्तों, एक दिन बहुत तेज बारिश हुई। बंदर भाई भीगते हुए उसी पेड़ पर आ बैठे जहां बया का घोंसला था। पानी बहुत जोर से बरस रहा था। बया को बंदर पर दया आई और बोली,
1: क्यों बंदर जी, तुम इतने परेशान क्यों हो?
2: अरे बया, देखती नहीं चारों ओर पानी ही पानी है। मैं भीग रहा हूँ, उस पर ये ठंडी हवा चल रही है, मुझे जाड़ा लग रहा है।
1: बंदर जी, ये कैसी बात, ऊपर पड़ती है बरसात, सर्दी तुम्हें सताती है फिर भी समझ न आती है। वर्षा से बिल्कुल बच जाते साधन कोई अगर जुटाते, दिन भर उछला करते हो मेहनत से तुम डरते हो।
2: ज्यादा बात बनाओ मत, सीखी मुझे दिखाओ मत, छोटा मुंह और बात बड़ी, जीभ चलाती खड़ी खड़ी, गुस्सा मुझे दिलाएगी तो पीछे तू पछताएगी। तू चिड़िया, मैं बंदर हूँ, तुझसे ज्यादा सुंदर हूँ।
1: मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रही थी बंदर जी, इतने भीग रहे हो, कुछ नहीं तो वो सामने माली के छप्पर पर दलिया पड़ी है, उसे उठाकर सिर पर रख लो, कुछ तो बचोगे ही।
2: अरे तो इतनी देर से क्यों नहीं बताया तूने?
1: मैं क्या बताती, मैं तो तुम्हारे सामने बहुत छोटी सी हूँ। ये तो तुम्हें खुद ही सोच लेना चाहिए था, कल जब बरसात बंद हो जाए तो कहीं से कुछ घास पास लाकर किसी डाल पर छोटा सा छप्पर डाल लेना, ताकि पानी बरसे तो चैन से उसके नीचे बैठ सको।
2: अरे कल की कल देखी जाएगी, अब तू सीख बंद कर। मैं डलिया लाकर पहले आज का काम चलाता हूँ।

0: दोस्तों, वो रात बंदर ने सिर पर डलिया रखकर काट दी। सुबह हुई, बारिश बंद हो चुकी थी। बंदर फिर उछल कूद में मस्त हो गया। दो चार दिन बाद फिर पानी बरसा। पेड़ पर बैठा बंदर भीगने लगा। हाँ, बया अपने घोंसले में आराम से बैठी थी। बंदर को भीगता देखकर वो पूछ बैठी,
1: तुम्हारी उस दिन वाली डलिया कहाँ गई? उसे सिर पर ढक लो।
2: डलिया क्या रखी रहेगी?

0: रहा था कि दिन में कहीं से घास पात बटोर कर किसी डाल पर छोटा सा छप्पर डाल लेते, तो ये कष्ट क्यों सहन करना पड़ता?
1: मेरे आगे जीप चलाती है, क्यों ज्यादा इतराती है? छोटा मुंह और बड़ी बात कर मुझको सीख सिखाती है। नहीं जानती मेरी ताकत, मुझसे आंख मिलाती है। मैं पानी में भीग रहा हूँ, तू बैठी इतराती है।
0: हे राम, यही तो मैं भी कहती हूँ बंदर जी, कि भगवान ने तुम्हें मुझसे ज्यादा ताकत दी है, मुझसे ज्यादा बड़ा शरीर दिया है। मुझे कोई चीज लानी होती है तो चोंच में लाती हूँ। तुम्हें तो भगवान ने हाथ भी दिए हैं, फिर भी अपने बचाव का इंतजाम नहीं करते, तो इसका मतलब तो ये है कि
1: क्या मतलब?
2: याद आ गया?

0: तो श्रोताओं, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है
1: तो अब अपने मित्र अजीत,
0: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव के 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 3 बजे हैं। इसी के साथ हमारी आज की पहली सभा समाप्त होती है। हम फिर आपके लिए कार्यक्रम लेकर उपस्थित होंगे शाम के 4:30 पे। उस समय तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: कार्यक्रम सखी सहेली लेकर हम उपस्थित हैं। मैं हूं मंदाकिनी जोशी और मेरे साथ हैं
2: दीपा माहेश्वरी।
1: आप सभी को
2: हमारा नमस्कार।
1: कैसी हो दीपा?
2: बिल्कुल अच्छे हैं। और आप तो जहाँ जहाँ जाएंगी हम बस पीछे पीछे चलते चले आएंगे।
1: अरे वही तो मैं तुमसे पूछने वाली थी कि भाई क्या है ये कि जहाँ मैं जाती हूँ वही चली आती हूँ। देखो तुम यहाँ पर भी आ गई हो।
2: अब ये देखो ना, दोस्ती का प्यार है, आपका अपनापन है और सखी सहेली का कुछ जादू ही ऐसा है, है ना?
1: अच्छा।
2: जिस दिन आते हैं उस दिन बस अपनी जिस सखी के साथ हम अपने बाकी सभी सखियों से मिलने वाले हैं उनका पीछा करते रहते हैं।
1: अरे अरे अरे, तो ऐसा पीछा तो अच्छा भी लगता है। खैर
2: हाँ,
1: जहाँ दोस्ती हो, प्यार हो, सम्मान हो, स्नेह हो, वहाँ अगर हम एक दूसरे का पीछा करते हैं तो वो एक अलग ही अद्भुत एहसास होता है।
2: जी बिल्कुल।
1: तो
2: और कभी कभी आप भी तो आती हैं हमारे पीछे पीछे।
1: हम तो रोज ही आते हैं आपके पीछे ख्यालों में, आपने अच्छा? देखा नहीं है। हाँ
2: तो आज हमें भी ख्यालों में कुछ इस तरह से जाना पड़ेगा।

0: मतलब गहराइयों में
1: हाँ
0: कि
1: वहां मैं मिलूंगी आपको उस
0: हाँ
1: मोड़ पर खड़ी
0: बिल्कुल
1: हुई
0: बिल्कुल, और
1: है ना।
0: हमारे सारी सखियां, हमारे
1: हाँ
0: सारे श्रोता भाई,
1: दोस्त
0: सभी से मुलाकात होगी।
1: बिल्कुल होगी। और आज के विषय क्या है ये तो बता दें हम।
0: बिल्कुल, चलिए तो फिर ये जो दुनिया है हमारे ख्यालों की, वहां से हम चल के निकलेंगे दिल की दुनिया में,
1: ठीक है।
0: दिल की माने या दुनिया की। ये बड़ी बात हमेशा कई बार कई स्थितियों में हमारे सामने आ जाती है,
1: कुछ
0: दिल कुछ और कहता है और दुनिया
1: और
0: के कुछ
1: कहती
0: और
1: है।
0: कहती है, उनके रिवाज कुछ और होते हैं। तो
1: हाँ
0: बहुत सारे संदेश आए हैं, लेकिन और हम जानना चाहते हैं, कुछ ऐसा वाकया भी बताइएगा कि कहीं आपको ऐसा लगा हो कि आपने दुनिया की मानी, या कहीं ऐसा कि आपने दुनिया से हट के अपने दिल
1: दिल
0: की
1: की
0: मानी।
1: मानी बिल्कुल।
0: और यहां से इस गहराई से निकल के हम एक और गहराई में जाएंगे, वो है कोयले की दुनिया में। कोयला खनिक दिवस है आज, तो क्या जिम्मेदारियां उनकी होती हैं,
1: बिल्कुल
0: और
1: बिल्कुल।
0: कितना ये महत्वपूर्ण और साथ में एक खतरा हुआ लिए हुए ये
1: हाँ ये
0: वाला जो
1: बहुत बहुत
0: काम
1: खतरनाक
0: है
1: काम है
0: ना।
1: जिसे करना अंजाम देना बहुत मुश्किल है।
0: जी, कथा सुधा में भी हम कथा सुनेंगे, एक्ट्रेस का भाग 3 सुनेंगे,
1: अच्छा
0: तो कहानी में आगे क्या होता है ये जानेंगे, और बहुत
1: बिल्कुल।
0: सारे हमारे श्रोता इसका इंतजार भी कर रहे हैं। फिर वहां से चलेंगे बिहार।
1: बिहार। अरे क्यों
0: आज हम खाएंगे लिट्टी चोखा।
1: क्या बात है, बहुत खूब, बहुत अच्छा लगेगा। लिट्टी
0: जी।
1: चोखा मैंने बहुत समय से खाया भी नहीं है, तो चलो अच्छा है
0: तो
1: तुमने लिट्टी
0: आप
1: चोखा
0: वहां
1: याद दिला
0: जाएंगे ना, तो
1: दिया।
0: आपके पीछे पीछे वहां भी हम आने वाले हैं,
1: हाँ वही मैं जानना चाह रही थी कि वहां पर मैं आपके पीछे आने वाली हूँ।
0: ऐसा है,
1: हाँ
0: तो देखते हैं कौन किसके पीछे आएगा।
1: और इस गीत को भी सुन लेते हैं, देखें
0: चलिए
1: यहाँ कौन किसके पीछे है।
0: चलिए।

0: तो दीपा, अगर हम आपसे पूछें ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो, तो तुम क्या कहोगी?
1: आप हमारी सखी हो, आप हमारी प्रिय हो, जैसे हमारी सारी सखियां हैं।
0: हाँ बिल्कुल, वैसे ही हम प्यारे एक रिश्तों में गुथे हुए
1: है ना। बिल्कुल, बिल्कुल।
0: और हमारे कुछ साथी ऐसे भी हैं जो बहुत ही मेहनत कश तरीके से अपनी जिंदगी चला रहे हैं, उनसे भी हमारा रिश्ता उतना ही गंभीर है, क्योंकि हम उनकी जिंदगी के बारे में भी सोचते हैं, और तभी तो आज हम कोयला खनिक दिवस पर बात भी कर रहे हैं।
1: बिल्कुल। और ये देखिए ना, ये दिन है एक खास आज का, जो उनको सम्मान करने का दिन है। हम कोयला निकालने में उनके कठिन परिश्रम के लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं, जो खनन में काम करते हैं, जो हमारे देश के विकास और समृद्धि में एक बहुत बड़ा योगदान देते हैं।
0: बिल्कुल दीपा, कोयला खनन कोई आसान काम नहीं है, और खनिक अपना पूरा दिन खदानों से कोयला खोदने और निकालने में बिता देते हैं।
1: बिल्कुल। और 4 मई जो कि आज का दिन है, ये मनाया जाता है कोयला खनिक दिवस के रूप में। सिर्फ उत्सव ही नहीं है, मतलब एक कोई दिन रख नहीं दिया है, बल्कि औद्योगिक क्रांति से चले आ रहे कोयला खनन के इतिहास को भी याद करने का दिन है। ये इस जो कठिन जो पेशा है, इसमें योगदान देने वाले लोगों की मेहनत और उनके बलिदान को सम्मान देने का भी दिन है।
0: बिल्कुल। और ये विशेष अवसर पर मेहनती श्रमिकों को सम्मानित करने के लिए भी समर्पित दिन है, जो कोयला निकालने के लिए धरती की गहराई में उतरते हैं। और ये कोयला हमारे देश को ऊर्जा प्रदान करने, इस्पात उत्पादन और सीमेंट निर्माण के लिए एक अमूल्य संसाधन भी है।
1: बिल्कुल। और ये दिन उन समर्पित कोयला खनिकों के प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करने का प्रतीक है, जो हमारे उद्योग और दैनिक जीवन में आराम करने के लिए इनके खनन कर इसका जो कोयले का इसका खनन करते हैं।
0: हाँ हाँ।
1: और कई सारी चुनौतियों का सामना करते हैं।
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल।
0: और जो कोयला खनन के प्रति उनकी जो अटूट प्रतिबद्धता है ना, वो हमारी अर्थव्यवस्था के आवश्यक क्षेत्रों को बनाए रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने मंदाकिनी जी। और कोयला एक जीवाश्म ईंधनों में से एक है, जो कि बहुत जरूरी है, जिससे जिसमें इसमें इसमें ना बहुत सारा कार्बन होता है, कार्बन निकलता है। तो कोयले और प्रदूषित सांस लेने की वजह से खनिकों को कभी कभी फेफड़ों की बीमारी भी हो जाती है, और कभी कभी उन्हें सांस से संबंधित बहुत सारी समस्या भी हो जाती है।
0: बिल्कुल।
1: तो ये दिन उनके जीवन में सुधार हो उसके प्रति प्रोत्साहन को भी
0: बढ़ाता है। बिल्कुल सही कहा आपने दीपा, क्योंकि कोयला खनिक दिवस हम सभी के लिए एक ऐसा अवसर है जब हम रुककर कोयला खनिकों के प्रयासों से संभव हुई अपनी जिंदगी की अच्छी चीजों की सराहना कर सकते हैं।
1: जी। और इसे मनाने का सबसे अच्छा तरीका कि अगर आपके आसपास कोई ऐसा खदान है जहाँ पे कि इस तरह से कोयला क्या या किसी और धातु का खनन होता हो, तो वहां आप अपने बच्चों को ले जाइए, खुद भी जाइए, देखिए सामने से कि किस तरह से और कितनी मुश्किल हालात में वो काम करते हैं। या फिर खनिकों की कड़ी मेहनत को समझना और उन्हें दिल से तो हम धन्यवाद कम से कम दे ही सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, हमें अपने बच्चों को ये दिखाना चाहिए ताकि उन्हें पता चले जिंदगी इतनी आसान नहीं है जितना हमने समझ रखा है। हालांकि ठीक है, जिंदगी को आसानी से जीना चाहिए, लेकिन कितना संघर्ष करते हैं लोग।
1: जी
0: है ना,
1: तो ये पता भी तो चले उन्हें कि इस तरह का भी काम होता है।

0: हाँ, तो दीपा बहुत ही सुंदर गीत था ये, और
1: जी
0: काला पत्थर फिल्म का गीत था ये, और ये
1: जी
0: फिल्म इन्हीं कोयला खदानों के ऊपर बनी हुई फिल्म थी, है ना।
1: और कितने अच्छे से हमें देखने को मिलता है उसमें कि कितनी दिक्कतों में, कितनी मुश्किलों में हमारे जो खनिक हैं
0: वो
1: वो
0: काम
1: रहते
0: करते
1: हैं, वो
0: हैं,
1: काम
0: काम
1: करते
0: करते
1: हैं।
0: हैं।
1: और यही बात एक संदेश कहता है कि आज के दिन समस्त विश्व में कोयला खनिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन कोयला खनिकों की कठिन मेहनत और समाज में उनके योगदान को याद करने के लिए मनाया जाता है। साथ में एक और संदेश कहता है कि जो खदानों में अत्यंत जोखिम

0: भरी परिस्थितियों में काम करने वाले खनिकों के साहस, समर्पण और राष्ट्र के विकास में उनके योगदान को सम्मानित करता है। तो ये सारी बातें हमारे बहुत सारे
1: श्रोताओं ने
0: श्रोताओं ने
1: लिखी है।
0: लिख
1: एक
0: के
1: श्रोता
0: भेजी।
1: ये भी लिखते हैं कि ये उन मजदूरों के सम्मान में मनाया जाता है जो कोयले की खदान में खतरनाक काम करते हैं। कोयले की खदान में काम करना बहुत ज्यादा खतरनाक होता है और ये दिन उन मजदूरों की मेहनत और अर्थव्यवस्था में उनके योगदान को याद करने का दिन है, उनके प्रति आभार व्यक्त करने का दिन है। वहीं एक श्रोता ये भी लिखते हैं कि कोयला खनिक दिवस ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों में से एक है और उनके आपूर्ति हेतु प्राकृतिक रूप से खदानें पाई जाती हैं और उनके खोदने हेतु श्रमिक से लेकर कोयला मंत्रालय तक की समुचित व्यवस्था है और इस खनिज के उत्पादन में लगे श्रमिकों के हित का ये दिवस है। इस दृष्टिकोण से तो इस दिवस का महत्व है, लेकिन अब देखना यह है कि खनिज या फिर खनिक शब्दों में से कौन सा शब्द है, क्योंकि शब्द के अनुसार ही भावार्थ हुआ करते हैं। तो आज विश्व आज है खनिक दिवस।
0: खनिक दिवस,
1: हाँ
0: कोल माइनर्स डे
1: दे
0: इसको
1: बिल्कुल।
0: अंग्रेजी में कहते हैं और
1: कोयला खनिक दिवस इसको हिंदी में कहते
0: हिंदी में
1: हैं।
0: कहते हैं। तो भाई देखिए ना, खनन की गहराइयों में से अब हम निकल करके चलते हैं दिल की
1: दुनिया
0: गहराइयों में।
1: में
0: और देखिए ना, बात एक कई बार आ जाती है ना, दिल की माने या दुनिया की। और एक और बड़ा प्रसिद्ध सा जुमला है, लोग क्या कहेंगे। है
1: हर
0: ना,
1: जगह है ये जुमला,
0: है ना।
1: हर परिस्थिति में। अरे भाई लोग क्या कहेंगे, तुमने ऐसा किया तो लोग क्या कहेंगे, और इस लोग क्या कहेंगे के चक्कर में हम जो है अपनी जिंदगी कई बार खराब भी कर लेते हैं
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि
0: और
1: दुनिया
0: कई
1: के डर
0: सारे,
1: से। हाँ
0: वही जब आप ये कह रही थी तो मुझे ये विचार आ रहा था कि कितने सारे सपने टूटते हैं उस
1: हाँ
0: वक्त।
1: बहुत सारे खाब टूट जाते हैं, चकनाचूर हो जाते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर इतना दबाव बना दिया जाता है
0: जी
1: दीन
0: जी
1: दुनिया का कि दुनिया क्या कह देगी। बल्कि जबकि दुनिया को तो कहना ही है, दुनिया का काम है कहना,
0: सही
1: और
0: बात
1: कहने के
0: है।
1: बाद वो चुप हो जाती है, अपने अपने रास्ते चली जाती है। और अगर आपने अपने सपने चकनाचूर कर ली, तब भी दुनिया को कोई मतलब नहीं होता कि आप अपनी जिंदगी को बोझ समझ कर जी रहे हैं या अपने सपनों को जी रहे हैं,
0: बिल्कुल।
1: है ना।
0: और दुनिया तो ये चाहती है कि बस एक निश्चित समय तक पढ़ाई करो, उसके बाद शादी कर लो, उसके बाद आपका घर संसार बस जाए और फिर बस उसी ढर्रे पे चलते चले जाइए
1: जो बरसों
0: जो
1: से
0: बरसों
1: हमारे यहाँ
0: से
1: ढर्रा चल रहा है।
0: चलता
1: अरे
0: आ रहा है।
1: उसमें कुछ परिवर्तन अगर कोई लड़की खास तौर से या कोई बच्चा लाना चाहता है, कोई युवा, तो देखिए वो गलत तो नहीं कर रहा है।
0: सही
1: आप
0: बात है।
1: ये देखिए ना, उसके सपने हैं, अगर वो सही समय पर पढ़ के फिर शादी विवाह करना चाहता है या गृहस्थी बसाना चाहता है, तो लोग उसको चैन की सांस नहीं लेने देते।
0: सही बात
1: घर
0: है।
1: वाले भी कई बार, हालांकि दीन दुनिया के डर से, वो भी डर के मारे ही बच्चों को दबाव बनाते हैं कि भाई दुनिया क्या कहेगी, है ना। इस दुनिया क्या कहेगी के चक्कर में जो है जिंदगी बहुत अजीबोगरीब हो जाती है।
0: बिल्कुल। और एक सवाल ये आता है कि कब दुनिया की माने और कब दिल की
1: दिल की
0: माने।
1: माने।
0: तो हम अपने श्रोताओं से भी जानना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है कि कब दुनिया की माननी चाहिए और कब दिल की माननी चाहिए। वैसे उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी भी हैं। वैसे हमें जो लगता है कि भाई जब सुरक्षा की बात आए, नैतिकता की बात आए, या अपनों के हित के लिए कुछ अगर करना पड़े, तो शायद आप बड़ों का अनुभव को आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। वो जो परिस्थिति आपके सामने आई है, वहां आप बड़ों की बात को ले सकते हैं। उनका कोई पुराना अनुभव है, उससे आप कुछ सीख ले करके
1: बिल्कुल
0: अपनी जो दिल की बात है उसको साथ में मिला करके
1: काम कर
0: और
1: सकते
0: काम
1: हैं।
0: कर सकते हैं।
1: हाँ मतलब कोई मध्यम मार्ग निकलना चाहिए
0: जी
1: ना,
0: जी
1: ऐसा नहीं कि आपने जिद में आकर कुछ भी कर लिया। आप चाहे जो डिसीजन ले लें वो समाज के हित में नहीं भी हो सकते हैं डिसीजन, ऐसा नहीं है। लेकिन लोग क्या कहेंगे वाला जो जुमला लेकर जब हम अपने सपनों का गला घोट लेते हैं, और क्योंकि दुनिया हम एक सांचे में ढालना चाहती है जैसा तुमने कहा, और क्या हमने कभी गौर किया कि हमारे भीतर एक प्यारी सी आवाज है, वो आवाज जो गूंजती है तब आप अपनी पसंद की कोई काम करना चाहते हैं, आप अपने पसंद पे गुनगुनाना चाहते हैं, आप अपने
0: जी
1: पसंद से नृत्य करना चाहते हैं, पेंटिंग बनाना चाहते हैं,
0: जी
1: है ना, दुनिया में नाम करना चाहते हैं, लीक से हटकर हो आप चाहते हैं थोड़ा सा लीक से हटकर मैं अपनी जिंदगी बिताऊं, और वो है आपके दिल की आवाज।
0: बिल्कुल। और एक कहानी है छोटी सी, हमारे एक श्रोता ने लिख भेजी है। ये पढ़ के बताना चाहते हैं कि पंचतंत्र की कहानी में उन्होंने पढ़ा था कि एक गधे को लेकर एक बाप और बेटा
1: जा रहे थे।
0: देश के घूमने देश घूमने के लिए निकले थे। और कभी बेटा गधे पे बैठता तो लोग कहते बेटा बैठा है, अब बाप पैदल चल रहा है। जब बाप बैठ जाता तो लोग कहते कि कैसा बाप है, गधे पर बैठा है
1: अब
0: और
1: बेटा पैदल
0: बेटे
1: चल
0: को
1: रहा है।
0: पैदल चला रहा है। तब उन्होंने दुनिया से तंग आकर के दोनों बाप बेटा बैठ जाते हैं तो लोग कहते हैं कैसे निर्दय हैं, दोनों बाप बेटे एक ही जानवर पर बैठ गए हैं। तो भैया ये दुनिया है, कुछ भी करोगे तो कुछ तो सुनना ही पड़ेगा। तो इनका तो ये कहना है, हमारी सखी ये कह सखी ये कह रही है कि छोड़ो बेकार के

0: बातें, दुनिया की मजा, दुनिया का मजा ले लो, दुनिया तुम्हारी ही है।
1: बिल्कुल, शमशाद बेगम की जो आवाज में ही गाना है ना, दुनिया का ले लो
0: ले लो
1: मजा,
0: मजा,
1: दुनिया
0: दुनिया
1: तुम्हारी
0: तुम्हारी
1: है।
0: है।
1: बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि अगर आप इस तरह से दुनिया की सुनेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि दिल की सुनना का मतलब हो जाता है बागी हो जाना, कि हम बागी
0: जी
1: हो गए हैं,
0: हाँ।
1: हमने विद्रोह कर दिया है ना। और खासतौर से अगर लड़कियां अपने दिल की बात कर लें तो आज भी कहा जाता है, देखो कितनी जिद्दी है, अपने माता पिता का कहना ही नहीं मानती है, उसको
0: जी
1: समाज में रहना ही नहीं आता है, समाज की
0: बिल्कुल।
1: चिंता ही नहीं है।
0: ये बात कहीं ऐसा नहीं कि छोटे शहर, सब जगह है।
1: सब जगह है ये, हर
0: जी
1: जगह है कि देखिए माँ बाप ने इसको संस्कार ही नहीं दिए हैं ना, जाने क्या अपने तरीके से सोच रही है। तो ये जब
0: बिल्कुल।
1: बातें जब आती हैं तो एक लड़की के लिए जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक श्रोता लिखते हैं कि दिल की माने या दुनिया की माने, विशेष बात सोचने लायक है, गंभीर है, लेकिन मुझे लगता है कि दोनों की बात माननी चाहिए, लेकिन देखना ये है कि कौन सही है कौन गलत। अगर आपको लगता है कि आपका दिल सही है और बेशक दिल की माने, लेकिन कभी कभार दिल गलत हो जाता है, तो आप समाज को देखिए। दुनिया अगर कह रही है दुनिया की माननी है, लेकिन अगर आपको लगता है कि दुनिया आपको कितना भी रोक ले, हमें वही करना है जो हम करना चाहते हैं, तो फिर वो आपको सोचना होगा कि आप क्या चाहते हैं।
0: बिल्कुल। और वहीं एक और संदेश आया है, ये कहती हैं कि जो दुनिया, जो लोग दुनिया क्या कहेगी ये सोचकर जीते हैं, वो कभी खुश नहीं रह पाते, आगे बढ़ नहीं पाते, और उनकी हालत कुएं के मेंढक की तरह हो जाती है, उनकी जिंदगी सीमित दायरे में सिमट कर रह जाती है। अगर बड़े बड़े समाज सुधारक दुनिया की मानते तो आज महिलाओं का और समाज का जो विकास हुआ है वो शायद नहीं होता। तो इसलिए वो कह रही हैं कि हम आज एक विकसित समाज में जी रहे हैं, जहां पे हमें दुनिया के साथ अपने दिल की भी सुनना बहुत जरूरी है।
1: बहुत सही बात। और एक श्रोता लिखते हैं कि हम बोलते जरूर हैं कि दिल की सुने, लेकिन मुझे जहां तक लगता है हम सभी जमाने के हिसाब से ही चलते हैं, ये क्या कहेगा वो क्या कहेगा, इसमें ही हमारी जिंदगी खत्म हो जाती है। बिल्कुल सही कहा है। और आप कहें तो एक गीत सुन ले।
0: चलिए।
2: अरे चुपके से दिल दे दे,
3: नहीं ते
2: नहीं ते शोर मत।

0: तो दीपा इस गाने में भी यही कहा था कि भाई दिल दे दे चुपके से, लेकिन डर क्या है कि बदनाम हो जाएंगे तो क्या हो गया।
1: और देखिए कुछ ऐसी बात पर एक हमारी एक सखी ने लिखी कि वैसे एक बात कहें, जब हमारी बेटी को बाहर पढ़ने के लिए भेजने की बात आई थी तो घर के सारे लोगों ने, दुनिया वालों ने मना कर दिया था कि अरे लड़की को कहाँ भेज रहे हो अकेले, इतनी दूर भेजोगे तो कैसे क्या होगा, पर हमने अपने दिल की सुनी और आज हमें अपनी उस बेटी पर और खुद पर नाज है, जब वो पढ़कर इतने अच्छे पद पर काम भी कर रही है और अपने प्यारे से परिवार को भी संभाल रही है। अगर दुनिया की मानते तो हम शायद कुछ नहीं कर पाते।
0: कितनी बड़ी बात कही है, इससे कितना बड़ा संदेश जाता है कि हम डर के मारे अपनी बेटियों की प्रतिभा का गला घोट देते हैं कि दुनिया क्या कहेगी, कल क्या होगा, हम किसको क्या जवाब देंगे, दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे, कितने सारे बेतुके सवालों से हम घिरे रहते हैं।
1: बहुत सारे, और कभी कभी कोई एक लीक से हटकर कोई लेना चाहता है, कोई
0: डिसीजन लेता है,
1: डिसीजन लेना चाहता है। अब आज के जमाने में मान लीजिए कोई इन्फ्लुएंसर बनना चाहती है, बच्ची या बच्चा, तो वो कैमरा लेकर के और अपनी लाइट्स लेकर के सब जगह जगह घूम रहे हैं, ऐसे में माता पिता को लगता है कि क्या कर रहे हो तुम ये, लेकिन वो बताते हैं कि इसमें किस तरह से कमाई होती है। हाँ, बेसिक पढ़ाई होना, ये सब चीजें, एक ग्रेजुएशन होना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर बच्चा कुछ अलग करना चाहता है आप एक मौका तो दीजिए,
0: बिल्कुल
1: उसके दिल की सुनिए। अगर अपने दिल की नहीं समझ में आ रही है तो आप अपने बच्चे का या
0: विश्वास
1: पर विश्वास कीजिए।
0: तुम्हें बताऊं दीपा, मेरी एक दोस्त है, उनकी बेटी इसी तरह का काम करती है और आज फॉरेन में है, वो कैमरा लेके जाती है, घूमती है, दिल्ली में रहते थे वो, वहां उन्होंने पढ़ाई पूरी की और माता पिता ने अपनी बच्ची को इस मामले में विश्वास दिलाया और छूट दी और बच्ची आज बहुत बड़ी फोटोग्राफर के रूप में अपना काम भी कर रही है।
1: और ये बात जहां पर कि दो बच्चियां हैं तो वहां पे बड़ी बात ये आ जाती है, हम इस बारे में बात और आगे करेंगे।
0: हाँ, अभी वक्त है एक अंतराल का।
1: जी।

0: इस अंतराल के बाद अभी सभी सुनने वालों का फिर से स्वागत है।
1: तो बात हो रही थी कि जहाँ पर दो बच्चियां होती हैं घर में, तो माता पिता को कहा जाता है आप अपने बच्चों को पास में ही रखना, दूर नहीं करना, शादी ब्याह भी करो तो बस आसपास ही होना चाहिए, बच्चों को क्यों दूर भेजना है। अरे भाई वो मम्मी पापा का डिसीजन है, बच्चों का निर्णय है, हम क्यों बोले। लेकिन दुनिया आपको जहाँ सिर्फ बच्चियां होती है ना, बहुत उनको टोका टाकी किया जाता है,
0: बहुत दिक्कत आती है उनको, माता पिता को, क्योंकि समाज में दुनिया भर के लोग हैं, जो आप पर नजर है उनकी अपने घर पे नजर नहीं होती, दूसरों के घर पे दूसरों की बेटियों पर निगाह होती है कि वो कहाँ जाएगी, क्यों जाएगी, कैसे जाएगी। तो इस तरह के डिसीजन माता पिता के अपने डिसीजन है, उन्हें लेने दीजिए और बच्चों को आगे बढ़ने दीजिए। अब देखिए हमारे एक श्रोता लिखते भी हैं कि दिल की माने या दुनिया की, दिल की माने तो वो हमें क्या चाहिए, क्या खुशी देता है, कहाँ सुकून मिलेगा, वहीं दुनिया की माने तो हकीकत दिखाती है, जिम्मेदारियां, पैसा, रिश्ता, जोखिम। पैसा फैसला दिल से शुरू करो लेकिन उसको दिमाग और हकीकत से चेक भी करो।
1: सही बात है। और एक हमारे श्रोता भाई लिखते हैं कि दिल के माने या दुनिया के, भाई समय समय पर दोनों के मान लीजिए ना, क्योंकि रहना तो आपको दुनिया में ही है और दिल ना हो फिर रहेंगे कैसे। इसलिए समय का सदुपयोग कीजिए, दोनों की दिमाग से सुन लीजिए, बस इतनी सी बात है। जब जब दुनिया से दिल उब जाए तब दिल की दिमाग के साथ मान लीजिए, आखिर विवेक भी तो कोई बात है ना। तो देखिए बात तो सही है लेकिन ऐसा नहीं है कि हम दिल से उब गए तो हम दुनिया के सुन लें और दुनिया से उब गए तो दिल के सुने। जो सही होगा जीवन
0: डिसीजन लेना वो बहुत जरूरी, वही कहा ना विवेक से काम लेना होता है
1: जी।
0: एक श्रोता लिखते हैं कि दिल की माने या दुनिया की, असल में ये कोई सीधा सवाल नहीं है, ये जिंदगी के उन मोड़ों का सवाल है जहाँ दोनों रास्ते अलग अलग दिशा में जाते हैं। दिल अक्सर धीरे से कहता है यही सही है, बस महसूस करो, और दुनिया जोर से कहती है सोचो समझो फिर कदम बढ़ाओ। सिर्फ दिल की मानोगे तो कभी कभी ठोकर लग सकती है, और सिर्फ दुनिया की सुनोगे तो अंदर कहीं खालीपन रह सकता है। शायद सही रास्ता बीच का होता है, जहाँ दिल की बात सुनी जाए लेकिन दुनिया की समझ भी साथ में रखी जाए।
1: सही कहा आपने।
0: और अब देखिए दीपा, आज एक कहानी लेकर आए हैं हम, बताइए आप।
1: जी बिल्कुल, आज कहानी है एक्ट्रेस जिसका कि हम सुनेंगे भाग

0: तो चलिए पहले सुनते हैं ये कहानी।
1: चलिए।
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
3: कथा सुधा में आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी एक्ट्रेस। इस कहानी में पिछले भाग में आपने सुना,
4: दोनों तरफ से इस प्रीति को निभाने के वादे हुए एक महीना गुजर गया। कुंवर साहब दिन में कई कई बार आते, उन्हें एक क्षण का वियोग भी असह्य था। कभी दोनों बजरे पर दरिया की सैर करते, कभी हरी हरी घास पर पार्कों में बैठे बातें करते, कभी गाना बजाना होता, नित्य नए प्रोग्राम बनते थे। सारे शहर में मशहूर था कि ताराबाई ने कुंवर साहब को फांस लिया है और दोनों हाथों से संपत्ति लूट रही है। पर तारा के लिए कुंवर साहब का प्रेम ही एक ऐसी संपत्ति थी जिसके सामने दुनिया भर की दौलत देय थी। उधर कुंवर साहब के भाई बंद भी गाफिल न थे, वे किसी भांति उन्हें ताराबाई के पंजे से छुड़ाना चाहते थे। उन्हें ये भय तो न था कि कुंवर साहब इस एक्ट्रेस से विवाह करेंगे, हाँ ये भय अवश्य था कि कहीं रियासत का कोई हिस्सा उसके नाम कर दें या उसके आने वाले बच्चों को रियासत का मालिक बना दें। कुंवर साहब पर चारों ओर से दबाव पड़ने लगे, यहां तक कि यूरोपियन अधिकारियों ने भी उन्हें विवाह कर लेने की सलाह दी। उस दिन संध्या समय कुंवर साहब ने ताराबाई के पास जाकर कहा,
5: मैंने वकीलों से पूछ लिया है, एक कानून ऐसा है जिसके अनुसार हम और तुम एक प्रेम सूत्र में बंध सकते हैं, उसे सिविल मैरिज कहते हैं। मैं प्रातःकाल आ जाऊंगा, तैयार रहना।
4: तारा सिर झुकाए रही, मुंह से एक शब्द ना निकला। कुंवर साहब चले गए पर तारा वहीं मूर्ति की भांति बैठी रही।
3: कहानी में आगे क्या होने वाला है जानने के लिए सुनिए इस कहानी का तीसरा भाग।
4: विवाह का एक दिन और बाकी है। तारा को चारों ओर से बधाइयां मिल रही हैं। थिएटर के सभी स्त्री पुरुषों ने अपने सामर्थ्य के अनुसार उसे अच्छे अच्छे उपहार दिए हैं। कुंवर साहब ने भी आभूषणों से सजा हुआ एक सिंगार दान भेंट किया है। उनके दो चार अंतरंग मित्रों ने भांति भांति के सौगात भेजे हैं, पर तारा के सुंदर मुख पर हर्ष की रेखा भी नहीं नजर आती। वो शुद्ध और उदास है। उसके मन में चार दिनों से निरंतर यही प्रश्न उठ रहा है,
6: उफ, क्या मैं कुंवर साहब के साथ विश्वासघात करूं? जिस प्रेम के देवता ने मेरे लिए अपने कुल की मर्यादा को तिलांजलि दे दी, अपने बंधुजनों से नाता तोड़ा, जिसका हृदय हिम कण के समान निष्कलंक है, पर्वत के समान विशाल, उसी से कपट करूं? उसी से कपट करूं? नहीं नहीं नहीं, मैं इतनी नीचता नहीं कर सकती। मैंने अपने जीवन में कितने ही युवकों से प्रेम का अभिनय किया है, कितने ही प्रेम के मतवालों को वो सब्ज बाग दिखा चुकी हूं, पर कभी मेरे मन में ऐसी दुविधा ना हुई थी, कभी नहीं, कभी हृदय ने उसका तिरस्कार ना किया था। क्या इसका कारण इसके सिवा कुछ और था? ऐसा अनुराग मुझे और कहीं नहीं मिला। क्या मैं कुंवर साहब का जीवन सुखी बना सकती हूं? हाँ अवश्य बना सकती हूं, क्यों नहीं बना सकती।

0: इस विषय में मुझे लेश मात्र भी संदेह नहीं है। भक्ति के लिए ऐसी कौन सी वस्तु है जो असाध्य हो? पर क्या मैं प्रकृति को धोखा दे सकती हूं? ढलते हुए सूर्य में मध्याह्न का सा प्रकाश हो सकता है? असंभव, असंभव है। वो स्फूर्ति, वो चपलता, वो विनोद, वो सरल छवि, वो तल्लीनता, वो त्याग, वो आत्मविश्वास, मैं कहां से लाऊंगी? मैं कहां से लाऊंगी वो आत्मविश्वास जिसके सम्मिश्रण को यौवन कहते हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं कितना भी चाहूं पर कुंवर साहब के जीवन को सुखी नहीं बना सकती। नहीं नहीं नहीं बना सकती। आह, ये नौबत ही क्यों आने दी मैंने? क्यों क्यों कृत्रिम साधनों से, बनावटी श्रृंगार से कुंवर साहब को धोखे में डाला? अब इतना सब कुछ हो जाने पर मैं किस मुंह से कह सकूंगी कि मैं रंगी हुई गुड़िया हूं? जवानी मुझसे कब की विदा हो चुकी है? अब केवल उसका पदचिन्ह रह गया है। हाँ, केवल पदचिन्ह।
1: रात के 12 बज गए थे। तारा मेज के सामने इन्हीं चिंताओं में मग्न बैठी थी। मेज पर उपहारों के ढेर लगे हुए थे, पर वो किसी चीज की ओर आंख उठाकर भी ना देखती थी। अभी 4 दिन पहले वो इन्हीं चीजों पर प्राण देती थी। उसे हमेशा ऐसी चीजों की तलाश रहती थी जो काल के चिन्हों को मिटा सके, पर अब उन्हीं चीजों से उसे घृणा हो रही है। तारा ने सोचा,
0: प्रेम सत्य है, सत्य और मिथ्या दोनों एक साथ नहीं रह सकते। सोचती हूं क्यों न यहां से कहीं भाग जाऊं, किसी ऐसी जगह चली जाऊं जहां कोई मुझे जानता भी ना हो। कुछ दिनों के बाद जब कुंवर साहब का विवाह हो जाए तो फिर आकर उनसे मिलूं और ये सारा वृत्तांत उनसे कह सुनाऊं। इस समय कुंवर साहब पर वज्रपात सा होगा, न जाने उनकी क्या दशा होगी। पर इसके सिवा और कोई मार्ग नहीं है। मुझे कितना ही दुख क्यों ना हो, मैं अपने प्रियतम के साथ छल नहीं कर सकती। नहीं नहीं कर सकती। मेरे लिए इस स्वर्गीय प्रेम की स्मृति, इसकी वेदना ही बहुत है, और इससे अधिक मेरा अधिकार नहीं।
1: दाई ने आकर कहा,
2: बाई जी चलिए कुछ थोड़ा सा भोजन कर लीजिए, अब तो 12 बज गए।
0: हाँ नहीं नहीं, जरा भी भूख नहीं है। सुनो, ऐसा करो तुम जाकर खा लो।
2: देखिए मुझे भूल ना जाइएगा, मैं भी आपके साथ चलूंगी।
0: अरे मैं तुझे कैसे भूल सकती हूँ। अच्छा एक बात बता, अच्छे अच्छे कपड़े बनवा रखे हैं ना?
2: अरे बाई जी मुझे अच्छे कपड़े लेकर क्या करना है, आप अपना कोई उतारा दे दीजिएगा।
1: दाई चले गई। तारा ने घड़ी की ओर देखा, सचमुच 12 बज गए थे। केवल 6 घंटे और हैं। प्रातःकाल कुंवर साहब उसे विवाह मंदिर में ले जाने के लिए आ जाएंगे।
0: हे भगवान, जिस पदार्थ से तुमने इतने दिनों तक मुझे वंचित रखा वो आज क्यों सामने ले आए? वैसे ये भी तुम्हारी ही क्रीड़ा है।
1: तारा ने एक सफेद साड़ी पहन ली, सारे आभूषण उतार कर रख दिए, गर्म पानी मौजूद था, साबुन और पानी से मुंह धोया और आईने के सम्मुख जा खड़ी हो गई। कहाँ थी वो छवि, वो ज्योति जो आंखों को लुभा लेती थी? रूप वही था पर कांति कहाँ? अब भी वो यौवन का स्वांग भर सकती है? तारा को अब वहां एक क्षण भी और रहना कठिन हो गया। मेज पर फैले हुए आभूषण और विलास की सामग्रियां मानो उसे काटने लगी। ये कृत्रिम जीवन असह्य हो उठा। खस और बिजली के पंखों से सजा हुआ शीतल भवन उसे भट्टी के समान तपाने लगा। उसने सोचा,
0: कुछ समझ नहीं आ रहा है, कहां भाग जाऊं।

0: रेल से भागती हूँ तो भागने ना पाऊंगी। सवेरे ही कुंवर साहब के आदमी छूटेंगे और चारों तरफ मेरी तलाश होने लगेगी। ऐसे रास्ते से जाऊं जिधर किसी का ख्याल भी ना जाए। हाँ, ऐसा ही करती हूँ।
1: तारा का हृदय इस समय गर्व से छलका पड़ता था। वो दुखी न थी, निराश न थी। फिर कुंवर साहब से मिलेगी, किंतु वो निस्वार्थ संयोग होगा। प्रेम के बनाए हुए कर्तव्य मार्ग पर चल रही है, फिर दुख क्यों हो और निराश क्यों हो? सहसा उसे ख्याल आया।
0: कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब ऐसा ना हो कि कुंवर साहब मुझे वहां ना पाकर शोक विवलता की दशा में अनर्थ कर बैठे। डर लगता है, कुछ भी अनिष्ट हो सकता है।
1: इस कल्पना से उसके रोंगटे खड़े हो गए। एक क्षण के लिए उसका मन कातर हो उठा।
0: ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ऐसा ना हो कुंवर साहब मुझे वहां ना पाकर शोक विफलता की दशा में अनर्थ कर बैठे। कुछ अनिष्ट हो सकता है। ऐसा करती हूँ, पत्र लिखती हूँ।
1: वो मेज पर जा बैठी और ये पत्र लिखने लगी।
0: हे प्रियतम, मुझे क्षमा करना। मैं खुद को तुम्हारी दासी बनने के योग्य नहीं पाती। तुमने मुझे प्रेम का वो स्वरूप दिखा दिया जिसकी इस जीवन में मैं आशा न कर सकी थी। मेरे लिए इतना ही बहुत है। मैं जब जीऊंगी तुम्हारे प्रेम में मगन रहूंगी। मुझे ऐसा जान पड़ता है कि प्रेम की स्मृति में प्रेम के भोग से कहीं अधिक माधुर्य और आनंद है। प्रीतम, मैं फिर आऊंगी, फिर तुम्हारे दर्शन करूंगी, लेकिन उसी दशा में जब तुम विवाह कर लोगे। और यही मेरे लौटने की शर्त है। मेरे प्राणों के प्राण, नाराज न होना। और ये आभूषण जो तुमने मेरे लिए भेजे थे, अपनी ओर से वधू के लिए छोड़े जाती हूं। हाँ, केवल वो मोतियों का हार जो तुम्हारे प्रेम का पहला उपहार है, अपने साथ लिए जाती हूं और तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूं, मेरी तलाश न करना। मैं तुम्हारी हूं और सदा तुम्हारी रहूंगी। तुम्हारी और सिर्फ तुम्हारी, तारा।
1: ये पत्र लिखकर तारा ने मेज पर रख दिया, मोतियों का हार गले में डाला और बाहर निकल आई। थिएटर हॉल से संगीत की ध्वनि आ रही थी। एक क्षण के लिए उसके पैर बंध गए। 15 वर्षों का पुराना संबंध आज टूट रहा था। सहसा उसने मैनेजर को आते देखा। उसका कलेजा धक से हो गया। वो बड़ी तेजी से लपक कर दीवार की आड़ में खड़ी हो गई। ज्यों ही मैनेजर निकल गया, वो हाथे के बाहर आई और कुछ दूर गलियों में चलने के बाद उसने गंगा का रास्ता पकड़ा। गंगा तट पर सन्नाटा छाया हुआ था। 10-5 साधु बैरागी धुनियों के सामने लेटे थे। 10-5 यात्री कंबल जमीन पर बिछाए सो रहे थे। गंगा किसी विशाल सर्प की भांति रेंगती चली जाती थी। एक छोटी सी नौका किनारे पर लगी हुई थी। मल्लाहा नौका में बैठा हुआ था। तारा ने मल्लाहा को पुकारा।
0: माझी, उस पार नाव ले चलेगा क्या?
2: इतनी रात गए, नाव न जाई?
0: हाँ, रात है, इसीलिए दूनी मजदूरी दूंगी। अब बोल, चलेगा?
1: मगर दुगुनी मजदूरी की बात सुनकर उसने डांड उठाया और नाव को खोलता हुआ बोला,
2: सरकार उस पार कहाँ जाई हैं?
0: उस पार एक गांव में जाना है, चलो ना।
2: मुदा इतनी रात गए, कौनो सवारी शिकारी न मिली?
0: कोई हर्ज नहीं, बस तुम मुझे उस पार पहुंचा दो मांझी। हाँ, उस पार पहुंचा दो।
1: मांझी ने नाव खोल दी। तारा उस पर जा बैठी और नौका मंद मंद गति से चलने लगी, मानो जीव स्वप्न साम्राज्य में विचर रहा हो। इसी समय एकादशी का चांद पृथ्वी से उस पार अपनी उज्ज्वल

सुधा में आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी एक्ट्रेस। आज आपने सुना इस कहानी का तीसरा भाग। पात्र परिचय इस प्रकार है: सूत्रधार जी श्याम, कुंवर निर्मलकांत, जयंत पात्रीकर, अभिनेत्री तारा देवी, रेणु चतुर्वेदी, दाई संगीता श्रीवास्तव, माझी राजेश झा, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।

0: तो दीपा, कहानियां तो हमारे जीवन को हमेशा से प्रेरित करती रही हैं, है ना?
1: और वो एक अलग ही दुनिया में ले जाती
0: है। हाँ, और कभी जब हमें लगता है कि हम कहानीकार बन सकते हैं, वहाँ दिल की बहुत चलती है, पता है? कोई लेखक जब लिखता है, समाज को देखता है, लेकिन उसका दिल क्या कहना चाहता है, दिल क्या कल्पना करता है, ये लेखक अच्छे से जानता है।
1: सही कहा आपने। और देखिए, अगर एक संदेश ले ले क्या दिल की मानी,
0: हाँ वही तो।
1: है ना? तो ये संदेश कह रहा है कि
2: संसार के रचयिता ने हमें सभी को एक बहुमूल्य भेंट दी है, वो है शरीर। इसमें दिल भी है और दिमाग भी। हम सभी अपने अच्छे और बुरे का निर्णय क्यों नहीं ले सकते? मेरे जीवन में कई ऐसे निर्णय हुए हैं जहां मैंने दुनिया की न सुनकर अपने दिल की सुनी और दिमाग की सुनी और सफलता भी हासिल की है। जैसे कि कहते हैं कि मेरी सखी यानी कि मेरी धर्म पत्नी के साथ अपने माता पिता के आशीर्वाद से विवाह करने का निर्णय भी है, और मेरे कंधे से कंधा मिलाकर कठिन समय में हमेशा साथ चलती हैं। इसलिए सुनो सबकी, दुनिया की भी सुनो, पर करो अपने दिल और दिमाग की।
0: बिल्कुल सही कहा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि दिल की माने या दुनिया की विकल्प थोड़ा पेचीदा है। कई बार हम दिल की सुनते हैं तो दुनिया वाले सुनने नहीं देते, और अगर दुनिया की सुने तो बस सुनते ही रह जाएंगे और किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाते। मैं तो सुनता दुनिया की हूँ, लेकिन करता हूँ अपने दिल की आवाज सुनकर।
2: क्या बात है। एक संदेश कहता है कि जीवन में कई ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें दिल की सुननी चाहिए या दुनिया की, यह तय करना कठिन हो जाता है। तब समझदारी इसी में है कि हम दिल और दिमाग दोनों का संतुलन बनाकर निर्णय लें। ऐसा फैसला जिसमें सब अपनी खुशी भी हो और किसी का अहित ना हो, वही सबसे उचित और सही निर्णय है।
0: बिल्कुल। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जीवन की गाड़ी चलाने के लिए दिल का इंजन और दिमाग, दुनिया का अनुभव का स्टेयरिंग होना जरूरी बहुत है। जहां बात जुनून, खुशी और सुकून की हो, वहां दिल की सुननी चाहिए। जहां बात व्यवहारिकता और जिम्मेदारी की हो, वहां दुनिया के अनुभवों से सीख लेनी चाहिए। अंत में दुनिया तो केवल आपके परिणामों को देखती है, लेकिन आपका दिल उस पूरी यात्रा को जीता है। इसलिए ऐसी राह चुने जिसे कल मुड़कर देखने पर आपके चेहरे पर पछतावा नहीं हो, बल्कि एक सुकून भरी मुस्कान हो।
2: बिल्कुल। यानी कि जब आवश्यकता या परिस्थिति के अनुसार दिल की, लेकिन अगर दुनिया में कौन शामिल है, आपके परिवार वाले या आपके शुभचिंतक, तो उनकी भी सलाह जरूर लें और जीवन में आगे चलते रहें।
0: बिल्कुल। अब तो हमें आगे बढ़ना है इस गीत के जरिए।
2: चलिए।

वो चांद मुस्काया, सितारे शर्माए, हमारा भी दिल ना मचलने लगे।

0: मुस्काया, सितारे शर्माए, हमारा भी दिल नाम चलने लगे, वो चांद मुस्काया।
1: हाँ तो दीपा, अब हम बिहार के सैर पर चलते हैं।
2: चलिए।
1: देखिए, हमारे एक श्रोता लिखते हैं दीपा कि आज लिट्टी चोखा पर बात होगी तो बिहार का जो बिहार का ऐसा साधारण सा पौष्टिक भोजन है जिसके लालच में मैं 2023 में एक हफ्ते पटना में रहने चला गया। मुझे रहने का मौका मिला और वहाँ के एक होटल की कर्मचारी से पूछकर हम भी एक दिन राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन के सामने लिट्टी चोखा के स्टॉल पर पहुंच गए। क्या स्वाद था पूछिए मत, और इसलिए दूसरे दिन भी वहाँ लिट्टी चोखा खाने पहुंच गए, जहाँ होटल की थाली 200 देना पड़ता था मात्र 30 रुपए में पेट भर जाता था। सस्ता भी, पौष्टिक भी और सुपाच्य भी। अब और क्या चाहिए बताइए।
2: क्या बात है भाई, अगर ऐसा पौष्टिक और स्वाद से भरा हुआ कोई व्यंजन मिल जाए तो क्या बात है।
1: बिल्कुल।
2: तो इसको बनाने का भी अब तरीका जान लेते हैं। इसको लेना है आपको 500 ग्राम गेहूं के आटे में 2-3 बड़े चम्मच घी और थोड़ा सा नमक मिलाकर सख्त आटा गूंथ लीजिए। और सत्तू की स्टफिंग के लिए आप कीजिए कि 1 कप सत्तू में बारीक कटी प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, धनिया पत्ती, अजवाइन, कलौंजी, नींबू का रस, अचार का मसाला, सरसों का तेल डालकर अच्छी तरह से मिलाइए। और स्टफिंग को, और इसको कैसे करना है, आटे की लोई में सत्तू का ये जो मिश्रण आपने बनाया ना, इसको भरना है और फिर बाटी की तरह बंद कर देना है, जैसे दाल बाटी की बाटी
1: बनाते हैं
2: उस तरह। अच्छा। से इसको बंद कर देना। अब इसे आप या तो कढ़ाई में धीमी आंच पर सेक सकते हैं, आप कुकर पे भी रख सकते हैं, या फिर आप जो ओवन होता है दाल बाटी बनाने वाली बाटी उसमें भी आप इसको रख करके सेक सकते हैं।
1: अच्छा।
2: तो धीमी आंच पर ये 20-25 मिनट में खूब अच्छे से सुनहरा होने तक सिक जाएगा। अब चोखा कैसे बनाना है, बैंगन और टमाटर को भी भून लेना है। जो बारीक जाली होती है ना, हम बैंगन के भरते के लिए जो
1: अच्छा,
2: बैंगन के लिए जो जाली रखते हैं, उस जाली को रखिए, उस पे बैंगन रख दीजिए और टमाटर रख दीजिए। तो टमाटर भी जैसे ही ऊपर से सिकने लगेगा तो उसकी छिलके आप हटा
1: निकाल लीजिए।
2: इसी तरह से हम बैंगन के भरते के लिए किस तरह से बनाते हैं वैसा ही बनाना है। फिर इसमें हमें अब इसमें छौंक न लगा करके इसे अच्छे से मैश कर लेना है। मैश करने के बाद आप भुना हुआ आलू भी इसमें मिला दीजिए, उबला हुआ। अब यहाँ इसमें डालिए कटा प्याज, लहसुन, मिर्च, धनिया, सरसों का तेल इसमें अच्छे से मिलाना है और ये सब चीजों को मिला करके अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए सब कुछ, और धनिया पत्ती डाल दीजिए। अब आप सर्व कीजिए कि लिट्टी के, लिट्टी को खूब अच्छे से गर्म घी में डुबो करके थाली में साइड में रखिए, चोखा रखिए, चाहे तो आप हरी चटनी बना सकते हैं, टमाटर की चटनी भी बनती है।
1: ये आपका अपना स्वाद है।
2: हाँ, ये आपका अपना स्वाद है, आप चाहे वैसे इसको
1: बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है तुमने जिस खूबसूरती के साथ बनाना बताया है ना, अगली बार जब तुम आओगी तो तुम्हारे टिफिन में लिट्टी चोखा जरूर होगा।
2: बिल्कुल, चलिए, पक्की बात।
1: तो इसी खुशी में मैं आपको सुनवाती हूँ ये गीत।
2: चलिए।

चली जाए मारना दे टंक।

0: हाँ तो दीपा, सखी सहेली कार्यक्रम में बस आज इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मंदाकिनी जोशी और
1: दीपा माहेश्वरी को
0: आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

पिटारा पिटारा में आज सेहतनामा।

0: बीमारी हो, समझे लीवर में समझे छोटा सा दाग हो या कुछ हो, तो उसे दिखाई नहीं देता, तो थोड़ा दिन चल जाता है। चमड़ी पे जो भी होगा वो दिखाई देता है, और चमड़ी जो है बहुत बड़ा ऑर्गन, इट्स द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी, और वो भी कुछ काम करते हैं। चमड़ी सिर्फ हमारे शरीर को ढकने की या सुंदरता का एक कवर नहीं है, वो टेम्परेचर रेगुलेशन करता है, सेंसेशन के लिए काम करता है, बाद में ब्यूटी के लिए तो क्या है ही उसका
1: जी,
0: काम। तो इट इज़ गॉट अ मल्टीपल फंक्शन, एंड उसकी जो बीमारियां भी उतनी ही ज़्यादा है। देर आर बीमारियां जो चमड़ी के लिए खास, चर्म चर्म रोग होती है, और दूसरी बीमारियां जो अंदर से जो बीमारियां है वो चमड़ी में दिखाई देती है। जैसे समझिए प्लेटलेट कम हो गई तो ब्लीडिंग होने लगी, चमड़ी पे ब्लीडिंग दिखने लगा, तो हमें समझ में आता है कि ये अभी कुछ अंदर का बीमारी है। लिवर की कोई प्रॉब्लम हो तो चमड़ी पे दिखाई दी हो, हॉर्मोन्स की प्रॉब्लम हो तो दिखाई दी हो।
1: डॉक्टर साहब, अब इतना बृहद, इतना विस्तृत विषय है, तो हम हर चीज को थोड़ा छूते छूते चलेंगे
0: बिल्कुल बिल्कुल वही
1: और
0: हो
1: कोशिश
0: सकता है,
1: करेंगे लोगों की जो गलत धारणाएं हैं,
0: बराबर।
1: गलत मान्यताएं हैं, उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। शॉर्ट में आप बताएं कि किस तरह की बीमारियां, अंदरूनी बीमारियां, जो कुछ ऐसी जिनका असर चमड़ी पर दिखाई देता है,
0: अगर समझे खून की कमी हो तो चमड़ी जो है पेल दिखाई देता है, मतलब
1: पीली पीली दिखती है।
0: पीली या फीकी दिखाई देती है,
1: जी
0: जैसे
1: जी
0: फीकी। जॉन्डिस है जिसमें पीली दिखाई देती है।
1: जी
0: ब्लड के ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है, जैसे प्लेटलेट की कमी होने से, जैसे डेंगू आजकल बहुत ही
1: माना माना नाम हो
0: हाँ
1: गया
0: नाम हो
1: है।
0: गया है, तो उसमें प्लेटलेट कम होती है, तो ब्लीडिंग जब होती है चमड़ी में दिखाई देती है। तो अगर चमड़ी में ब्लीडिंग स्पॉट्स दिखाई दिए तो वी कैन अंडरस्टैंड दैट यस, इसमें थोड़ा ब्लीड हो रहा है, तो प्लेटलेट कम हो सकता है। एंड देर आर अदर डिसीजेज जैसे लिवर के प्रॉब्लम्स में है, वायरल इन्फेक्शन में वायरल रैश आते हैं, एलर्जी हो जैसे अल्टीकेरिया बोलते हैं, एलर्जी कुछ खाने पीने में एलर्जी हो तो ऊपर पित्ती जैसे निकलती है ददोड़े,
1: जी
0: वो
1: जी जी
0: ददोड़े भी अंदर की प्रॉब्लम से हो सकती है।
1: जी
0: एंड देर आर सो मेनी लाइक दैट। गर्मी ज़्यादा बढ़ गया तो मलेरिया बोलते हैं, वो
1: घमोरिया भी बोलते
0: गमोरिया
1: हैं।
0: उसको ही मलेरिया बोलते, तो वो कुछ दवाई खा रहे हो आप समझे, स्टेरॉइड खा रहे हो तो उससे जो चमड़ी पे इन्फेक्शन हो सकती है, डायबिटिक पेशेंट में चमड़ी में इन्फेक्शन हो सकती है जो हील नहीं होती है,
1: जी
0: विटामिन की कमी से चमड़ी की सेंसेशन कम हो सकती है, आई थिंक लेप्रेसी है, लेप्रेसी में सेंसेशन कम हो सकता है, तो जख्म हुआ तो हील नहीं होगा, वो भी
1: अच्छा, लेप्रेसी में तो दाग भी आ जाते हैं
0: दाग
1: सफेद
0: भी आते हैं
1: सफेद।
0: चमड़ी पे।
1: थोड़ा सा रुकते हुए इस पर ही बात
0: या
1: करते हैं कि लेप्रेसी में शुरुआत में जो दाग दिखाई देते
0: दाग
1: हैं, लोग
0: दिखा
1: उसे सफेद दाग जैसा समझने
0: बिल्कुल
1: लगते
0: बिल्कुल
1: हैं
0: हाँ
1: और उसका इलाज शुरू करते हैं, तब इस तरह का कोई पेशेंट जब आपके पास आता है, तब आपका शुरुआती जो इलाज होता है या पेशेंट को समझाने की जो बातें होती हैं, वो किस तरह से और क्या होती
0: देखिए
1: हैं?
0: क्या है, सफेद दाग जो है ना हमारे भारत में थोड़ा सा अलग नजरिए से देखा जाता है, हालांकि हर सफेद दाग कुछ खराब नहीं होता, और कोई भी सफेद दाग खराब नहीं होता। इनफैक्ट सफेद दाग की तीन चार वजह है, एक तो लेप्रसी, दूसरी विटिलिगो, थर्ड फंगल इन्फेक्शन, ये तीन मेन कारण है। उसमें जो पहले जो लेप्रसी कुष्ठ रोग बोलते थे उसमें जो सफ़ेद चमड़ी आती थी, और तभी के ज़माने में पहले, मैं तो बोलूँ 50 60 साल 70 साल पहले, इसका इलाज इतना नहीं था, ये ऐसे पेशेंटों को थोड़े आउटकास्ट कर दिए जाते थे,
1: जी,
0: और कुछ तो भगवान का या कुछ कर्स माना जाता था, और
1: ईश्वर का क्रोध
0: क्रोध
1: समझकर
0: समझकर,
1: उसको थोड़ा
0: तो
1: सा।
0: उस चीज़ से ये सफ़ेद दाग सभी उसी नज़रिए से देखने लगे लोग अभी,
1: जी,
0: वेदर इट इज़ विटिलिगो जो सफ़ेद दाग की बीमारी है,
1: ये
0: या
1: विटिलिगो को थोड़ा सा
0: हाँ
1: समझाएंगे आप?
0: विटिलिगो
1: सफेद दाग ही
0: सफेद
1: कहते हैं।
0: दाग ही बोलते हैं, जो जिसमें कोई सेंसेशन का प्रॉब्लम नहीं है कुछ नहीं, उसमें तो मेलानिन जो रहती है जो कलर बनाने की पेशी है वो कम काम करती है बस, जैसे हमारे सफेद बाल हुए ऐसे ही सफेद चमड़ी हुई, इतनी सिंपल बीमारी है वो
1: बस
0: विटिलिगो, लेकिन लोगों के नज़र में वो इतनी खराब लगती है, लोग देखते हैं तो उनको लगता है कि ये किसी इन्फेक्शन ना हो जाए किसी को, अगर इन्फेक्शन नहीं होता है, अगर ये लोगों के मन में जो इसके बारे में गलत फहमी है विटिलिगो के बारे
1: हाँ, कई बार हम
0: में।
1: देखते हैं कि बहुत सफेद सफेद से
0: यस
1: लोग हैं जिनके बाल भी पूरे सफेद
0: यस
1: रहते हैं, बच्चे भी
0: वो
1: होते हैं, वो
0: हाँ
1: विटिलिगो
0: वो
1: है।
0: नहीं, वो एल्बिनिज्म है, विटिलिगो का एक्सटेंशन एल्बिनिज्म अलग है वो,
1: जी
0: उसमें भी मेलानिन का ही प्रॉब्लम रहता है, लेकिन वो थोड़ा सा हिस्टोलॉजिकल लेवल पे अलग चीज़ है, पूरे शरीर में कलर बनना बंद हो गया रहता है, तो
1: जी
0: वो एल्बिनिज्म है, पूरे शरीर उनके मतलब पुतली भी वाइट है, बाल भी वाइट है, वो उनको कलर नहीं बनती उसमें, लेकिन ये मैं बोल रहा हूँ छोटी छोटी सफ़ेद दाग की बीमारी जो कोड बोलते हैं, मेरे ख्याल से नॉर्मल
1: जी
0: लैंग्वेज में
1: जी
0: कोड बोलते हैं, उसको भी लेप्रेसी के साथ जोड़ दिया जाता है, तो वो वैसा नहीं है, लेप्रेसी अलग चीज़ है, कोड अलग चीज़ है। विटिलिगो या ल्यूकोडर्मा जिसको सफ़ेद दाग कहा जाता है, उसमें सेंसेशंस नहीं जाते हैं,
1: जी
0: सेंसेशंस बिल्कुल इंटैक्ट रहते हैं, मैंने जैसे बताया वो सफ़ेद बाल जैसी चीज़ है, उससे ना किसी को इन्फेक्शन होने वाला है, ना कुछ अंदर फैलने वाला है, कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ दिखने में वो सफेद दिखता है, और अगर हम लोग उसे एक्सेप्ट करने लगे तो इसको ट्रीट करने की कोई जरूरत भी नहीं है। और दूसरी जो सफेद दाग की बीमारी है, जो लेप्रसी बोलते हैं हम, उसमें सेंसेशन कम होता है, वो एक इन्फेक्शन है, वो किसी को फैल सकता है, शरीर के अंदर भी फैल सकता है और दूसरे ऑर्गन्स को नुकसान भी पहुंचा सकता है।
1: किस तरह का नुकसान हो?
0: ये अंदर के ऑर्गन्स में जाएगा तो लिवर में प्रॉब्लम कर सकता है, समझे, स्किन में जब वो सेंसेशंस को लॉस होते तो जख्म हो जाता है,

0: दोस्तों नमस्कार। सेहतनामा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज के प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं मुंबई के सुप्रसिद्ध त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस जी मूर्ति से। इनसे बातचीत कर रहे हैं अमरकांत दुबे। आज के इस प्रोग्राम में बातचीत का विषय है त्वचा के रोग और उपचार। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर एस जी मूर्ति से अमरकांत दुबे की ये बातचीत।
1: दोस्तों नमस्ते, सेहतनामा प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर एस जी मूर्ति का स्वागत कर रहे हैं सेहतनामा प्रोग्राम में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका।
2: थैंक यू वेरी मच। श्रोताओं को मेरा नमस्कार। जी हाँ,
1: स्किन स्पेशलिस्ट हैं आप। त्वचा का मामला ऐसा है पूरा शरीर इससे ढका हुआ है। रोग कहाँ से कैसे कितनी जगह से होगा, किस तरह से होगा, किस तरह से फैलेगा, बड़ा विस्तृत सा इसका दायरा है, बहुत बड़ा दायरा है। त्वचा रोग के बारे में एक जनरल सी जो बात आपको लगती है कि कहनी चाहिए।
2: त्वचा जो है हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है और दिखता हुआ है बाहर से, इसीलिए उस पर कोई भी बीमारी होती है तो दिखाई देती है और मरीज उससे थोड़ा टेंशन में आ जाता है। शरीर के अंदर की कोई

0: जख्म होता है वो बोन्स खा जाते हैं, सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ मैं, तो बोन्स सब छोटे हो जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग के जैसे हाथ वगैरह रिजॉर्प्शन गलने लग जाते हैं, तो ये सब चीजें हो जाने लगती है, जगह जगह पे फोड़िया आना, नोज का ब्रिज टूट जाना, एक टिपिकल
1: मवाद और ये सारी
0: टिपिकल लियोनाइन फेस बोलते हैं उसे, चेहरा जो शेर जैसा हो जाता है ऐसा, तो ये सब बोन्स गलने से और अंदरूनी थोड़ी इन्फेक्शन फैलने से होता है ये लेप्रसी के जो
1: ये अब लेप्रसी का इलाज कहाँ
0: लेप्रसी का इलाज बहुत ही सिंपल है, इतने सालों से हो रहा है, बहुत अच्छा इलाज हो रहा है, अभी तो लेप्रसी मेरे ख्याल से मुक्त हो सकते हैं हम लोग थोड़े सालों में अगर ट्रीटमेंट बराबर चले तो। ये जो लेप्रसी की जो डिसीज है वो चली जाएगी, लेकिन उसके साथ में जुड़ी हुई जो अन्यता है वो उसके वजह से, हाँ उसके वजह से ये सफेद दाग
1: गलत
0: को भी गलत
1: से
0: नजरों से देखा जाता है, और तो सफेद दाग में एक फंगल इन्फेक्शन भी है जो टीनिया वर्सिकुलर बोलते हैं, उसमें भी सफेद दाग होता है, बट लोगों को सब लगता है कहीं ये लेप्रसी तो नहीं है, बाकी कुछ भी चल
1: जो फंगल इन्फेक्शन है
0: वो भी इजीली ट्रीटेबल है,
1: ठीक होता है, लेकिन सफेद दाग से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फंगल इन्फेक्शन जो है उससे कोई प्रॉब्लम होता है?
0: बिल्कुल नहीं होता, वो भी एक दूसरे को फैल सकता है, बट ट्रीटेबल है, वो कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है।
1: प्रॉब्लम नहीं,
0: लोगों के मन में क्या होता है, ट्रीटमेंट नहीं किया तो लोगों को देखने का नजरिया उस पर अलग हो जाता है, इलाज तो करेंगे लेकिन कोई कोई डर के आते हैं
1: जी जी
0: कि कोई वो बीमारी तो नहीं है कहीं, दे हैव टू बी टोल्ड दैट इट इज नॉट लेप्रसी। वापस अगर मैं उसको बराबर से पुटअप करूँ तो लोगों के मन में सफेद दाग पहले से शुरू आई है लेप्रसी, वो लेप्रसी तो नहीं है, करते करते सब सफेद दाग को लेप्रसी के नजरिए से देख रहे हैं, अभी जो सफेद दाग फंगस की वजह से हो या विटिलिको की वजह से हो वही चीज में उनका ध्यान रहता है कि मैं कहीं ये गलत बीमारी तो नहीं है, कोई भी सफेद दाग होगा तो उसका एक्सेप्टेंस पुअर है, वही अगर काला दाग होगा तो कोई टेंशन नहीं है,
1: तो जर नजर का टीका हो,
0: हाँ कितना भी काला दाग होने दीजिए आप, चेहरे पे पूरा पिगमेंटेशन हो जाता है, छाई आती है, कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन सफेद दाग ये भी बर्थ मार्क भी रहेगा तो बहुत टेंशन होता है,
1: मन से ये गलत धारणाएं
0: निकलनी चाहिए, कोई भी सफेद दाग मेरे ख्याल से अभी लेप्रसी तो खत्म हो जाएगा थोड़े सालों में, इलाज करना चाहिए, और जिस चीज का इलाज नहीं होता उससे ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, जैसे विटिलिगो से कुछ नहीं होने वाला।
1: तो दोस्तों आप सुन रहे थे कि सफेद दाग जो है उससे घबराने की जरूरत नहीं है, कुष्ठ रोग कोढ़ ये भी अब बिल्कुल आसानी से इस पर काबू पा लिया जाता है, जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे थे कि कुछ ही समय में ये हमारे देश से पूरी तरह से इसका उन्मूलन संभव है, किसी भी त्वचा रोग विशेषज्ञ से मिलकर सही जानकारी ले लें।

0: डॉक्टर साहब, ये गाना अभी सुन रहे थे जब, मैं भी थोड़ा सा रिलैक्स होकर सुन रहा था। सफेद रंग की बात कर रहे थे, ये थोड़ा गेरुआ होने की बात कर रहे थे,
1: कलरफुल हो रहा है अभी थोड़ा।
0: यस। अब मोहब्बत में तो आदमी किसी भी रंग में रंगने के लिए तैयार हो जाता है, बस शर्त इतनी होती है कि उसका महबूब उसके करीब होना चाहिए। आप किसी भी तरह के चर्म रोग से पीड़ित हो, अब डॉक्टर साहब बात करते हैं उस रोग के बारे में जो नॉर्मली अंदर से नहीं तकलीफ उठती है। हमारी त्वचा को बाहर से कोई आक्रमण हुआ, उससे त्वचा डैमेज हो गई, यानी कोई वायरस लग गया किसी तरह का। अगर एलर्जी की बात करें तो कई लोगों को कुछ खुजली के जैसे झाड़ पेड़ भी होते हैं,
1: बिल्कुल,
0: कुछ चीजें होती हैं। तो इस तरह की जो बीमारियां होती हैं त्वचा को, ये किस किस तरह की बीमारियां होती हैं नॉर्मली, मतलब जो आपके पास पेशेंट आते होंगे, और फिर उसके लिए किस तरह से आपकी
1: ये जो टॉपिक आपने बोला ये बहुत वास्ट है, लेकिन मैं उसे बहुत सिंपल चीज में डिवाइड कर दूंगा। ये आप जो बोल रहे हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर्स से स्किन पे कौन सी बीमारियां हो सकती है। अभी एक्सटर्नल फैक्टर्स में एक तो इरिटेंट डर्माटाइटिस या कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस बोलते हैं इसे, जो कि किसी चीज के लगने से या इरिटेट होने से होता है। ये कोई एलर्जन लग गई हो, जैसे हम साबुन यूज करते हैं, एकदम ही स्ट्रॉन्ग सोप्स यूज किए तो हाथ को इरिटेट होना, टीका जो इरिटेट करता है वो, या जिस चीज़ की एलर्जी हो, समझो किसी को सिंदूर की एलर्जी हो और लगा रहे हो तो एलर्जी हो रही है, ये डर्माटाइटिस की बात हुई। दूसरी जो बाहर से होती है वो इन्फेक्शन होती है। अब इन्फेक्शन भी तीन प्रकार के हैं, एक तो बैक्टीरियल है, फंगल है और वायरल है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन सिर्फ जो फोड़ियाँ फुंसी वो होती है, वो बाहर से जो बैक्टीरियाज एंटर कर लेती है उससे होती है, और आजकल फंगस बहुत फैला हुआ है जिसे हम दाद कहते हैं। और वायरल इन्फेक्शंस में है जैसे वॉर्ट्स है, मोलस्कम कॉन्टेजियोजम है, हर्पीस है, हालांकि हर्पीस तो अंदरूनी वायरस से होता है बट हर्पीस भी वायरल इन्फेक्शन भी है। फिर चिकन पॉक्स है, मीजल्स है।
0: चिकन पॉक्स के दाग नहीं जाते हैं अगर ऐसी मान्यता है,
1: या चिकन पॉक्स के दाग वो नहीं जाएंगे जो बहुत ही खराब तरीके से इन्फेक्टेड हो गई हो, एकदम सुपरफिशियल हो तो दाग तो चले जाएंगे। वो हम पहले के जमाने के स्मॉल पॉक्स की बात कर रहे हैं, पहले जमाने में स्मॉल पॉक्स हुआ करता था जो बहुत, अभी तो एग्जिस्ट ही नहीं होता है। वो जो स्मॉल पॉक्स के दाग है वो नहीं जाते थे, चिकन पॉक्स के दाग ओवरऑल इतने नहीं रहते हैं,
0: वो नेचुरली चले जाते हैं,
1: नेचुरली चले जाते हैं, और अगर कुछ नहीं नेचुरली चले जाते हैं और बहुत डीप स्कार रहेगा तो उसको इलाज कर सकते हैं।
0: किस तरह का इलाज होता है?
1: इलाज राइट फ्रॉम मलम से लेकर लेजर तक अभी अवेलेबल है, तो यू कैन डू एनीथिंग।
0: अब आपने जैसे लेजर की बात की, तो जब त्वचा पर लेजर से कोई इलाज किया जाता है तो उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं?
1: नहीं, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, लेजर का कोई साइड इफेक्ट नहीं, बिकॉज लेजर जो है वो स्किन के बहुत डीप जाता नहीं। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ लेजर, तो जो स्किन में हम लेजर यूज करते हैं वो चमड़ी से बहुत नीचे जाता ही नहीं है, तो जो भी होगा स्किन पे ही है, उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं। ज्यादा से ज्यादा आप बोलेंगे मुझे कुछ तो साइड इफेक्ट बताइए अभी, तो मैं एक ही बता सकूं, चमड़ी जल सकती है, वो तो जल से ही तो ऐसे भी जलती है, जल सकती है, किसी भी चाय गिरने से भी जल सकती है, और उसका इलाज तो वैसे भी स्किन स्पेशलिस्ट कर सकते हैं। तो द वर्स्ट दैट कैन हैपन विद लेजर इज लेजर बर्न्स, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता।
0: टैटू वगैरह बनाने से निशान बनते हैं, तो लेजर से जब आप इस तरह की कोई दाग निकाल रहे हैं तो वो तो निकल जाएगा दाग, लेजर का किसी और तरह का कोई दाग नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है।
1: लेजर में स्कारिंग होना इज नॉट अ कॉमन थिंग, कॉम्प्लिकेशंस आर नोन इन एनी मेडिकल प्रोसीजर्स। तो ये एक तरह का कॉम्प्लिकेशन हो सकता है कि चमड़ी जल गई हो, ये हालांकि बहुत रेयर है। तो ऐसा लगता है कि प्रैक्टिकली अगर कोई स्किन स्पेशलिस्ट के पास लेजर कराता है तो उसे कुछ टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं।
0: तो आप बात कर रहे थे बाहर से होने वाले,
1: पहले तो बताया कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस, फिर इरिटेंट डर्माटाइटिस। कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस वो वाली चीजें जो समझिए हम, कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस और इरिटेंट डर्माटाइटिस है। कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस वो एलर्जी होती है कुछ बाहरूनी चीज की, और इरिटेंट डर्माटाइटिस है उसके इरिटेशन से हो, जैसे आपने सोप यूज किया। आजकल बहुत अच्छे अच्छे सोप्स आते हैं जो बर्तनों को दिखा दो तो पूरी तेल वेल सब बर्तन की साफ कर देती है, बट हम ये नहीं सोचते कि हमारी चमड़ी को क्या नुकसान पहुंचा सकती है वो, तो वो चमड़ी के ऊपर की थर को भी छिल सकती है वो, सो दैट्स एन इरिटेंट डर्माटाइटिस बोलते हैं उसे हम। तो वो नॉर्मली हाउसवाइफ जो बर्तन का घर का सब काम करते हैं उनके हाथों में पाया जाता है, तो उनको हम बोलते हैं या तो स्ट्रॉन्ग सोप्स नहीं यूज करें या तो ग्लव्स डाल के काम करें। और वो जो कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस वो तो एलर्जी एक तरह का, जैसा निकल है वॉच का, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज है, किसी किसी को बिंदी के जो गम रहती है जो स्टिकर की गम है उसकी हो सकती है, डाइज की हो सकती है, हेयर डाई।
0: डॉक्टर साहब इस पे बात करेंगे हेयर डाई पे, लेकिन इस समय ये अब यहाँ हम कौन सा गाना सुन सकते हैं?
1: थ्री इडियट्स की जुबी डुबी सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल।

0: चलिए ये जूबी डूबी के गाने के बाद जो आप बात कर रहे थे हेयर डाई की,
1: हेयर डाई एलर्जी,
0: अब हम आ गए एक ऐसी चर्चा पे जो बड़ी कॉमन सी, मतलब लोगों के बीच में बहुत सी बालों को लेके और बालों की चमड़ी को लेके और फिर उससे जुड़ी बहुत सी चीजें हैं। डॉक्टर साहब, ये हेयर डाई लगाने से स्किन और आंख तक, कई बार लोग ये कहते हैं कि अरे तुम ये हेयर डाई यूज करोगे तुम्हारी आंखें कमजोर हो जाएंगी, और तू ये हेयर डाई यूज करोगे तो तुम्हारा माथा काला हो जाएगा, ये हेयर डाई यूज करोगे तो तुम्हारे पीछे फोड़े हो जाएंगे।
1: ये आपका बात सही है। ये देखिए, हमने शुरू किया था एक्सटर्नल फैक्टर जो स्किन को अफेक्ट करे, तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था बहुत वास्ट है और हम अटके हुए इरिटेंट डर्मेटाइटिस या कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस पे ही अटके हुए। आपकी बात सही है कि ये जो हेयर डाई वाला है, पीपीडी एलर्जीज बोलते हैं उसको, पैराफिनिलीन डायामाइन करके एक डाई होती है जो हेयर डाई में यूज होती है,
0: उसके बिना हेयर डाई नहीं बनती।
1: उसके बिना हेयर डाई 99% आई वुड से, कोई भी आप लीजिए, काली मेहंदी से लेकर आप कोई भी हेयर डाई लीजिए, बेस्ट से बेस्ट ब्रांड लीजिए या सिंपल लोकल ब्रांड लीजिए, ये काला कलर पीपीडी से ही होता है
0: जी।
1: थोड़ी बहुत अभी पीपीडी फ्री हेयर डाई आने लगे हैं जो थोड़ी सी महंगी है, बट वो पीपीडी फ्री है, लेकिन उसकी एलर्जी नहीं है, वो टेस्ट करके देखना पड़ेगा। तो इन जनरल जो हेयर डाई एलर्जीज होती है वो पैराफिनिलीन डायामाइन

0: एलर्जी होती है।
1: जी
0: ये जो एलर्जी होती है इससे चमड़ी थोड़ा सा इरिटेट होता है, लाल हो जाती है, चेहरा आंखें ऐसे सूज सकती है, फोड़िया ऐसे होगी कि अगर चमड़ी छिल गई वगैरह तो इन्फेक्शन हो जाएगा। कितनी इरिटेट होती है स्किन उसके ऊपर डिपेंड होती है। किसी किसी को सिर्फ थोड़ी सी खुजली होगी, किसी किसी को थोड़ी रेडनेस होगा, किसी किसी को चमड़ी पील होगा। क्या होता है जैसे अभी हेयर डाई डाले तो फिर आंखों के ऊपर सब जगह पे थोड़ी थोड़ी उसकी इफेक्ट रहती है,
1: भले उसका आंखों से कांटेक्ट
0: ना हो तो उसके आंखें सूज जाना, आंखों के अंदर नहीं बट बाहर की जो आईलेट्स है वो सूज जाना। हेयर डाई डाला और अगले दिन उसने देखा कि आंखें सूजी हुई, आईलेट्स एकदम आंखें खोलने को नहीं पा रहा है वो, और सर खुजा रहा है, लाल हो गया है। यस बट इट कैन प्रोग्रेस टू अ वेरी बैड थिंग। इसीलिए उन लोग बोलते हैं कि टेस्ट करके डालिए, टेस्ट करके डालिए करके। हेयर डाई से नजर कमजोर होगी ये सब तो मैं नहीं मानता हूँ, इतना नहीं होगा। अगर कंटिन्यू एलर्जी है तो पेशेंट दो तीन बार में तो फिर लगाना बंद ही कर देगा
1: जी।
0: देन देयर आर अदर पीपीडी फ्री हेयर डाइज है, बहुत सारी अलग है।
1: और ये जो माथे का काला होना
0: ये सब एलर्जी का एक साइड इफेक्ट है। कोई भी चीज का जब स्किन इरिटेट होता है ना तो पिगमेंटेशन ज्यादा होने लगती है, तो जब ये इरिटेट होता है हेयर डाई से तो वो भी काला होने लगता है चेहरा भी, वो जो कलर है उससे नहीं, वो इरिटेट होता है इसीलिए।
1: मान लीजिए किसी ने लॉन्ग रन तक इसको यूज किया, उसका माथा काला पड़ गया, उसका इलाज है कि भाई अब आगे यूज मत करो।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन जितना वो काला हो चुका है तो वो क्या आप ठीक कर सकते हैं?
0: वो ठीक कर सकते हैं मतलब उसका इलाज हो सकता है। देखिए ठीक कर सकते हैं या नहीं कर सकते ये हाँ या ना में जवाब किसी भी बीमारी को नहीं दे सकते हम लोग
1: जी।
0: हाँ बट कोशिश कर सकते हैं और बहुत सारे पेशेंट ठीक हो जाएंगे, क्योंकि जैसे उनका कॉज हटा दिया है तो शरीर भी अपना करेक्टिव मैकेनिज्म शुरू कर देता है।

मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। शाम के इस वक्त 4:30 हुए हैं, आरंभ होती है हमारी आज की दूसरी सभा। श्रोता, हमारा नमस्कार स्वीकार कीजिए। अब से लेकर रात्रि 11:10 तक हम आपके साथ बने रहेंगे। सभा का आरंभ कर रहे हैं युवाओं को संबोधित युववाणी से।

0: और आपसे बहुत सारी बातें भी करेंगे, साथ ही फिल्म संगीत का भी आनंद लेते रहेंगे। तो आप भी हो जाइए तैयार और जुड़े रहिए हमारे साथ आज के इस खास कार्यक्रम में।
1: दोस्तों, हर दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ नई जानकारी, कुछ प्रेरक बातें और साथ ही साथ शानदार फिल्म संगीत का आनंद। तो आज हम लोग सबसे पहले अपने आप को कुछ प्रेरक पंक्ति से जोड़ेंगे और अपने आत्मविश्वास को देंगे नई उड़ान।
0: जी बिल्कुल प्रिया, और इसी के साथ ही साथ हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस यानी इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे के बारे में, जो हर साल 4 मई को मनाया जाता है और संस्कृति और आधुनिक न्यू एज फैशन पर भी बेहद रोचक बातें होंगी। दोस्तों
1: धारिणी, क्या आपको पता है कि आज कौन सा दिन है?
0: जी हाँ प्रिया, सोमवार है।
1: तो दोस्तों, हर सोमवार को हम अपने श्रोताओं के लिए लेकर आते हैं एक बेहद रोचक और जानकारी से ओतप्रोत सेगमेंट, यानी शायद आपको याद आ गया होगा, है ना? बिल्कुल आप सही समझे दोस्तों, हम बात कर रहे हैं तकनीकी सोमवार की।
0: बिल्कुल दोस्तों, और इसके अंतर्गत हम बात करेंगे AI और रचनात्मकता की, और हाँ अंत में हम आपको ले चलेंगे खेल जगत की ओर, जिसका युवा साथियों को बेसब्री से इंतजार रहता है। क्यों, है ना साथियों?
1: बिल्कुल, और इतना ही नहीं दोस्तों, कुछ रोचक तथ्यों से भी हम आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन शुरुआत अगर संगीत से हो तो बातें और भी दिल तक पहुंचती है ना? तो
0: बिल्कुल प्रिया, तो दोस्तों आप भी हो जाइए तैयार अगले 1 घंटे तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और साथ ही साथ लीजिए फिल्म संगीत का भी आनंद। तो चलिए दोस्तों, करते हैं एक सुरीली सी शुरुआत आज के हमारे कार्यक्रम की इस गीत के साथ।

0: नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम युवानी में, जहां हर बात जुड़ी है आपसे और आपके सपनों से। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त प्रिया और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं धारिणी। तो धारिणी, बताइए क्या कुछ खास लेकर आई हैं आज के पिटारे में।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त धारिणी। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम आपको ले चलेंगे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी की

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे मूवी डेंजरस इश्क से ये प्यारा सा गाना राहत फतेह अली खान और तुलसी कुमार की आवाज़ में। तो दोस्तों, आज के अगले विषय की चर्चा करने से पहले हम शुरुआत करते हैं अपने इस कार्यक्रम की एक मोटिवेशनल लाइन यानी कि प्रेरक पंक्ति से।
1: बिल्कुल धारणी। और आज की प्रेरक पंक्ति कुछ इस प्रकार से है कि जो व्यक्ति अपनी क्षमताओं पर विश्वास करता है, वही अपने सपनों को भी साकार कर पाता है।
0: बिल्कुल सही कहा प्रिया आपने। हम जब अपनी ताकत को पहचान लेते हैं तो जीवन के बड़े बड़े लक्ष्य भी आसान लगने लग जाते हैं
1: और
0: दोस्तों।
1: एक बात है धारणी, कि जो समय के साथ सीखता है ना, वही समय के साथ भी आगे बढ़ता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और आज की दुनिया में बदलाव इतनी तेज हैं कि अगर हम खुद को अपडेट नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे।
0: जी हाँ बिल्कुल प्रिया। और दोस्तों, आज का युवा तभी सफल होगा जब वो नई तकनीक, नए विचार और नए कौशल को अपनाएगा। इसलिए दोस्तों, खुद को रोज थोड़ा बेहतर बनाएं और इसी प्रेरणा के साथ क्यों ना प्रिया कुछ मजेदार सा गाना हो जाए।
1: अरे बिल्कुल धारणी। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए आपको सुनवाते हैं आपके पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ, और सिर्फ आपके लिए हम यहाँ बने हुए हैं। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे मूवी वीर ज़ारा से ये प्यारा सा गाना उदित नारायण की आवाज़ में। इसी के साथ दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है कार्यक्रम युववाणी में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी पटना, अपनी रेडियो दोस्त धारिणी और प्रिया के साथ।
1: धारिणी, आज का दिन कितना खास है पता है आपको?
0: हाँ, बिल्कुल प्रिया, आज तो 4 मई है।
1: और 4 मई यानी इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। ये वो दिन है जब हम उन रियल लाइफ हीरोज को सलाम करते हैं जो अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की जान बचाते हैं। तो धारिणी, चलिए आज की शुरुआत करते हैं उन जांबाजों के नाम करते हैं जो आग से लड़ते हैं और हमें सुरक्षित रखते हैं।
0: प्रिया, जब जब भी हम फायर ब्रिगेड की लाल गाड़ी और सायरन सुनते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े से हो जाते हैं। 2 दिसंबर 1998 को ऑस्ट्रेलिया के लिंटन में जो भयानक हादसा हुआ था, उसमें 5 बहादुर अग्निशामकों ने अपनी जान गंवा दी थी।
1: और बिल्कुल धारणी, और उन्हीं की याद में और उन सभी अग्निशामकों के सम्मान में 4 मई को यह दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, यह सिर्फ ये जो दिन है ये सिर्फ आग बुझाने का नहीं बल्कि उनके साहस का जश्न मनाने का दिन है।
0: सही कहा प्रिया, हमें इनके साहस और जज्बे को सल्यूट करना चाहिए जो अपनी जान जोखिम में डालते हैं और निस्वार्थ भाव से हमारी सेवा करते हैं।
1: धारणी, अक्सर लोग सोचते हैं ना कि इनका जो काम है वो सिर्फ आग बुझाना होगा, पर क्या आपको पता है दोस्तों कि वे बाढ़, भूकंप और सड़क दुर्घटनाओं में भी रेस्क्यू के लिए सबसे पहले पहुंचते हैं।
0: सच में प्रिया, और साथ साथ मैंने ये भी सुना है कि ये सभी फायर फाइटर्स जो होते हैं वो बिल्ली और पक्षियों को भी बचाते हैं।
1: बिल्कुल सही सुना है धारणी, हाल ही में खबर आई थी कि कैसे दिल्ली में फायर फाइटर्स ने एक काइट यानी पतंग धागे में फंसी चिड़िया को बचाया, और वे हर तरह की आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार रहते हैं हमेशा।
0: प्रिया, आज के दिन हमें सिर्फ उन्हें धन्यवाद नहीं देना चाहिए बल्कि जागरूक भी होना चाहिए।
1: बिल्कुल सही बात है धारणी, लेकिन इस संदर्भ में आप हमारे लिसनर को क्या टिप्स देना चाहेंगे?
0: देखिए प्रिया, सबसे जरूरी है कि घर और ऑफिस में स्मोक डिक्टेटर जरूर लगवाएं। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, आप जब भी अपना घर बनवा रहे हैं या फिर रेनोवेशन होने वाला है या फिर कुछ भी घर में करवा रहे हैं, तो सबसे पहले उसमें स्मोक डिटेक्टर जरूर लगवाएं, क्योंकि ये हादसा कहीं भी, कभी भी और कैसे भी हो सकता है। और हाँ दोस्तों, आग लगने पर लिफ्ट का इस्तेमाल कभी ना करें, इस बात को हमेशा ध्यान में रखें, बिल्कुल गांठ बांध के रख लें और हमेशा उस समय सीढ़ियों का ही प्रयोग करें।
1: बिल्कुल दोस्तों, और सबसे जरूरी बातें जो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए,

0: फायर फाइटिंग मोटरसाइकिल, जिसका उद्देश्य है तंग या गलियों में या संकीर्ण जो गलियां हैं और घनी आबादी वाले इलाकों में आग घटनाओं पर तुरंत कार्रवाई करना है।
1: जी हाँ प्रिया, मैंने इसके बारे में सुना है। और अब दोस्तों चलिए थोड़ा इसके डिज़ाइन के बारे में आपको बताऊं। ये आमतौर पर रॉयल इनफील्ड बुलेट जैसी मजबूत बाइक पर आधारित होती है दोस्तों, और इसमें कई फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स भी लगे रहते हैं। इन बाइक में वाटर पंप, जेट और मिस्ट स्प्रे, मतलब कि जिससे पानी की बौछार की जाए वैसी स्प्रे की सुविधा भी होती है। और साथ ही साथ कुछ अन्य सुविधाएं भी हैं, जैसे कि आग को नियंत्रित करने के लिए इसमें स्थिर स्टैंड, पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम, फिलर लाइट, सायरन, फायर एक्स मतलब कि कुल्हाड़ी जिसे हम कहते हैं हिंदी में, और स्नैक कैचर, इस तरह के भी इंस्ट्रूमेंट्स और इस तरह की भी सुविधाएं पाई जा रही हैं
0: ये
1: प्रिया।
0: बहुत ही अच्छी पहल है धारणी सरकार की, है
1: जी
0: ना।
1: बिल्कुल
0: और दोस्तों, इसीलिए हमें आज के दिन उन सभी परिवारों को सलाम करनी चाहिए जिनके सदस्य एक अग्निशामक में हैं।
1: जी बिल्कुल श्रोताओं, तो आइए हम सब मिलकर इस इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे पर उन्हें कहते हैं थैंक यू। पर
0: तो चलिए, अब वक्त हो चला है आज के अगले ट्रैक की।
1: अगले ट्रैक पर जाते जाते दोस्तों याद रखिए कि सावधानी ही सुरक्षा है। और हाँ, जब भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी दिखे तो उन्हें तुरंत तुरंत ही रास्ता दें। और साथ ही साथ एक और बात इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी, कई बार हम लोग होता है जाने अनजाने में लापरवाही कर देते हैं प्रिया, एम्बुलेंस को भी रास्ता देना
0: हाँ,
1: चाहिए। ये दोनों चीजों को
0: बिल्कुल
1: रास्ता देना
0: बिल्कुल
1: बहुत ज्यादा जरूरी है,
0: बिल्कुल
1: क्योंकि हर एक सेकंड ऐसे में उन पेशेंट्स के लिए, उन या फिर जिनको आग से बचाने जा रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है।
0: बिल्कुल धारणी। तो बिना देर किए हम अपने श्रोताओं को सुनाते हैं आज का अगला ट्रैक।
1: जी बिल्कुल, चलिए तो दोस्तों चलिए सुनते हैं आमिर जमाल की आवाज़ में ये प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों, आमिर जमाल की आवाज़ में मर्डर फिल्म से इस गाने के साथ ही हम चलिए दोस्तों कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। आपका फिर से स्वागत है कार्यक्रम युववाणी में दोस्तों। और आज का दूसरा विषय बड़ा ही दिलचस्प है, खास करके युवा अवस्था में हमें ये बातें ज़्यादा उत्साहित करती हैं दोस्तों, जो अभी हम करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अब चर्चा की जाए संस्कृति और आधुनिक, या फिर आप कह सकते हैं न्यू एज फैशन के तालमेल के ऊपर।
1: बहुत ही अच्छी विषय है धारणी। और आजकल हम देखते हैं कि युवा पीढ़ी पारंपरिक और आधुनिक फैशन को मिलाकर एक नया स्टाइल बना रही है। आपको क्या लगता है कि बदलाव कितना सही है ये?
0: बिल्कुल प्रिया, मुझे लगता है ये बदलाव समय की मांग जैसा है। आज के युवा अपनी पहचान को नए तरीके से व्यक्त करना चाहते हैं, जैसे साड़ी के साथ स्निकर्स या फिर कुर्ते के साथ जैकेट। ये सब एक नए सोच का ही तो प्रतीक है।
1: बिल्कुल सही कहा धारणे आपने, लेकिन क्या इससे हमारी पारंपरिक संस्कृति कहीं पीछे तो नहीं छूट रही है ना?
0: ये एक अहम सवाल है प्रिया। दोस्तों, मेरा मानना है कि अगर हम अपनी जड़ों को समझकर फैशन को अपनाएं, तो ये संस्कृति को और भी ज्यादा जीवंत बना सकती है, जिसे हम वाइब्रेंट कहते हैं ना, और वाइब्रेंट बन जाता है हमारा कल्चर। क्यों, है ना प्रिया?
1: बिल्कुल बिल्कुल धारणे।

0: तो कहीं ना कहीं इसका असली अर्थ हम खो सकते हैं।
1: और हाँ, आजकल तो कई ऐसे डिजाइनर्स भी पारंपरिक कला को अपने डिजाइनों में शामिल कर रहे हैं,
0: जी
1: जैसे हाथों से बनी कढ़ाई या फिर ब्लॉक प्रिंटर्स या फिर लोक चित्रकला। बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जिसको लोग डिजाइनर्स अपने आप में शामिल कर रहे हैं उसके अपने डिजाइनों में।
0: बिल्कुल, हमारे बिहार से ही आप देख लीजिए जो मधुबनी पेंटिंग या फिर जिसको
1: काफ़ी
0: मैथिली
1: फेमस
0: पेंटिंग
1: है।
0: कहते हैं वो भी काफी फेमस है।
1: बिल्कुल
0: और
1: बिल्कुल
0: आजकल साड़ियों से लेकर जो इंडन इंडो वेस्टर्न एथनिक ड्रेसेस हैं उनमें भी इस चित्रकला का इस्तेमाल हो रहा है।
1: बिल्कुल धारणे। और एक दिलचस्प पहलू और भी है, सोशल मीडिया का प्रभाव।
0: जी बिल्कुल,
1: आजकल इंस्टाग्राम और यूट्यूब्स जैसे प्लेटफॉर्म या फिर अनेक ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिसपे फैशन ट्रेंड्स भी काफी तेजी से फैलते हैं और फैल रहे हैं, जो हमें देखने को मिलते हैं।
0: जी बिल्कुल। और साथ के साथ इसी वजह से आजकल क्या हो रहा है कि फैशन को एक नया रूप मिलता जा रहा है। और अभी जो हमने बात की लोक चित्रकला की, इससे क्या हो रहा है कि जो लोक कलाकार हैं, जो लोकल जो कारीगर होते हैं, उन लोगों को भी एक पहचान भी मिल रही है, एक पहचान का प्लेटफॉर्म मिल रहा है और साथ के साथ रोजगार भी मिल रहा है।
1: बिल्कुल धारणे। और छोटे शहरों और गांव में भी कई ऐसे लोग हैं जो नए स्टाइल्स को अपना रहे हैं और साथ ही साथ अपनी स्थानीय परंपराओं को भी वे कहीं ना कहीं प्रदर्शित कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि यही असली खूबसूरती है धारणे, जब कोई अपनी संस्कृति को गर्व के साथ आधुनिक अंदाज में प्रस्तुत करता है ना।
0: जी बिल्कुल, और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है जब मैं भी अपनी संस्कृति को कुछ आधुनिक अंदाज में पेश करूं सबके सामने। प्रिया, आपका इस पे क्या कहना है?
1: बिल्कुल सही कहा आपने धारणी। और पहले लोग होता था कि ये ड्रेसेज नहीं पसंद आ रहे हैं, फिर काफी मॉडर्न टाइप के जो ड्रेसेस थे, आज तो हम देखते हैं कि पहले के जो ड्रेस हैं आज काफी मॉडर्न में आ रहे हैं और वही हमारे संस्कृति को कहीं ना कहीं बचाए रखी और हमारी संस्कृति को बरकरार रखी है।
0: जी बिल्कुल सही कहा प्रिया। और आजकल एक और ट्रेंड आ गया है सस्टेनेबल फैशन का,
1: बिल्कुल
0: ये बहुत ज़्यादा आपको आजकल सुनने को मिल रहा होगा सोशल मीडिया पे और भी कई जगह लोगों से भी सुनने को मिल रहा होगा। एक्चुअली इसकी खास बात ये है कि पर्यावरण के अनुकूल जो कपड़े होते हैं, जो पहने जाते हैं,
1: बिल्कुल
0: उसको ये
1: धारणे।
0: सस्टेनेबल फैशन प्राथमिकता दे रहा है,
1: बिल्कुल
0: जो कि हमारी पारंपरिक जीवन शैली का हिस्सा शुरू से रहा है।
1: बिल्कुल सही बात है। और यानी इसके द्वारा हम देखते हैं कि हमारी जो आधुनिक फैशन है कहीं ना कहीं हमें अपनी पुरानी आदतों और मूल्यों को और भी वापस ले जा रहा है और उसकी तरफ हमारी रुझान बढ़ रही है।
0: बिल्कुल प्रिया। और दोस्तों, अगर हम ध्यान दें तो फैशन सिर्फ कपड़ों तक सीमित नहीं है, ये हमारी सोच, जीवन शैली और संस्कृति का एक आईना बनता जा रहा है।
1: तो श्रोताओं, बात तो साफ है फैशन में कि आधुनिकता फैशन में जरूरी है, लेकिन अपनी संस्कृति को साथ लेकर चलना हमारे लिए और भी जरूरी है। सही है ना धारणी।
0: जी बिल्कुल, क्योंकि दोस्तों असली स्टाइल वही है जो हमारी पहचान को दर्शाए और हमारी पहचान को और उभारे और अच्छा दिखाए।
1: बिल्कुल। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम श्रोताओं को कुछ संदेश भी शामिल करते हैं। हरियाणा से हमारी युवा दोस्त शुभ कहती है कि उन्हें इंडो वेस्टर्न एथनिक वियर पहनना बहुत पसंद है और उनका वार्डरोब जो ज्यादातर ऐसे ही कपड़ों से भरा हुआ है। पटना से दिव्या ने कहा है कि उन्हें पारंपरिक लहंगे के साथ मॉडर्न स्निकर्स बहुत बड़ी फैशन है, क्योंकि भरी लहंगे के साथ स्निकर्स जो हैं कंफर्टेबल फील करवाते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ट्रेडिशनल सिंपल साड़ी के साथ मॉडर्न लुक वाला बेल्ट साड़ी की खूबसूरती तो और बढ़ा देती है
0: जी
1: धारणी।
0: बिल्कुल, और ये सुन के जब मैंने अभी इमेजिन किया तो मुझे भी लगा कि सही में वो जो एक मॉडर्न लुक वाला बेल्ट होता है उसको आप पारंपरिक साड़ी के साथ पहने, वो
1: बिल्कुल
0: कितना और उसकी खूबसूरती को निखार देता है।
1: बिल्कुल
0: और इसी के साथ एक और हमारे सुधीर श्रोता का संदेश आया है, वो है पंजाब से। तो पंजाब से उदय कह रहे हैं कि कुर्ता पजामा के साथ स्निकर्स पहनकर खुद को वो और ज़्यादा कंफर्टेबल और स्टाइलिश महसूस करते हैं।
1: वाह, बहुत बढ़िया है। और इससे यह साफ है कि युवा पीढ़ी अपनी जड़ों से जुड़े रहते हुए भी नए प्रयोग करने से बिल्कुल नहीं हिचक रही है।
0: जी बिल्कुल प्रिया। तो दोस्तों, फैशन को अपनाएं लेकिन अपनी पहचान को कभी ना भुलाएं, कभी ना मिटाएं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ सुनते हैं अब ये नेक्स्ट ट्रैक।
2: नसीला नसीला तेरा नैना चुराई ले हमरा चैना।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे मूवी टशन से सुनिधि चौहान और पीयूष मिश्रा की आवाज़ में ये गीत। और इससे पहले हम चर्चा कर रहे थे फैशन, न्यू एज फैशन, और साथ ही साथ उसका क्या रोल है संस्कृति के साथ जब वो जुड़ जाता है उसमें। चलिए दोस्तों, अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं अपने स्पेशल सेगमेंट की ओर, जो कि है तकनीकी सोमवार। दोस्तों, AI, जी हाँ, AI, जहाँ सुनो बस AI की ही बातें चल रही हैं। इसीलिए आज तकनीक पर आधारित एक स्पेशल

0: बात, एक स्पेशल वार्ता हम लेकर आपके लिए आए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और रचनात्मकता विषय पर।
1: और सुनने में आ रहा है धारणी कि एआई के दौर में रचनात्मकता कहीं खो सी गई है।
0: लेकिन प्रिया, जरा सोचिए, अगर एआई का इस्तेमाल हम रचनात्मक ढंग से करें तो।
1: तो कैसा मुमकिन संभव है धारणी?
0: वैसे आपकी चिंता भी जायज है प्रिया, लेकिन कुछ हद तक तो ऐसा हो सकता है कि एआई हमारी रचनात्मकता को बढ़ाए या फिर उसे तराश सकती है कम से कम।
1: बिल्कुल धारणी, और एआई आज हमारे युवा में बहुत प्रचलित हो चुका है। जिसे देखो वो एआई का प्रयोग कर रहा है, जिसे देखो वो एआई की बात करता है। लेकिन क्यों ना हमारे युवा दोस्तों जाना जाए कि उनके विचार क्या हैं एआई और रचनात्मकता को लेकर के, है ना?
0: जी बिल्कुल प्रिया, नेकी और पूछ पूछ। तो आइए जानते हैं इस संबंध में हमारी युवा दोस्त और यूथ टॉकर रिद्धि आर्या क्या कुछ विचार साझा करना चाहते हैं।
2: नमस्कार दोस्तों, मैं रिद्धि आर्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में काम करती हूँ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में स्पेशलाइजेशन भी किया है। मेरे ख्याल से आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और यह तकनीक न सिर्फ भविष्य बना रही है बल्कि प्राचीनता से भी हमें जोड़ रही है। हमारी प्राचीन संस्कृति और विरासत को सुरक्षित रखने में हमारी मदद कर रही है। एआई के माध्यम से पुराने ग्रंथों का अनुवाद, ऐतिहासिक दस्तावेजों का अध्ययन और सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण आसान हो रहा है। यानी एआई और प्राचीनता का मेल हमें अपनी जड़ों से जोड़े रखते हुए आधुनिकता की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। दोस्तों, ये तो सही है कि हम समय के साथ आगे बढ़ रहे हैं और एआई से हमारे जीवन में एक क्रांति आई है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। हर छोटे काम के लिए एआई पर निर्भर हो जाएं तो हमारी सोचने समझने की क्षमता और रचनात्मकता धीरे धीरे कम हो सकती है। पहले जहां लोग खुद कल्पना करते थे, लिखते थे और नए विचार प्रकट करते थे, वहीं अब कई बार तैयार जवाबों पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। पहले हम प्राचीन दस्तावेजों को इकट्ठा करके अपना दिमाग का प्रयोग करते थे, तो अब सभी एआई पर ही निर्भर हैं। इसीलिए जरूरी है कि हम एआई को एक सहायक के रूप में इस्तेमाल करें, ना कि हम अपनी सोच और रचनात्मकता का विकल्प ही बना लें इसे। मेरे ख्याल से तकनीक तभी फायदेमंद है जब उसका संतुलित उपयोग किया जाए। साथ ही चलिए दोस्तों, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और रचनात्मकता के रिश्ते को थोड़ी और गहराई से समझते हैं। दोस्तों, क्या एआई हमारी रचनात्मकता को खत्म कर देगा या फिर यह हमारी कल्पना शक्ति को एक नई उड़ान देगा? आइए इन सवालों पर साथ मिलकर विचार करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि रचनात्मकता क्या है। रचनात्मकता यानी कुछ नया सोचने, बनाने और व्यक्त करने की क्षमता, चाहे वो कविता हो, संगीत हो, चित्रकला हो या कोई नया विचार हो, यह इंसान की सबसे अनमोल विशेषताओं में से एक है। आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि यही क्रिएटिविटी इंसान को यूनिक बनाती है। अब दोस्तों, बात करते हैं एआई की। एआई एक ऐसी तकनीक है जो मशीन को सोचने और सीखने की क्षमता देती है। आज एआई कविताएं लिख रहा है, गाने बना रहा है, पेंटिंग्स तैयार कर रहा है, यहाँ तक कि फिल्म की स्क्रिप्ट भी लिख रहा है। तो सवाल उठता है, जब मशीन भी रचनात्मक हो रही है तो इंसान की भूमिका क्या रह जाएगी? दोस्तों, यहाँ एक अहम बात समझनी होगी। एआई खुद से कुछ महसूस नहीं करता, उसके पास न भावनाएं हैं न अनुभव। वह सिर्फ डेटा के आधार पर पैटर्न पहचानता है और उसी के आधार पर कुछ नया जैसा बनाता है। यानी एआई एक टूल है, कलाकार नहीं। उदाहरण के लिए, एक पेंटर के पास ब्रश होता है, पर क्या ब्रश पेंटिंग बनाता है? नहीं, पेंटिंग बनाता है कलाकार। ब्रश तो सिर्फ माध्यम है। ठीक वैसे ही एआई भी एक माध्यम है जो हमारी कल्पनाओं को और तेजी से और नए तरीके से साकार कर सकता है। अब बात करते हैं एआई के फायदे की। पहला फायदा है स्पीड और सुविधा। एआई कुछ ही सेकंड में वो काम कर सकता है जो इंसान को घंटों या दिनों में लगे। दूसरा फायदा है नई संभावनाएं। एआई हमें ऐसे ऐसे आइडियाज दे सकता है जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं होगा। तीसरा फायदा है सीखने में मदद। नए कलाकार एआई की मदद से जल्दी सीख सकते हैं, नए स्टाइल समझ सकते हैं। लेकिन हर चीज के दो पहलू होते हैं। एआई के साथ कुछ चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी चिंता है मौलिकता यानी कि ओरिजिनलिटी। अगर हम कोई एआई से कंटेंट बनवाएंगे

0: तो क्या सब कुछ एक जैसा नहीं लगने लगेगा? दूसरी चिंता है रोजगार। क्या एआई कलाकारों, लेखकों और संगीतकारों की जगह ले लेगा? और तीसरा सोचने का विषय है निर्भरता। क्या हम अपनी सोचने की क्षमता खो देंगे अगर हम हर काम के लिए एआई पर निर्भर हो जाएं? इन सवालों के जवाब आसान नहीं है, लेकिन एक संतुलन जरूर संभव है। हमें एआई को एक कोलैबोरेटर की तरह देखना चाहिए, ना कि प्रतिस्पर्धी की तरह। सोचिए, अगर एक लेखक एआई से आइडियाज ले और फिर अपनी भावनाओं से उसे सजाए, अगर एक संगीतकार एआई की धुन को अपने अंदाज में ढाले, तो क्या वो रचना और भी समृद्ध नहीं हो जाएगी? असल में एआई और इंसान दोनों मिलकर और भी शक्तिशाली रचनात्मकता है। भविष्य उन्हीं का होगा जो एआई से डरेंगे नहीं, बल्कि उसे समझेंगे, अपनाएंगे और सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो श्रोताओं, अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, एआई हमारी रचनात्मकता का अंत नहीं है, बल्कि यह एक नई शुरुआत है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसे एक खतरे की तरह देखते हैं या एक अवसर की तरह। इसी सोच के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। आप सुनते रहिए, सोचते रहिए और रचनात्मक बने रहिए। धन्यवाद।
1: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे हमारी युवा दोस्त और युवा टॉकर रिद्धि आर्या के बात विचार, जो उन्होंने साझा किए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रचनात्मकता विषय के ऊपर। तो चलिए दोस्तों, अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला ट्रैक।

0: दोस्तों, कार्यक्रम युववाणी में आपका फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी पटना, अपनी रेडियो दोस्त धारिणी और प्रिया के साथ। तो दोस्तों, अभी अभी आपने सुना ये प्यारा सा गाना मूवी एजेंट विनोद से श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह की आवाज में। चलिए दोस्तों, अब अपने अगले सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं, जिसके लिए आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हमारा अगला सेगमेंट है स्पोर्ट्स अपडेट का। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं आज के दो मुख्य स्पोर्ट्स अपडेट।
1: दोस्तों, टेनिस में इटली ने यानी सिनर ने मतुआ मेड्रिड ओपन में पुरुष सिंगल का खिताब जीता। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हराया। तो धारणी, अब क्यों ना हम अपने श्रोताओं को इसी के साथ आज का अगला ट्रैक सुनवाएं।
0: जी जरूर। तो चलिए श्रोताओं, सुनते हैं अब हमारे कार्यक्रम का ये अगला मेलोडिक ट्रैक रूप कुमार राठौड़ की आवाज में।

0: तो दोस्तों अभी आप सुन रहे थे मूवी अनवर से गीत मौला मेरे मौला रूप कुमार राठौड़ की आवाज़ में। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी सेगमेंट रोचक तथ्य की ओर।
1: बिल्कुल धारणी। तो रोचक तथ्य में हम खास ये जानने वाले हैं कि आग जलने का मतलब बस आग जलना नहीं, बल्कि केमिकल रिएक्शन भी होता है दोस्तों।
0: जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ चलिए आपको कुछ और भी फायर से रिलेटेड रोचक तथ्य बताती हूँ। दोस्तों क्या आपको पता है हमारी पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ आग यानी फायर जलाया जा सकता है, और इसका सिंपल सा रीजन ये केमिकल रिएक्शन ही है प्रिया जी।
1: बिल्कुल
0: क्योंकि दोस्तों बाकी ग्रहों में ऑक्सीजन की कमी होती है, इसीलिए बाकी ग्रह पे हम चाह कर भी फायर नहीं जला सकते।
1: और दोस्तों, वाइल्ड फायर के दौरान पेड़ एक्सप्लोड कर सकते हैं। ऐसा तब होता है जब पेड़ की गहराई में भरा पानी जल्दी से भाप बन जाता है।
0: दोस्तों रोचक तथ्यों में आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है फायर से जुड़ी कई बातें आज आपको जानने को मिली और आपको ये सही मायने में रोचक भी लगी।
1: तो इसी के साथ ही धारणी, हम अपने श्रोताओं को आज का अगला ट्रैक ये सुनवाते हैं।

0: दोस्तों, ये था कार्यक्रम का आखिरी ट्रैक अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ में। चलिए इसी के साथ दोस्तों, युववाणी से हम लेते हैं विदा। फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

युवाओं को संबोधित कार्यक्रम युववाणी अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। शाम के 5:30 हो रहे हैं। आप सुनेंगे भोजपुरी कार्यक्रम आरती।

आरती के सुनिहार लोगिन के संगीता के प्रणाम। कहीं सभे का हाल चाल भा। देखी भाई, आज तो मौसम ऐसन भइल कि मतलब देखत बनल मन के और कहल जा रहा ना कि मस्तिष्क के बड़ा ही सुकून मिलल। काहे कि इन्हें 3-4 दिन से मौसम के जो रंग बा वो एकदम बदल गइल बा, और बदल गइल बा एकरा से बहुत ही हमने के राहत जोन बा वो मिलल बा। और सचमुच मौसम भाई जब एकदम सुहावना रही तो मन भी जोन बा एकदम सुहावना रही, बात बाकी ना। तो देखी कहल हम ई चाहब कि हमने के गर्मी के चलते तो इतना हाल बेहाल रहे 4-5 दिन पहले, ये 4-5 दिन से तनी मन जोन बा बहुत प्रसन्न रहा था मौसम के लेके। लेकिन देखी गर्मी के बारे में हम कहल ही चाहब कि लगते ना रहे कि ऐसा मौसम के भी हमनी के देखे के मिली। और देखी गर्मी में खास करके हम गर्मी के बात करी तो भाई अभी ऐसा ना समझी सब है कि गर्मी से निजात मिल गई बा हमनी के, अभी गर्मी हमनी के अभी झेले के बाटे। तो ऐसा गर्मी में हमनी के देखी अपना स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे के बा, और कहे के मतलब कि लू से बचे खातिर हमनी के बहुत सभी उपाय करेला। जैसे कि देखी आम के जोन पन्ना बा, बेल के शरबत बा, छाँच बा, नारियल पानी बा, प्याज के भी सेवन हमनी के करेला। काहे कि प्याज बहुत ही कारगर होखेला लू से बचावे में। और जब भी देखी अगर दुपहरिया में कोनो काम धंधा से निकले के होके तो माथ पर कपड़ा रख के सर के ढक के निकले के चाहिए। और एक बात और कहब कि बहुत लोग पुरान जमाना में लोग कहत रहे कि का भाई तो एगो प्याज जोन बा पॉकेट में रख लेवे के चाहिए अगर बहुत चिलचिला धूप बा आलू से बचे के बात। और अधिक से अधिक पानी के हमनी के प्रयोग करी जितना हो सके। और खास करके लोग देखें आजकल का करेला, फ्रिज के लोग पानी पिएला, लेकिन ना ये बहुत नुकसानदेह है। पहले जमाना में जैसे मटका के पानी पियत रहें जा उसे ही पिए के चाहिए। और खास करके दादी नानी के भाई देखें कोई को ऐसा घरेलू नुस्खा जोन बा जे कि हमनी के स्वास्थ्य खातिर बहुत ही उपयोगी बा, बहुत ही हम कह सकते नहीं कि लू से बचावे में कारगर बा। जैसे देख ली कि आम के उबाल के काला नमक आम

पन्ना के बाद कहीं नहीं है ना ओकर बनावे के, और पेट के ही ठंडा करेला। प्याज के रस बाद धूप में निकले से पहले एक छोटा सा प्याज जेब में रख लेवे के चाहिए, ओकरा के कान के पीछे ओकर रस के भी हमनी के लगा सकत नहीं। और ख़ास करके बेल जोन बा एकदम जहाँ देखें उजे मिलता, तो बेल के शरबत जोन बनु शरीर के गर्मी के जोन बा कम करेला और पेट के जोन बा ठंडा करेला। और छाछ लस्सी दोपहर के भोजन के बाद हमने के मट्ठा भी जीरा के साथ डाल के ओकरा में काला नमक के साथ पी सकत नहीं। और हम कहब कि भाई सत्तू, सत्तू के तो भाई इतना उपयोग बा, सत्तू घोर के पीहें, सत्तू खाई सकत नहीं हमनी के, सत्तू के रोटी बना के हमनी के खा सकत नहीं, तो लू में ये भी बहुत असरदार बा। और ख़ास करके नारियल पानी, पानी के जहाँ हम बात करब तो भाई पानी अधिक से अधिक जोन बा पिए के बा हमनी के, कि पसीना के माध्यम से हमनी के जोन बा वो पानी शरीर के निकल जाला, तो इससे पानी के अधिक से अधिक जोन बानू हमनी के उपाय करी पीही। और साथ साथ एक बात और कहल चाहब कि जब भी निकले को के तो गुड़ और इबली के बहुत बड़ा गुण बा कि एकरा के लू से बचाए में कर बहुत भूमिका बा। तो चलिए और सब गप सब करब हम, लेकिन अभी हमारा मन करता कि आज हमने के वो गीत सबसे पहले सुनल जाओ। कलाकार बानी ब्रजकिशोर, तो आई सुनल जाओ यहाँ से।

0: वाह वाह, बहुत ही सुंदर गीत रहे, लोक भजन हमने के सुनत रही जा कलाकार ब्रज किशोर जी से। तो आगे समय रही तो यहाँ से और भी गीत सुनब, लेकिन अभी हमने के सुनब जा बतकही, भोजपुरी लोक गीतन में संस्कृति आ देश प्रेम के झलक। भेंट वार्ताकार बानी मुरली मनोहर श्रीवास्तव और यहाँ से बातचीत कर रहा बानी हरेंद्र आजाद। तो सुन जाओ यहाँ बतकही।
1: कार्यक्रम सुने वाला रुआ सभी श्रोता लोग के हरेंद्र आजाद के प्रणाम बा। आज आरती कार्यक्रम में हमने के सुनल जाइए एगो बतकही। आई बतकही के विषय बा भोजपुरी लोक गीतन में संस्कृति या देश प्रेम के झलक। आई विषय पर हमारे साथे बातचीत करे खातिर स्टूडियो में आयल बानी वरिष्ठ पत्रकार लेखक साहित्यकार यहाँ के बानी मुरली मनोहर श्रीवास्तव जी। मुरली जी और कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बा
2: जी। नमस्ते।
1: हमने के भोजपुरी भाषी लोग बड़ा जीवट लोग होला
2: जी।
1: जीवन के हर मौका के आदमी आनंद उठावेला और ये सारा चीज हमने के देखे के मिलेला कि हमने के जौन गीत संगीत बा वो लोक गीत के रूप में बा
2: जी।
1: आ लोक गीत में जन्म से लेके मृत्यु तक ले के यात्रा में जितना भी पड़ाव आवता हर पड़ाव से जुड़ल लोक गीत बा। तो ये सब लोक गीतवन में अपन जौन संस्कृति बा सभ्यता बा आ देश के प्रति आगाध जौन मन में प्रेम बा एक रुआ कौन रूप में देखत नहीं कितना रचल बसल बा कितना घुलल मिलल बा भोजपुरी में। आप भोजपुरी भाषा आप भोजपुरी संस्कृति कितना समृद्ध बा सभी हमारे श्रोता लोग इनके बताएं।
2: सबसे पहले ये रुक बता दें कि भोजपुरी भाषा जौन बा जौन के हमने के गाई ला जा बोली ला जा जौन चीज के बहुत लंबा ना कह के ओह का गीत गीत के माध्यम से कहा जाला
1: जी।
2: जैसे एक बात कहा जाला कि भोजपुरी लोक गीत खाली मनोरंजन के साधन ना है
1: जी,
2: बल्कि भोजपुरिया समाज के आत्मा है
1: जी जी।
2: ई गीतन में गाँव घर खेत खलिहान मेहरारू मन परिवार परंपरा संघर्ष और देश प्रेम के गहरा भाव मिलेला
1: जी जी।
2: पीढ़ी दर पीढ़ी गावल जाए वाला लोक गीतन के भोजपुरी संस्कृति के पहचान बाटे
1: जी जी।
2: देश के माटी से जुड़ल भी बा। जैसे मरुआ एगो बात या याद कर सकतनी कि जैसे होली के समय आवेला तब इहो गावल जाला वीर कुंवर सिंह के गाना जो 1857 गदर के वीर सेनानी रहन कि बंगला में उड़ेला गुलाल। तो वो संदेश के देवे के उद्देश्य ये होला कि हम वो भाव के प्रकट करते रुआ प्रति हम भावना जगावतनी कि मैं देखी हमार भोजपुरी में यह बात के शुरू से लेके आखिरी तक के हमार चरित्र चित्रण
1: जी जी।
2: तो जब भी कभी मुरवा उठा के देख ली आजे ना एगो और बा के उदाहरण दे के भोजपुरी के ऐसा मने आकर्षण बा कि बोली में मिठास बा। लोग कहेला कि कोस कोस पर पानी बदले ऐसे कोनो कहा तो ये तरह के चीज बा। तो ई पूरी तरह से भोजपुरी ऐसे तब पूर्वोत्तर राज्य में ज्यादातर बोलल जाला लेकिन एक बिहार के अगर परिदृश्य में देखल जाओ
1: जी
2: तो आरण्य चंपारण्य असारण्य
1: जी।
2: रण्य के मतलब ही होला संस्कृत में जंगल। तो आरण्य चंपारण्य सारण्य में ये तीनों जिला जनबा ये बहुत बृहत पैमाना पर एकरा के गावेला। तो वह देखले हो कम कि अक्सर लोग भोजपुरी जब गावेला तो भोजपुरी के माध्यम से लोग ई इंडिकेट करेला। वह दूर से सुनब को भी आवाज आई तो गीत सुन के आज बारे लगा तो उनका यहाँ लड़का भइल बा
1: जी।
2: गीत अगर दूसर सुनत तो लगे कि उनका यहाँ शादी भइल बा। देशभक्ति बात लगा था कि देशभक्ति के कोनो ना कोनो कार्यक्रम चल रहा बा। तो ई एकर सबसे बड़ा प्रमाण बा।
1: मैंने जैसे लोग गीत रुआ सुने रावर मन में ये बात अपने आप पता चल जाये कि का मौका का बा
2: जी।
1: अब मौका के पता चल जाला ये लोक गीतवन में। अब तो हमने के देखल जाओ कि जो हमने की परंपरा बा संस्कृति बा बहुत पुरान बा

0: प्रिय समाज आज से ना आदिकाल से बा।
1: जी
0: तो कैसे कैसे समय के साथे में विकास भइल, आई यात्रा कब से कहाँ आरंभ भइल और कहाँ तक ले पहुँच गइल, तनी हम सोचते नहीं कि एकरा बारे में तनी हमारे श्रोता।
2: देखिए भोजपुरी के जहाँ तक हमारा जानकारी बा कि भोजपुरी के लिपि हटे कैथी
0: जी,
2: तो कैथी लिपि में एकरा के लिखा जैसे एगो मरवा के फिर एगो याद दिलावे चाहतनी कि 1000 से 1026 तक राजा भोज के पूर्वोत्तर राज्य के जीत के खुशी में बक्सर जिला में डुमराव के पास भोजपुर किला बा
0: जी,
2: तो उ बसैले रहन। तो ओजा एगो कहावत कहा जाए कि 52 गली 53 बाजार दिया जले 56 हजार। बात तो छोटा बा
0: जी जी,
2: लेकिन एकर अर्थ बा कि 52 गली यानी उ शहर जौन रहे कि 52 गली 53 गो बाजार लागत रहे
0: जी,
2: आ दिया जले 56 हजार यानी 56 हजार परिवारों के घर रहे वो
0: जी।
2: तब मूल एजा वही अति से मानल जाला कि राजा भोज के समय से भोजपुरी के उत्थान बा ये बा। लेकिन जब अगर थोड़ा सा अलग हट के बात कर जाओ तो रुआ एगो और चीज़ देख लो कम कि लोग कहला कि कहाँ बा हई गौवा कहाँ बा हो महल्ला कहाँ बा, तो लोग कहला अक्सर कहला कि नियरे बा
0: जी,
2: तो नियर तो अंग्रेजी शब्द से भी जुड़ल बा।
0: हाँ हाँ
2: आ ओकरा के हमनी के भोजपुरी में नियरे बोलते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये शोध के विषय बा
0: जी
2: कि नियर जन बोलल गई नियरे बात
0: कहीं हमने से उम्मीद ना चल गई
2: यही हो सकता है। तो ये भोजपुरी के सबसे बड़ा एगो शैली है जिए के जब जब जब से हुआ ये धरती के ये लोगन के संस्कृति के पता चलल तब से भोजपुरी के कहीं ना कहीं पुट मानल जाला। अभी एकरा में बहुत स्तर पर शोध करे के विषय बा
0: जी जी। तो अब देखल जाओ कि जब जैसे शुरू में भी हमने चर्चा करनी है सन कि जन्म से लेके मृत्यु के यात्रा के वृतांत में मिलेला आ प्रकृति प्रेम भी बा किसान भाई लोग खातिर बा
2: जी जी,
0: तो कैसे एक शुरुआत होला, कुछ दृष्टांत कुछ ऐसा महत्वपूर्ण तथ्य जौन रुआ जानकारी में होके जौन के श्रोता लोग के बताओ के चाहें कि कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी हमने के अपन गीतवन के माध्यम से अपन कहानी अपन पिछला इतिहास पहुँचाओ ता नहीं।
2: जिससे एगो रुआ सुन लो पहले भोजपुरी लोकगीतन में भोजपुरी समाज के जीवन शैली रहन सहन आ सोच के साफ झलक देखे के मिलेला।
0: अच्छा
2: एक प्रमाण बा कि जब यहाँ से गिरमिटिया मजदूर
0: जी
2: गैलन मरुआ मॉरिशस फिजी गुआना त्रिनिडाड में गैलन तो मजदूर बन के
0: जी जी,
2: लेकिन ई अपन भाषा के लेके गैलन
0: साथ में
2: अपन भाषा संस्कृति के लेके गैलन। जैसे कमला विश्वेश्वर मिश्र त्रिनिडाड के जे राष्ट्रपति बाड़ी उहो रहे वाली बक्सर के उनकर पूर्वज रहल बन
0: जी,
2: तो ऐसे स्पष्ट हो जाता कि हमनी के भाषा के विकास बहुत दूर तक भइल आ अपन संस्कृति के अपन सब चीज के उल्लू लेके गइल। जैसे अरुआ एगो सवाल पूछनी है कि एकरा में कैसे लोग अपना के प्रेजेंट करेला कि कैसे भोजपुरी के काका कहना बा, तो लोक संस्कार के परंपरा जन बा जैसे जन्म बा मुंडन बा ब्याह बा विदाई बा सोहर बा कजरी बा फगुआ बा झूमर बा ये सब लोक गीतन में सामाजिक संस्कारन के सुंदर चित्रण कइल गइल बा।
0: का बात जी,
2: अगर उदाहरण के रूप में देखल जाओ तो सोहर गीत में संतान के जन्म के
0: जी
2: आ खुशी के आ ब्याह गीत में पारिवारिक आ सामाजिक मर्यादा के बारे में बात होला। तो इससे स्पष्ट हो जाला कि हमनी के संस्कृति जन बा भोजपुरी के भाषा के जन बात कहल जा बहुत पुरान आ बहुत स्तरीय बा, आज भी स्तरीय बा। बीच में थोड़ा दिन गड़बड़ाइल रहे लोग थोड़ा सा लोकप्रियता खातिर थोड़ा सा मिसट्रैक भय रहा
0: माना कुछ फूड़ फन भी आ
2: हाँ, लेकिन आज रुक बता दें कि नाजिर हुसैन जब फिल्म बनैले रहन तो ओहो में भोजपुरी गाना से स्टार्ट कैले रहन
0: जी,
2: गंगा मैया तो है पीरी चढ़ेबो कि सैया से कर्दा मिलन वा हाय राम, तो इस सब की संस्कृति बा एकरा के भुलावल नहीं खेजा सके
0: जी। तो ई तो भइल हमने के संस्कार में कितने बा संस्कार गीतन के रूप में लोग गीत देखे के मिलल
2: जी,
0: आ समय के साथे जैसन जैसन आवश्यकता भइल जीवन के ओके लोग गीत के माध्यम से अपन अगला पीढ़ी तक ले पहुँचाए के प्रयास कैल हमने के पूर्वज लोग। आ जब शुरू में रुआ कहानी है कि वीर कुंवर सिंह जी से संबंधित गीत बा
2: जी,
0: जो उनके भोजपुरी में बहुत सारा गीत बा आ कुछ लोग आल्हा गावेला
2: आल्हा गावेला,
0: तो ए तरह के कौन कौन दृष्टांत बा कौन कौन झलक बजाना से बुझाए कि एकदम देश प्रेम खतरा हमने के जो नौजवान साथी लोग बा बहादुर भाई लोग बा एकदम लड़े के तैयार हो जाए बाजे तो रोंगटा खड़ा हो जाए।
2: एगो देख लो कि हमने के भोजपुरी भाषी के ज्यादातर प्रेम जन बा एक ग्रामीण परिवेश में होला
0: जी।
2: ऐसे भी भारत जो गाँव के देश है एकर 80% आत्मा जन बानु गाँव में बसेला आजो। रुआ एगो बात याद हुई कि बेतिया में वाल्मीकि नगर बा
0: जी,
2: वाल्मीकि नगर में वाल्मीकि रामायण के रचना के बहुत सारा प्रमाण मिलेला
0: जी जी।
2: तो सोची कि वो भोजपुरी भाषी इलाका में हम ये से उदाहरण देते नहीं वो भोजपुरी भाषा इलाका में कितना समृद्ध भोजपुरी हुई कितना समृद्ध लोग हुई हैं कि ओजा जाके इनका रचना करे के पड़ल हुई
0: जी।
2: अगर हम बक्सर के बात करें तो बक्सर में भगवान राम के धनुर्विद्या सीखे के पड़ल है तो ओगर भी तो भोजपुरी भाषा के लैंग्वेज हुई तो वो भाषा के उत्थान के तो ई धर्म काल से लेके ऐतिहासिक काल तक आ जाए तो ये सब चीज़ ओकरा में देखे के आल्हा करवा जिक्र कनी है आल्हा में भी वो चीज़ के जिक्र मिलला। तो जब हमनी के गीत कोनो गाई ले जाए तो ओकरा में ग्रामीण परिवेश पूरा तरह से

0: हावी रहला, जैसे रुआ के बता दी कि भोजपुरी गीतन के प्रकृति के खास जगह बा,
1: जी
0: जैसे खेत बा, नदी बा, आम के बगीचा बा, बरसात बा, सावन बा, चांद बा, हवा बा, ये सब गीत के आत्मा हवन। ग्रामीण जीवन के सादगी, श्रम और सामूहिकता में बहुत तरह से गूंजेला। जहाँ
1: जी
0: कोनो आयोजन भइल त ल्याओ एबरा गीत होके पूरा, और ओ मेरवा जब सुने लगम झूम जाइम तो लागी कि एमे का बा, ये पूरा के पूरा संस्कृति ओकरा मेरवा देखे के मिलेला।
1: जी जी
0: जी
1: तो अच्छा, अब जैसे अभी देखिए होली नियर आइले बा,
0: जी
1: पहले हमने के बचपन के याद कइल जाओ।
0: जी
1: जब होली आई तो साँझ के साँझ सारा लोग, बड़े बुजुर्ग लोग, इवन लड़का भी साथे जुट जाए लोग,
0: जी
1: ढोल मजीरा बाजे लागे, आ वो होली फाग होके लागे, चैत में चैती बाजे, कजरी चले समय के हिसाब से। तो आज रुआ का बुझाता है ये युग में, ये समय में जब हमने के कुछ ज्यादा आधुनिक हो गई बने, तकनीक के जमाना बा, तो ये हमने के जौन संस्कार आ संस्कृति रहे
0: जी
1: आ जौन हमने के बाबा दादा से मिला रहे, वो आज जिंदा बा कि हाशिया पर चल गए।
0: देखिए, शुरुआती दौर में हर नया पीढ़ी जोन बानू थोड़ा सा मिसट्रैक होला,
1: जी
0: ओकरा लागेला कि हमरा पहले वाला पीढ़ी पिछड़ गेल बा,
1: जी
0: आ इनका लागेला कि हम बहुत आगे निकल गए। जब जिम्मेदारी के आगे उनका बोझ बढ़ेला तो उनका फील होला कि ना, जो बाबूजी या भैया जो कहले रहन उहे बतिया सही बा। तो आज भी लोग संस्कृति के भुलाइल, लेकिन आजो रुआ होली वैसे ही मनावतनी। आजो रुआ भिखारी ठाकुर के बात ना कल जाओ, भोजपुरी के बात होके
1: जी
0: भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर के जिक्र ना कल जाओ, तो ये बहुत बड़ अथी बा।
1: जी
0: वो लिखलन कि रुआ विदेशिया नाटक के आज तक विदेशिया चरम पर बा, जरा के लोग एक मानक मानेला।
1: जी जी
0: पिया गईले परदेश कलकत्ता सजनी, तो इस
1: जी
0: एकरा में वो झलक के दिखावता कि हम गांव से निकल के जाते नहीं, ग्लैमराइज हो गई बनी, बाहर गई बनी, लेकिन फिर जब लौट के आवते तो हमारा अपन गांव आवे मिट्टी हमारा के फिर जीवित रखता। ये पूरा नाटक के तथ्य ये बात। तो ऐसे एक चीज के मानल जा सके, कितना भी कोई एडवांस हो जाए, कितना भी कोई आगे बढ़ जाए, दुनिया के क्षेत्र में एक सबसे बड़ा उदाहरण वाक देते हम कि हम बहुत आगे बढ़ गए, लेकिन लोक परंपरा के पर्व मानल जाला छठ,
1: जी
0: आ वो छठ के आज विदेश में भी मनावल जाला, आ उहे भोजपुरी गीत गावल जाता, उहे यहाँ के लोकल गीत के गावल जाता। तो कैसे मान ली कि लोग अपन संस्कृति के भुलाता, ओकरा के तरीका बदल गेल बा, कहे के रखे के तरीका बदल गेल बा, तब परिवर्तन भइल बा। ई बात बा कि थोड़ा सा देर सबेर, लेकिन वह चीज़ के दरकिनार नहीं कैल जा सकत। भोजपुरी आज भी हावी बा, भोजपुरी आज भी प्रभावी बा।
1: निश्चित रूप से अपन भोजपुरिया में एगो कहावत भी बा कि
0: जी
1: कितनों चिड़ै उड़िए आकाश करिए धरती के आस,
0: आस
1: तो धरती के बिना आदमी के पैर के नीचे जब ले जमीन बता आदमी के अस्तित्व बा, जमीन ना रही तो अस्तित्व खतरा में आ जाए। तो
0: यह
1: कुछ
0: नहीं
1: बता
0: खे एकरा साथ साथ एगो चीज और हुआ देखें कि भोजपुरी जन बानू आपसी मिलत के भी बहुत बड़ा उदाहरण बा।
1: जी।
0: ये जब भी देखें भोजपुरी लोकगीत जाति धर्म वर्ग से ऊपर उठ के सामाजिक एकता के संदेश देला।
1: जी।
0: कभी भी झगड़ा लड़ाई के फेरा में भोजपुरियन के ना देखम, थोड़ा सा बोली कभी कड़ा हो सकता लेकिन दिल उतने मुलायम होला। ये गीत व भाईचारा के आपसी प्रेम त्याग सहयोग के भावना से तबे न बताई कि वीर कुंवर सिंह एजा से देश के ऐसा माने युद्ध लड़लन कि 9 महीना अपना जगदीशपुर से बाहर जाके 15 गो युद्ध लड़लन, 15 हो जीत गलन, आ वो अंग्रेजी सेना से लाठी या तलवार लेके। तो भोजपुरियन के तो अपन हथियार ये कुल बा, लाठी बा,
1: जी
0: डंडा बा, तलवार बा, बर्छा बा, ये कुल बा, वही पर लोग आगे बढ़ेला।
1: जी जी निश्चित रूप से ही अपन भोजपुरी भाषी लोग के खान पान, रहन सहन, संस्कार और संस्कृति बड़ा समृद्ध बा।
0: जी
1: जरूरत बा आज के दौर में वो थाती के संभाले के,
0: जी
1: संजोए के, संरक्षित करे के, अगला पीढ़ी में बढ़ाए के,
0: बढ़ावे के
1: जौन थोड़ा बहुत निरस्ता फुहड़पन आ गेल बा ओकरा के साफ कैला के जरूरत बा।
0: वो देखी बाजारवाद बा,
1: जी
0: अश्लीलता बा, लोकगीत थोड़ा सा भटकल रहे, लेकिन अब धीरे धीरे लोगन के समझ में आवता है। वह देखले हो हम कि भोजपुरी गाना जोन अश्लील बा आज भी घर में ना बाजे,
1: जी
0: लोग
1: जी
0: वगैरह के ट्रके या ट्रैक्टर में लोग बजा के अपन एंजॉय कर लेते हुए, बाकी के घर में आज भी नहीं खे बाजत। और वह कहीं ना देख लो कम कि एक बारे में कि भोजपुरी गीत ऐसा बाजत, कोई भी भोजपुरी भाषी से पूछ नहीं घर में अश्लील गाना बाजत हो के।
1: जी
0: तो भोजपुरी पढ़ल होखस, चाहे आज भी अशिक्षा के में थोड़ा सा कुछ लोग बचलो होखस, तो हमारा नहीं खेला कि भोजपुरी के अश्लीलता के तरफ
1: निश्चित
0: जा
1: रूप
0: रहे।
1: से ऐसा मीठ बोली भाई जी हो रउआ कहल जाता कहाँ ही कहीं देखे के मिलेला।
0: ना
1: तो उम्मीद बा हमारे श्रोता लोगन के ये आज के बात कही अच्छा लागल होई, आई अपन ये मातृभाषा भोजपुरी के सम्मान हम सब मिल के दिहल जाए, एकरा के आगे बढ़ावल जाए, अपनी संस्कार के अपनी संस्कृति के आगे अक्षुण बनाओ खतरा पूरा प्रयास कर जाए।
0: जी
1: हम सबने के ये समझी के एक तरह से असली हथियार ये बा अपन आवाज़ एकरा के बना के रखे के बा।
0: एकदम
1: आज मुरली जी रुआ अपन बहुमूल्य समय देनी आकाशवाणी के हमारे श्रोता लोग खातिर स्टूडियो में आईनी।

0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी। धन्यवाद।
2: अभी हमने के सुनत रही जा बत कही भोजपुरी लोकगीतन में संस्कृति और देश प्रेम के झलक। भेंट वार्ता कर रही मुरली मनोहर श्रीवास्तव और भेंट करता हरेंद्र आजाद। तो दोनों केहू के बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कहते नहीं। बहुत ही बढ़िया ये रहे बत कही और विषय भी एकर बहुत ही बढ़िया और बहुत अच्छा से यहाँ के जानकारी भी देनी। तो चलिए अब जैसन की कहानी रुआ सब ऐसे कि भाई गीत गौनई से मन ना भरे तो चलिए एगो और ही गीत हमने के सुनल जाओ ब्रज किशोर जी से।

वाह वाह, बहुत ही सुंदर हमने के गीत सुनने जा। और ये दोनों गीत खाती ब्रजकिशोर जी के बहुत बहुत धन्यवाद कहतनी। और देखें हम

ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। हम आपको बता दें आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। सात बजकर 7:30 पर प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे। जिले की हलचल सुनेंगे 7:47 पर।

7:52 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम होगा। आप सुनेंगे नईम अली की गाई गजल। आठ बजे सुनिए फिल्म संगीत। बजकर 30 मिनट पर सुगम संगीत का कार्यक्रम होगा और पूनम कुमारी की गाए कुछ गीत हम आपको सुनवाएंगे। आठ बजकर 45 मिनट पर समाचार संध्या, 9 बजे न्यूज एट 9 और 9:15 पर उर्दू में खबरें प्रसारित होंगी। रात्रि 9:30 पर पब्लिक स्पीक का समय होता है, इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं। रात्रि 10 बजे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सोमवासरीय संगीत सभा में आज राम प्रकाश मिश्र का ख्याल गायन हम आपको सुनवाएंगे, राग जय जयवंती। रात्रि 10:30 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा। आज हम कुछ पुराने फिल्मी नगमे आपको सुनवाएंगे। रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार प्रसारित होंगे।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: कहां चलती है, इधर तो आओ।
4: इधर आइए, इधर।
5: इधर?
4: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए, और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
6: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
5: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
6: बिहार और

0: झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
1: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
0: शुभ वाणी,
1: लाभवाणी,
2: आकाशवाणी।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

0: सोनू निगम और श्रद्धा पंडित को आपने सुना फिल्म संघर्ष में, समीर के बोल, जतिन ललित का संगीत। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में लेंगे एक अंतराल, सुनवाएंगे कुछ और गीत।
1: इधर आइए, इधर।
2: इधर?
1: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
3: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
2: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
3: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
2: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
3: शुभ वाणी,
2: लाभवाणी,
1: आकाशवाणी।

अलका याग्निक और हरिहरन को आपने सुना फिल्म खामोशी में, मजरू के बोल, जतिन ललित का संगीत और इसी के साथ फिल्म संगीत का आज का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ है।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। थोड़ी देर में संस्कृत समाचार प्रसारित होंगे।
2: एम आकाशवाणी। संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। आदौ मुख्य वार्ताः। पश्चिमबंगस्य विधानसभा निर्वाचने भाजपेति दलं प्रबल जनादेशं प्राप्तुं सज्जमस्ति। अष्टचत्वारिंशत् स्थानानि जित्वा प्रायः सार्धैकशताधिकेषु च अग्रे अस्ति। तृणमूलपक्षः त्रयोदश स्थानानि जित्वा त्रिसप्ततिस्थानेषु च अग्रे अस्ति। असमराज्ये भाजपेति दलं तृतीयावधिं यावत् पुनः अधिकारं प्राप्स्यतीति निश्चितम्। तमिलनाडुराज्ये अभिनेत्रितः राजनेत्रीरूपेण परिवर्तितः विजयस्य TVK इति दलं बृहत्तमदलत्वेन उद्भूत्वा इतिहासं रचयति। अपि च केरलराज्ये काङ्ग्रेसपक्षस्य नेतृत्वे UDF इति दलसमूहः LDF इत्यस्य स्थाने स्पष्टं बहुमतं प्राप्तुं प्रस्थितः। NDA दलसमूहश्च पुदुच्चेरी केन्द्रशासित

0: उदय भाई, आज 4 मई है, पता है?
1: हाँ,
0: और हर दिन की एक कोई ना कोई खासियत होती है, और हर एक दिन किसी ना किसी के रूप में, दिवस के रूप में हम लोग मनाते
1: निश्चित
0: हैं। कोई ना
1: निश्चित
0: कोई, किसी का जन्म दिवस होता है, या
1: निश्चित
0: किसी के लिए मतलब उस दिन कोई खास काम भी हुआ होता है। तो आज जो 4 मई है, आज का जो दिन है, आज है कोयला खनिक दिवस। यानी कि ये उन श्रमिकों के लिए मनाया जाता है जो खदानों में काम करते हैं, और उनके कठिन परिश्रम, समर्पण, और उनके द्वारा जो राष्ट्र की ऊर्जा और जो ज़रूरतें हैं उसे, विशेषकर बिजली उत्पादन को पूरा करने में उनका जो योगदान दिया गया है, तो उन्हें सम्मानित करने के लिए ये दिन उनके लिए समर्पित है।
1: चुम बहन, अभी 1 मई बीतल है, मजदूर दिवस,
0: मजदूर दिवस। हाँ,
1: 3 दिन मने तीसरा चौथा
0: आज
1: दिन
0: आज
1: बा।
0: चौथा दिन है।
1: श्रमिक जे बारे जे हमनी के श्रम करे वाला वर्ग बा, वो समाज खातिर अपन सबसे बेहतर योगदान दे वाला।
0: एकदम।
1: हमनी के मई दिवस के बहुत हर्षोल्लास से याद करी ले, यह रूप में कि हमनी का शिकागो में जे आंदोलन भइल, जहाँ ए तरह के श्रमिक भाई लोग अपन बात उठौनी, और तब जे बा एगो सिद्धांत बनल कि 24 घंटा जे समय बा ओमें 8 घंटा रुआ काम करे के बा, 8 घंटा आराम करे के
0: आराम।
1: बा, और 8 घंटा के समय जे बा उरा और जे दैनंदिन के जे
0: काम है।
1: का
0: हाँ,
1: हम
0: दैनिक
1: बहुत
0: कार्य।
1: बहुत बोला,
0: हाँ
1: तो ई जे बा एक मूल सिद्धांत रहे,
0: हाँ
1: और यही सिद्धांत के आगे बढ़ावत भारत सरकार जे बा वो एकरा के 2017 में ई दिन के
0: हाँ,
1: खणिक दिवस घोषित
0: खनिक
1: कर।
0: दिवस।
1: हाँ,
0: हाँ, बिल्कुल।
1: प्रेरणा प्रेरणा वहाँ से आई।
0: हाँ, कि लोग उनके बारे में जाने, और उनका जो देश के प्रति समर्पण है, तो कम से कम हम लोग उनको सम्मान स्वरूप एक दिवस तो उनके लिए हम लोग मना ही सकते हैं।
1: निश्चित
0: और ये दिन जो है खनिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ, उदय भाई, उनके जो जोखिम भरे कार्य है उसके लिए आभार व्यक्त करने का ये अवसर है, कहीं ना कहीं।
1: कोयला खदान में
0: हाँ,
1: घुसत
0: घुस।
1: देखले बने रहुआ, कर हमने के यहाँ
0: हाँ,
1: बिहार
0: देख।
1: में तो
0: हाँ,
1: कोयला खदान
0: हम लोग तो
1: देखे
0: फिल्मों में ही देखे।
1: अपना, चूंकि जब बिहार संयुक्त रहे
0: हाँ,
1: तो
0: उस
1: अपना
0: समय
1: यहाँ
0: था।
1: भी
0: हाँ
1: 2000 के पहले बड़ा कोयला खदान रहे झड़िया धनबाद में, फिर जेबा गोड्डा जिला के झारखंड
0: झारखंड
1: के
0: में।
1: हम जे
0: हाँ
1: ललमटिया के कोयला खदान
0: जी
1: स्टर्लिंग
0: जी जी
1: कोलफील्ड वगैरह, तो ई सब जे सरकार क्षेत्र के जे कंपनी रहली सन, तो
0: हाँ
1: ई सब बड़ पैमाना पर खदाई खुदाई वहाँ होके, और श्रमिक लोग जे बा ओकर ओमे कतना कठिन,
0: कठिन,
1: कुछ कुछ
0: सही बात।
1: अनुभव हमरा भइल बा कि वहाँ का बेल्ट पर बैठ के और वो पट्टा लगा के वहाँ का माथा में
0: माथा में
1: लाइट
0: लाइट।
1: मरला,
0: हाँ, वो
1: और
0: सब।
1: वहाँ का तब जेबा वो एक बहुत भीतर में कई बारों में कई तरह के समस्या होला, खुदाई के दौरान ही पानी निकल आवेला, जल भराव हो जाला, तब वो सकत संकट होला। कई बार जेबा वो खदान जेबा यदि सही ढंग से ओकरा में हमने का ना लगोनी जे ओकरा ऊपर से धसान रोके खातिर,
0: हाँ,
1: तो कई बार धस जाला,
0: एकदम सही।
1: तो यह कठिन परिस्थिति में वहां सभी काम करके हमनी खातिर ऊर्जा के स्रोत
0: सही बात है,
1: हमनी के प्रदान कर रहल बनी,
0: एकदम।
1: तो वहां के अमूल्य योगदान बा वह संघर्ष के शब्द में और मूल्य में बहुत तौलल
0: बहुत
1: नहीं थे।
0: बहुत सही बात है। हम लोग शब्दों में उनके जो समर्पण को हम लोग व्यक्त नहीं कर सकते। और जैसा कि आपने कहा कि कई ऐसी ऐसी परिस्थितियां वहां आ सकती थी, जैसे कठिन परिस्थितियों में वो काम करते थे और करते हैं भी, और देश को जो ऊर्जा
1: निश्चित
0: की
1: निश्चित
0: जरूरत है
1: निश्चित
0: उसमें पूरा करने में उनका जो योगदान, और सचमुच उनका जो जीवन है बहुत कठिन होता था। कभी कभी अंधेरी और संकरी खदानों में भी काम करना पड़ता, जहाँ हवा की कमी होती है, धूल है, कई दुर्घटनाएं भी हो जाती है, अचानक पत्थरों का गिरना, और जान जोखिम में डालकर ये जो हमारे खनिक में काम करने वाले जो लोग हैं, मजदूर हैं, सचमुच अपना जान जोखिम में डालकर काम करते हैं। लेकिन इसके बाद भी उनका जो हौसला और समर्पण सचमुच बहुत ही प्रशंसनीय होता है। और इनका इस दिवस को मनाने का यही भी है कि उनके योगदान को हम सम्मान करें, उनके अधिकारों और सुरक्षा के प्रति हम
1: ज्यादा
0: जागरूकता। हाँ।
1: संवेदन

0: सील
1: हाँ,
0: हमनिका बने
1: होना
0: छन
1: चाहिए।
0: और हमनिका ई समझे सन कि वहाँ के योगदान जे बा वो कोनो तरह से कमतर कहें कि एक विशिष्ट योगदान बा
1: एकदम,
0: ऊर्जा क्षेत्र के।
1: कहीं ना कहीं उदय भाई, हम लोग ऐसे कोयला खनिकों को जिन्हें हम लोग देख नहीं पाते कि वो खदानों में किस तरह से काम करते हैं, हाँ, तो हम हमारे लिए, हमारे देश के लिए वो कह सकते हैं कि अनदेखे नायक के रूप में हैं, और
0: हाँ
1: उनका परिश्रम है देश की ऊर्जा का आधार है, तो हम सभी को उनके प्रति सम्मान व्यक्त करना चाहिए और
0: निश्चित,
1: उनके बेहतर उनका जीवन बेहतर बन सके इसका प्रयास करना चाहिए।
0: हाँ
1: तो चलिए इसी बात पर हम लोग क्यों ना लोकगीत सुन लें।
0: हाँ
1: तो
0: सुने क्या?
1: हमारे कलाकार हैं संत राज सिंह रागेश, सुनते हैं इनसे पूर्वी लोकगीत।
0: सुने क्या?

तो बोले तो

0: तो उदय भाई, मजा आ रहा है?
1: संत राज सिंह राकेश
0: तो इनसे हम लोग पूर्वी सुन रहे थे, क्यों ना एक और पूर्वी गीत सुन लिया जाए?
1: सुने के
0: सुनते हैं एक और पूर्वी गीत।

पतरा रसरिया मोर सवारी।

0: हम लोग सुन रहे थे संतराज सिंह रागे से पूर्वी लोकगीत।
1: बढ़िया लागल।
0: तो आगे भी इनसे गीत सुनेंगे उदय भाई, लेकिन अभी
1: हाँ
0: समय हो चला है प्रायोजित कार्यक्रम का, तो सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद।
1: सुनिए।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।

नमस्कार, कैसे हैं आप सब? होली बीत गई, कैसी रही होली? हाँ, कैसी रही? अच्छी रही? अरे बताइए ना। अच्छा, फोन कॉल करके बताइएगा जब हम नंबर आपको बताएंगे। फिलहाल बुनियाद कार्यक्रम एक बार फिर से लेके राजेश आ गया आप सबों के घर आंगन में। ढेर सारे फोन कॉल आए, 2 तारीख को कार्यक्रम बजा था लेकिन अभी तक फोन कॉल आ रहे।

0: बातें ही हमने ऐसी की थी, बीएड की बातें की थी और बीएड इंटीग्रेटेड स्पेशल बीएड की बातें की थी, जो 4 साल का कोर्स होता है और अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है। आज उसके अगले हिस्से को हम लेकर आए हैं। ढेर सारे सवाल आए हैं जिसमें एक सवाल ये कॉमन है कि बीएड और बीएड स्पेशल एडुकेशन जो इंटीग्रेटेड कोर्स है उसके बारे में फिर से एक बार बता दिया जाए। जरूर बताएंगे, ये कार्यक्रम है आपके लिए, हम तो सिर्फ एक माध्यम हैं जानकारियां पहुंचाने के लिए। थैंक यू कहते हैं गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमुआर सासाराम रोहतास बिहार को कि जिन्होंने बुनियाद जैसा कार्यक्रम लेकर आने का मौका दिया। बहुत अच्छा लगता है जब आपके फोन कॉल्स आते हैं और उससे भी अच्छा लगता है जब आप यूनिवर्सिटी के कैंपस में आते हैं देखने के लिए। एक आध बार मुलाकात हो गई है कुछ लोगों से हमारी भी, भला आप ही राजेश जी हैं, हमने कहा जी अच्छा लगता है सर, थैंक यू। तो हम थैंक यू, आभार, अभिनंदन आपका करना चाहते हैं कि आप हम पर इतना विश्वास करते हैं। बहरहाल टेक्निकल पढ़ाई की बातें हम लगातार कर रहे हैं कि टेक्निकल पढ़ाई करनी चाहिए। अगर आपने पैरामेडिकल की पढ़ाई की तो पैरामेडिकल के अंदर में टेक्नीशियन हो सकते हैं, ओटी असिस्टेंट हो सकते हैं, आप रेडियोलॉजी में जा सकते हैं, इसके अलावा फिजियोथेरेपी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, आप नर्सिंग में जा सकते हैं, एएनएम और जीएनएम बन सकते हैं, आप फार्मेसी में बी फार्मा, डी फार्मा या फार्म डी कर सकते हैं, या जर्नलिज्म में जा सकते हैं, 5 ईयर का इंटीग्रेटेड लॉ कर सकते हैं, बीबीए मैनेजमेंट के साथ लॉ, बीए के साथ लॉ, बीएससी के साथ लॉ, अगर आप 3 साल वाला भी लॉ करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर आप पत्रकारिता में जाना चाहते हैं तो जर्नलिज्म कर सकते हैं, लाइब्रेरी में किताबों से आपको बहुत प्यार है तो किताब के रख रखाव के लिए एक पढ़ाई होती है लाइब्रेरी साइंस, आप उसमें जा सकते हैं, ढेर सारी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन आज हम बात करेंगे एक बार फिर से डॉक्टर अवनीश रंजन से जो पुनर्वास विभाग में डीन हैं गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में, और हम स्पेशल की बात करते हैं, चैलेंज की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम नंबर बताए देते हैं, नंबर नोट कर लें, नंबर है 9431899002, 9431899002, और दूसरा नंबर है 1800121005, 1800121005। और दूसरे कोर्स के बारे में भी या यूनिवर्सिटी के बारे में, हॉस्टल के बारे में अगर आप जानकारियां चाहते हैं तो www.gnsu.ac.in ये वेबसाइट का पता है, आप यहां जा सकते हैं। बहरहाल हाँ, एक जानकारी और ये है कि अगर पैसे की समस्या है ना तो 4 लाख का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है जो बिहार सरकार देती है, इससे भी बहुत सारे कोर्स किए जा सकते हैं। आप पता लगाइए और गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय आ जाइए, या ये जो नंबर है 9431899002 या 1800121005 पर पूछ लीजिए। बहरहाल डॉक्टर अवनीश रंजन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर आप अपने बारे में बता दीजिए थोड़े में।
1: मैं डॉक्टर अवनीश रंजन और गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी में फैकल्टी ऑफ रिहैबिलिटेशन साइंस के डीन के पोस्ट पे हूँ, और हमारे यहाँ मुख्य रूप से 3 कोर्सेज अभी संचालित हो रहे हैं इस फैकल्टी से, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी और इंटीग्रेटेड बीएड स्पेशल एजुकेशन। बीएड स्पेशल एजुकेशन के 2 स्पेशलाइजेशन हैं, इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी यानी बौद्धिक अक्षमता और हियरिंग इम्पेयरमेंट यानी श्रवण बाधिता, ये 2 में हमारे इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स 4 साल वाले चल रहे हैं।
0: चलिए एक सवाल जो आपने पिछले सप्ताह बताया था उसमें एक बार फिर से ये बताने की बात कही गई है कि जो प्लेन बीएड 2 साल का ग्रेजुएशन के बाद होता था और जो इंटीग्रेटेड बीएड है जो इंटर के बाद 4 साल का होता है, और जो स्पेशल शब्द जुड़ा है जिसमें, उसके बारे में एक बार फिर से बता दीजिए, फिर बातों को हम आगे बढ़ाएं।
1: बीएड का ये मतलब है कि बच्चे तभी एडमिशन लेते हैं जब उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है, मतलब 3 साल के कोर्सेज हैं। कई बार यूनिवर्सिटी लेट होने के कारण, एग्जामिनेशन लेट होने के कारण 4 साल 5 साल भी लड़कों को लगते हैं, उसके बाद फिर 2 साल का बीएड करना होता है और तब आप टीचर के लिए एलिजिबल होते हैं बीएड करने के बाद। लेकिन ये जो नया बीएड आया है इंटीग्रेटेड बीएड, जिसको इजी टेप बोलते हैं, कई लोग आप जानते होंगे एनसीटी जो नेशनल टीचर एजुकेशन काउंसिल है उनके द्वारा भी आईटेप चलाया जाता है, इंटीग्रेटेड

0: टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, वो भी इंटीग्रेटेड बीएड ही है, वो 4 साल का वो भी है। वहाँ पे जनरल बीएड की पढ़ाई होती है और हमारे यहाँ स्पेशल बीएड की पढ़ाई होती है। अब स्पेशल ये है कि अभी जो कॉन्सेप्ट सीबीएसई ने या आईसीएसई बोर्ड ने या स्टेट बोर्ड ने ये कंपलसरी किया है कि हर स्कूल में एक स्पेशल एजुकेशन के टीचर को की का अपॉइंटमेंट जरूरी है, ये कंपलसरी हो गया है। और आप देखे होंगे पिछले 6 महीने के अंदर में सेंट्रल स्कूल जो है हमारा केंद्रीय विद्यालय संगठन भारत सरकार और नवोदय विद्यालय संगठन भारत सरकार, इसके द्वारा देश के स्तर में वैकेंसी निकाली गई हर नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय में। साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट ने, और खासकर बिहार की बात हम करें तो बिहार ने बीपीएससी जो बिहार सर्विस पब्लिक कमीशन है वहां से भी वैकेंसी टीचर की आई और 29 जनवरी को ही करीब 7,500 पोस्ट पे वैकेंसी आई थी जिसका रिटन टेस्ट हुआ है और उसके बाद वो स्कूल गवर्नमेंट स्कूल के टीचर के रूप में वो अपॉइंट हो जाएंगे। तो वो जो डिग्री है जिसके बेस पर वो बीपीएससी की परीक्षा देंगे या सेंट्रल स्कूल या नवोदय विद्यालय में ज्वाइन करेंगे वो यही इंटीग्रेटेड बीएड है या यही बीएड स्पेशल एजुकेशन कोर्स है।
1: चलिए आगे बढ़ते हैं जहां से हमने छोड़ा था। डॉक्टर अविनीश से हम कहना चाहेंगे कि डॉक्टर अविनीश, आप ये पढ़ाई करके चाहे जहां के रहने वाले हों, भागलपुर, पूर्णिया, किशनगंज, सहरसा या फिर और भी गोड्डा के रहने वाले हों या फिर आप डाल्टनगंज के रहने वाले हैं, कहीं भी आप ये पढ़ाई करके एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं और आप अपना क्लिनिक खोल सकते हैं, समाज की भलाई भी कर सकते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहिएगा?
0: मैं बताना चाहूंगा कि हमारा जो गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी है वो एक रूरल एरिया में हमारा यूनिवर्सिटी है और ये रोहतास डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पर भी हम लोग कैंपस के अंदर में इस तरह के न्यूरो डेवलपमेंटल सेंटर हमारे यहाँ चलते हैं जो इस तरह के बच्चों के रिहैबिलिटेशन के लिए, उनकी थेरेपी के लिए, उनके एजुकेशन के लिए हम लोगों ने डेवलप किया है। और आप जैसे लोग जो इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे, करने के बाद आप सक्षम ऐसे होंगे कि आप ऐसा सेंटर अपने गांव में, अपने शहर में, अपने कस्बे में खोल पाएंगे। आप उनको तो सर्विस देंगे ही, एक बहुत ही नोबल सर्विस है, वो तो आप देंगे ही, साथ साथ आप एक अच्छी अर्न भी आपकी अच्छी होगी, क्योंकि इसमें क्या है कि बच्चे जो आज बॉम्बे में जाके, दिल्ली में जाके, बड़े शहर में जाके इलाज करा के लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं, वो तो बच्चों का क्या होगा कि अपने पेरेंट्स के साथ भी रह पाएंगे और आपके यहाँ थेरेपी होगी तो आपका भी एक अच्छे से धनोपार्जन होगा और आप एक सोशल सर्विस के साथ साथ अपनी जीवन को का भी यापन भी अच्छे से कर पाएंगे।
1: एक बात और बताइए, हाँ, कि ये जो कोर्स है ना इंटीग्रेटेड बीएड स्पेशल एजुकेशन का, ये सिर्फ गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी में हो रहा है या बिहार के और भी किसी हिस्से में हो रहा है, विश्वविद्यालय में हो रहा है, इसकी भी जानकारी भी हमें दे दीजिए, युवा साथियों को होनी चाहिए।
0: वर्तमान में झारखंड और बिहार की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी ही है जहां पे ये पिछले साल से ये कोर्स शुरू किया गया है और भारतीय पुनर्वास परिषद ने इन्हें दो कोर्स, इंटीग्रेटेड बीएड स्पेशल एजुकेशन के दो कोर्सेज के लिए मान्यता दी है और अगले 5 साल तक के लिए ये मान्यता है। और यूपी में एक आध जगह कहीं शुरू हुआ है, वो भी बहुत ही छोटे स्तर पर भी अभी है, लेकिन आपके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि आपके ही राज्य में एक बड़ा एक कार्यक्रम शुरू हुआ है, एक प्रोग्राम शुरू हुआ है, आप चाहें तो इसमें एडमिशन लें और अपने भविष्य को सुरक्षित करें।
1: अच्छा एक बात बताइए, इंटीग्रेटेड बीएड स्पेशल में बीए, बीएससी, बीकॉम कोर्सेज, हाँ, ये सारे उपलब्ध हैं, इसका मतलब क्या है?
0: ये ऐसा कोर्स है जिसमें कि आपको ड्यूअल डिग्री मिलेगी, मतलब कि आप ग्रेजुएशन भी आपका होगा, मतलब अगर आप बीए करना चाहते हैं, आप बीएससी करना चाहते हैं, बीकॉम करना चाहते हैं तो वो आप कर पाएंगे। साथ साथ इसी ड्यूरेशन में, मतलब 4 साल के ही अंदर में, आप बीएड स्पेशल एजुकेशन के भी पढ़ाई को करके उसकी भी डिग्री ले पाएंगे। मतलब ये ड्यूअल डिग्री है, आप दो कोर्स एक साथ कर रहे हैं और एक ही पीरियड में आपको दो तरह की डिग्री मिल जाएगी।
1: अच्छा चलिए, आपके यहाँ जैसा कि आपने इस सवाल के पहले जवाब दिया कि संभवतः ये सिर्फ आपके यहाँ ही शुरू किया गया है गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में, तो अपने बारे में बताइए कि क्या इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, लोग कैसे हैं, हाँ, क्या एक नेशनल या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है कि नहीं है?
0: इस कोर्स को शुरू करने से पहले भारतीय पुनर्वास परिषद में हम लोगों ने जब अप्लाई किया था एफिलिएशन के लिए, रिकॉग्निशन के लिए, तो एक उनका एक अपना नॉर्म्स है कि कितने टीचर्स होने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्लासरूम

0: कैसे हो, लाइब्रेरी कैसे हो, आप हम लोगों के साथ एक स्कूल अटैच हो जहाँ के जहाँ पे टीचिंग प्रैक्टिस के लिए स्टूडेंट्स को हम लोग भेज सकें। तो ये सब कुछ के क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद ही हम लोगों ने अप्लाई किया था। वहाँ से हम लोगों के टीम एक आई, इंस्पेक्शन हुई, एक प्रोफेशनल्स की टीम आई थी, उन्होंने इंस्पेक्शन किया। इंस्पेक्शन करने के बाद हम लोगों को ये रिकॉग्निशन मिला कि आप इस कोर्स को चला सकते हैं। और ये चूंकि हमारा कैंपस करीब करीब 100 एकड़ में है और इसमें और भी कई दूसरे कोर्सेज भी हमारे यहाँ चलते हैं, तो हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, हमारे यहाँ टीचिंग की क्वालिटी को लेके, हमारे एग्जामिनेशन प्रोसेस को लेके ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छा माहौल है, जिसके का रिकॉग्निशन हमारी कई जो सेंट्रल जो काउंसिल्स हैं उन्होंने दिया है अलग अलग कोर्सेज के लिए। उसी तरीके से भारतीय पुनर्वास परिषद ने के मानक पे हम लोग खड़े उतरे हैं, जिसके कारण हमको ये मान्यता मिली है।
1: बहुत खूब। हाँ, डॉक्टर अवनीश रंजन, आपने बहुत सारे सवालों का जवाब दिया, और क्या कहना चाहते हैं चलते चलते लोगों से,
0: युवाओं से अपील है हमारी कि आप ये इस कोर्स को एक बार समझिए, एक बार देखिए, एडमिशन लीजिए। आप अगर अगर आप ग्रेजुएशन आपका अगर प्लान है कि आगे जाके आपको टीचर बनना है या आगे आपको जाके ऐसे काम को करने हैं जिसमें कि आपकी अच्छी अर्निंग भी हो, आप सोशल सर्विस भी कर पाएं और आपका रिकॉग्निशन सोसाइटी भी अच्छा बने, तो आप तीनों आप अगर इस कोर्स को करेंगे तो तीनों आपके जो नीड है या आपके तीनों जो आपके जो ख्वाब हैं वो जरूर पूरे होंगे। क्योंकि ये कोर्स ऐसा है कि 4 साल के अंदर में आप जब पढ़ के निकलेंगे तो नौकरी आपके दरवाजे खड़ी होगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा वैकेंसी इसमें है और लोग कम है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूं कि अभी जो जस्ट 29 जनवरी को परीक्षा हुई है बिहार सरकार के द्वारा, बीपीएससी के द्वारा, तो 7,500 सीट थे और करीब करीब 6,500 से 7,000 ही कैंडिडेट अपियर हुए उसमें। तो आप ये अंदाज लगाइए कि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। तो अगर जो लोग जितनी जल्दी इस फील्ड में आएंगे उनका नौकरी उतना ज्यादा श्योर है, क्योंकि अभी सारी जगह वैकेंसीज हैं, सब जगह खाली सीट है, तो आप आएंगे तो आपको एक अच्छा चांस मिलेगा।
1: थैंक यू डॉक्टर अविनेश रंजन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो साथियों, एकदम नया कोर्स है, सीट भी कम है, हाँ बहुत ज्यादा सीट नहीं है, इशारा समझिए। अगर जो आप चाहते हैं कि बीएड स्पेशल एजुकेशन जो इंटीग्रेटेड कोर्स है 4 साल का, वो गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में अभी नया नया इंट्रोड्यूस हुआ है और संभवतः अपने बिहार झारखंड में पहली दफा ये कोर्स आया है बहुत ही लिमिटेड सीट के साथ, आप चाहे तो कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए डायल करें 9431899002, 9431899002, और एक टोल फ्री नंबर है 1800121051, और एक वेबसाइट का पता भी है www.gnsu.ac.in। इसमें जितने तरीके के 13-14 तरीके के टेक्निकल पढ़ाई कराए जाते हैं सारी की जानकारियां आपको मिलेंगी। फिलहाल थैंक यू कहते हैं गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमुआर सासाराम रोहतास बिहार को कि उन्होंने ये कार्यक्रम लेकर आने का मौका दिया। राजेश को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।
3: हाँ, तो उदय भाई हम लोग सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद, और इसी के साथ हमारा चौपाल कार्यक्रम संपन्न होता है। हम लोग थोड़ी देर बाद बातचीत करेंगे खेती गृहस्थी में।

0: बेताबी से आपका इंतजार कर रही हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आप हमारा पता जरूर लिख लें, ताकि कार्यक्रम के दौरान अगर आपके जहन में कोई सवाल आता है या फिर आप हमसे अपनी कोई बात साझा करना चाहते हैं तो हमें जरूर लिखें। हमारा पता है, कार्यक्रम उड़ान, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 110001, और हमारा फोन नंबर है 8826224477। जी हाँ, 8826224477।
1: श्रोताओं, अक्सर देखा जाता है कि देहात या छोटे शहरों के लोग पलायन कर जाते हैं, कई बार तो काम या नौकरी के सिलसिले में वो घर से दूर जाते हैं, और कई बार शहरों के आकर्षण में फंसकर या खिंचकर अपना घर छोड़ देते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि अपने यारों दोस्तों की गलत संगति या सलाह उन्हें परिवार से दूर ले जाती है। इसीलिए तो कहते हैं कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को भी बिगाड़ देती है। आइए सुनते हैं एक गांव के धनी जमींदार के परिवार की ऐसी ही कहानी।
2: अरे भाई अक्षय, तेरा तो नक्शा ही बदल गया। बढ़िया जीन्स, बढ़िया बाल, अब तो लगता ही नहीं कि तू हमारा पुराने वाला अक्षय है। आखिरकार इसके पीछे का राज क्या है?
3: क्या बताऊं यार, ये तो सब बड़े शहर जाने का कमाल है।
2: मतलब ऐसा क्या है वहाँ?
3: अरे मतलब तो तू वहाँ जाकर ही समझ सकता है।
2: अरे यार, ऐसे कैसे जा सकता हूँ, तुझे तो पता ही है पिताजी ने तो मुझे कभी गाँव से बाहर जाने ही नहीं दिया। बड़े शहर की तो बात ही अलग है, और माँ ने तो मुझे 8वीं से आगे पढ़ने ही नहीं दिया, क्योंकि उसके लिए भी तो गांव से बाहर जाना पड़ता है।
3: अरे यार, एक बार पूछ के तो देख।
2: नहीं नहीं, मुझे पता है वो नहीं जाने देंगे, पूछ के क्या फायदा।
3: अबे यार, तू दूध पीता बच्चा है क्या? जवान हो गया है तू, शादी की उम्र हो गई है तेरी, कोशिश करके तो देख। घर वाले ना जाने दे तो अपना हिस्सा मांग लेना और चल।
2: हाँ यार, तू सही कह रहा है, एक बार आराम से कह के देखता हूँ, नहीं मानेंगे तो मांग लूंगा अपना हिस्सा और फिर ऐश करेंगे जाके। पिताजी पिताजी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है।
4: हाँ बेटा, क्या हुआ बता।
2: पिताजी, मेरा दोस्त है ना अक्षय, अभी शहर से वापस आया है। क्या ठाट से रहता है वहाँ पे। पिताजी, मैं भी एक बार शहर जाना चाहता हूँ।
4: अरे बेटा, क्या करेगा शहर जाके, अपने यहाँ कितने नौकर चाकर, जमीन जायदाद है, इन सबको कौन देखेगा।
2: पर पिताजी, मुझे एक बार तो जाना है।
5: अरे बेटा रवि, कहाँ जाने की बात कर रहा है।
2: माँ, कहो ना पिताजी से, मुझे शहर जाने दे।
5: अरे बेटा, क्या करेगा शहर जाके, तुझे तो पता ही है शहर के लोग कितने खराब हुए। ना ना, रहने दे, यही ठीक है।
4: हाँ बिल्कुल ठीक ही तो कह रही है तेरी माँ।
2: ये क्या मतलब है, दोनों जिन्हें मना कर रहे हो, अक्षय को देखो कितनी तरक्की करी है उसने, बाबू बन गया है, मुझे भी जाना है बस।
4: ये क्या जाने जाने की जिद लगा रखी है, चला जा खेत में, चल चमेली, बड़े भाई का खाना बांध के दे इसे, खेत में जाएगा उसे खाना देने के लिए।
2: मैं नहीं जाऊंगा खेत कूद में, मैंने जाना है शहर, और इसलिए अगर आपने मुझे आराम से भेजना है तो भेज दो, वरना तो मुझे मेरा हिस्सा दे दो।
4: ये हिस्से की बात कहाँ से आई, हमारे खानदान में आज तक किसी ने हिस्सा नहीं मांगा।
2: किसी ने मांगा हो या ना मांगा हो, मगर मैं तो मांगूंगा, मुझे मेरा हिस्सा दे दो।
5: अरे बेटा, ये तू क्या कह रहा है, मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी मेरे लाल।
2: माँ, ये क्या जिद है, मैं कोई छोटा बच्चा थोड़े ना हूँ जो तुम्हारे पल्लू से बंधा रहूंगा।
5: ऐसी बातें मत कर बेटा, मेरा दिल बैठा जा रहा है।
4: अरे मत रो इस नालायक के लिए, जाने दे इसे, जब भुगतेगा ना तो समझ आ जाएगी। ला रवि की माँ, तिजोरी की चाबी दे, देता हूँ इसका हिस्सा।
5: अजी, आप भी कैसी बात कर रहे हो, इसे रोको ना।
2: मैं नहीं रुकने वाला, चाहे रो पिटो कुछ भी करो।
4: ले ले, खोल दी तिजोरी, ले ले जितने

0: अपना हिस्सा लेना है और जा।
1: अरे यार अक्षय, ले लिया सारा माल, चलते हैं शहर, अब लेंगे जिंदगी के मजे।
2: चल आ, अब दिखाता हूँ तुझे जन्नत।

0: अरे यार देख, इतनी सारी गाड़ियां, इतने बड़े बड़े घर।
1: अरे तूने अभी शहर देखा ही कहाँ है? शहर में पैसा फेंक, तमाशा देख।
0: अरे यार हम कहाँ जा रहे हैं?
1: अरे तू चल तो सही, तुझे क्लब लेकर जा रहा हूँ मैं।
0: क्लब? ये क्लब क्या होता है?
1: जहाँ हम जा रहे हैं उसे क्लब ही कहते हैं।

0: अभिषेक, कैसे हो? इतने दिनों बाद, कहाँ थे इतने दिन? और ये कौन है तुम्हारे साथ?
1: ये मेरा दोस्त है, पहली बार शहर आया है। चल, तू पहली बार आया है तो तुझे कुछ नई चीज बुलाता हूँ।
2: नई चीज? नई चीज क्या होती है?
1: अरे यार, तू पैसा तो दे।
2: अरे यार, ये क्या याद दिया मुझे?
0: अरे यार, कैसा दोस्त है तेरा ये, इसने कभी ड्रिंक नहीं की क्या?
1: अरे अभी तो गाँव से आया है, बड़ी मोटी पार्टी है, इसको पटा के रखना।
0: अच्छा, ऐसी बात है। अब देख इसे।

0: यार अक्षय, धीरे धीरे सारा पैसा खत्म हो गया है, ऐसे कैसे चलेगा?
1: यार मुझे क्या पता, यहाँ अपना ही नहीं पता।
0: भाई मैं तो तेरे कहने से यहाँ आया था, तूने ही तो कहा था कि मैं तुझे जन्नत दिखाऊंगा।
1: मैं क्या तुझे गोदी में उठा के लाया था? जितने तेरे पास पैसे थे उतनी जन्नत दिखा तो दी तुझे। अब यारी दोस्ती खत्म, मैं चला अपने रास्ते।

मेरे तो सारे दोस्त मुझे छोड़ के चले गए। मेरे पास खाने के लिए रोटी भी नहीं है और पैसा भी नहीं है, और ना मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ कि कोई मुझे नौकरी भी दे दे। अब तो होटल में ही बर्तन मारने पड़ेंगे, पर इससे तो अच्छा है कि मैं अपने परिवार के पास वापिस चला जाऊँ। वहाँ नौकर भी मुझसे अच्छा खाते हैं। हाँ, यही ठीक रहेगा, वापस ही चला जाता हूँ।

0: अरे चमेली, जाकर जरा देख कौन है। चमेली कौन है?
1: अरे अम्मा जी, छोटे भैया आए हैं और बहुत ही बुरी हालत में हैं।
0: क्या छोटा आया है?
2: अरे बेटा रवि, तू इतने दिनों बाद, ये क्या हाल बना रखा है बेटा तूने अपना?
3: पिताजी पिताजी मुझे माफ कर दो, मुझे पता है मैंने आप लोगों को बहुत दुख पहुंचाया है, आप लोगों का नाम मिट्टी में मिला दिया मैंने।
4: पर पिताजी, आप अपने घर में मुझे नौकर की तरह रख लो, कम से कम मुझे पेट भर खाना तो मिलेगा, शहर में तो मैं सूखी रोटी के लायक भी नहीं रहा।
0: पर बेटा, जो तू इतना रुपया पैसा लेकर गया उसका क्या हुआ?
4: माँ, वो सब मैंने

0: दोस्तों के साथ खाने पीने और ऐश करने में उड़ा दिया, और पैसे खत्म होने के बाद मेरे दोस्त भी मुझे छोड़कर चले गए।
1: बेटा, ये तो दुनिया की रीत है। कितना समझाया था तुझे, पर तूने हमारी बात नहीं मानी।
2: हाँ बेटा, हम तो तेरे भले के लिए ही तुझे समझा रहे थे।
1: कोई बात नहीं बेटा, सुबह का बोला शाम को घर लौट आए उसे भूला नहीं कहते। तू सही सलामत वापिस आ गया, हमारे लिए यही बहुत है। जाओ रवि की माँ, इसे अंदर ले जाओ। जा बेटा, नहा धोकर अच्छे कपड़े पहन ले।
2: अरे ओ चमेली, जा मेरे रवि के लिए इसकी पसंद का खाना बना, और हाँ, देसी घी का हलवा जरूर बनाना, इसे बहुत पसंद है।

0: नमस्कार श्रोताओ, मेरा नाम मीनू है और मैं भी इन्हीं हालातों से गुजरी हूँ। मेरा बेटा भी ऐसे ही इन्हीं हालातों में चला गया था और जिसने अपने जीवन में बहुत ही पैसा रुपया गवाया और आज तक लौट कर नहीं आया और मैं अब तक उसका इंतजार कर रही हूँ।
1: जी हाँ श्रोताओ, सुना आपने कि एक बेटा बुरी संगति में पढ़कर और बड़े शहरों की चकाचौंध से प्रभावित होकर अपने परिवार से दूर चला जाता है, साथ ही अपने हिस्से का रुपया पैसा भी ले जाता है तथा अपनी और अपने परिवार की उस मेहनत की कमाई को अय्याशी में उड़ाकर अपना सब कुछ लुटा देता है और ऐसे में उसके यार दोस्त भी उसे छोड़कर चले जाते हैं। पर अब जब उसके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं होता और भूखे मरने की नौबत आ जाती है, तब उसे अपने पिता का घर और परिवार का प्यार याद आता है। उसे याद आता है कि उसके घर में जो नौकर चाकर काम करते हैं वो भी उससे अच्छी हालत में रहते हैं, उसे अच्छा खाना खाते हैं, और तब वो फैसला करता है कि मैं अपने परिवार के पास लौट कर जाऊंगा। और उसके दयनीय हालत में वापस लौटने पर उसके माता पिता भी सब कुछ भूलकर उसे गले लगा लेते हैं। श्रोताओ, ये सिर्फ एक ही परिवार की कहानी नहीं है, आज बहुत से परिवारों में इस तरह घर छोड़कर जाने के किस्से सुनने और देखने को मिल जाते हैं।
2: तो श्रोताओं, अब हमें जरूर बताएं कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा। अगर आप हमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं या फिर आप अपने अनुभवों को हमसे बांटना चाहते हैं तो हमें जरूर लिखें। हमारा पता है, कार्यक्रम उड़ान, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 110001। और हमारा फोन नंबर है 8826224477। जी हाँ, 8826224477। तो अब मुझे दीजिए अनुमति, अगले सप्ताह फिर होगी मुलाकात। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, नमस्कार।
1: हाँ तो उदय भाई, हम लोग सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान,
3: अपना कार्यक्रम खेती गृहस्थी।
1: तो आज हम लोग बातचीत करेंगे कि कृषि कार्य में थ्रेसर का बहुत प्रयोग किया जाता है, हमारे किसान भाई खेती बाड़ी के लिए इसका उपयोग करते हैं, लेकिन इसको
3: गेहूं दावे में हम उपयोग करेंगे। हाँ,
1: और इसको जब आप प्रयोग में ला रहे हैं तो कई सारी उससे अगर थोड़ी सी भी, मतलब कहते हैं ना कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, तो कई तरह की मतलब समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, कई तरह की दुर्घटनाएं होती हैं, इसलिए थ्रेसर के प्रयोग करने से पहले

0: उसको बढ़िया से सावधानी पूर्वक उसको चलाना सीखना होगा और बहुत ही ध्यान से इसका प्रयोग करना होगा। तो हमारे जो किसान भाई हैं, आजकल कई आधुनिक मशीन है जिसका उपयोग वो करते हैं कृषि कार्य के लिए, और थ्रेसर भी एक ऐसे ही मशीन है जिसका उपयोग हम लोग फसल से दाने को अलग करने के लिए करते हैं। और ये जो मशीन है किसानों का समय और श्रम दोनों को काफ़ी बचाती है, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही गंभीर जो है दुर्घटना का कारण भी बन सकती है। इसलिए थ्रेसर का प्रयोग करते समय कुछ सावधानी है जिसको बरतना अत्यंत ही आवश्यक है।
1: बहुत जरूरी होला।
0: तो
1: इस
0: सबसे
1: समय में
0: हाँ
1: जे थ्रेशर जहाँ भी, अब तो लोग खेत में ही लेके चल जाता, लेकिन जहाँ फिर वह थ्रेशर के उपयोग करें तो पहल का चीज़ तो ये कि बहुत सावधानी बरती गेहूँ डाले में, जे हमने के गेहूँ के पौधा हो ओकरा के डाले में सावधानी बरती। और दूसर का बात कि जहाँ भी जहाँ तेजी होके तो कभी भी बहुत ढीला ढाला
0: कपड़ा,
1: कपड़ा
0: हाँ ढीला ढाला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। और
1: ना।
0: अगर उसको चला रहे हैं तो एक निश्चित दूरी पे रहकर ही चलाए, और काम करते समय हाथों को भी मतलब सुरक्षित दूरी पर रखना चाहिए, और मशीन के अंदर हाथ डालने से बचना चाहिए। और थ्रेसर
1: हाथ तो कभी डाल ही के ना। बहुत
0: हाँ
1: बार खोला का है
0: हाँ
1: कि कई बार जेबा पट्टा जेबा वो अचानक के जेबा पट्टा कभी कभी घूमत घूमत
0: घूंग
1: जेबा वो
0: हाँ
1: फेंका जले।
0: फेक
1: ऐसे
0: हाँ
1: कभी भी एह तरह के एकदम किनारे रही
0: हाँ
1: और बढ़िया से जेबा पट्टा के जे अथी होला
0: नट
1: नट बोल्ट
0: बोल्ट
1: तो
0: हाँ
1: समझ के
0: उसको कस
1: खूब
0: के
1: बढ़िया
0: रखना,
1: से कस
0: बिल्कुल
1: के
0: बिल्कुल
1: तब ओकरा के
0: हाँ
1: उपयोग में ले।
0: हाँ और ये भी सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि अगर आप उसको चालू कर रहे हैं तो हर सभी पुर्जे सही स्थिति में हो, कोई भी जैसा कि आपने कहा कि कोई ढीला पुर्जा ना रहे, तो नट बोल्ट जो भी है उसका उसको आपको ध्यानपूर्वक देख लेना चाहिए कि वो टाइट है कि नहीं। साथ ही साथ थ्रेसर के पास बच्चे और अनजान लोगों को बिल्कुल नहीं आने देना चाहिए। कई बार होता है ना कि बच्चे लोग जिज्ञासावश कि क्या है कैसे काम करता है, बच्चे सब मशीन के समीप चले जाते हैं, तो जो जो कि बच्चों के लिए बेहद खतरनाक होता है। तो आसपास जो एक सुरक्षा घेरा भी बना देना बहुत ज़रूरी है, और उपयोग करते समय हमेशा सतर्क रहना चाहिए। यदि मशीन में कोई खराबी महसूस हो तो
1: हाँ
0: थ्रेसर को तुरंत बंद कर देना चाहिए, और मरम्मत के बाद ही इसका दोबारा उपयोग करना चाहिए।
1: एकदम
0: समय
1: जिस
0: समय पर उसको साफ सफाई भी करते रहना चाहिए ताकि वो मतलब मशीन जो है ठीक से काम करे, और जब साफ कर रहे हैं तो उसी दौरान नट वोल्ट और सभी चीज़ों को ध्यानपूर्वक देख ले कि वो सही रूप से है कि नहीं।
1: एक
0: चूंकि
1: चीज और
0: हाँ
1: होला
0: हाँ
1: सुनबे,
0: हाँ
1: बहुत देखी ले कि बहुत पुरान पुरान थ्रेशर लोग उपयोग में ले आए,
0: हाँ
1: तो समय के साथे थ्रेशर के बदल भी देवे के चाहिए। कई बार ऐसा होला है कि बीच के जेबा वो मशीन उशीन में थोड़ा सा गड़बड़ी आ जाला,
0: हाँ
1: तो बहुत उकड़े के ध्यान से उकड़े के महसूस करे के आवश्यकता होला। मशीन तो मशीन है, ओकर उपयोग तब बढ़िया से हो सकेला जब मशीन के समुचित देखभाल हमने अपना
0: देखभाल
1: स्तर से
0: सही बात
1: करें।
0: हाँ
1: तो इस सब चीज़ पर ध्यान दे करके।
0: नियमित रूप से जैसा कि आप कहना चाह रहे हैं कि
1: हाँ
0: उसके देखभाल होना चाहिए।
1: जी
0: और जैसे हम ही लोग क्या होता है कि बीमार पड़ते 6 महीना साल भर बाद पूरे बॉडी का हम लोग टेस्ट कराते हैं एक उम्र के बाद, उसी तरह मशीन को भी एक उम्र के बाद समय समय पर उसके भी रख रखाव पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि सावधानी और सतर्कता से ही हम दुर्घटना से बच सकते हैं, क्योंकि सावधानी ही सुरक्षा है। तो चलिए बातचीत के बाद क्यों ना हम लोग एक लोकगीत सुन ले संतराज सिंह रागेश से, तो सुनते हैं ये झूमर लोकगीत।

0: वाह, संत राज सिंह रागेश
1: रागेश जी।
0: आज के कलाकार रही हैं। एक से एक बढ़िया गीत सुनो उन्हें, धन्यवाद दिया हो यहाँ के
1: सभी
0: लोग।
1: गीतों के लिए।
0: हाँ
1: और अब
0: हाँ
1: चलने का समय हो चला है, तो
0: हाँ हाँ
1: नमस्कार उदय भाई।
0: नमस्ते शोमा बहन।
2: श्रोता ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल और खेती गृहस्थी सुन रहे थे आकाशवाणी का।

0: ये पटना केंद्र है। एक अंतराल के बाद प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: इधर आइए, इधर।
5: इधर?
4: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
6: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
5: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
6: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
5: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222502। हमारा ईमेल एड्रेस है patna@gmail.com।
6: शुभ वाणी,
5: लाभ वाणी,
4: आकाशवाणी।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
7: छोट शहर मगर सपना ग्लोबल, आप इंजीनियरिंग के टॉप लेवल पढ़ाई बिहार में ही संभव छी।
8: हर जिला में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, 38 प्रतिष्ठित संस्थान, विश्व स्तरीय शिक्षा अपने राज्य में,
7: हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम, अनुभवी फैकल्टी आ मजबूत प्लेसमेंट सपोर्ट।
8: नामांकन JEE मेन 2026 या BCECE मेरिट के आधार पर, अंतिम तिथि 5 मई 2026।
7: जखन मौका अपने राज्य में हो तो सफलता दूर नहीं हो छी, उत्कृष्ट प्लेसमेंट अहां के इंतजार में छी।
8: बेसी जानकारी खातिर विजिट करू BCECEboard.bihar.gov.in। विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत, राज्य में पहली बार पार्टी को मिला स्पष्ट बहुमत। असम में भाजपा शानदार वापसी करते हुए तीसरी बार सरकार बनाएगी। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ को स्पष्ट बहुमत। तमिलनाडु में अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी टीवी के सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। बिहार विधान परिषद के विधानसभा कोटे की एक रिक्त सीट के लिए हुए उपचुनाव में भाजपा के सूर्य कुमार शर्मा उर्फ अरविंद शर्मा निर्विरोध निर्वाचित हुए। और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश। अब समाचार।

0: विस्तार से। चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मतों की गिनती जारी है। पश्चिम बंगाल में भाजपा बड़ी जीत की ओर अग्रसर है, जबकि असम और पुद्दुचेरी में वह सहयोगी दलों के साथ सत्ता में वापसी कर रही है। तमिलनाडु में अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी टीवीके ने बहुत बड़ा फेरबदल किया है। केरल में कांग्रेस के नेतृत्व में यूडीएफ को स्पष्ट बहुमत मिल गया है। पश्चिम बंगाल में 293 विधानसभा सीटों में से 119 के परिणाम घोषित हो चुके हैं। भाजपा को 81 और तृणमूल कांग्रेस को 35 सीटें मिली है। 174 सीटों पर मिले रुझानों के अनुसार भाजपा 123 सीटों पर आगे है, जबकि तृणमूल कांग्रेस 48 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। असम में सत्तारूढ़ भाजपा लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से अब तक 95 के परिणाम घोषित हो चुके हैं। भाजपा को 70 सीटें मिली हैं, वहीं कांग्रेस को 8 सीटों पर जीत मिली है। रुझानों के अनुसार अभी भाजपा 12 और कांग्रेस 11 सीटों पर बढ़त बना रखी है। केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ को स्पष्ट बहुमत मिल गया है। कांग्रेस को 63 सीटें मिली हैं, वहीं उसकी सहयोगी आईयूएमएल ने 22 सीटों पर जीत हासिल की है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में अभिनेता से राजनेता बने विजय के नेतृत्व में टीवीके सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर इतिहास रचने के लिए तैयार है। टीवीके 51 सीटों पर आगे है और 57 सीटों पर उसे जीत मिल चुकी है। पुद्दुचेरी में एन रंगास्वामी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की कुल 30 सीटों में से 26 के परिणाम घोषित हो चुके हैं। निर्वाचन आयोग के अनुसार एन रंगास्वामी की एआईएनआरसी पार्टी को 10 सीटों पर जीत मिली है और 2 पर आगे है। भाजपा 3 सीटें जीत चुकी है और 1 पर आगे है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल, असम और पुद्दुचेरी में पार्टी को मिली जीत को कर्मठ कार्यकर्ताओं के दशकों के अथक प्रयास और संघर्षों का परिणाम बताया है। श्री मोदी नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज का दिन भारतीय लोकतंत्र के लिए ऐतिहासिक दिन है।
1: आज का ये दिवस कई मायनों में खास है, विशेष है। ये देश के उज्जवल भविष्य की उद्घोषणा का दिन है। ये भरोसे का दिन है। भरोसा भारत के महान लोकतंत्र पर, भरोसा परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स पर, भरोसा स्थिरता के संकल्प पर, भरोसा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पर।
0: कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि जनता का विश्वास भाजपा के प्रति लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि ये जीत पार्टी कार्यकर्ताओं के परिश्रम का परिणाम है।
2: आज के दिन उत्सव का दिन है मित्रों। कल से हम फिर से परिश्रम के भाव से, पूरे सेवा के भाव से काम करेंगे और आने वाले समय में चुनाव की तैयारियां।
0: भाजपा को पश्चिम बंगाल और असम में मिली भारी जीत पर प्रदेश में पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच जश्न का माहौल है। कार्यकर्ताओं ने रंग अबीर लगाकर और मिठाई तथा झालमुड़ी खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सराफ ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कार्यकर्ताओं के बलिदान के कारण आज पार्टी को अभूतपूर्व जीत मिली है।
3: बंगाल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जो बलिदान दिया है, आज उनके बलिदान के कारण आज कमल खिला भारतीय जनता पार्टी का बंगाल में सत सत अभिनंदन है। प्रधानमंत्री जी का, नितिन नवीन जी का, अमित शाह जी का, वहाँ के कार्यकर्ताओं का, वहाँ की जनता का, जो सुपड़ा साफ कर दिया टीएमसी का और ममता बनर्जी का।
0: जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में पश्चिम बंगाल और असम की जीत के लिए भाजपा को बधाई दी है। इधर जदयू के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि पश्चिम बंगाल के लोगों ने तृणमूल कांग्रेस की शासन को नकारते हुए भाजपा पर विश्वास जताया है।
4: ममता जी की सरकार 15 साल से थी, इन लोगों ने पूरे बंगाल में अराजक तत्वों का राज स्थापित कर दिया था और बहुत लंबे समय के बाद पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र स्थापित हुआ, जहां जनता का शासन हुआ।

0: जनता के हित में काम होगा, अराजक तत्वों का सफाया होगा।
1: भाजपा के वरिष्ठ नेता और बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने पश्चिम बंगाल, असम और पुद्दुचेरी में भाजपा की ऐतिहासिक जीत पर खुशी व्यक्त करते हुए कार्यकर्ताओं को बधाई दी। बिहार विधान परिषद के विधानसभा कोटे की एक रिक्त सीट के लिए हुए उपचुनाव में भाजपा के सूर्य कुमार शर्मा उर्फ अरविंद शर्मा निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। गौरतलब है कि इस सीट के लिए केवल अरविंद शर्मा ने ही नामांकन किया था। पूर्व मंत्री मंगल पांडे के सिवान से विधायक चुने जाने के बाद यह सीट रिक्त हुई थी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पटना, गया, सिवान, दरभंगा और मधुबनी समेत प्रदेश के अधिकतर जिलों में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हुई है। कई जगहों पर वज्रपात की भी खबर है। हमारे संवाददाताओं ने बताया कि आंधी के कारण कई जगहों पर पौधे और बिजली के खंभे उखड़ गए। इसके चलते आवागमन और विद्युत आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित हुई है। खेतों में लगी फसल के साथ साथ आम और लीची की फसल को भी भारी नुकसान हुआ है। इधर मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकतर स्थानों पर बारिश हो सकती है। वहीं पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, सुपौल और पश्चिम चंपारण जिलों में कुछ स्थानों पर धूल भरी आंधी के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।
3: 24 घंटों के दौरान राज्य के अररिया, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, सुपौल एवं पश्चिमी चंपारण जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के दक्षिण पश्चिम भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर मध्य, दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व के जिलों, मधेपुरा, सहरसा, सारण एवं सिवान जिलों में एक दो स्थानों पर मेज गर्जन, वज्रपात के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
1: राज्य सरकार ने कहा है कि भागलपुर के विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्से को 3 महीने के भीतर ठीक कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस मामले को लेकर पटना में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस बीच बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि पुल की मरम्मत को लेकर आवश्यकता पड़ने पर सेना की भी मदद ली जाएगी। श्री सिंह आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे।
4: माननीय मुख्यमंत्री जी ने रक्षा मंत्री जी से भी बात किया है और आर्मी प्रमुख से भी बात किया है, और हमारा जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन होता है और आर्मी का जो सेटअप होता है, हम लोग उनसे भी सहयोग लेने पर विचार कर रहे हैं, और यथाशीघ्र हम जो स्पैन गिरा है उसको जो हमारी टेक्निकल टीम गई है उसके रिकमेंडेशन के अनुसार उसे बनाने का काम करेंगे। हम लोगों का प्रयास है कि 3 महीने में इसको हम लोग कम्प्लीट करें।
1: निगम के अध्यक्ष ने बताया कि घटना की जांच के लिए IIT पटना की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। उन्होंने बताया कि इस मामले में संबंधित कार्यपालक अभियंता को निलंबित कर दिया गया है। इस बीच भागलपुर के जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी ने बताया कि आवागमन को सुचारू रखने के लिए वाहनों को मुंगेर के श्री कृष्ण सिंह सेतु पर डायवर्ट किया गया है। साथ ही छोटे वाहनों के लिए नाव और स्टीमर की व्यवस्था की गई है।
5: भागलपुर और नौगछिया दोनों के बीच में, क्योंकि एकमात्र मुख्य जो कम्युनिकेशन का माध्यम है नाव ही है, तो नाव पे हम सभी नाव पे हमारे जो गवर्नमेंट की नाव है वो तो चलेगी ही, कुछ ऐसे जो फेरी के माध्यम है वो चलेंगे। हम लोगों ने 5:30 सुबह से चलाने का निर्णय लिया और शाम के 6 बजे तक यानी सूर्यास्त से पहले हम लोग उसको बंद कर देंगे। पटना जाने के लिए अपने भागलपुर के लोगों से आग्रह करेंगे, यहां से सुल्तानगंज जो कि अब 4 लेन होते

0: सकते हैं कृष्णगढ़ चौक पे पहुंच सकते हैं और वहां से मुंगेर होते हुए आप जो फोर लेन है बेगूसराय जो खगड़िया से मुंगेर का जो बेगूसराय का फोर लेन है वहां पकड़ के पटना जा सकते हैं।
1: गौरतलब है कि कल रात भागलपुर और नौगछिया को जोड़ने वाले विक्रमशिला सेतु के 4 और 5 नंबर पिलर के बीच का स्लैब क्षतिग्रस्त होकर गिर गया था। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने आज नालंदा विश्वविद्यालय का दौरा किया। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों और परिसर की अवसंरचना का अवलोकन करते हुए विस्तृत जानकारी ली। जदयू नेता निशांत कुमार ने आज बगहा में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। श्री कुमार ने कार्यकर्ताओं से पार्टी को मजबूत बनाने की अपील की। संवाद कार्यक्रम को पार्टी के वरिष्ठ नेता और वाल्मीकि नगर सांसद सुनील कुमार और पार्टी विधायक दल के नेता श्रवण कुमार ने भी संबोधित किया। सिवान जिले के रघुनाथपुर विधानसभा के राजद विधायक ओसामा शाहब के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि पुलिस टीम ने हुसैनगंज थाना क्षेत्र के प्रतापपुर स्थित ओसामा शाहब के पैतृक आवास और नगर थाना क्षेत्र के नया किला स्थित घर पर छापेमारी की। प्राप्त जानकारी के अनुसार जमीन कब्जा करने के मामले में ये छापेमारी की गई है। रोहतास जिले के दिनारा थाना क्षेत्र के बेलबैया मठिया गांव के पास आज सुबह सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 7 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश पर सभी मृतकों के निकटतम आश्रितों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान की राशि उपलब्ध करा दी गई है। मुंगेर पुलिस और एसटीएफ की टीम ने नक्सली बिगन कोड़ा को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सली की मुखिया परमानंद टुड्डू हत्याकांड समेत कई अन्य मामलों में तलाश थी। पूर्वी चंपारण जिले के छतौनी थाना क्षेत्र अंतर्गत मठिया स्थित एक होटल में पुलिस ने छापेमारी कर शराब पार्टी कर रहे 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। कैमूर जिला के तरौली भभुआ पथ पर महमूदिया बेहड़ी मोड़ के पास सड़क हादसे में जनगणना कार्य में लगी एक सहायक शिक्षिका की मौत हो गई। रोहतास जिले के सासाराम सदर अस्पताल में एम्बुलेंस कर्मियों की कथित लापरवाही से एक मरीज की मौत के मामले में अस्पताल अधीक्षक ने संबंधित कर्मियों से स्पष्टीकरण की मांग की है। अररिया के जिलाधिकारी विनोद दोहन ने नगर निकायों और बुडकों के कार्यों की समीक्षा के दौरान लंबित योजनाओं को समय पर पूरा करने का अधिकारियों को निर्देश दिया। सुपौल के भीमनगर चेक पोस्ट पर एसएसबी की टीम ने मानव तस्करी के लिए ले जाए जा रहे 8 बच्चों को सुरक्षित बचा लिया है। इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। शिक्षा विभाग ने कटिहार जिले के आजमनगर में पदस्थापित एक नियोजित शिक्षक समेत 4 शिक्षकों को निलंबित कर दिया है। शेखपुरा जिले में ट्रांसजेंडरों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी देने और उनके प्रति आम लोगों को संवेदनशील बनाने के लिए जागरूकता रथ को रवाना किया गया। ज्ञान भारतम मिशन के तहत पांडुलिपियों के संरक्षण और डिजिटाइजेशन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को नवादा के जिलाधिकारी ने सम्मानित किया। इधर अभियान के तहत सहरसा जिले के महिषी से लगभग 200 साल पुरानी पांडुलिपियां एकत्र की गई हैं। इसे पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत। राज्य में पहली बार पार्टी को मिला स्पष्ट बहुमत। असम में भाजपा शानदार वापसी करते हुए तीसरी बार सरकार बनाएगी। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ को स्पष्ट बहुमत। तमिलनाडु में अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी टीवी के सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। बिहार विधान परिषद के विधानसभा कोटे की एक सीट के लिए हुए उपचुनाव में भाजपा के सूर्य कुमार शर्मा उर्फ अरविंद शर्मा निर्विरोध निर्वाचित हुए। और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: इधर आइए, इधर।
1: इधर?
0: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
2: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
1: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
2: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
1: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
2: शुभ वाणी,
1: लाभ वाणी,
0: आकाशवाणी।
3: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब प्रस्तुत है शेखपुरा जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता निरंजन कुमार।
4: शेखपुरा जिले में भारत की जनगणना 2027 के प्रथम चरण के तहत मकान सूचीकरण का कार्य शुरू कर दिया गया है। जिला प्रशासन द्वारा इसके लिए 1277 प्रगणक और पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। इस कार्य की निगरानी प्रधान जनगणना पदाधिकारी सह जिलाधिकारी शेखर आनंद, जिला जनगणना पदाधिकारी सह एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लखेंद्र पासवान और अपर जनगणना पदाधिकारी सह सांख्यिकी पदाधिकारी विजय कुमार उपाध्याय सहित जिला और प्रखंड स्तरीय अधिकारी कर रहे हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि मकान सूचीकरण के तहत स्वगणना में भाग लेने वाले नागरिकों का सत्यापन किया जाएगा और जो लोग स्वगणना में शामिल नहीं हुए हैं उन्हें भी जनगणना में शामिल किया जाएगा। वहीं इससे पूर्व जिले में 17 अप्रैल से 1 मई तक स्वगणना अभियान चलाया गया जिसमें नागरिकों ने अधिकाधिक वेबसाइट के माध्यम से स्वयं जनगणना में भाग लिया। 15 दिनों के इस अभियान के दौरान जिले में 48,088 लोगों ने अपने अपने स्व घोषणा पत्र जमा किए। काल बैसाखी के प्रभाव से जिले का मौसम सुहावना बना हुआ है। पिछले दिनों 42 डिग्री सेल्सियस के पार हुआ तापमान अब कम गया है जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। हालांकि तेज हवा और बारिश के कारण कई क्षेत्रों में आम, प्याज और सब्जी की फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में फिर से गर्मी बढ़ने की संभावना है। वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच जिला प्रशासन घरेलू रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता को लेकर आम लोगों की समस्याओं के समाधान में लगातार जुटा हुआ है। जिलाधिकारी शेखर आनंद प्रतिदिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिले में एलपीजी और पेट्रोलियम पदार्थों की उपलब्धता की जानकारी दे रहे हैं। इस बीच जन वितरण प्रणाली के माध्यम से प्रत्येक परिवार को 100 किलोग्राम कोयला उपलब्ध कराने की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में रसोई गैस की कोई कमी नहीं है और उपभोक्ताओं को लगातार होम डिलीवरी के माध्यम से एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शादी विवाह जैसे आयोजनों के लिए जिला प्रशासन द्वारा वाणिज्यिक गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि अब तक 122 परिवारों को 328 गैस सिलेंडर दिए जा चुके हैं जबकि शेष परिवारों को अनुमंडल कार्यालय द्वारा आंकलन के आधार पर सिलेंडर उपलब्ध कराने की प्रक्रिया जारी है। जिले में साल का दूसरा राष्ट्रीय लोक अदालत 9 मई को आयोजित होगा। इसके सफल आयोजन को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार पूरी तैयारी में जुटा हुआ है। प्राधिकार के अध्यक्ष सह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार तिवारी ने प्रचार वाहन को रवाना किया जिसके माध्यम से अधिक लोगों को इसमें शामिल होने के लिए जागरूक किया जा रहा है। साथ ही विभिन्न संबंधित पक्षों के साथ लगातार बैठक की जा रही है ताकि आपसी समझौते के आधार पर अधिक से अधिक मामलों का निपटारा कर लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा सके। इधर सरकार ने अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जिसके तहत 1 जनवरी 2024 के बाद पंजीकृत युवा अधिवक्ताओं को 3 वर्ष तक प्रति माह 5,000 रूपए की सहायता राशि दी जाएगी जिससे वे अपने विधि व्यवसाय को आगे बढ़ा सकें। पूर्व मंत्री और भाजपा की युवा नेत्री श्रीषी सिंह शेखपुरा में भाजपा द्वारा आयोजित आक्रोश मार्च में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों द्वारा संसद में महिला आरक्षण से संबंधित अधिनियम के विरोध की कड़ी आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने महिलाओं के सशक्तिकरण के इस प्रयास को विफल किया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के विरोध में किए गए इस कार्य के लिए देश की जनता विपक्षी पार्टियों को कभी माफ नहीं करेगी। जिले में लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए विभिन्न विभागों के प्रधान सचिव और शेखपुरा जिले के प्रभारी सचिव द्वारा जिले का दौरा कर प्रशासन के साथ बैठकें की जा रही हैं। राज्य सरकार के निर्देशानुसार 19 तारीख से जिले के सभी पंचायतों में विशेष शिविर आयोजित कर लोगों की समस्याओं का मौके पर समाधान करने की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। प्रत्येक सप्ताह कम से कम 3 पंचायतों में ऐसे शिविर लगाए जाएंगे जहां आम लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान किया जाएगा। बीते दिनों जिले में अग्नि सुरक्षा सप्ताह

0: के तहत अग्निशमन विभाग द्वारा व्यापक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम और मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। स्कूली बच्चों के बीच मैराथन दौड़, साइकिल रैली, पेंटिंग, रंगोली और वाद विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन कर उन्हें पुरस्कृत भी किया गया। शेखपुरा जिले में विश्व श्रमिक दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। ईंट भट्टों पर कार्य करने वाले श्रमिकों के बच्चों के लिए शिक्षा संबंधी पहल की गई, जिसके तहत ईंट भट्टों पर अस्थायी कक्षाएं शुरू की गई। जिलाधिकारी ने बच्चों के बीच पहुंचकर पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया और उनके साथ पठन पाठन से जुड़े अनुभव साझा किए। यह पहल जिले के 53 ईंट भट्टों पर शुरू की गई है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे शेखपुरा जिले की हलचल, इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता निरंजन कुमार।
2: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर। सुगम संगीत के कार्यक्रम में हम सुनवाएंगे गजल। बशीर बद्र का कलाम पेश कर रहे हैं नई मली।

0: हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: अंतराल से पूर्व बशीर बद्र का कलाम आपने सुना, पेश कर रहे थे नईम अली। सुगम संगीत का हमारा आज का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। और अब आइए सुनते हैं फिल्म संकेत।

उदित नारायण को अभी आपने सुना, और अब हम सुनवा रहे हैं कविता कृष्ण मूर्ति को। गीत लिया है फिल्म वास्तव से, समीर के बोल हैं, जतिन ललित का संगीत।

0: संगीत और आवाज दी थी कविता कृष्णमूर्ति ने। फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम आकाशवाणी के पटना केंद्र से आप सुन रहे हैं। एक अंतराल के बाद सुनवाएंगे कुछ और गीत।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

अभिजीत और अलका याग्निक को आपने सुना फिल्म चलते चलते में, जावेद अख्तर के बोल, जतिन ललित का संगीत और अब कुमार शानू और कविता कृष्णमूर्ति को सुनिए, फिल्म है खूबसूरत। संजय चहल के बोलों को संगीत से संवारा है जतिन ललित ने।

कुमार शानू और कविता कृष्णमूर्ति को आपने सुना फिल्म खूबसूरत में, संजय चहल के बोलों को संगीत सवारा जतिन ललित ने, और अब अलका याग्निक के साथ कुमार शानू को सुनिए फिल्म हम तुम में। प्रसून जोशी की रचना है, जतिन ललित का संगीत।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। शाम के 8:30 हुए हैं। सुगम संगीत के कार्यक्रम में अब कुछ गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। आज की कलाकार पूनम कुमारी। सबसे पहले सुनिए डॉक्टर शांति जैन की रचना।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री, बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री, बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

0: अभी आपने सुगम संगीत का कार्यक्रम सुना। ये कार्यक्रम संपन्न हुआ आकाशवाणी का ये पटना केंद्र।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में भारी जनादेश के साथ इतिहास रचा। असम में लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। पुदुचेरी

0: में एनडीए ने सत्ता बरकरार रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल, असम, पुदुचेरी, तमिलनाडु और केरलम के लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। जीत का श्रेय देश के लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों को दिया। कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे ने केरलम में शानदार जीत दर्ज की। अभिनेता से राजनेता बने विजय की टीवी के पार्टी ने तमिलनाडु में शानदार प्रदर्शन के साथ राजनीति की शुरुआत की। विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने 4, कांग्रेस ने 2 सीटें जीती। एनसीपी की सुनेत्रा पवार ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की। और चुनाव परिणामों से घरेलू शेयर बाजारों में उत्साह का माहौल। सेंसेक्स 356 अंक बढ़ा और निफ्टी 24,100 अंक के पार। अब समाचार विस्तार से। 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में भारी जनादेश के साथ इतिहास रचा है। पार्टी असम में लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। वहीं पुदुचेरी में एनडीए ने सत्ता बरकरार रखी है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे ने केरलम में शानदार जीत दर्ज की है। तमिलनाडु में अभिनेता से राजनेता बने विजय की टीवी के पार्टी ने शानदार प्रदर्शन के साथ राजनीति की शुरुआत की है। 5 राज्यों के 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में भाजपा ने 4, कांग्रेस ने 2 सीट जीती हैं। एनसीपी की सुनेत्रा पवार ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने विधानसभा की 294 सीटों में से 208 सीट पर बढ़त बना ली है और इनमें से 148 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत भी हासिल कर लिया है। ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस 79 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और इनमें से 54 सीटों पर उसे जीत हासिल हुई है। वाम दल को 1 सीट मिली है और 1 सीट पर आगे है। अन्य को 4 सीटों पर जीत हासिल हुई है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से पीछे चल रहे हैं। नंदीग्राम सीट से भी शुभेंदु अधिकारी आगे हैं। बहरामपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 101 सीटें जीत चुके हैं। दूसरी ओर कांग्रेस को 22 सीटों पर बढ़त मिली है और इनमें से वो 19 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 2 सीटें मिली हैं। जालकुबारी निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा चुनाव जीत गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के हितेंद्र नाथ गोस्वामी ने जोरहाट सीट से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई को हराया। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय के नेतृत्व में तमिलगा वित्री कड़गम टीवी के सबसे बड़े पार्टी के रूप में उभर कर इतिहास रचने जा रही है। टीवी के 107 सीटों पर आगे है और इनमें से वो 84 सीटें जीत भी चुकी है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में सत्तारूढ़ डीएमके और उसके सहयोगी दल 74 सीटों पर आगे हैं और इनमें से वो 51 सीट जीत चुके हैं। एआईएडीएमके और उसके सहयोगी दल 53 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, इनमें से 35 सीट जीत चुके हैं। पीएमके 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। तमिलनाडु में चेन्नई से अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी से। जी सुशील, विजय की टीवी के पार्टी की अप्रत्याशित जीत की प्रमुख वजह क्या रही?
1: देखिए लवलीन, जो विजय को सफलता मिली है, उनकी पार्टी टीवीके को सफलता मिली है, ऐसी किसी भी राजनीतिक विश्लेषक को कम से कम चुनाव परिणामों से पहले तक उम्मीद नहीं थी। लेकिन जिस तरीके से युवाओं के बीच विजय का क्रेज था, उनकी एक ब्रांड इमेज सोशल मीडिया पर वो जिस तरीके से वायरल हो रहे थे, और खासतौर पर जिस तरीके से तमिलनाडु में 1 करोड़ से ज्यादा युवा वोटर थे, जिसमें 14 लाख से ज्यादा पहली बार बने वोटर थे, यानी जेंजी हम कह सकते हैं, तो युवाओं का एक जबरदस्त समर्थन मिलता हुआ उन्हें दिख रहा है। इसके अलावा जो जयललिता के निधन के बाद एक तरीके से एक सिनेमाई करिश्मा की उम्मीद तमिलनाडु के वोटरों को हमेशा रही है, सिनेमा के लोगों को उन्होंने हमेशा हाथों हाथ लिया है, चाहे एमजीआर की बात हो या फिर जयललिता की बात हो, तो एक लंबे वक्त तक सिनेमा के प्रति यहां के वोटरों का आकर्षण रहा है और वो इमेज और पुख्ता हुई है विजय के आने के बाद। तो एक तरीके से उन्हें जबरदस्त समर्थन युवा वर्ग से भी मिला और खासतौर पर जो एंटी इनकम्बेंसी यानी जो सत्ता के विरोधी मत थे, उनमें भी उन्होंने एक बड़ी संख्या में मतों को हासिल किया। हम जानते हैं कि 5 साल से ज्यादा जो है सरकार दोबारा रिपीट होने का यहाँ पर चलन नहीं रहा है, तो उस चलन को देखते हुए डीएमके के खिलाफ जो वोट थे, एंटी इनकम्बेंसी जो वोट थे, वो बड़ी संख्या में उनके पक्ष में गए हैं। तो एक तरीके से उन्होंने पूरे राजनीतिक समीकरण को बदल दिया है और जबरदस्त सफलता हासिल की है। जी लवलीन,
0: धन्यवाद सुशील इस जानकारी के लिए। उधर केरलम में सभी 140 सीटों के

0: परिणाम घोषित हो गए हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने 102 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है, जो सत्ता में उसके निर्णायक वापसी का संकेत है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आईयूएमएल ने 22 सीटें जीत ली हैं। पूरे राज्य में गठबंधन की स्थिति मजबूत है। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 26 सीटें जीती हैं। सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 8 सीटें जीती हैं, जबकि केरल कांग्रेस को 7 सीटें मिली हैं। भारतीय जनता पार्टी को राज्य में 3 सीटें मिली हैं, 4 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीती हैं। पुदुचेरी में एन रंगासामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तहत राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की सरकार फिर से बनने जा रही है। कुल 30 सीटों में से 28 सीटों के परिणाम आ चुके हैं। एन रंगासामी की AINRC ने 12 सीटें जीती हैं और 2 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि भाजपा ने 4 सीटें जीती हैं। AIADMK को 1 सीट मिली है, कांग्रेस को 1 सीट मिली है, DMK को 5 सीटें मिली हैं। असम से अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता राकेश टोले से। जी राकेश, असम में NDA उम्मीदों के अनुरूप लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है, यही दर्शाता है कि लोगों ने उनके कार्यों पर विश्वास बनाए रखा है।
1: जी, 2026 के असम विधानसभा चुनाव परिणाम राज्य की राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाते हैं। देखिए, भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए की 102 सीटों के साथ प्रचंड जीत के पीछे मजबूत नेतृत्व, राजनीतिक गठबंधन प्रबंधन और विकास के साथ पहचान की राजनीति के संतुलित उपयोग जैसे कई प्रमुख कारक रहे। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा इस जीत के केंद्रीय सूत्रधार के रूप में उभरे। इस जीत में लक्षित कल्याणकारी नीतियों की भी अहम भूमिका रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास भी एक महत्वपूर्ण कारक रहा। ब्रह्मपुत्र नदी पर बड़े पुलों का निर्माण, सड़क संपर्क में सुधार और नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना ने डबल इंजन सरकार की कार्य क्षमता को जमीन पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया। अवैध घुसपैठ को रोकने और जनसंख्या संतुलन से जुड़े मुद्दों को उठाने की राजनीति मतदाताओं के बीच गहराई से प्रभावी रही। जी
0: धन्यवाद राकेश जानकारी के लिए। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज का दिन कई मायनों में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
2: ये देश के उज्जवल भविष्य की उद्घोषणा का दिन है, ये भरोसे का दिन है। भरोसा भारत के महान लोकतंत्र पर, भरोसा परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स पर, भरोसा स्थिरता के संकल्प पर, भरोसा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पर।
0: श्री मोदी ने कहा कि चुनाव परिणाम लोकतंत्र की जीत है।
2: 5 प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है कि ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश में गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक भाजपा का कमल खिला हुआ है।
2: आप सबको कहा था गंगा जी बिहार से आगे बहते हुए गंगा सागर तक जाती है। बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और अब पश्चिम बंगाल, आज माँ गंगा के इर्द गिर्द बसे इन राज्यों में बीजेपी NDA सरकार है।
0: श्री मोदी ने कहा कि इस बार चुनाव में मतदान के रिकॉर्ड बने और महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक रही।
2: पश्चिम बंगाल में करीब 93% मतदान होना अपने आप में ऐतिहासिक रहा है। असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरलम में भी मतदान के नए रिकॉर्ड बने हैं। इसमें भी महिलाओं की भागीदारी बहुत अधिक रही है। ये भारतीय लोकतंत्र की सबसे उजली तस्वीर बन रही है।
0: भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने भाजपा और एनडीए पर भरोसा जताने और समर्थन देने के लिए लोगों का आभार व्यक्त किया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा है कि बंगाल में भाजपा की ऐतिहासिक जीत पार्टी के अनगिनत कार्यकर्ताओं के बलिदान, संघर्ष और शहादत का परिणाम है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने केरलम के लोगों को निर्णायक जनादेश के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि केरलम में प्रतिभा है, क्षमता है और UDF सरकार इन दोनों का सदुपयोग करेगी। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव

0: एमए बेबी ने कहा है कि पार्टी केरलम में जनता के फैसले का सम्मान करती है और राज्य में हार के कारणों का आत्मनिरीक्षण करेगी। और चुनाव परिणामों से घरेलू शेयर बाजार में उत्साह का माहौल है। आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 356 अंक बढ़कर 77,269 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 122 अंक बढ़कर 24,119 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 के तुलना में रुपया 17 पैसे कमजोर होकर 95.08 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: है स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: ये आकाशवाणी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बलों और उद्योग ने बदलती परिस्थितियों का विश्लेषण और समझ विकसित कर ली है। उन्होंने कहा कि देश की तैयारी हमेशा अद्यतन उच्च स्तरीय तथा मानक के अनुरूप रहती है और ऑपरेशन सिंदूर इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में नॉर्थ टेक सिंपोजियम के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार ने भारतीय रक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने मूगा रेशम उत्पादन में मिजोरम को राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी बनाने की महत्वाकांक्षी योजना प्रस्तुत की। श्री सिंह ने दिन में आइजोल के रेमाबॉक क्षेत्र में स्थित सेरिकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने रेशम कताई फैक्ट्री का निरीक्षण किया। श्री सिंह ने बताया कि मिजोरम को मूगा रेशम उत्पादन में अग्रणी बनाने के प्रयास जारी हैं। UPI दुनिया के सबसे बड़े भुगतान प्लेटफॉर्म के रूप में उभर कर सामने आया है। UPI से अप्रैल के महीने में 22 अरब 35 करोड़ लेन देन किए गए। ये 11 अप्रैल 2016 को अपनी शुरुआत के एक दशक बाद दुनिया की सबसे बड़ी भुगतान प्रणाली बन गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भौगोलिक रूप से दूर होने के बावजूद भारत और जमैका के घनिष्ठ संबंध हैं। दोनों ही ग्लोबल साउथ के विकासशील राष्ट्र होने पर गर्व करते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों ही देशों ने वैश्विक समुदाय में अपनी अलग पहचान बनाई है। जमैका में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत उत्सवों, खेलों और मुश्किलों के हर पल में जमैका के साथ खड़ा रहा है। प्रसार भारती के नवनियुक्त अध्यक्ष प्रसून जोशी ने आज नई दिल्ली में सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। उन्हें पिछले सप्ताह प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इससे पहले श्री जोशी मुंबई में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे हैं। मुंबई में IPL क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 179 रन बना लिए हैं। मुंबई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। आयुष मंत्री प्रतापराव जाधव ने इस वर्ष होने वाली अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान आयोजन के संबंध में योजना बनाने और समन्वित क्रियान्वयन पर विचार विमर्श किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में भारी जनादेश के साथ इतिहास रचा। असम में लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। पुदुचेरी में NDA ने सत्ता बरकरार रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल, असम, पुदुचेरी, तमिलनाडु और केरलम के लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। जीत का श्रेय देश के लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों को दिया। कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे ने केरलम में शानदार जीत दर्ज की। अभिनेता से राजनेता बने विजय की। टीवी के पार्टी ने तमिलनाडु में शानदार प्रदर्शन के साथ राजनीति की शुरुआत की। विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने 4, कांग्रेस ने 2 सीटें जीती। NCP की सुनेत्रा पवार ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की। और चुनाव परिणामों से घरेलू शेयर बाजार में उत्साह का माहौल। सेंसेक्स 356 अंक बढ़ा और निफ्टी 24,100 अंक के पार। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

में जबरदस्त कामयाबी हासिल की। अदाकार से सियासतदान बनने वाले विजय की पार्टी टीवीके ने तमिलनाडु में शानदार कारकर्दगी के साथ अपना खाता खोला। असेंबली जिमनी इंतखाबात में बीजेपी ने 4 सीटें, कांग्रेस ने 2, जबकि एनसीपी की सुनेत्र पवार ने को रिकॉर्ड फर्क से जीत हासिल की। और इंतखाबी नतीजे से घरेलू स्टॉक मार्केटों में खुशी की लहर दौड़ गई। सेंसेक्स में जबरदस्त इजाफा हुआ और निफ्टी 24,100 से तजावुज कर गया। अब खबरें तफसील से। बीजेपी ने मगरबी बंगाल में 294 रुकनी रियासती असेंबली चुनाव में भारी अक्सरियत हासिल करके तारीख रकम की है। आसाम में हुक्मरान बीजेपी की क्यादत वाले एनडीए ने मुसलसल तीसरी मरतबा तारीखी कामयाबी हासिल कर ली है। केरल में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने 99 सीटें जीतकर इकतदार में मजबूत वापसी की है। तमिलनाडु में अदाकार से सियासतदान बनने वाले विजय की पार्टी टीवीके अपने पहले ही चुनाव में बड़ी कामयाबी हासिल करती दिखाई दे रही है। पुदुचेरी में एन रंगास्वामी की ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस की क्यादत में कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए की हुकूमत में वापसी मुतवक्के है। ज़िमनी असेंबली इंतखाबात में बीजेपी ने गुजरात, त्रिपुरा, नागालैंड और महाराष्ट्र में 1-1 सीट जीती है, जबकि कांग्रेस ने कर्नाटक में 2 सीटें हासिल की हैं। एनसीपी ने महाराष्ट्र में रिकॉर्ड वोटों से 1 सीट हासिल की है। बीजेपी मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात में बड़ी कामयाबी की तरफ गामजन है। उसने 294 रुकनी असेंबली में 148 की अक्सरियत का निशाना उबूर कर लिया है। रियासत में आजादी के बाद पहली मरतबा बीजेपी हुकूमत बनती दिखाई दे रही है, जबकि तृणमूल कांग्रेस टीएमसी को 15 बरस इकतदार में रहने के बाद शिकस्त का सामना है। ये चुनाव वोटर फहरिस्त की खसूसी जामे नजरसानी SIR के बाद होने वाला पहला इंतखाब है। कुल 293 असेंबली हलकों में से अब तक 213 हलकों के नतीजे सामने आ चुके हैं। बीजेपी ने 154 सीटें जीत ली हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने 54 सीटें हासिल की हैं। इलाकाई पार्टी आम जनता उन्नयन पार्टी AJUP ने 2 सीटें जीती हैं, जबकि कांग्रेस 1 सीट हासिल करने में कामयाब हुई है। अब तक 80 सीटों के रुझानात के मुताबिक बीजेपी 54 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि तृणमूल कांग्रेस 25 सीटों पर सबकत बनाए हुए है और दीगर 1 सीट पर आगे है। मगरबी बंगाल की वजीर आला और TMC की सरबराह ममता बनर्जी भवानीपुर हलके में बीजेपी के अपने हरीफ सुवेंदु अधिकारी से पीछे हैं, जबकि सुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम सीट पर भी सबकत हासिल बनाए हुए हैं। बीजेपी उम्मीदवार सुब्रत मेहत्रा ने ब्रह्मपुर हलके में कांग्रेस के सीनियर रहनुमा अधीर रंजन चौधरी को हरा दिया है। आसाम में अब तक 119 हलकों के नतीजे का ऐलान हो चुका है, जिनमें बीजेपी ने 81 सीटें जीत ली हैं, जबकि उसकी इत्तेहादी पार्टी आसाम गण परिषद AGP ने 9 सीटें और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट BPF ने 10 सीटें हासिल की हैं। दूसरी जानिब कांग्रेस ने 14 हलकों में जीत हासिल की है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट AIUDF और रायजोर दल ने 2-2 सीटें हासिल की हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस TMC ने 1 सीट जीती है। बाकी 7 सीटों के रुझानात के मुताबिक बीजेपी 1 सीट पर आगे है, कांग्रेस 6 सीटों पर सबकत बनाए हुए है। बीजेपी के रहनुमा और मौजूदा वजीर आला हेमंत बिस्व शर्मा ने जालुकबारी हलके से जीत हासिल की है। केरलम में कांग्रेस 63 सीटों के साथ सबकत बनाए हुए है, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML ने 22 सीटें हासिल करके UDF को रियासत भर में मजबूत बढ़तरी दिलाई है। UDF के दीगर इत्तेहादियों, जिनमें केरला कांग्रेस के मुख्तलिफ धड़े और छोटे इत्तेहादी शामिल हैं, ने भी कामयाबी हासिल की, जिससे इत्तेहाद के हक में बड़े पैमाने पर अवामी हिमायत का इजहार होता है। ताज़ा नतीजों के मुताबिक वजीर आला और CPIM रहनुमा पिनराई विजयन और धर्मादम हलके में कांग्रेस के VP अब्दुल रशीद को 19,000 से ज्यादा वोटों के फर्क से हराया। साबिक मरकजी वजीर और बीजेपी के रियासती सदर राजीव चंद्रशेखर ने नैमम हलके में CPIM के सीनियर रहनुमा VC को 4,000 से ज्यादा वोटों से हराया। अदाकार से सियासतदान बनने वाले विजय की क्यादत वाली TVK तमिलगा
वेत्रा कजगम टीवी के तमिलनाडु असेंबली इंतखाबात में तारीख रकम करने के लिए तैयार नजर आ रही है।

0: टीवी के सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। टीवीके ने रियासत की 234 सीटों में से 85 सीटों पर जीत हासिल कर ली है और 22 सीट पर आगे चल रही है। रियासत में सख्त सहरुखी मुकाबले के दौरान 172 सीटों के नतीजे का ऐलान हो चुका है, जबकि मजीद 62 सीटों के रुझान दस्तियाब हैं। चुनाव कमीशन के मुताबिक वजीर आला एम के स्टालिन की क्यादत वाली हुक्मरान द्रविड़ मुनेत्र कझगम डीएमके ने 41 सीटें जीत ली हैं और 18 सीटों पर आगे है, जबकि उसकी हरीफ ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कझगम AIADMK 15 सीटों पर आगे है और वो 32 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। PMK 2 सीट जीत चुकी है और 2 सीटों पर सबकत बनाए हुए है। इंडियन नेशनल कांग्रेस INC 2 सीटों पर आगे है, जबकि 3 सीट हासिल कर चुकी है। BJP, DMDK, CPI और AMMKMNKZ ने 1-1 सीट पर जीत हासिल की है। CPIM और IUML ने 2-2 सीटें जीती हैं। VCK ने 1 सीट हासिल की है और 1 सीट पर आगे है। अहम उम्मीदवारों में मौजूदा वजीर आला एम के स्टालिन, जो चेन्नई में वाकई अपने आबाई सियासी गढ़ कोलाथुर हल्के से चुनाव लड़ रहे थे। TVK के उम्मीदवार VS बाबू से तकरीबन 8,700 वोटों के फर्क से हार गए। नायब वजीर आला उदयानिधि स्टालिन चेन्नई के चेपॉक थिरुवालिकेनी हल्के में TVK उम्मीदवार सेलम डी के खिलाफ तकरीबन 7,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। TVK के सरबरा विजय पेरम्बूर और तिरुचि ईस्ट दोनों हलकों में 17 मरहलों के वोटों की गिनती के बाद आसानी से सबकत बनाए हुए हैं। साबिक वजीर आला ओ पनीर सिल्वम, जो हाल ही में DMK में शामिल हुए थे, 6,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। पुदुचेरी में एन रंगास्वामी की ऑल इंडिया NR कांग्रेस की क्यादत वाले कौमी जमहूरी इत्तेहाद NDA की हुकूमत की वापसी मुतवक्के है। उसने 30 रुकनी असेंबली में सीटें हासिल करके वाजे अक्सरियत हासिल कर ली है। AINRC ने 12 सीटें जीत ली हैं और BJP 4 सीटें जीत चुकी है और 2 पर बढ़तरी कायम रखे हुए है। AIADMK और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1-1 सीट हासिल की है। DMK ने 2 सीटें जीती हैं और 3 पर आगे है। TVK ने 2 सीटें हासिल की हैं और 1 सीट पर सबकत बनाए हुए है, जबकि NMK और LJK ने 1-1 सीट जीती है। आजाद उम्मीदवारों ने 3 सीटें हासिल की हैं। वजीर आला एन रंगास्वामी थट्टा चन्नावाडी हल्के से दोबारा मुंतखब हो गए हैं। BJP उम्मीदवार और रियासती वजीर दाखला ए नमा सिवायम ने भी अपनी सीट जीत ली है। BJP के सीनियर लीडर और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज का दिन एक तारीख साज और अदीमुल मिसाल दिन है। उन्होंने मगरबी बंगाल, आसाम, पुदुचेरी, तमिलनाडु और केरलम के पार्टी कारकुनान और अवाम का शुक्रिया अदा किया। आज शाम नई दिल्ली में BJP हेडक्वार्टर में पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि आज मुल्क के लिए एक नई सुबह का ऐलान है। नीज अवाम ने भारत के अजीम जमहूरियत में अपने यकीन का इजहार किया है और कारकर्दगी पर मबनी सियासत और एक भारत श्रेष्ठ भारत के जज्बे में अपना भरोसा जताया है।
1: आज का ये दिवस कई मायनों में खास है, विशेष है। ये देश के उज्जवल भविष्य की उद्घोषणा का दिन है। ये भरोसे का दिन है। भरोसा भारत के महान लोकतंत्र पर, भरोसा परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स पर, भरोसा स्थिरता के संकल्प पर, भरोसा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पर। मैं बंगाल की जनता का, असम की जनता का, पुडुचेरी की जनता का, तमिलनाडु और केरलम की जनता का आज आदरपूर्वक नमन करता हूँ।
0: वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी ने खुशी का इजहार किया कि लोगों के यकीन के सबब कमल दोबारा खिला है। उन्होंने BJP के सदर नितिन नबीन की पार्टी कारकुनों की रहनुमाई करने के लिए सताइश की। उन्होंने कहा कि हार और जीत जमहूरियत और सियासत का हिस्सा है और इस मर्तबा दुनिया ने देखा कि भारत क्यों मादरे जमहूरियत के तौर पर जाना जाता है।
1: 5 प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है कि ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी

0: जीता है।
1: वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बीजेपी एनडीए की सरकारें मुल्क की 20 से ज्यादा रियासतों में इख्तदार में हैं और बीजेपी का मंत्र है शहरी भगवान है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी अवाम की खिदमत के लिए वक्फ है और इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग बीजेपी में अपना एतमाद जाहिर कर रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि लोग वाजह तौर पर ये देख रहे हैं कि जहां भी बीजेपी की सरकार है वहां उम्दा हुक्मरानी है और तरक्की हुई है। जनाब मोदी ने उजागर किया कि आसाम के लोगों ने मुसलसल तीसरी मरतबा बीजेपी एनडीए में अपना एतमाद जाहिर किया है और ये एक हैट्रिक है। उन्होंने इस जीत को आसाम की तारीख में एक अजीम कारनामा करार दिया।
0: असम के इतिहास की बहुत बड़ी घटना है। असम के टी गार्डन्स वाले क्षेत्रों में भी बीजेपी को अभूतपूर्व समर्थन मिला है। श्रीमंत शंकर देव जी, महायोद्धा लसित बोरफुकन जी, बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा जी, भूपेन हजारिका जी, ऐसे अनेक महान व्यक्तित्वों से प्रेरणा लेते हुए असम अपने विकास की रफ्तार अब और बढ़ाएगा।
1: जनाब मोदी ने मगरबी बंगाल के हर एक बाशिंदे को यकीन दिलाया कि बीजेपी रियासत के बेहतर मुस्तकबिल के लिए मुसलसल काम करेगी। उन्होंने कहा कि अब रियासत में खवातीन महफूज होंगी, नौजवानों को रोजगार मिलेगा, माइग्रेशन खत्म होगा और दरअंदाजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि पहली काबीना मीटिंग में आयुष्मान योजना को मंजूरी दी जाएगी। 5 रियासतों के 7 असेंबली हल्कों में हुए असेंबली जिमली इंतखाबात में बीजेपी ने गुजरात, त्रिपुरा, नागालैंड में 1-1 सीट जीती है और महाराष्ट्र में भी 1 सीट जीती है, जबकि कांग्रेस ने कर्नाटक में 2 सीटें जीती हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी की इत्तेहादी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी ने भी 1 सीट जीती है। महाराष्ट्र में सुनेत्र पवार ने बारामती जिमनी इंतखाबात में 2,18,930 वोट हासिल करके तारीख रकम की है और मुल्क में सबसे ज्यादा वोट मार्जिन से जीत कर एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। जिन्होंने 2022 उन्होंने बीजेपी के सुनील कुमार शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्होंने 2022 के उत्तर प्रदेश के असेंबली इंतखाबात में साहिबाबाद सीट से जीतकर 2,14,835 वोट हासिल किए थे। घरेलू शेयर बाजार में आज तकरीबन 0.5% का इजाफा दर्ज किया गया। सेंसेक्स 356 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 77,269 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी में 122 पॉइंट्स का इजाफा हुआ और ये 24,119 पर बंद हुआ। मजमूई तौर पर शेयर बाजार में इंतखाबी नतायज से घरेलू स्टॉक मार्केटों में खुशी की लहर दौड़ गई और मुस्बत रुझान देखने को मिला। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। बीजेपी ने मगरबी बंगाल में जबरदस्त अक्सरियत के साथ तारीख रकम की। आसाम में भी मुसलसल तीसरी मरतबा कामयाबी हासिल की। एनडीए ने पुदुचेरी में अपना इख्तदार बरकरार रखा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी बंगाल, आसाम, पुदुचेरी, तमिलनाडु और केरलम के अवाम और पार्टी कारकुनान का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने आज की जीत को भारत की जमहूरी और आईनी अकदार से मंसूब किया। कांग्रेस की क़यादत वाले मुत्तहिदा जमहूरी महाज ने केरलम में जबरदस्त कामयाबी हासिल की। अदाकार से सियासतदान बनने वाले विजय की पार्टी टीवीके ने तमिलनाडु में शानदार कारकर्दगी के साथ अपना खाता खोला। असेंबली जिमनी इंतखाबात में बीजेपी ने 4 सीटें, कांग्रेस ने 2, जबकि एनसीपी की सुनेत्र पवार ने रिकॉर्ड फर्क से जीत हासिल की। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: आप सुन रहे हैं 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव परिणामों पर विशेष कार्यक्रम जनादेश 2026। और हमारे साथ प्रफुल्ल केतकर जी और केवी प्रसाद जी, वरिष्ठ पत्रकार, स्टूडियो में मौजूद हैं डिस्कशन के लिए। और इससे पहले कि हम उनसे बात करें, प्रधानमंत्री की जो उन्होंने आज संबोधन दिया उसकी एक अंश सुनते हैं और फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
0: अभी 4 मई की यह शाम भले ही ढल रही हो, लेकिन बंगाल की पावन धरा पर आज एक नया सूर्योदय हुआ है। एक

0: इंतजार पीढ़ियों ने किया है। भाजपा ने जितनी सीटें जीती वो महज एक चुनावी आंकड़ा नहीं है, ये उस अडिग विश्वास की हुंकार है जिसने डर, तुष्टिकरण और हिंसा की राजनीति को जड़ से उखाड़ फेंका है। आज से बंगाल के भविष्य की एक ऐसी यात्रा शुरू हो रही है जहां विकास, अटूट विश्वास और नई उम्मीदें कदम से कदम मिलाकर चलेगी।
1: KV Prasad, sir, the Honourable Prime Minister talking about development and the trust on tomorrow's hopes that the people have and how they have entrusted those hopes in the form of votes to the BJP. How do you see this change in power for the people of Bengal, especially for the constituencies which were just at the border, which were facing issues, as Praful Ketkarji rightly said, that the fall of this government, the TMC government, came or started around 1.5 years back when the government of Sheikh Hasina fell, and there were so many repercussions on one particular community, but there was no comment or no action taken by the TMC, or not even a comment from them. How do you see that changing now? And with this, we will also like to tell everyone that Suvendu Adhikari has clearly talked about the fact that not just Hindu majority areas, but every other areas too, have clearly voted for the BJP for this change. Sir, your views.
2: Well, the biggest thing I would see is for the Bharatiya Janata Party that it has to hit the ground running without delay, number one, because the task, the mandate that people have given them shows the kind of hope they carry in this new government. They've elected a government on the set of promises the government has, the Bharatiya Janata Party, right from the top leadership, led by the Prime Minister himself during his entire campaign and everybody else. That's one thing. And secondly, what the Prime Minister has articulated, those are the factors on which the BJP will be there. Infiltration, of course, has been big in the campaign, and these are some of the factors. And improving relationship with the neighbor state is now, of course, an aspect that got into the domestic politics too. So we'll have to see how it takes the course forward. But I said, they'll have to hit the ground running without delay.
3: प्रफुल जी, एक और स्टेट जो तमिलनाडु में आज जो रिजल्ट आया है वो भी बहुत ही रेवोल्यूशनरी कह सकते हैं। डीएमके जो वहां पर सत्ता में थी उनको नहीं मिली है मेजॉरिटी, और एआईएडीएमके जो दूसरी ड्रेविडियन पार्टी थी जो डीएमके से पहले सत्ता में थी उनको भी नहीं मिली है। जो नई पार्टी है टीवी के एक्टर टर्न पॉलिटिशियन विजय की, उनको जो मिडवे मार्क है उससे केवल 10 सीटें पीछे हैं वो। सो पहले तो बताएं कि ये इतना बड़ा बदलाव कैसे आया है, एक नई पार्टी जो 2 साल पहले ही बनी थी उसमें क्या देखा है वोटर्स ने, और कैसे देखते हैं पोस्ट पोल क्या अलायंस होगा?
4: देखिए सोनू जी, मैं थोड़ा सा उसको और उल्टे तरीके से देखता हूँ। डीएमके और एआईडीएमके मिलकर जितनी सीटें हैं उतनी टीवीके को है।
1: True that.
4: One. Secondly, फर्स्ट टाइम एवर, मतलब अभी तक जो भी पार्टी वहां पे जीतती थी वो अपने दम पर 30-32% ही वोट लाती थी
3: जी।
4: बाकी अलाइज के साथ मिलकर वो गवर्नमेंट बना लेती थी। वो नंबर्स तमिलनाडु में जो दिखते हैं ना, हम जनरली दो बड़ी द्रविडियन पार्टीज में देखते हैं, लेकिन यदि हम पीएमके, एमडीएमके, ये छोटे छोटे दल वहां के देखें तो उनका हरेक का अपना 2-5% का वोट शेयर है, एंड दे एड अप। दैट हैजंट हैपेंड दिस टाइम। टीवी के पक्ष में 35% वोट शेयर है द पार्टी कंटेस्टिंग फॉर द फर्स्ट टाइम।
3: बिल्कुल।
4: तो ये जो है ये क्लियरली दिखाता है कि तमिलनाडु का वोटर जयललिता और करुणानिधि जी के निधन के बाद ऑप्शंस देख रहा था। उन्होंने एक बार पनाईसामी के नेतृत्व में एआईडीएमके को ट्राई किया, स्टालिन को ट्राई किया, लेकिन दोनों द्रविड़ियन पार्टीज वो एस्पिरेशंस और वो लीडरशिप नहीं दिखा पाए। करप्शन, पैसे का पूरे चुनावी प्रक्रिया में उपयोग, पूरी फिल्म इंडस्ट्री आज तमिलनाडु की डिवाइडेड, नोबडी अंडरस्टैंड्स दिस। यू नो वर्चुअली उदयनिधि स्टालिन इज कंट्रोलिंग द फिल्म इंडस्ट्री, और वो फिल्म इंडस्ट्री का रिफ्ट है विजय।

0: ही इज गिविंग अ न्यू होप फॉर तमिल फिल्म इंडस्ट्री। इसीलिए हम देखते हैं कि मलेशिया से, सिंगापुर से, तमिल फिल्म केवल तमिलनाडु में नहीं चलती है, वो बाहर जो तमिल डायस्पोरा बैठा हुआ है उसके भी एस्पिरेशन उन्होंने एड्रेस किए। तो ये सारे फैक्टर मिलाकर एटलीस्ट 3 to 4 मिनिस्टर बंगाल की चर्चा होती है, तमिलनाडु में भी एटलीस्ट 3 to 4 मिनिस्टर करप्शन चार्जेस में जेल में गए हैं। तो ये सारे फैक्टर एडअप होने के कारण लगभग 17% यूथ आज तमिलनाडु में है। दे वेर लुकिंग फॉर यू नो लुकिंग एट विजय एज अ होप। वो दिखने के बाद बाकी रैलिंग हुआ है, ऐसा मुझे अभी इनसाइड में लगा।
1: तो एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ सेलिब्रिटी ट्रैक्शन
0: भी। डीएमके के खिलाफ सेंटीमेंट था, वो किसके पक्ष में जाता है ये समझ में नहीं आ रहा था। विजय हैज डेफिनेटली
2: एब्सोल्युटली प्रफुल्ल जैन, एज यू वर सेइंग दैट द एरोगेंस ऑफ द इनकम्बेंट पार्टी और व्हिच हैज नाउ बिकम द पार्टी व्हिच वाज रूलिंग तमिलनाडु हैज शोन the people that yes they were looking for a change and now they have exercised their right that yes we need that change in the form of a new face. Let's go over to our Chennai correspondent Sushil Tiwari. Sushil ji, welcome to the show. What is the sentiment on the ground? How happy, excited, elated are the people with this win of TVK and what are their hopes and aspirations? I believe
1: सुशील जी अथा वे सुन पा रहे हैं? कुछ तकनीकी शायद प्रॉब्लम है। आपके पास आते हैं मिस्टर प्रसाद, आप कैसे देखते हैं तमिलनाडु में जो ये रिजल्ट आया है? हालांकि अब एग्जिट पोल से कुछ आभास होने लगा था और उसके अकॉर्डिंग ही लगता है रिजल्ट आया है, लेकिन इसका इसका कारण क्या है आपके आप पर्सपेक्टिव हमें?
3: देखिए, मैं एक चीज जो प्रफुल्ल जी ने कहा उसको आगे बढ़ाता हूँ। आप अगर देखिए 2016 का जो चुनाव हुआ तमिलनाडु में, वो पहली मर्तबा हुआ कि तमिल फिल्म इंडस्ट्री कट गई थी, कोई नुमाइंदगी नहीं थी क्योंकि स्टालिन इंडस्ट्री से नहीं आए थे और जो उम्मीद थी रजनीकांत चुनाव लड़ेंगे वो चुनाव से ठीक पहले पीछे हट गए थे। उन्होंने कहा मैं पार्टी नहीं बनाऊंगा और उसके बाद
1: और कमल हासन की पार्टी
3: थी लेकिन उसका कोई खास हुआ नहीं। और भी थे नेमम और भी दो चार लोग हैं नाइमम जो वहाँ पे वो थे लेकिन उनका इतना प्रभाव नहीं था। कैप्टन विजयकांत के जाने के बाद डीएमडीके का भी, तो जब इस बारी ये हमारे टीवीके के विजय मैदान में आए और दो साल पहले तो उन्होंने पार्टी बनाई लेकिन इससे पहले उन्होंने प्रक्रिया शुरू कर दी थी। अगर आप देखें उनकी जो फैन क्लब्स है उस फैंस क्लब को उन्होंने एक्टिवेट किया सोशल वर्क के लिए, तो एक तरह से पूरा अपना पैंट बनाई लोगों के बीच में और वेलफेयर वर्क किया। उसके बाद उनको स्थानीय चुनाव में लड़वाए तो उसमें से सीटें निकल के आने लगी, तो एक तरह से उनको पता था कि राजनीति क्या होनी है। और सबसे बड़ा मानता हूं कि जब एक तो तमिल फिल्म इंडस्ट्री के साथ देखिए, तमिलनाडु पॉलिटिक्स शुरू से देखिए, अन्नादुराय के टाइम से देखिए, कामराज के टाइम से देखिए, सब फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं किसी ना किसी, करुणानिधि खुद, एमजी रामचंद्रन, जयललिता, सब फिल्म इंडस्ट्री से निकल के आए, तो वो एक इंपॉर्टेंट कनेक्ट वापस जुड़ा है तमिलनाडु पॉलिटिक्स में। दूसरा, ये एक युवा होने के कारण नया उम्मीद लेके लोग उनके साथ आए हैं। और तमिलनाडु में जितने राजनीति मैंने कई सालों से देखी, ये जरूर था उनके पास कि एक विकल्प जरूर देते थे, कोई तीसरा विकल्प दोनों द्रविड़ियन पार्टी से अलग।
1: चेन्नई से सुशील तिवारी हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील जी, बताएं कि तमिलनाडु में जो ये एक कहें कि बहुत ही क्रांतिकारी सा बदलाव आया है, एक नई पार्टी जो उभर के आई है, क्या कैसे देखते हैं आप इसको, किस तरह का माहौल है और क्या आशाएं हैं?
4: देखिए, ऐसा है कि ये बहुत बड़ी जीत, आप अगर इसे एक नजरिए से देखें तो युवाओं की और जेंजी की इस जीत में बहुत बड़ी भूमिका है। जैसा कि मैंने पहले भी कई बार बताया कई चर्चाओं में कि जो 14 लाख के आसपास पहली बार के वोटर्स थे उनमें युवा वर्ग में बहुत जबरदस्त क्रेज था विजय का, और जिसकी हम लोग बार बार विभिन्न विषयों मौकों पर चर्चा कर चुके हैं कि किस तरीके से फिल्म स्टार्स की एक लार्जर देन लाइफ इमेज होती है। वो हमने देखा कि जो तमिलनाडु की राजनीति है उसमें शुरुआत में जो द्रविड़ियन पॉलिटिक्स, जो पेरियार आंदोलन था, वहां से लेकर के राजनीति, जो सिनेमा घर है वो एज ए क्लासरूम सोशल इविल्स को लेकर के और सोशल वेलफेयर मतलब सामाजिक मुद्दों को लेकर के वो उठाते रहते थे, और अगली पीढ़ी में वही लोग नेता बनकर के आए, मुख्यमंत्री बने और उन्होंने उसको एक्सपेंड किया। अगली पीढ़ी में वो जो पर्दे पर

0: जो करते हुए दिख रहे थे गरीब तबके के लिए और दबे कुचले लोगों के लिए, वो उन्होंने सामाजिक कल्याणकारी स्कीमों के जरिए किया। और इस बार उसी अटैचमेंट का लाभ जो है वो विजय ने अपनी ब्रांड इमेज को मजबूत करने में किया। तो 30 साल के आसपास तक के जितने 1 करोड़ से ऊपर मतदाता थे उनमें उनका जबरदस्त क्रेज रहा, सोशल मीडिया में जबरदस्त क्रेज रहा। तो एक तो उनके जीतने के पीछे एक ये वजह भी थी, प्लस जो एंटी इनकम्बेंसी वोट्स थे, जो एक वॉइड था, जो एक खालीपन था, जो फिल्मी सितारों का जिस तरीके से कहा जाए कि उस तरीके से पिछले 10 सालों में ऐसा कुछ विजयकांत ने जरूर शुरुआत की थी लेकिन उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाए
1: जी।
0: तो रजनीकांत, कमल हासन सबने प्रयास किया लेकिन इस तरीके का कनेक्ट वो यूथ के साथ नहीं बना पाया। वो पीढ़ी भी पुरानी थी, नई पीढ़ी के सितारे के तौर पर विजय ने जबरदस्त कनेक्ट किया। तो एक तो ये रहा और दूसरा हम अभी देख रहे हैं किस तरीके से युवा सड़कों पर जो विसल पोड़ू, जो तमिल में कहते हैं कि सीटी बजाओ, उनका जो नारा था, उनकी जो सिंबल था वो भी सिंबल भी था, वो जबरदस्त हर तरफ सीटी बजाते हुए कार्यकर्ता घूम रहे हैं, सड़कों पर आतिशबाजी हो रही, हजारों लोग लाइन में लगे हुए हैं विजय की एक झलक पाने के लिए।
1: तो जोश बहुत है
0: पार्टी वर्कर्स के पास। तो इतने बड़े समूह की आकांक्षाओं को भी साकार करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए, सरकार की असफलता जो थी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, ड्रग्स को लेकर के, और जो फिल्म इंडस्ट्री की बातें हो रही थी कि एक तरीके से पूरा कब्जा हो रहा था, तो वो उस चीज से मुक्ति दिलाने का विजय वादा करके आए। और AIADMK में उस तरीके का करिश्मा नहीं रहा, लोगों को वो कनेक्ट विजय के साथ हुआ, स्पेशली यूथ को। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर होगी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और स्टूडियो में प्रफुल्ल जी आपके पास आएंगे, पुदुचेरी की अगर हम बात करें तो AINRC और सहयोगी दल 17 सीटें जीत चुके हैं और एक पर आगे हैं। कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों को 6 सीटें मिली हैं, टीवी के 3 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है, अन्य को 3 सीटें मिली हैं। सो जो 16 का जो मैजिक नंबर है वो ऑलरेडी जो BJP और AINRC है उन्होंने हासिल कर लिया है, दोबारा उनकी सरकार बनेगी, ये कितना आपको इम्पोर्टेंट लगता है?
2: देखिए जो 2016-17 के बाद BJP ने वहाँ पे एक जो एक्सपेरिमेंट किया, वहाँ की एक स्थानिक पार्टी को साथ में लेकर सरकार बनाई, उसको मर्ज नहीं किया BJP में, उस पार्टी की आइडेंटिटी बनाए रखते हुए BJP ने अलायंस किया। ये BJP दक्षिण के राज्यों के लिए एक अलग सा प्रयोग करने का प्रयास कर रही थी, पुदुचेरी में वो सफल हुआ है और लगातार दूसरी बार NDA को वहाँ पे जीत मिली है। यहाँ पे जो मुझे इंटरेस्टिंग चीज जो अपने जो सुनने वाले हैं उनको बतानी है कि यदि हम AINRC और BJP और उसके अलाइज इनका सबका वोट परसेंटेज देखते हैं तो ये बहुत छोटी विधानसभा है इसलिए बहुत बार समझ में नहीं आता, लेकिन हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि BJP ऑन इट्स ओन हैज अ 13% वोट शेयर हियर। तो वहां पे जो केमिस्ट्री होती है किसी भी अलायंस को जीतने के लिए कि वो ट्रांसफर बहुत अच्छा हुआ है और इस वजह से लगभग 23-24% के साथ AINRC और BJP, तो वो वोट परसेंट उनका लगभग हम कह सकते हैं कि 35-36% के आसपास होने के बाद भी उन्होंने आराम से वहां पे मेजोरिटी हासिल की है। AIADMK उनके साथ में है ही, उसने भी 1.5-2% वोट ऐड किया है। उसके विपरीत यदि हम देखते हैं तो DMK और कांग्रेस इनका मिलाकर लगभग 30% तक का वोट शेयर है। कांग्रेस 17% पर है, DMK 13% पर है, लेकिन फिर भी वो सीट में कन्वर्ट नहीं हो पाया है क्योंकि अंदरूनी केमिस्ट्री नहीं है।
3: एब्सोल्युटली प्रफुल्ल जी,
2: ये समझना बहुत जरूरी है पुदुचेरी के मामले।
3: वेल लेट्स अंडरस्टैंड मोर एज टू व्हाट आर द सिचुएशंस इन पुदुचेरी। वी गो ओवर लाइव टू आवर कॉरेस्पॉन्डेंट इन पुदुचेरी, द आकाशवाणी कॉरेस्पॉन्डेंट बिबिन एस नाथ। बिबिन जी, वेलकम टू द शो। व्हाट इज द सेंटिमेंट ऑन द ग्राउंड? हाउ डू यू सी दिस विक्ट्री ऑफ द BJP ऑफ नेशनल इश्यूज being considered by the people, the national leaders being considered by regional people or regional areas, and them giving a chance to the BJP once again in Puducherry? How the best Puducherry vision of 2021 has borne fruit?
4: Thank you. Good evening. In my perspective, actually, at the heart of the victory in Puducherry, rather than the double engine government, I can say it is once again the central figure of Chief Minister N. Rangasamy. So his performance is central to this to

0: sentiments.
1: जी
0: Himanta Biswa Sarma is doing it the other way around. He is using Assamese identity to strengthen the relationship with
1: Delhi.
0: And
1: I would say unapologetically.
0: Unapologetically.
1: He's being unapologetically
0: himself. One is, you know, his stand on, you know, illegal migration issue, because Assamese identity was a very, very sentimental issue since 2000.
1: Absolutely.
0: Actually, from AGP agitation, Asu agitation, then AGP. The way, again, many a times we do not understand, 102 is a huge number in 126 assembly. But again, I will insist on chemistry. AGP, Bodoland Party and BJP together has, you know, 102 seats. And again, BJP is just 37%. All these two parties have brought in 10% more.
1: That.
0: So it is shifting not just in their area where BJP is contesting. So when the chemistry is right, you convert seats more with lesser percentage. That is the formula that BJP is using everywhere.
2: In fact, प्रधानमंत्री ने अपने उसमें कहा संबोधन में कि अब जो टी गार्डन के वर्कर्स हैं वो भी हमारे लिए वोट कर रहे हैं. तो जो अभी तक जो भी ऐसे ऐसे सेगमेंट्स थे जो प्रो बीजेपी नहीं थे, जो आप कह रहे हैं कि जो एक्सप्लॉइट भी किया जाता है कल्चरल आइडेंटिटी या रीजनल, जैसा बंगाल में भी हमने देखा, तो वो भी अब इस बात को यू नो स्वीकार रहे हैं कि नेशनल पार्टी भी उनके लिए बेहतर हो सकती है.
0: असम में और बंगाल में दोनों जगह पर मैंने देखा, खास करके बीजेपी ने अनुसूचित जाति जनजाति दोनों वर्गों में और खास करके टी गार्डन में पहली बार उनको वोटिंग राइट में इंक्लूजन तो एक हिस्सा है ही, जिसका सेंटिमेंटल पहली बार उनको लैंड राइट मिला है. आफ्टर ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन उनको वहां पे एज अ लेबर लेकर गया थे, तो उसके कारण टी गार्डन वर्कर्स को लैंड राइट नहीं थे, अभी उनको पट्टा मिला है. दैट हैज बीन द गेम चेंजर. यू नो अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस डिडंट पे अटेंशन टू. वो मुझे लगता है, और वो तमिलनाडु में वेस्ट बंगाल में इंप्लीमेंट नहीं हुआ है. तो ये केवल आयुष्मान भारत की बात नहीं है, वेस्ट बंगाल में पट्टा इंप्लीमेंट नहीं हुआ, वेस्ट बंगाल में सीए और डिलिमिटेशन में कैसी दिक्कतें आई जो असम में इंप्लीमेंट हो गया, तो वो एक मैसेज है. और तीसरा सबसे बड़ा मुझे जो फैक्टर लगता है, अगेन टुडे नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट, बंगाल इज वन स्टेट वेयर सेवन पे कमीशन इज स्टिल नॉट इंप्लीमेंटेड बाय द स्टेट.
2: ओके,
0: तो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का जो रिजेंटमेंट है, बहुत लोग पॉलिटिसाइजेशन ऑफ स्टेट मशीनरी तो करते हैं, लेकिन स्टेट मशीनरी को जो सेंटर के बेनिफिट्स पास ऑन नहीं हुए हैं उसके बारे में कोई नहीं बात करता. मुझे लगता है वो भी एक बड़ा फैक्टर. तो असम में ये और असम और बंगाल में ये मुझे लगता है कि जो मार्जिनलाइज सेक्शन, जो एक्सप्लॉयटेड स्टेट मशीनरी के थ्रू फील करते थे, उन्होंने डिसाइसिवली बीजेपी के पक्ष में वोट दिया है.
1: एब्सोल्युटली.
2: अगर हम केरला की बात करें मिस्टर प्रसाद, तो वहां पर जो लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की गवर्नमेंट थी, अब वो इस चुनाव में अपना जो स्थान है वो बरकरार नहीं कर पाई है, और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट जीत गया है. सो इसको आप इस चेंज को कैसे देखते हैं? क्या जो एक लेफ्ट की सरकार एक जो बची हुई थी एक राज्य में, अब वो भी नहीं रहेगी, तो इसको भी आप एक बहुत बड़ा एक बदलाव मानते हैं?
3: जी, राजनीति में तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि ठीक है एक लेजिस्लेटिव प्रेजेंस उनका खत्म हो गया, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कम्युनिस्ट का आइडियोलॉजी या वो उसमें फर्क पड़ा है, लेकिन एक प्रेजेंस नहीं लेगा लेजिस्लेटिव, नंबर वन. नंबर टू, एक चीज है जो रिवॉल्विंग डोर पॉलिटिक्स हम कहते हैं केरला में, जैसे तो अल्टरनेट करते थे, वो वापस आ गया. क्योंकि पिछले बारी वो टूटा था बहुत सालों बाद, कि लेफ्ट की सरकार रिपीट हो गई थी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की, तो वो एक सिग्निफिकेंट चेंज है. लेकिन कांग्रेस के सामने भी अपनी समस्याएं हैं, अभी वो आगे चल के पता लगेंगी हमें.
1: Absolutely. But KV sir, as we were talking earlier, you've said that you've been covering elections and you've been seeing the political scenario in India for so long now, decades. Has the left completely lost track of the voter sentiment now? We see in West Bengal, we see in Assam, now we've seen it in Kerala. How the left has completely been sidelined by the people, and time and again, are there no issues with the left? Or the left has completely lost track of what the people want?
3: I don't say they lost track completely, but just that what the issues that they're picking up are not gaining traction. A, probably they're not able to reach out to the segments in the manner in which they were reaching out earlier. The landscape has changed, and they have not adapted to the changing landscape. You have to understand that every generation there will be

0: new things coming up. So if you can't use the same old methods of mobilization, mass mobilization, which used to be the criteria for left parties in India, that has changed.
1: और प्रफुल्ल जी, अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो अभी पोस्ट पोल आप किस तरह का वहां पर अलायंस बनता हुआ देखते हैं, किस तरह की नेगोशिएशंस की एक्सपेक्टेशन की जा सकती है सरकार बनने के लिए?
2: देखिए, टीवी के मोटा मोटा मानकर चलते हैं, अभी के ट्रेंड्स के हिसाब से 107 108 सीट तक सेटल डाउन होगा. और इसलिए कोई और अल्टरनेट गवर्नमेंट बनने का तो कोई स्कोप नहीं है, तो टीवी की गवर्नमेंट बनाएगी. विजय इज ऑलरेडी कंसिडर्ड एज अ यू नो फ्यूचर चीफ मिनिस्टर. ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ इवन बिफोर व्हेन बोथ द पार्टीज वर ट्राइंग टू निगोशिएट विथ हिम. वो तो बात ही इसी तरीके से कर रहा था कि जिसको मेरे पास आना है वो आए, मैं तो फ्यूचर चीफ मिनिस्टर हूं. तो ही वॉज वेरी क्लियर विथ हिज सपोर्ट बेस. अब चैलेंज उसके सामने दो तरीके के है. एक, वो किस तरीके से, क्योंकि उसने एंटी डीएम के पॉलिटिक्स को तमिलनाडु में लाया है, ये पक्का है. लेकिन क्या वो आज छोटी पार्टीज को साथ में लेकर गवर्नमेंट फॉर्म करने की स्थिति में है, या एआईडीएमके के साथ इसमें बीजेपी और सेंटर कितना रोल प्ले करता है, ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा इस गवर्नमेंट फॉर्मेशन में. बिकॉज विजय एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वॉज इन टॉकिंग टर्म्स विद द बीजेपी एंड एआईडीएमके ऑल्सो. लेकिन दूसरा बड़ा फैक्टर जो मुझे लगता है कि उसने लगभग सारे उसके कैंडिडेट्स फ्रेश है, किसी को पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं है, किसी को गवर्नेंस का एक्सपीरियंस नहीं है, एंड गवर्निंग अ कॉम्प्लेक्स स्टेट लाइक तमिलनाडु इज नॉट गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर.
1: और प्रफुल्ल जी, पांच राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव हुए, भाजपा ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है जबकि कांग्रेस को 2 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिली है. इसमें क्या कुछ खास रहा इस उपचुनाव में?
2: देखिए, वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुनेत्रा पवार की सीट है, हाईएस्ट मार्जिन से जीती है बारामती की. तो अजीत पवार के निधन के बाद वो सीट वेकेंट हुई थी, इसलिए वहां पे बायपोल हुआ है. मुझे नागालैंड की विक्ट्री बीजेपी के लिए बहुत सिग्निफिकेंट लगती है. नागालैंड में अपने दम पर बीजेपी ने एनपीपी और वहां की स्थानीय पार्टियों को हराकर वो सीट जीतना, ये एक सिग्निफिकेंट मैसेज मुझे लगता है कि नॉर्थ ईस्ट से भी है.
3: केवी सर, योर व्यूज ऑन द विक्ट्रीज ऑफ द बाय इलेक्शंस सो फार एंड हाउ डज इट?
0: वेल, नॉर्मली वी सी बाय इलेक्शंस the government of the day gets to carry the by-elections.
3: Right.
0: So if you look at the last in Karnataka, BJP has, Congress has. In Gujarat, BJP. And of course, as
3: Maharashtra again, BJP.
0: Maharashtra,
3: yes.
0: But Maharashtra, there was less of a contest because there was more out of sentiments. People had not contested that seat. That is a very common trend in Indian politics. Nagaland is the sole exception if you look at this way. But otherwise, the broader trend that the state assembly elections by polls usually go with the government of the day is more or less in place.
1: समय समाप्त हो रहा है, सो अब हम इस चर्चा को भी यहीं समाप्त करेंगे. प्रफुल्ल जी, प्रसाद जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद. आप आए और आपने जो आज जनादेश आया है उसका विश्लेषण हमारे श्रोताओं के लिए किया.
0: धन्यवाद.
1: और अब मेरी तरफ से और मेरे को एंकर वैभव श्रीवास्तव की तरफ से आपको नमस्कार. जनादेश 2026 की इस विशेष चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं.
3: थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आकाशवाणी.
4: जनादेश 2026,
5: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम.
6: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है. मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर. रात्रि के इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 10 बज रहे हैं. शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम संवासरीय संगीत सभा में अब प्रस्तुत है राम प्रकाश मिश्र का ख्याल गायन राग जय जयवंती. विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध है. बोल हैं पिया हम, जबकि द्रुत के बोल हैं ऐसो नवल, जो 3 ताल में निपत है. तबले पर संगति है डॉक्टर श्याम मोहन की और हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं रविशंकर नारायण सिंह.

0: अभी आपने राम प्रकाश मिश्र का ख्याल गायन सुना। तबले पर संगति थी डॉक्टर श्याम मोहन की और हारमोनियम पर रविशंकर सिंह साथ दे रहे थे। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सोमवासरीय संगीत सभा संपन्न होती है। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। एक अंतराल के बाद सुनेंगे फिल्म संगीत।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

फिल्म उम्मीद में भी आपने मोहम्मद रफी को सुना। शकील के बोलों को रवि ने संगीतबद्ध किया था और अब लता मंगेशकर को सुनवा रहे हैं फिल्म सौदागर में। गीत और संगीत रविंद्र जैन का।

0: करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, जो चाहे सजा दे।
1: फिल्म वंदना का ये गीत हमने आपको सुनवाया, असद भोपाली के बोल, रवि का संगीत, आवाज मोहम्मद रफी की, और अभी कंतराल उसके बाद सुनवाएंगे कुछ और गीत।
2: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
3: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
4: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

एक महल हो सपनों का, ऐसे फिल्म का ये नगमा था। लता मंगेशकर को आपने सुना, शायर की रचना, रवि का संगीत। अगला गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, गीत लिया है फिल्म अमानत से, शायर के बोलों को संगीत से संवारा है रवि ने।

0: नई रोशनी फिल्म से ये नगमा था लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर का, आपने सुना। राजेंद्र कृष्ण के बोल, रवि का संगीत, और एक अंतराल सुनवाएंगे कुछ और गीत।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

0: फिल्म वक्त में अभी आपने आशा भोसले और महेंद्र कपूर को सुना। शायर की रचना थी, रवि का संगीत और फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ है। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11 बजने को हैं। थोड़ी देर में हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार प्रसारित होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने अभी तक विधानसभा की 293 सीटों में से 197 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस को 68 सीटों पर जीत हासिल हुई है, वाम दल को एक सीट मिली है, अन्य को 4 सीटों पर जीत हासिल हुई है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से 15,000 से अधिक मतों से हार गई हैं। नंदीग्राम सीट से भी शुभेंदु अधिकारी ने जीत दर्ज की। बहरामपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है।

विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 102 सीटें जीत चुके हैं। दूसरी ओर कांग्रेस को 21 सीटों पर बढ़त मिली है और इनमें से वो 19 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 2 सीटें मिली हैं। जालुकबारी निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा चुनाव जीत गए हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय के नेतृत्व में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर इतिहास रचने जा रही है। टीवी के ने 103 सीटें जीत ली हैं और वो 4 सीटों पर आगे है। टीवी के अध्यक्ष विजय ने अपनी दोनों सीटों परम्बूर और तिरुचि में जीत दर्ज की। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में सत्तारूढ़ डीएमके के 56 सीट जीत चुकी है। एआईएडीएमके 45 सीट जीत चुकी है। कांग्रेस ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की और भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पर आगे चल रही है। कोलाथूर सीट से मुख्यमंत्री और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के उम्मीदवार एमके स्टालिन को तमिलगा वेत्री कड़गम पार्टी के

0: डीएमके 45 सीट जीत चुकी है। कांग्रेस ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की और भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पर आगे चल रही है। कोलाथूर सीट से मुख्यमंत्री और दवड़ मुनेत्र कड़गम के उम्मीदवार एमके स्टालिन को तमिलगा वेत्री कड़गम पार्टी के बीएस बाबू ने 8,795 मतों के अंतर से हराया। केरल में सभी 140 सीटों के परिणाम घोषित हो गए हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने 102 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है, जो सत्ता में उसकी निर्णायक वापसी का संकेत है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML ने 22 सीटें जीत ली हैं। पूरे राज्य में गठबंधन की स्थिति मजबूत है। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी CPIM ने 26 सीटें जीती हैं। सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI ने 8 सीटें जीती हैं, जबकि केरल कांग्रेस को 7 सीटें मिली हैं। भारतीय जनता पार्टी को राज्य में 3 सीटें मिली हैं, 4 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीती हैं। पुदुचेरी में एन रंगासामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस AINRC के तहत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की सरकार फिर से बनने जा रही है। कुल 30 सीटों में से 29 सीटों के परिणाम आ चुके हैं। एन रंगासामी की AINRC और सहयोगी दलों को 17 सीटें मिली हैं। भाजपा ने 4 सीटें जीती हैं। AIADMK को 1 सीट मिली है, कांग्रेस को 1 सीट मिली है, DMK को 5 सीटें मिली हैं। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस को 2 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिली है। गुजरात की उमरेठ सीट पर भाजपा के उम्मीदवार हर्षद भाई गोविंद भाई परमार चुनाव जीत गए हैं। महाराष्ट्र की राहुरी सीट पर भाजपा के अक्षय शिवाजी राव करदिले को जीत मिली है। नागालैंड में कोरिडांग सीट पर भाजपा के दाओचियर इमचेन विजयी रहे हैं। त्रिपुरा में धर्मनगर सीट से भाजपा के जाहर चक्रवर्ती को जीत मिली है। कर्नाटक में बागलकोट सीट से कांग्रेस के उमेश हुलप्पा मेदी को जीत मिली है। कर्नाटक में ही दावणगेरे दक्षिण सीट से कांग्रेस के समर्थ सामनूर मल्लिकार्जुन चुनाव जीत गए हैं। महाराष्ट्र में बारामती सीट पर उपचुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुनेत्रा अजीत पवार विजयी रही हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज का दिन कई मायनों में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि ये चुनाव परिणाम लोकतंत्र की जीत है। IPL क्रिकेट में मुंबई में लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुंबई इंडियंस को 229 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने 17वें ओवर में 3 विकेट पर 198 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। The Bharatiya Janata Party BJP has scripted history in West Bengal by securing an overwhelming mandate in the 294-member state assembly. The ruling BJP-led NDA has secured a historic third consecutive term in Assam. In Keralam, the United Democratic Front has swept the polls with 99 seats, signalling a decisive return to power. Puducherry is expected to witness the return of a National Democratic Alliance NDA government led by N. Rangaswamy's All India NR Congress AINRC. In West Bengal, BJP candidate Suvendu Adhikari defeated West Bengal Chief Minister and TMC leader Mamata Banerjee in the Bhavanipur Assembly constituency by more than 15,000 votes. BJP has crossed the majority mark of 148 in the 294-member house, ending the 15-year rule of Mamata Banerjee-led Trinamool Congress TMC in the first election after special intensive revision, SIR, of electoral roll. With a win, the state will be witnessing its first BJP government since independence. Out of a total of 293 assembly seats, results have been declared for 271 constituencies so far. BJP has bagged 197 seats, while Trinamool Congress has won 68 seats. Congress and regional arm Janata Unnayan Party, AJUP, secured 2 seats each. CPM clenched 1 seat. In Assam, out of the results declared for 101 constituencies, BJP has bagged 73 seats, while its allies Assam Gana Parishad, AGP, has won 6 seats and Bodoland People's Front, BPF, has secured 8 seats. On the other hand, Congress has gained 10 seats. All India United Democratic Front, AIUDF, clinched 2 seats, while